सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं और आशा करती हूं कि हर रोज सुबह योगशाला में आकर के 30 दिवसीय योग शिविर में योग आसन प्राणायाम नित सभी मिलकर के करते हैं। और साथ ही साथ हम आपको आज बता दें कि एक शब्द की उत्पत्ति के साथ में जब हम आसन प्राणायाम को कर रहे हैं तो उसका अपने आप में एक और सा अर्थ निकल करके सामने आ रहा है। जब हम कोई आसन, जब हम कोई कसरत, जब हम कोई प्रक्रिया को साथ मिलकर के करते हैं तो उसका अपने आप में एक असर दुगना हो जाता है। साथ ही साथ आज हम जो एक आसन आपको कराने जा रहे हैं, यानी कि हम सभी मिलकर करने वाले हैं, वह है चक्रासन। चक्रासन के साथ साथ हम मंडूक आसन भी करेंगे। मंडूक आसन अपने आप में एक विस्तृत आसन है। आज जिस मंडूक आसन को हम करने वाले हैं, उसके आगे हम एक शब्द को जोड़ने वाले हैं, जो कि है प्रारब्ध। प्रारब्ध मंडूक आसन। मंडूक का मतलब आप सभी को पता है, जो कि पेड़ों से चलने वाले जानवर को कहते हैं। तो आज हम मंडूक आसन तो करेंगे ही, साथ में हम उसके प्रारब्ध को भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि प्रारब्ध है क्या। आखिर मंडूक आसन के साथ ही प्रारब्ध शब्द क्यों जोड़ा गया? स्वामी विवेकानंद के अनुसार प्रारब्ध पिछले कर्म का वह भाग है जो वर्तमान शरीर के लिए जिम्मेदार होता है, संचित कर्म का वह भाग जो वर्तमान अवतार में मानव शरीर को प्रभावित करता है, उसे प्रारब्ध कहा जाता है। यह फल प्राप्त करने के लिए परिपक्व है, इसे टाला नहीं जा सकता है या बदला नहीं जा सकता है। प्रारब्ध वैसे तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, संचित और क्रियामान। क्रियामान यानी कि हम कोई भी क्रिया करते हैं तो हम उसको चलायमान की स्थिति में करते हैं, जिसे योग की स्थिति में कहा जाता है योग क्रियावान। योग क्रियावान के साथ साथ आज हम प्रारब्ध को भी जानेंगे और पूर्व

जन्म के कर्म को संचित करके वर्तमान जन्म के कर्म को क्रियावान यानी चलायवान संचित करना ही प्रारब्ध होता है। प्रारब्ध का शाब्दिक अर्थ जिस तरीके से आपने समझा, किसी भी वस्तु किसी भी कर्म को क्रियावान करना। अब कर्म में हम बहुत सारे ऐसे कर्म हम रोज करते हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, किसी से बात करते हैं, कहीं हम घूमने जाते हैं, परिवार में बैठ कर के हम सभी का पालन पोषण करते हैं, यह सारे कर्म ही होते हैं। लेकिन वह कर्म जो हम अपने लिए करते हैं, जिसे आज हम योग दृष्टि से जानेंगे और यह जानेंगे कि आज हम प्रारब्ध को किस रूप में कर सकते हैं। मंडूक आसन को प्रारब्ध के रूप में इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यह एक आसन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आपने सुना होगा कि प्रारब्ध को बहुत ज्यादा बताया गया है, बहुत ज्यादा विस्तार रूप से बताया जाता है। ठीक वैसे ही हम आपको बताने जा रहे हैं आज प्रारब्ध मंडूक आसन। तो आइए हम सीधे चलते हैं आसन पर और मंडूक आसन की ओर, यानी कि मंडूक आसन हम सभी मिलकर के करने वाले हैं। तो आइए एक स्वच्छ वातावरण में हम साफ सुथरी एक चादर बिछा लें और मैट बिछा करके हम बैठ जाते हैं और साथ ही साथ मंडूक आसन की प्रक्रिया को करते हैं। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि मंडूक आसन कैसे किया जाता है। तो आइए हम अब शुरू करते हैं मंडूक आसन, जो कि पेट के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले आप किसी समतल जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन हमने पहले भी आपको पूरी की पूरी एक सीरीज बताई है वज्रासन में बैठने के लिए। दाहिना पैर बाएं पैर के ऊपर पंजों के साथ में ऊपर उठाएं और एक पलथी नुमा में हम बायां पैर दाएं पैर के ऊपर रखकर बैठें। अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं। तीन मुट्ठी को नाभि और जांग के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। मंडूक आसन वैसे तो बहुत ही प्रभावी आसन है। यह आपके पेट की चर्बी को कम करने के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। इसे आप रोजाना 10 से 15 मिनट जरूर कर सकते हैं, तो आपका इससे पेट बहुत ही अच्छे तरीके से पतला होने की स्थिति में आ जाएगा। लोग क्या कहते हैं, मतलब जैसे आजकल महिलाएं पुरुष हैं वो कहते हैं कि मेरा पेट निकल आया है, बहुत बार ये सुनने को मिलता है। तो उसी तरीके से यदि हम इस मंडूक आसन को करेंगे तो हमारा पेट भी बाहर नहीं निकलेगा। आजकल लोगों के पेट पर सबसे बड़ी और सबसे बड़ी समस्या ये है कि फैट चढ़ता है। इससे बड़ी वजह है कि आप सिटिंग जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग घंटों बैठकर काम करते हैं, जिसकी वजह से तौल निकल आती है। वजन घटने के दौरान पूरे शरीर में फैट चला जाता है, लेकिन सबसे आखिर में फैट पेट पर ही कम होता है। पेट की चर्बी को कम करने के लिए आप योग का सहारा जिस तरीके से ले रहे हैं, इसी तरीके से आपको हमेशा से योग में ही करते रहना है। आज हम आपको एक ऐसा साथ ही साथ योग कराएंगे जो कि पेट के लिए बहुत ही ज्यादा है, जिसका नाम हमने आपको बताई दिया है मंडूक आसन। इसे करने के लिए पेट की चर्बी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। मंडूक आसन को मेंढक आसन भी यानी फॉग पोज भी कहते हैं। मंडूक आसन करने से न सिर्फ पेट की मसल्स मजबूत होती है, बल्कि इसे करने के से बेली फैट भी बहुत ही अच्छे से छुटकारा मिल जाता है। तो आइए हम शुरू करते हैं जो कि अभी पहली अवस्था में हमने आपको बताया। जो लोग पेट की समस्या से पीड़ित रहते हैं, उनके लिए यह योगासन किसी वरदान से कम नहीं है। गैस, अपच और पेट फूलने की समस्या से राहत पाने में मंडूक आसन आपकी मदद करेगा। इसके अलावा डायबिटीज के रोगों के लिए भी यह काफी
फायदेमंद होता है। जानते हैं मंडूक करने का तरीका, तो आइए हम पुनः आपको मंडूक आसन करने का आसान तरीका बताते हैं। सबसे पहले किसी समतल जगह पर वज्रासन में बैठ जाएं, अब मुट्ठी बांधकर अपनी नाभि के पास लेकर आएं, मुट्ठी को नाभि और जांघ के पास खड़ी करके रखें, जिसमें उंगलियां आपके पेट की ओर हों। गहरी सांस लें, फिर छोड़ते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि छाती आपकी जांघों पर टिक जाए। ऐसे झुकें कि नाभि पर ज्यादा से ज्यादा दबाव आए। अपना सिर और गर्दन सीधी रखें। कोशिश करें धीरे धीरे सांस लें और छोड़ें। अब आराम से अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं। यह एक चक्र आप शुरू करें 3 से 5 बार कर सकते हैं। आइए अब हम आपको बता दें मंडूक आसन करने के लाभ, क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा आपके लिए फायदा हो सकता है। मंडूक आसन करने से पेट की मसल्स पर यानी टोन होने के साथ साथ बेली फैट भी कम करने में मदद करता है। मंडूक आसन करने से पाचन से जुड़ी समस्याएं जैसे गैस, कब्ज, अपच से छुटकारा मिलता है। मंडूक आसन करने से डायबिटीज रोगियों को फायदा मिलता है। यह जरूर से जरूर करना चाहिए। और हम आपको बता दें कि मंडूक आसन कब नहीं करना चाहिए। यदि पेट संबंधी कोई गंभीर रोग हो तो यह आसन ना करें, आप इसे हटा सकते हैं। आसन करते वक्त ध्यान रखें कि दोनों हाथों की मुट्ठियां अच्छी तरह से नाभि के आसपास टिकी हों। तो ये है प्रारब्ध मंडूक आसन जो कि आज हमने किया। मंडूक आसन कितनी बार करना है आइए हम आपको बताते हैं। मंडूक आसन आप सवेरे भी कर सकते हैं और शाम को भी, यानी कि आप सुबह उठकर के भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जब भी करें मंडूक आसन वह हमारे लिए उचित समय हो और 4 से 5 घंटे पहले ही हमने भोजन कर रखा हो। उसके बाद में आपको ये लगेगा कि इसका असर हमारे लिए इतना लाभदायक हो रहा है, इसलिए यह मंडूक आसन प्रारब्ध के साथ जोड़ा गया है। प्रारब्ध का अर्थ हमने अभी आपको बताया कि पुनः यानी पिछले जन्म का कोई कर्म, इसीलिए हमने आपको बताया कि प्रारब्ध के साथ जुड़े हुए मंडूक आसन को हम कर सकते हैं। इससे बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि दूर होती हैं। मुख्यतः पेट से संबंधित समस्या दूर करने में यह बहुत ही ज्यादा सहायक सिद्ध होता है। आसन को पूरा करने के बाद हाथों की हथेलियों में घर्षण करें कुछ इस तरह। तत्पश्चात आप आंखों पे और अपने चेहरे पे लगाएं और एक बार ओम की श्वास भरने और श्वास लें। उसके बाद आप आराम से आप पूरा प्राणायाम करके इसको छोड़ सकते हैं। तो आज के लिए प्रारब्ध मंडूक आसन हम सभी ने मिलकर के किया। आशा करती हूँ कि हमारे द्वारा कराए गए योग आसन आप सभी मिलकर करते होंगे और हर बार की तरीके से हर एक आसन के साथ एक नए शब्द की उत्पत्ति भी हो रही है और इस शब्द की जो उपयोगिता है वह भी आपको समझ में आ रही होगी। तो आइए हम सभी मिलकर के अब 10 से 15 मिनट योग ध्यान करते हैं। उसके बाद हम फिर कल मिलेंगे एक नए आसन एक नए शब्द के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि योग हमारे जीवन के लिए हमारे शरीर के लिए कितना फायदेमंद है, ठीक वैसे ही हम सभी के लिए योग से जुड़े रहना एक प्राकृतिक उपचार भी है। आइए उस प्राकृतिक उपचार को और अच्छे से जानने के लिए आज हम एक औषधि की ओर चलते हैं और वो औषधि जो हमारे शरीर के साथ साथ
हमारी मानसिक स्थिति को भी ठीक करती है। सबसे पहले उस औषधि का नाम जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, उस औषधि का नाम है योग। योग की प्रक्रियाएं। योग की वैसे तो बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, और हमने कई सीरीज में योगा की कई ऐसे तमाम प्राणायाम आसन को करते हुए बताते हुए हमने आप सभी के साथ साझा किया है। आज हम एक ऐसी बीमारी की ओर चलते हैं जो कि हम सभी के लिए बहुत खतरनाक है। कहते हैं स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर एक बहुत बड़ा धन होता है, और उसी धन को हम ता उम्र संचित करने के लिए इधर उधर भागते रहते हैं। आज हम योग के माध्यम से जानेंगे कि ये महत्वपूर्ण धन को संचित करने का उपाय क्या है। सबसे पहले हम उस डिजीज के बारे में जान लेते हैं जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अमूमन हमने देखा है कि आजकल बढ़ती हुई भागम भागी और इतनी सारी चिंताओं के बीच में लोग अपने आप को भूलते जा रहे हैं। अपने आप को भूलने का कारण ये नहीं है कि वो अपने लिए नहीं सोच रहे हैं। अपने लिए सोचने का महत्वपूर्ण कारण यह है कि वह अपने लिए थोड़ा समय निकाले, और उसी बीच हमें फिर कुछ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं जिसका हमें बाद में पता चलता है, जिसमें से एक महत्वपूर्ण बीमारी है शुगर, यानी कि डायबिटिक। डायबिटीज किसी को भी हो जा रही है तो हमें ये जान लीजिए कि हमारी आंतरिक सभी जितने भी आयगंस हैं वो धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। योग के माध्यम से आज हम जानेंगे कि यह इसका कारण क्या है। शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं जो डायबिटीज होने के कारण बन सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि शरीर में शुगर लेवल बढ़ने के कारण क्या हो सकते हैं। धीरे धीरे हमारी उम्र बढ़ती है, ये हम सभी को पता है कि उम्र बढ़ना भी हमें हमारी शरीर में इंसुलिन के कारण से हमें डायबिटिक हो सकती है, और या तो हम जेनेटिक हो सकते हैं जिसमें हमारा पारिवारिक इतिहास हो सकता है, यानी कि हमें हमारे परिवार में किसी न किसी को अगर होती है तो ये एक पारिवारिक कारण भी डायबिटिक का होना कहलाता है। शारीरिक गतिविधि न करना, जो कि आजकल सभी के लिए यह महत्वपूर्ण लोग नहीं मानते हैं। कई घंटों तक एक ही जगह पर बैठे काम करना, लैपटॉप पे या फिर कई जगह पर, ऐसा तो माना गया है कि 12-12 घंटे बैठ करके आज के टीनेजर्स हों या फिर बड़ी उम्र के लोग भी एक साथ बैठ करके काम करते हैं, जिससे शारीरिक गतिविधि नहीं हो पाती है। अगला कारण हो सकता है मोटापा, जो कि हमारा शरीर में ये सारी चीजों को एक साथ इकट्ठा कर देता है। फैट सबसे बड़ा कारण है हमारे शरीर में किसी बीमारी को आमंत्रित करना। इसीलिए तो कहा गया है कि थोड़ा सा अपने आप को नियंत्रित करना है, बाहर की चीजों को नहीं खाना है, और अगर खाना है तो उसे संतुलित रूप से, यानी कि हमें हफ्ते में किसी एक दिन अगर आपका बहुत मन कर रहा है तो थोड़ा संतुलित होकर के। साथ ही साथ खराब आहार, मैंने अभी बताया कि बहुत सारे बच्चों की आदत हो गई है, जैसे बाहर की चीजों में पिज्जा बर्गर, ये सारी चीजें खराब नहीं है, लेकिन हम यदि इसको संतुलित रूप से अगर लेंगे तो हमें यह नुकसान नहीं करेगा। महत्वपूर्ण कारण की ओर चलते हैं जो कि है तनाव। स्ट्रेस एक ऐसा कारण है जो कि हमें शुगर लेवल को बढ़ाने में एकमात्र साधन बनता जा रहा है। तनाव जो कि आज छोटे से बड़े बच्चे भी छोटी छोटी बातों पर तनाव लेना शुरू कर देते हैं, जिससे भी हम डायबिटिक हो सकते हैं। आजकल खानपान की वजह से, स्ट्रेस के कारण से, या फिर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आना, छोटी छोटी बातों पर हम अग्रेसिव हो जाते हैं, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो हमारा हार्मोन असंतुलन हो जाता है। उक्त रक्तचाप का होना, बीपी की प्रॉब्लम्स जिन्हें ज्यादा होती है, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, यह भी कारण बताता है आगे चल करके डायबिटिक होने का। साथ ही साथ हम यह बता दें कि शुगर लेवल तेजी से क्यों बढ़ता है। मिठाई, केक, पेस्ट्री और शुगरी ड्रिंक, यानी कि जिसमें शुगर की मात्रा
ज्यादा होती है। अन्य मीठे पदार्थ जिसको हम अगर लगातार लेते रहते हैं तो हमारे शरीर में शुगर लेवल बढ़ जाता है। सेकंड पॉइंट आता है मैदा और रिफाइंड या आटे से बनी चीजें। मैदे से बनी चीजें भी हमारे शरीर को बहुत ज्यादा असंतुलित करती हैं। सुबह जल्दी उठना या इंसुलिन शेड्यूल खुराक सही रूप से न लेना। जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं, अगर वो इंसुलिन की खुराक ठीक से नहीं लेते हैं तो भी वह आगे चल करके ज्यादा डायबिटिक हो जाते हैं। समय पर नाश्ता न करना, ये सबसे बड़ा कारण आजकल छोटे छोटे बच्चों को, कम एज के बच्चों को भी सुनने में आता है कि वह डायबिटिक हो गए हैं। सुबह उठकर के सर्वप्रथम हमें अपने लिए अपने संपूर्ण आहार वाला नाश्ता लेना चाहिए। कहा जाता है कि नाश्ता हमें राजाओं की तरह करना चाहिए। दोपहर का जो नाश्ता होता है, दोपहर का खाना हम साधारण रूप से कर सकते हैं, लेकिन हमें रात का भोजन बिल्कुल हल्का लेना चाहिए। इसीलिए हम कभी भी अगर बीमार पड़ते हैं तो हमें सबसे ज्यादा दिक्कत सवेरे ही होती है, क्योंकि जब हमारा पेट खाली होता है तो हमें चक्कर आना, हमें कमजोरी महसूस होना, ये सारे लक्षण हो सकते हैं डायबिटिक होने के। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं शरीर में शुगर लेवल बढ़ने से कुछ जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण बातें। शुगर लेवल बढ़ने की वजह से शरीर ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाता है, जिसके कारण से हम दिन ब दिन धीरे धीरे ज्यादा हाई लेवल पर शुगर या फिर डायबिटिक होने लगते हैं। शुगर लेवल बढ़ने से टाइप 2 डायबिटीज जैसी बीमारियां भी होने लगती हैं। शरीर में शुगर लेवल को कंट्रोल रखने के लिए आप रात को जल्दी खाना खाएं, नियमित व्यायाम करें और साथ ही साथ अपने डॉक्टर की सलाह भी लेते रहें। आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं मधुमेह यानी डायबिटिक के बारे में और उनके लक्षण। डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो एक बार अगर हो जाती है तो आजीवन बनी रहती है, जिसको हम कभी भी आजीवन में इसका उपचार तो करते रहते हैं लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म नहीं होती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि डायबिटिक और मधुमेह है क्या। मधुमेह एक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, जिसे शुगर डायबिटीज के नाम से भी जानते हैं। यह बीमारी तब होती है जब आपके शरीर में पर्याप्त इंसुलिन नहीं बन पाता है और इसके कारण ब्लड में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का लेवल बढ़ जाता है। साथ ही साथ हमने आपको इसके कारण तो बता ही दिए हैं, आइए अब हम आपको योग के माध्यम से इसे औषधि की ओर कैसे ले जाते हैं इस पर बात कर लेते हैं। शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए सर्वप्रथम अभी हमने बताया कि सवेरे उठ करके आपको नित्य क्रिया करने के बाद में एकांत चित कहीं स्थान पर बैठ जाना है और आपको 3 प्राणायाम मुख्य रूप से शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए करना है। सबसे पहला प्राणायाम है प्रणो प्राणायाम। प्रणो प्राणायाम इसलिए क्योंकि अभी हमने लक्षणों के बीच में एक बात बताई थी कि तनाव और खराब खानपान, तो तनाव के कारण हम अपने आप को असंतुलित कर पाते हैं, यानी कि असंतुलित हम हो जाते हैं। तनाव को कम करने के लिए प्रणो प्राणायाम एकमात्र ऐसा साधन है, एक ऐसी औषधि है जिसे करने के बाद में हम तनाव से मुक्त हो पाते हैं। और साथ ही साथ जब हम एकांचित होकर के इस योग मुद्रा में बैठते हैं तो हमें अपने आप को भी एक शांति और एक सुदृढ़ होने की कला मिलती है। दूसरा प्राणायाम अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम वैसे तो श्वास से निर्मित प्राणायाम है। आती जाती श्वास को किस तरीके से नियंत्रित करना है अनुलोम विलोम में बेहतर बताया जाता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम करने से हमें पेट के साथ साथ मानसिक स्थिति को भी ठीक करने के लिए कई ऐसे उपचार और लक्षण भी बताते हैं। अनुलोम विलोम को करने के बाद में हम तीसरा प्राणायाम और मुख्य प्राणायाम करते हैं अग्निसार। वो इसलिए क्योंकि शुगर लेवल जब हमारा बहुत ज्यादा बढ़ा होता है तो हमारी पेट की अग्नि भी उस समय हाई लेवल पर बढ़ी रहती है। सवेरे जब आप उठें और नित्य क्रिया करने के बाद में ये तीसरा प्राणायाम लगातार 1 से 1.5 महीने आप करते रहें तो आपका शुगर लेवल धीरे धीरे कंट्रोल होने लगेगा।
हम ये तो नहीं कह रहे कि आपकी दवाइयाँ बंद हो जाएंगी या आपका शुगर ठीक हो जाएगा पूर्ण रूप से, पर आपको आने वाली छोटी छोटी तकलीफें जो शुगर से संबंधित होती हैं, डायबिटिक से संबंधित होती हैं, वह आपके रोजमर्रा के जीवन में नहीं होंगी। मैंने कई सीरीज में प्रणो प्राणायाम, अनुलोम विलोम और अग्निसार बारी बारी कई बार इसकी प्रक्रियाओं को बताया है, लेकिन हम फिर से आज हम जब डायबिटिक पेशेंट को लेकर के बात कर रहे हैं तो हम तीनों का एक संक्षिप्त परिचय भी देते जा रहे हैं। सबसे पहला प्रणो प्राणायाम, जो कि आती जाती श्वास को महसूस करना है और बिल्कुल शांत चित होकर के बैठ जाना है। यह हमारा पहला प्राणायाम जो कि प्रणो प्राणायाम। इससे हमारा मानसिक तनाव और हमारी आंतरिक सभी शक्तियों को शांत कर देता है। दूसरा अनुलोम विलोम, दाई नौसिका को बंद करके बाई नौसिका से सांस छोड़ना और बाई नौसिका से सांस लेते हुए दाई नौसिका से सांस को छोड़ना अनुलोम विलोम कहलाता है। इसमें हमें श्वासों की गति को नियंत्रित करते हुए अपने आप को एकाग्रचित होकर के श्वास की तरफ ध्यान देते हुए पेट की गतिविधियों को भी मध्यम गति से चलाते रहना है। तीसरा प्राणायाम जो कि बहुत मुख्य है वो है अग्निसार। अभी अभी हमने बताया कि अग्निसार यानी कि पेट की अग्नि को शाना। आपने देखा होगा या आपने महसूस किया होगा कि जब हमें तेजी से भूख लगती है तो हमारे पेट के अंदर कई प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं। हमें ये महसूस होता है कि इस समय हमें जो भी मिले हम उसे खा लें। इसका साफ साफ कारण ये होता है कि उस समय हमारी पेट की अग्नि जो है वह ज्वलनशील होकर के तेजी से हो जाती है, जिसके कारण से हमारा शुगर लेवल भी उस समय बढ़ जाता है। जैसे जैसे हम कुछ न कुछ खाने लगते हैं, पानी पीने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी जो पेट की अग्नि है वह शांत होने लगती है। सवेरे उठ करके अग्निसार करने से यह अग्नि पूर्ण रूप से इतनी तीव्र गति से कभी भी आपको परेशान नहीं करेगी। भूख जो कि समय पे लगती है, समय पर भूख लगने के बाद में आप आराम से खाना खाएंगे और फिर आपको इतनी ज्यादा बेचैनी उलझन नहीं होगी। अग्निसार कैसे करना है आइए अब हम बताते हैं। शांत चित होकर

No.

आपके हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे, जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

आयु आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन, जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

गुड मॉर्निंग गोंडा, सुबह के बज चुके हैं 8:30 और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी मॉर्निंग चौकी मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना एफएम रेडियो 99.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, यानी कि सुबह 8:30 बजे चल रहा है आपका प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा। भैया ये मॉर्निंग का स्पेशल वाला प्रोग्राम जो अंदर एनर्जी लेकर आता है ना, उसका कोई तोड़ है ही नहीं। फिलहाल के लिए जनाब स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने मॉर्निंग स्पेशल वाले प्रोग्राम में। और आज का पहला सवाल आपसे कि क्या आपने नोटिस किया है हम हर चीज के पीछे बस भागते रहते हैं। सुबह की बस हो, काम की डेडलाइंस हो, लोगों की उम्मीदें हो, या फिर लोगों के आए हुए मैसेजेस हो, सबके पीछे हम बस दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। पर आज नहीं, आज ना आज जरूरत है थोड़े से ठहराव की, थोड़ा सा रुकने की, एक ऐसी छोटी सी ब्रेक जहां दुनिया के शोर से हटकर एक खामोशी को हम बयां करने वाले हैं, खुद की आवाज को फुल वॉल्यूम पे डालने वाले हैं। तो अगर आप पिछले कुछ घंटों से या फिर पिछले कुछ दिनों से किसी बात को लेकर परेशान हैं, तो जनाब आज ही इसको टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि कोई जरूरत है नहीं उसको आपकी लाइफ में रुकने की। परेशानियों को बाय बाय कीजिए, खुशियों को ज़रा अंदर आने दीजिए, खुद के अंदर थोड़ा सा ठहराव लाइए। पीछे भाग भाग के आपके भी पैर दुख चुके हैं, ज़रा नज़र दौड़ाइए, क्या कर क्या रहे हैं आप। फिलहाल आइए चलते हैं, आपको सुनाते हैं आज की पोइट्री ऑफ द डे, आपके लिए स्पेशली क्या कहना चाहती है या फिर क्या कुछ कह रही है। अब क्योंकि आज हमने बात की है ठहराव पर, तो हमारी पोइट्री भी आपके लिए स्पेशली ठहराव ही है। भाई लाइंस कुछ इस तरह से हैं कि भागती दौड़ती इस दुनिया में ज़रा सा सुकून रुकना सिखाता है ठहराव, औरों की परवाह में खुद को खोकर फिर खुद से मिलाना सिखाता है ठहराव। जब लगने लगे कि सब पीछे छूट गया है और वफा का हर धागा भी टूट गया है, तब गैरों की तलाश को बंद करके खुद को ही खुद में बसाना सिखाता है ठहराव। ना किसी से शिकायत ना पाने की चाहत, ये खुद की नज़र में खुद की इबादत। तूफानों के बीच जो मुस्कुराना आपको सिखा दे, वही सुकून वही राहत सिखाता है ठहराव। जरा थम के देखो, तुम ही तुम हो यहाँ, तुम्हारी हंसी से रोशन है सारा जहाँ। दूसरों से मान मोहब्बत मांगने से बेहतर, खुद को गले लगाना सिखाता है ठहराव। और भैया ये सब आपको तभी मिलेगा जब आप अपनी ज़िंदगी में लेकर आएंगे ठहराव, और ये बड़ा ज़रूरी होता है। पॉज चाहे बातों में हो, चाहे स्पीचेस में हो, या आपकी ज़िंदगी में हो, अगर पॉज नहीं आया तो सब बेफिजूल लगता है, ऐसे तो कुछ है ही नहीं, बातों में दम नहीं है। बड़े बड़े लोग अपनी स्पीचेस में पॉज डाल देते हैं, कहानी में सस्पेंस बनाने के लिए पॉज डाल देते हैं, कहीं ना कहीं चीज़ों को और भी हसीन बनाने के लिए पॉज डाल देते हैं। तो जब ज़िंदगी की बात आती है तो ये पॉज, ये ठहराव हम क्यों मिस कर देते हैं, हम हमेशा भागते क्यों रहते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि हर वक्त हम भागते रहते हैं, कभी अपने सपनों के पीछे, कभी दूसरों के सपनों के पीछे, कभी उनके पीछे, कभी अपने पीछे, कभी इनके पीछे। बस ये पीछे पीछे पीछे पीछे चलने वाली जो हमारी आदत है, ये कब हम छोड़ने वाले हैं, कब हम ये सोचेंगे कि ये ज़िंदगी आपको अपने लिए मिली थी, अपने लिए जीने के लिए मिली थी, ना कि भागने के लिए। जो हम भागते रहते हैं और फिर कहते हैं कि साल बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, दिन बहुत जल्दी ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला वक्त कहाँ गया। भाई पता चलेगा भी कैसे, आपने सारा वक्त तो भागने में ही लगा दिया, आपने कभी ठहर के देखा ही नहीं कि सुबह की जब पहली किरण जमीन को छूती है तो वो किस कदर खूबसूरत नजर आती है। आपने कभी देखा ही नहीं कि जब आसमान में सूरज नजर आता है

है तो वो लाल होता है या ऑरेंज होता है, आपने कभी नोटिस ही नहीं किया। आपने कभी ये भी नोटिस नहीं किया कि आसमान में तैरते बादल आजकल जहाँ किधर रहे हैं। किया है क्या? नहीं किया है, डेफिनेटली इन्होंने नहीं किया है। बचपन में जिन बादलों को देखकर आप मुस्कुराते थे, जिनके अंदर हजारों शेप ढूंढ लिया करते थे, आजकल उन्हीं को देखने की फुर्सत नहीं है। जिन हवाओं को देखकर, उनको महसूस करके अपनी बाहें फैला कर खड़े हो जाते थे कि आज तो उड़ जाने का दिल करता है, अब तो वो भी खड़े नहीं होते। जिन फूलों को देखकर मन करता था कि अरे यार इसको तोड़ ले, क्या जो नहीं तोड़ते बहुत खूबसूरत है, अब उन फूलों की तरफ आपने देखा भी नहीं है न जाने कितने दिनों से। कितने दिनों से खुद को आईने में तो रोज़ देखा है, लेकिन आईने में खुद को नहीं देखा है। अब ये बोल रहे होंगे कि ये क्या बात होती है मियाँ, हम आईने में खुद को देख रहे हैं लेकिन खुद को नहीं देख रहे। जी हाँ, आप आईने में देख तो रहे हैं कि हम कैसे लग रहे हैं, बट क्या आपने ये देखा है कि आप कितने खूबसूरत लग रहे हैं? नहीं नहीं नहीं हम ये नहीं देखते। हम बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या दुनिया के रीति रिवाजों के अकॉर्डिंग, क्या दुनिया की नज़रों के अकॉर्डिंग हम तैयार हो चुके हैं, बट हमने कभी ये देखा ही नहीं कि हम अपने लिए तैयार हो चुके हैं। क्या हम अपने लिए खूबसूरत नज़र आ रहे हैं, अपनी नज़रों में सुंदर नज़र आ रहे? जो बचपन में देखा करते थे आप, मम्मी की साड़ी पहन के, पापा का जूता पहन के, वो वाली शरारतें आपने अभी करना बंद कर दी हैं। इसके अलावा आपने ये भी बंद कर दिया है कि आप आईने में नज़र कैसे आ रहे हैं। पहले तो भैया बहुत इतराया करते थे देख देख कर कि अरे वाह ये वाली स्माइल करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, इधर नज़र घुमाएंगे तो ये हो जाएगा, कितने खूबसूरत लगते हैं जब बाल पीछे होते हैं। बट आजकल इन सब की फुर्सत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भाग रहे हैं, भाग रहे हैं इस दुनिया में जहां हर दूसरा इंसान भाग ही रहा है, किसी को किसी से मतलब है ही नहीं। और कमाल की बात है उन्हें खुद से भी मतलब नहीं है। वो कहते तो हैं कि हम खुद से बेहद मोहब्बत करते हैं, लेकिन किसी एक इंसान का मैसेज ना आने पर उनका खुद की, खुद के लिए जो मोहब्बत है वो भी कहीं ना कहीं टाटा भाई भाई भाई भाई हो जाता है। सोचिए ज़रा, सोचिए सोचिए, सुबह सुबह बहुत डीप बातें कर चुके हैं हम, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञान असली। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, और अगर इस ब्रेक में खुद के लिए थोड़ी सी मोहब्बत जाग गई हो तो ज़रा देख कर आइए कि आईने में आप किस कदर खूबसूरत नज़र आ रही हैं, प्लस प्लस प्लस आज की हवाएं आपके लिए क्या पैगाम लेकर आई हैं। और आगे चैट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा कि आज की पोइट्री कैसी लगी और हवाओं से आपको क्या पैगाम मिला है। फिलहाल एंजॉय करते रहिए गुड मॉर्निंग गोंडा, और हम लेते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, क्योंकि सूरज हुआ मध्यम, हालांकि हुआ तो नहीं है बट हम कर देते हैं ताकि आप खुद के लिए थोड़ा सा वक्त निकाल पाए। एंजॉय करते रहिए सोनू निगम साहब की आवाज में, कभी खुशी कभी गम से ये वाला बेहतरीन सा नगमा।

कुछ प्यारे से छोटे से बहुत ही रंग बिरंगे म्यूजिकल वाले ब्रेक के बाद आपका वापस से स्वागत करते हैं आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी रेडियो शौक की रोती मौजूद हूं आप सभी के साथ और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। और क्योंकि मॉर्निंग की शुरुआत बहुत ही लाजवाब हुई थी और हमने पूछा था कि अगर आपने खुद को हजाइने में देख के थोड़ा सा भी इतराने का शौक आया हो या मन किया हो तो चैट बॉक्स में बताइएगा। और वक्त हो चला है अब आपके चैट बॉक्स के कुछ मैसेजेस को लेने के लिए। तो भैया आइए देखते हैं मैसेजेस में क्या क्या आ चुके हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं लिसनर्स एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन जो आपको मिलती है प्ले स्टोर ऐप स्टोर पर रेडियो ज्ञान 89.6 FM के नाम से आप इंस्टॉल करके हमसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं अपने मैसेजेस के जरिए और आपके पैगाम का इंतजार हम हमेशा करते रहते हैं। तो फिलहाल सबसे पहले मैसेज जो आज के प्रोग्राम में आया था वो आया था महेंद्र दीपन जी का फ्रॉम राजस्थान और लिखा है नमस्कार शुभ प्रभात। नमस्कार आपको भी। हर सुबह नई उम्मीद नई मुस्कान लेकर आए आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलाए दिन आपका प्यार सुकून और खुशियों से भर जाए आप सभी का दिन मंगलमय और शानदार रहे। क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारे विशेस और बहुत सारी चीज़ें आपने इस छोटे से मैसेज में भेज दी हैं। एंड इसके बाद अगेन आप ही का मैसेज है कि शुभ प्रभात आयुष्मती मैम जी, शुभ प्रभात आपको भी, कैसे हैं आप। एंड इसी के बाद आपने लिखा है सुबह तो रोज होती है मगर कुछ आवाजें उसे खास बना देती हैं। आपकी मुस्कान भरी आवाज सुबह में एक अलग ही मिठास घोल देती है। आज आपकी आवाज के साथ दिन की शुरुआत हुई है, बस यही दुआ है आपकी सुबह जितनी प्यारी है पूरा दिन उससे भी खूबसूरत हो। बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आपका स्वागत करते हैं हम गुड मॉर्निंग गोंडा में। विकास सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं फ्रॉम अयोध्या। लिखा है गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू यू। और आपसे मेरा एक सवाल है क्योंकि आप अयोध्या में हैं तो जरा ये बताइए कि घाट पर सुबह सुबह सूरज को उगता देख कैसा नज़ारा होता है, कितना मज़ा आता है, क्योंकि इसका इंतज़ार हम काफ़ी दिनों से कर रहे हैं। एंड इसके बाद सुशील यादव जी हमारे साथ जुड़े हैं, लिखा है सुप्रभात सभी को, सुप्रभात आपको भी। महेंद्र जी ने गाने की तारीफ की है, बहुत बहुत शुक्रिया। रोशनी रावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं उन्नाव से, लिखा है गुड मॉर्निंग क्यूट क्यूट अनती मैम जी, आप कैसी हैं मेरी क्यूट क्यूट लिस्टर, आपका स्वागत करते हैं। मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली। एंड ओके धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में। इसके बाद है भैया सुशील जी का मैसेज, प्रसन्नता तो चंदन है दूसरे के माथे पर लगाइए आपकी उंगलियां खुद महक उठेंगी, सुप्रभात वंदन। क्या बात है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही डीप बातें करते हैं हमारे लिसनर्स। फिलहाल आइए चलते हैं छोटा सा म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार, उसके बाद देखते हैं कि आज आपके मॉर्निंग वाला शो में मेरे पास आपके लिए स्पेशल पिटारी के अंदर क्या क्या स्पेशल बातें होने वाली है। तो बने रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते इस गाने के उस पार। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876 9216 9817 6। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583346।

हाँ जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले प्रोग्राम गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर्चुनति और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और भैया आपसे एक सवाल है, मेरा सवाल कुछ इस तरह से है कि शादी हो, बारात हो, घर हो, दावत हो, पार्टीज हो, बर्थडे पार्टीज हो, कुछ भी हो, लेकिन एक चीज़ जो आपको हर एक जगह पर नजर आती है और हमेशा सलाद के बगल में रखी जाती है, उसे हम कहते हैं प्यार से पापड़। चाहे पापड़ घर पे बन रहे हो या बाहर बन रहे हो, लेकिन एक एक टाइम ऐसा था कि हर एक इंसान और हर एक शादी में लज्जत नाम की पापड़ की बहुत बिक्री हो रही थी। और आपने कहानी इवन अपनी मम्मी से भी सुनी होगी, इवन अपनी नानी को भी देखा होगा जब वो मार्केट जाती हैं और उनसे कहा जाए कि पापड़ ले आओ, तो हमेशा वो लज्जत के पापड़ लेकर आती है और बहुत प्यारे प्यारे उसके एड्स भी आया करते थे। इवन मेरी मम्मी का फेवरेट ऐड हुआ करता था लज्जत पापड़ का ऐड, क्योंकि इसमें छोटा सा बनी आता था। लेकिन क्या आपको पता ये लज्जत पापड़ की शुरुआत हुई कहाँ से थी, किसने मिलकर की थी, क्यों की थी, किस लिए की थी और किस तरह से इसको स्ट्रगल करना पड़ा, जो आज आपको इतनी ज्यादा बड़ी, इतनी सक्सेसफुल कंपनी नजर आ रही है, जिसको देखकर आज बहुत सारी कंपनीज इंस्पायर्ड हो रही हैं, बहुत सारी फीमेल्स को जिसने काम दिया, बहुत सारी महिलाओं को जिसने एक नया रास्ता खोल कर दिया। उसका शुरुआत कहाँ से हुई थी, उसका रास्ता कहाँ से खुला था, कभी ये आपने सोचा? अगर नहीं तो भैया आज हम बताने वाले हैं कि आपका जो बहुत ही प्यारा, बहुत ही पसंदीदा चटपटा तीखा पापड़ है, आफ्टर ऑल उसकी शुरुआत हुई कहाँ से थी।

चलिए हम आपको बता देते हैं कि आफ्टर ऑल ये जो लिज्जत पापड़ है ये क्यों, कहां, कैसे, कब, किसने किया था। एक शाम की बात है जब 7 महिलाएं जो कि गुजराती थी वो महाराष्ट्र के छत पर बैठकर बातचीत कर रही थी और उनके दिमाग में बस एक ही ख्याल था कि कुछ किया जाए, लेकिन किया क्या जाए। अब उन्होंने सोचा कि अपने पास खुद का तो एक पैसा भी नहीं है तो पैसे कमाने पड़ते हैं, पेड़ पे तो उगते नहीं, बचपन से यही डायलॉग हम सुनते आ रहे हैं। तो उन्होंने सोचा पैसे कमाने के लिए हम कर क्या सकते हैं, क्या जॉब करें, नहीं घर में रहने के काम भी तो करना है। और उस वक्त जॉब की इतनी प्रथा थी भी नहीं कि लड़कियां जाकर जॉब करती घूमे। 1959 का टाइम था और उस दौरान हमारी इन 7 महिलाओं ने सोचा कि क्यों ना चलो 80 रुपए उधार लिए जाए, और 80 रुपए से शुरुआत हुई थी आज लाखों के पैसे कमाने वाली, करोड़ों का रेवेन्यू करने वाली कंपनी लिज्जत का। 1959 में जब वो नीचे गई तो एक बहुत ही कमाल के इंसान थे उनके आसपास रहने वाले, नाम था छगन। उनके पास जाकर उन्होंने कहा कि हमें 80 रुपए उधार चाहिए बिकॉज हम एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं। एंड आफ्टर ऑल ये काम शुरू भी हुआ, उन्होंने 80 रुपए उधार दिए। इसके बाद बना था लिज्जत का पहला पापड़, यानी कि पहला पैकेट जिसको बेच भी दिया गया था। और उसी दिन महिलाओं ने शपथ ले ली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, घाटा हो या मुनाफा हो, हम किसी से मदद नहीं लेंगे, किसी से कोई भी किसी भी तरह की कोई चैरिटी नहीं ली जाएगी। आज जो पैसे उधार लिए गए हैं ये पहली और आखिरी दफा था, इसके बाद हम किसी से भी एक भी रुपया उधार नहीं लेने वाले हैं। और वहीं से इन्होंने सोचा कि अपनी मेहनत करके खुद पैसे कमाएंगे, उधार तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और वहीं से इन्होंने बनाना शुरू किया लिज्जत पापड़। एक एक करके पापड़ के पैकेट बनते गए तो जिस इंसान से इन्होंने इस पैसे को उधार लिया था बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, उस इंसान ने आकर एक आइडिया दिया कि खराब पापड़ कभी भी मत बेचना। जी हाँ, अगर कोई पापड़ टूट गया है तो उसे पैकेट के अंदर मत डालना। और वहीं से इन महिलाओं ने एक और शपथ ले ली कि जो भी खराब पापड़ होंगे उसे हम पड़ोसियों में फ्री में दे देंगे, लेकिन पैकेट के अंदर नहीं डालेंगे, ग्राहकों तक जो चीज़ जाएगी वो पूरी कंप्लीट परफेक्ट पोजीशन में जानी चाहिए। और धीरे धीरे करके एक एक करके 7 महिलाओं ने मिलकर जो एक पैकेट तैयार किया था उससे पैकेट तैयार होना शुरू हो चुके थे। 1 महीने के अंदर उसमें और भी महिलाएं जुड़ी, 1 साल के अंदर लगभग 35 महिलाएं और आ चुकी थीं। और अब आने लगा था रेवेन्यू, यानी कि प्रॉफिट। पापड़ बना बनाकर यहां से प्रॉफिट स्टार्ट हो चुका था, लेकिन वो कहते हैं कि हर बिजनेस का एक स्ट्रगल डे ज़रूर आता है और वो इसमें भी आया। जी हाँ, वो कब आया, जब शुरुआत हुई बरसात की। मानसून का सीजन आ चुका था, सावन का महीना, और लगातार बारिश हो रही थी और उस बारिश के दौरान ये पापड़ सूखेंगे कहाँ, अभी ये टेंशन थी। लगातार 4 महीने के लिए पूरा बिजनेस कर दिया गया ठप कि भैया अब तो हो नहीं सकता, लगातार बारिश हो रही है, पापड़ सुखा ही नहीं सकते हम। वहीं पर एक और आइडिया ने जन्म लिया। जब भी मुसीबत आती है तो हमेशा क्रियोसिटी साथ देती है, हमेशा दिमाग आपका साथ देता है। अगर कुछ कर दिखाने की हिम्मत है या आदत है या जुनून है तो कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको आइडिया मिल ही जाता है। और इन्हें भी आइडिया मिला, नीचे आग जलाई गई, ऊपर लकड़ी के और बांस के बने कुछ और सामान रखे गए, कुछ बर्तन रखे गए और उसके ऊपर पापड़ के ऊपर पापड़ रखा गया और ऐसे करके उन पापड़ों को सुखाना शुरू किया गया। तो जो बारिश की वजह से बिजनेस ठप हो रहा था उसको भी आफ्टर ऑल शुरू किया गया और धीरे धीरे करके लिज्जत पापड़ ने अपने 1000 पैकेट कंप्लीट किए। मार्केट में इसको बहुत पसंद किया जाने लगा और अब इसमें और भी महिलाएं जुड़ती जा रही हैं। जहां 7 महिलाओं से ये कहानी शुरू हुई थी वहां अब अराउंड 1500 महिलाएं जुड़ चुकी थी। इवन इसमें एक और खास बात ये है कि भैया जो भी इसमें जुड़ता था वो सेम रूप से मालकिन मान लिया जाता था, उसे कभी ये नहीं कहा जाता था कि तुम लिज्जत पापड़ में सिर्फ एक वर्कर हो या एक एम्प्लॉय हो, ना तुम हो यहाँ की पूरी मालकिन, यानी कि जितना हिस्सा हमारा उतना हिस्सा तुम्हारा। और महिलाओं ने धीरे धीरे करके अपने हाथ से पापड़ बना बना के पहले महाराष्ट्र, क्योंकि शुरुआत मुंबई के ही एक कमरे से हुई थी, तो पहले महाराष्ट्र, धीरे धीरे करके बाकी राज्य और अब पूरे भारत में लिज्जत पापड़ पॉपुलर हो चुका है। तो अगली बार जब आप सुपरमार्केट जाएं और पापड़ खरीदें या किसी बारात में जाकर पापड़ का मजा ले रहे हो तो याद रखिएगा इस पापड़ की कहानी उन 7 महिलाओं से शुरू हुई थी जिन्होंने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट में आकर ये कह दिया था कि मुझे किसी से भी पैसे उधार नहीं चाहिए, मैं अपने पैसे
खुद कमा लूंगी। तो भैया हर एक चीज की इन्वेंशन ऐसे ही होती है जब कोई बैठे बैठे सोचता है, और वो कहते हैं कि एक रात में दुनिया नहीं बदलती, कुछ कहानियां ऐसी होती है जो कहती है एक रात में ही दुनिया बदलती है। बस दिक्कत इतनी होती है कि हम उस रात में बैठ कर डिसीजन नहीं ले पाते, और जिस दिन हमने ये सोच लिया कि कहानी बदलनी है तो उस दिन ऐसी बड़ी कंपनी तैयार हो जाती है जो अब करोड़ों कमा रही है, और न जाने कितनी महिलाओं को, कितनी कंपनीज को इंस्पिरेशन दे चुकी है, और न जाने कितनी कंपनी रिजित पापड़ को देख कर और भी ज़्यादा पैकेट्स छाप रही हैं और भी ज़्यादा पैकेट्स बना रही है। और अब तो मार्केट में आपको बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरह के पापड़ देखने को मिल जाते हैं, बट उस टाइम जो मार्केट में सबसे पॉपुलर था वो था रिजित पापड़। तो भाई जिस चीज़ों को देख कर लोग आपसे सवाल उठाते हैं कि ये कौन खरीदेगा, उनको बताइए कि ये तो हर कोई खरीदेगा, बस आपके काम में शिद्दत होनी चाहिए। तो भैया ये बताइए आपको रिजित पापड़ का कौन सा वाला फ्लेवर ज्यादा पसंद है, चैट बॉक्स में बताइएगा। और आइए एंजॉय करते एक बढ़िया सा गाना, जरा सा झूम लूं मैं, मिलते हैं इस गाने के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

अच्छा ये बताइए दोस्तों, सुबह सुबह आपका नाश्ता क्या था? नहीं, मुझे खाने नहीं आना है, बस सवाल ये है क्योंकि भैया हम तो चाय बिस्किट खा करके आए हैं, लेकिन आप आई थिंक नाश्ते में आलू पराठा खा रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ है जो हम बचपन से इंजॉय करते आ रहे हैं, आपको भी पता है कि हर दूसरा इंसान जो आजकल बिस्किट का फैन हो रहा है, और जहां पर बिस्किट को अलग अलग नामों से जाना जाता है कि भैया इसको तो नहीं खाना चाहिए, बिस्किट का मतलब होता है बिस्क के अंदर किट, मतलब किट के अंदर बिस्क, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम चीज़ें सुनते आ रहे हैं, बिस्किट को बहुत ज़्यादा ट्रॉल करते आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये कहते आ रहे हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। जमानते हैं भैया, कुछ भी अच्छा नहीं है, क्योंकि आजकल सच में बिस्किट के अंदर आपको मैदा मिल रहा है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि ये भारत में बिस्किट की शुरुआत हुई कहाँ से थी? क्योंकि ये भारतीय चीज़ तो है ही नहीं, इसकी शुरुआत तो अंग्रेज़ों ने किया था, और अंग्रेज़ ही इसको लेकर आए थे, लेकिन वो इतना महंगा हुआ करता था कि ये सिर्फ और सिर्फ अमीरों तक ही सीमित रह चुका था। तो आजकल जो आपको हर घर में एक लंबा चौड़ा बिस्किट का पैकेट दिख जाता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कभी सोचा है? अब क्योंकि आज आपके मॉर्निंग वाला शो में उन्नति जी आई हैं, खाने पीने की चर्चा हो रही है, मॉर्निंग वाला टाइम है, तो चलिए एक और नाश्ते की बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राज उन्नति, और ये है आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी रेडियो चौक की उन्नति, मौजूद हूं आप सभी के साथ। और अब बात करेंगे उस बिस्किट की जिसको आप बड़े मोहब्बत के साथ कहते हैं, जी फॉर जीनियस पार्ले जी। वक्त था 1929 का, और उस दौरान भारत में एक ऐसा इंसान काम कर रहा था जो दर्जी हुआ करता था। अब आप सोच रहे होंगे दर्जी है तो बिस्किट से क्या लेना देना। अब इस दर्जी का नाम भी सुनते जाइए, इनका नाम था मोहनलाल दयाल। जी हाँ, मोहनलाल दयाल चौहान, एक ऐसा नाम जो अब आपकी कहानी का मुख्य किरदार होने वाला है। अब ये भाई साहब 1929 तक तो दर्जी का काम कर रहे थे, कपड़े सिलने का काम कर रहे थे, और रात में बैठकर बेकरी चलाते थे। अब इन्होंने अपनी सारी चीज़ें बेच बाज के अपने सिल्क के कारोबार को छोड़ के जर्मनी की जहाज को पकड़ लिया था, और जाके शिप में बैठ चुके थे ये सोचकर कि जर्मनी जाएंगे, मिठाई बनाना सीख कर आएंगे। अब मिठाई तो यहाँ पे भी बन जाती है ना, इवन गोंडा में भी बन जाती है, बहुत अच्छी अच्छी बन जाती है, बहुत फेमस फेमस मिठाइयों की दुकान है। लेकिन अब इनको सीखना था कुछ ऐसा जो अंग्रेज़ खाया करते हैं, तो इन्होंने वो जहाज पकड़ी और पहुँच गए जर्मनी। जर्मनी जाकर सीखा कि किस तरह से बेकरी में मिठाइयां तैयार होती हैं, स्वीट्स कैसे बनते हैं, और वहां पर उन्होंने नोटिस किया था कि भैया अंग्रेज लोग तो खाते हैं बिस्किट, और उसमें बहुत ज्यादा इतराते भी हैं, बिस्किट खा खा के इतराते हैं, और वो बिस्किट बहुत महंगा होता है, कि इतना महंगा कि भारत के जो उस वक्त हालात हुआ करते थे, उस हालात में कोई भी उसे खरीद नहीं पा रहा था, सिर्फ और सिर्फ अमीरों तक ही वो चीजें जा रही थी, और इसको एक कहीं ना कहीं स्टेटस सिंबल भी डिक्लेयर कर दिया जाने वाला था। अब उस दौरान जब उन्होंने मिठाइयाँ सीखी और कुछ सालों बाद जब अपने देश वापस आए, तो अकेले नहीं आए, अपने साथ लेकर आए 60,000 रुपये की एक बड़ी सी मशीन, जो 60,000 रुपये आज आपको बहुत छोटी कीमत लगती है, वो उस समय में करोड़ों के बराबर हुआ करती थी। और इसी के साथ उन्होंने जोड़े उसमें 12 लोग, 12 लोग कहीं अलग से नहीं आए थे, ये उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स थे। एक कंपनी स्टार्ट की गई जिसका कोई नाम नहीं था, बेनाम कंपनी चल रही थी, लोग बस उसे उसके लोकेशन से नाम दे रहे थे, और वहीं से पड़ा था ये पार्ले। फिलहाल 10 सालों तक सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी ने टॉफीज़ बनाना शुरू की थी, क्योंकि जर्मनी से आए थे, मिठाइयाँ सीखी थी, मिठाइयों में ऑफ कोर्स हमारे लिए टॉफ़ी होती है, भले ही हम यहाँ पर बैठ के सौंदेश, रसगुल्ला, गुलाब जामुन का जो कतली खा रहे हों, लेकिन विदेशों में ये चीज़ कहाँ, विदेशों में तो कैंडीज़, टॉफ़ीज़ और पेस्ट्री, ये सारी चीज़ें चला करती हैं, तो वहाँ से सीख कर आए थे टॉफ़ी बनाना। अब पार्ले कंपनी बना रही थी 10 सालों तक लगातार सिर्फ और सिर्फ टॉफीज, और उसके बाद उन्होंने शुरू किया था बिस्किट बनाना। अब पार्ले कंपनी का सबसे मेन इंग्रेडिएंट उनके बिस्किट बनाने के लिए जो जरूरी था वो था गेहूं, गेहूं के बिना बिस्किट नहीं बन सकता था। और इसी के दौरान जब 1947 आया, जब भारत के टुकड़े हो गए, भारत का बंटवारा हुआ,
तब आई सबसे बड़ी मुसीबत कि भैया गेहूं का जो आधा से ज्यादा हिस्सा था, यानी जो पंजाब था जहां पर भरपूर मात्रा में अनाज हुआ करता था, अब वो वाला हिस्सा पाकिस्तान में चला गया है। जब पाकिस्तान में गए तो पाकिस्तान तो पार्ले को देने से रहा अपने गेहूं, और उस दौरान भारत की आबादी अगर 82% थी तो लगभग 75% ही अनाज बाकी था। अब लोगों को हो रही थी दिक्कत, अपनी नॉर्मल जिंदगी जीने में भी दिक्कत हो रही थी। तो सोचिए एक कंपनी किस तरह से चल सकती है। उस दौरान ही पार्ले की कंपनी ने बहुत ही चालाकी दिखाई, बहुत ही होशियारी के साथ एक विज्ञापन निकाला अखबार के अंदर, और उस विज्ञापन में उन लोगों को सल्यूट किया गया, उन लोगों को ट्रिब्यूट दिया गया जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी है। उनको ट्रिब्यूट देते हुए लिखा गया कि भाई अब हमारे पास गेहूं नहीं है, और जब तक गेहूं भारत में वापस नहीं आ जाता, जब तक हमारे पास अनाज की उपलब्धि नहीं हो जाती, तब तक आप इन बिस्किट्स का मज़ा जौ के रूप में लीजिए, यानी कि आप जौ के बिस्किट खाइए। अब गेहूं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी था बनाना, क्योंकि गेहूं के आटे से ही बिस्किट बन रहे थे, और वो बिस्किट को इतना सस्ता रखा जा रहा था कि एक मजदूर, एक गरीब इंसान भी खरीद सके, सिर्फ अमीरों तक ये बिस्किट ना जाए। वहाँ पर सोचिए मेन इंग्रेडिएंट ही लापता था। अब वहीं से शुरू हुआ था जौ के बिस्किट बनाना शुरू। जौ जो कि बहुत मुश्किल है उसका बिस्किट तैयार करना, बट पार्ले ने कर दिखाया, पार्ले ने बिस्किट बनाया। अब क्योंकि अखबारों के अंदर पार्ले ने बड़ी ही शिद्दत और बड़ी मासूमियत के साथ मैसेज लिखा था कि भाई उन लोगों को पहले तो सलाम है जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपनी जान न्यौछावर की, और जो है हमारे बीच उनसे निवेदन है कि प्लीज़ जब तक गेहूं नहीं आता तब तक आप इस जौ के बिस्किट का आनंद लीजिए। इतना सुनते ही लोगों का क्या कहना था, लोगों ने कोई सवाल नहीं किया और पार्ले की इस बात को मानकर उन्होंने उसी बिस्किट को खाना शुरू कर दिया जो जौ से बना आ रहा था। हर कोई इस बिस्किट का दीवाना होता जा रहा था, हर कोई ये बिस्किट लेता जा रहा था, और धीरे धीरे धीरे धीरे करके ये बिस्किट दुनिया में फेमस होता चला गया। भारत में इसको बहुत ज़्यादा पसंद किया जाने लगा। इवन ये बिस्किट उस वक्त काफ़ी बड़े पैकेट में भी आता था। कई सालों तक पार्ले की कीमत वही रही, पार्ले ने अपनी कीमत नहीं बढ़ाई, ये सबसे बड़ी बात उनकी कंपनी के अंदर नज़र आई। कुछ ऐसी भी कंपनीज होती हैं जिनकी शुरुआत तो होती है जितने पैसों में, तो वो आगे जाकर प्रॉफिट कमाने के लिए 1 से 2 रुपया ज़्यादा बढ़ा देती हैं, बट पार्ले ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया, उन्होंने वही पैसे रखे। इवन मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो पार्ले जी सिर्फ और सिर्फ 4 रुपए का मिला करता था। अब भले ही वो 5 का हो गया वो अलग बात है, लेकिन एक टाइम था जब वो सिर्फ और सिर्फ 4 का आ रहा था। मेरी मम्मी के टाइम पे वो उससे भी कम था, सिर्फ 1 रुपए बढ़ाया गया था। वहीं जहाँ कंपनीज आज 100 रुपए बढ़ा देती हैं, 200 रुपए बढ़ा देती हैं जब बिक्री ज़्यादा होती है, पार्ले जी ने इस चीज़ को ध्यान में रखा कि अब बिस्किट बना किसके लिए रहे, अपने लिए नहीं, उनके लिए जो उस बिस्किट को खाना पसंद करते हैं। और धीरे धीरे करके ये आज भी आपके घरों की किसी ना किसी कॉर्नर पे ज़रूर रखा होगा, और किसी ना किसी का पसंदीदा बिस्किट ज़रूर होगा। और कहते हैं कि पार्ले जी का मज़ा चाय के साथ भी आता है, दूध के साथ भी आता है, और अगर आपको असल स्वाद चाहिए तो ज़रा पानी के साथ खाइए, क्योंकि असल स्वाद आपको सिर्फ और सिर्फ पानी के साथ ही मिलता है। बाकी पार्ले जी एक ऐसा बिस्किट है जो हर एक स्वाद में ढल जाता है। कई लोग इसका केक बना रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो इतना पॉपुलर बिस्किट की शुरुआत 1929 के एक ऐसे दर्जी के साथ हुई थी जिसे बस मीठा बनाने का शौक था, और उस मीठा बनाने के लिए उन्होंने भारत छोड़कर जर्मनी तक का सफर तय किया था। अब आप सोच लीजिए भाई कि जो आपके घर में छोटा सा 5 रुपए का पैकेट रखा होगा कॉर्नर में, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और कब हुई थी। क्यों तो कहते हैं कि भारत की आज़ादी में सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो हमारे उन लोगों का है जिन्होंने लड़ाई लड़ी, बट साथ ही साथ हम भारत की आज़ादी को जब याद करते हैं तो सिर्फ स्लोगन से नहीं, सिर्फ बातों से नहीं, उन कंपनी से भी याद करते हैं जो उस दौरान खड़ी थी भारत के लोगों के साथ। कुछ अनाज जो हम भूल चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद अब हमने भुला दी हैं, बट वो आज भी भारत की आज़ादी को चीख चीख कर बताती हैं। अब चाहे उसमें मोटा अनाज हो या फिर पार्ले जी बिस्किट, या फिर वो लोग जिन्होंने कंपनीज को प्रॉफिट की वजह से
छोड़ा नहीं था, जिन्होंने ये भी नहीं कहा था कि नहीं हमको तो वही सामान चाहिए, हम तो जिद पकड़ के बैठ गए हैं, तुम गेहूं ही खाएंगे, हम तो जौ खाएंगे ही नहीं, ऐसा भी नहीं था। तो भैया पार्ले कंपनी जिसकी शुरुआत टॉफी से हुई थी वो जाकर अब बहुत वैरायटी की चीज़ें बना रही है और सबसे ट्रस्टेड ब्रांड भी माना जाता है। पार्ले वो इकलौती कंपनी है जिसने लोगों के बीच में डायरेक्ट अपनी जगह बनाई। वो 10 लोगों के साथ मिलकर नहीं आ रही थी जिससे बिस्किट के दाम बढ़े, उन्होंने डायरेक्ट लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने डायरेक्ट लोगों को जॉब दी और वो डायरेक्ट मिलते भी थे, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को पार्ले कंपनी में नौकरी मिली, बहुत सारे लोगों को पैसे कमाने की एक जरिया मिला। और तो और जिन लोगों को बिस्किट खाने का शौक़ था, जो खाना नहीं खा पाते थे, उन्हें बहुत ही कम दामों में बिस्किट मिलना शुरू हो गया, उनका पेट भरने लगा। तो भाई ये एक कंपनी का आइडिया था और इसीलिए आज भी पार्ले जी को वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड माना जाता है। हालांकि अब हमारे बिस्किट के रूप बदल चुके हैं, अब उसमें मैदा, पाम ऑयल, शुगर ये थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एक वक्त था जब बिस्किट सिर्फ और सिर्फ गेहूँ, चीनी और दूध से बना करते थे। अब आप बताइए आपको कैसी लगी ये कहानी और आपको पार्ले जी किसके साथ पसंद है? अगर चाय में डुबो के पसंद है तो कितनी देर तक डुबोते हैं, क्योंकि हमारा तो टूट जाता है भैया, हम ज़्यादा देर तक डुबो के रखें तो वो टूट जाता है, कम डुबोएं तो वो सख्त रहता है, तो एक परफेक्ट टाइमिंग है ना जो बैलेंस नहीं हो पा रहा है। आप बताइए आपको किसके साथ पसंद है। इंजॉय करते रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजेंद्र, स्टे ट्यून्ड।

भैया देव अंजलि की जिंदगी में लौट कर आए या ना आए, लेकिन हम वापस आ गए हैं आपके अपने गुड मॉर्निंग ओना प्रोग्राम को लेकर के। और क्योंकि हम बातें कर रहे थे पार्ले जी और रजत पापड़ की, तो हमारे चैट बॉक्स में आए हैं कुछ सवाल। सवालों की झड़ी को खोलते हैं और देखते हैं भैया पहला सवाल क्या था। पहला सवाल हमारे पास था कि रजत पापड़ का नाम आफ्टर ऑल लिज्जत ही क्यों पड़ा। ये दिमाग में आपके भी आया होगा, मेरे भी आता था। और मुझे पता चला कि गुजरात में लिज्जत का मतलब होता है स्वादिष्ट, लजीज, और उसी को मद्देनजर रखते हुए इसका नाम लिज्जत पड़ा था। नहीं तो कुछ और भी रखा जा सकता था, क्या रख सकते थे वैसे पापड़ का नाम, जरा आप सोचिए और आप बताइए कि अगर आपकी भाषा में हम स्वादिष्ट बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे हम, बताइए बताइए। आपकी अपनी क्षेत्रीय भाषा में स्वादिष्ट को क्या कहा जाता है? चोखा। चोखा तो हमारे यहाँ भरते को भी कहा जाता है, आप बताइएगा चैट बॉक्स में। एंड इसके बाद था कि भैया पार्ले जी वाली जो लड़की है वो टस से मस नहीं हुई, पार्ले जी खाने वाले बड़े हो गए। हमारी नाजिया जी लिख रही हैं ये बात कि हम बड़े हो चुके हैं, पार्ले वाला लड़का तो नहीं बड़ा हुआ लेकिन हम ज़रूर बड़े हो गए। जितने लोग खाते थे पार्ले सब बड़े होते चले जा रहे हैं लेकिन वो लड़का टस से मस नहीं हुआ। वहीं पर हमारे नागेश्वर जी लिख रहे हैं कि पार्ले जी के रैपर पर जो फोटो आता था चाची जी का, वे चाची जी अब इस दुनिया में नहीं रही। अच्छा आपको भी है क्या इस बात की गलत फहमी कि जो पार्ले जी वाली हैं वो एक लड़की है? नहीं मतलब है तो वो लड़की की ही फोटो, लेकिन वो असल दुनिया में भी कोई लड़की है। चलिए अब इसको भी क्लियर कर देते हैं और बता देते हैं कि इस अफवाह को जो आजकल उड़ाई जा रही है और अक्सर सोशल मीडिया के अंदर आपको ये सारी चीज़ें नज़र आ जाती हैं कि पार्ले जी के पैकेट पे जो प्यारी सी क्यूट सी बच्ची दिख रही है वो कोई असल में लड़की है, तो ये बात पूरी तरह से गलत है। ऐसी कोई भी लड़की इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हालांकि नाम बहुत सारे लोगों को मिला है, नाम मिला है सुधा जी को, नीरू जी को, और न जाने कितनी ही लड़कियों ऐसा हैं जिनको बोला गया है कि यही है वो पार्ले जी वाली लड़की, लेकिन उन्होंने तो हाथ खड़ा कर दिया कि हम तो नहीं हैं। इसके बाद पार्ले जी की कंपनी के मैनेजर खुद सामने आकर ये बात का दावा कर चुके हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लड़की आपको नज़र आती है वो इस दुनिया में कभी आई ही नहीं, वो कभी एग्जिस्ट करती ही नहीं। आप जिनको इस चीज़ का क्रेडिट दिया करते हैं वो तो कभी थे ही नहीं। जी हाँ, पार्ले जी में आप जिस लड़की को देखते आ रहे हैं वो लड़की असल दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उनका कहना था कि ये कंपनी की क्रिएटिविटी टीम ने एक पेंटिंग डिज़ाइन की थी, एक फ़ोटो खुद बनाई थी और ये वो फ़ोटो है, ना कि वो लोग जिनको आप क्रेडिट दिया करते हैं। ना तो सुधा जी है, ना ही नीरू जी है, कोई भी वो नहीं है जिनके बारे में आपने सोचा हुआ है। हाँ मिलती जुलती शक्ल किसी की भी हो सकती है, बट अगर आप ये कहना चाहें कि पार्ले जी वाली लड़की असल दुनिया में है तो ये है सबसे बड़ी गलतफहमी। और ये बात तो मैंने नहीं कही है भैया, ये बात कही है पार्ले जी के मैनेजर ने, जो सामने आकर इस चीज़ का दावा कर चुके हैं कि बिल्कुल भी नहीं, कोई सुधा कोई नीरू जी नहीं है, कोई भी लड़की नहीं है, इवन वो लड़की इस दुनिया में कभी पैदा ही नहीं हुई है जिसकी फोटो हमने यहाँ पर छापी हुई है। यानी कि वो फोटो टोटली हमारे पेंटर्स, हमारी क्रिएटिविटी टीम की मेहरबानी है और ये एक सोच से निकली हुई कहानी है। चलिए तो यह वाली गलतफहमी तो आपकी दूर हो गई ना, अब क्या ख्याल है? अब मेरा ख्याल है कि उन बातों को कर लिया जाए जो शायद आपने कभी नहीं सोची है। कभी आपने सोचा है ये जो तस्वीरों में आप देवी को देखते हैं, आप तस्वीरों में माँ दुर्गा, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी को देखते हैं, आफ्टर ऑल इनकी तस्वीरें बनी कैसे थी? कभी सोचा है? नहीं ना, हमने सोचा है, हमने सोचा है तो हमने ढूंढा है, और हमने ढूंढा है तो हमको मिला है, और हमको मिला है तो हम आपको बताएंगे जरूर, लेकिन इस छोटे से म्यूजिकल वाले ब्रेक के उस पार। तो बने रहिए जरा मेरे साथ, सुनते रहिए आपका अपना शो गुड मॉर्निंग ओना विद योर आरजे रती।

आप में से सभी लोगों ने एक नाम हमेशा से पेंटिंग के दौर में जरूर सुना होगा। अगर आप पेंटिंग का शौक रखते हैं तो आपने भी राजा रवि वर्मा का नाम ज़रूर से सुना होगा। अगर आपको पेंटिंग की थोड़ी सी भी जानकारी है या आपने कभी भी किताबें उठाकर पढ़ी हैं तो आपको पता है कि महान पेंटर्स में से एक नाम हमारे राजा रवि वर्मा का भी आता है, और उन्हीं की वजह से आज आपके पास एक ऐसी चीज है जिसे आप हर रोज पूछते हैं। फिलहाल वो कौन है बता दें, लेकिन उससे पहले स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त, आपकी अपनी आशुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ, और ये है आपका अपना FM रेडियो 89.6 FM। आपने कभी सोचा है कि जिन देवी देवताओं की तस्वीरें हम देखते हैं, आफ्टर ऑल वो किसकी सोच है? यूं तो हमारे इतिहास में देवी देवताओं की मूर्तियां बहुत सारी थी, बहुत सारी मूर्तियां थी। इवन आज भी जब कहीं पे खुदाई होती है तो सबसे पहले जो चीज़ नज़र आती है या फिर जो मूर्ति नज़र आती है वो कोई पेंटिंग नहीं होती, वो लोहे की, स्टील की, पीतल की, सोने की, यानी कि टोटल तरीके से धातु से बनी हुई मूर्तियाँ होती हैं। बट एक लड़का था जिसके दिमाग में ख्याल था कि देवी देवता मूर्ति के अलावा अगर चित्र में दिखे तो कैसे दिखेंगे, और उसी ख्याल को लेकर के उसने एक पेंटिंग तैयार की। लेकिन इस पेंटिंग का सफ़र यूं ही नहीं हुआ था, बहुत लंबा सफ़र था। तो आइए उस सफ़र को थोड़ा सा करीब से जानते हैं। कभी सोचा है कि जब देवी देवताओं की मूर्ति या छवि नहीं होती थी तो हम ईश्वर की कल्पना कैसे किया करते थे, कैसे उनकी तस्वीर के बिना उनकी पूजा किया करते थे, कैसे सोचते थे वो कैसे होंगे? और जब चित्रकला नहीं हुआ करती थी तो ये सोच पाना बेहद मुश्किल होता था, एक आकार देना बेहद मुश्किल होता था। वैसे तो कहते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता, वो निराकार होते हैं, कण कण में मौजूद होते हैं, हर इंसान में मौजूद होते हैं। बट जब हमें उनका एक आकार मिल जाता है तो भक्ति करना थोड़ी आसान हो जाती है, फिर अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। और इसी को देखते हुए लोगों ने मूर्तियां बनाना शुरू की थी ताकि उनका ध्यान ना भटके और वो एक जगह पर ध्यान रख पाए, फोकस कर पाए, अपनी भक्ति कर पाए। उस दौरान एक ऐसा भी लड़का नजर आया जिसको भगवान को मूर्तियों में नहीं, पेंटिंग्स में देखने का शौक था। 5 साल का वो लड़का जिसको पेंटिंग करने का बहुत शौक था, बहुत कमाल का हुनर था उसके अंदर, और उसके इस हुनर को देखकर उनके चाचा तिरुवंतपुरम उन्हें महल ले गए। उन्होंने वहां पर सिर्फ चित्रकला नहीं सीखी, उन्होंने सीखा कि किस तरह से कलर्स होते हैं, उनकी बारीकियां क्या होती हैं, रंगों की बारीकी को बेहतर ढंग से कैसे निखारा जाता है, कैसे एक कलर दूसरे के साथ मिक्स होता है। इन सारी चीज़ों को उन्होंने सीखना शुरू किया। इसके बाद उन्होंने वाटर कलर पेंटिंग्स की ट्रेनिंग लेना शुरू की। वो छुप छुप कर देखा करते थे कि किस तरह से अंग्रेज लोग बैठकर पेंटिंग किया करते हैं, कैनवास पर कलर्स को उतारा करते हैं, कितना खूबसूरत ये रंग होता है, कितने प्यारे नज़र आते हैं। और इस चीज़ को देख देख कर उन्होंने ब्रश चलाना सीखा कि किसी भी कैनवास पर पेंटिंग कैसे की जाती है, ब्रश को कैसे चलाया जाता है, कैसे एक स्मूथ फिनिशिंग दी जाती है। और ये चीज़ें देख कर उन्हें यहाँ से निकाल कर बाहर भेजा गया, यूरोप में भेजा गया। हम आपको बता दें, रवि वर्मा की बनाए चित्रों को बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा था, उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी। इसे देखते हुए त्रावणकोर के दीवाने सर माधव राव ने उन्हें चित्र को पेंटिंग में प्रिंट करवाने के लिए कहा, कहा कि भैया तुम अपनी प्रिंटिंग निकलवाओ, तुम अपनी जो पेंटिंग्स बना रहे हो उनको प्रिंट करवाओ। और यहीं से शुरू हुआ था उनके लिए लिथोग्राफी कराने का पहला कदम। उन्होंने अपने यूरोप में ख़ास तौर पर रह करके जर्मनी में भेजे गए चित्रों की प्रिंट करवाया और वो लोगों के पास पहुंचने लगी, लोग रवि वर्मा को जानने लगे और उनकी पेंटिंग्स को मोहब्बत देने लगे। लेकिन इसके बाद उनके दिमाग में ख्याल आया कि जो हमारे देवी देवता हैं वो कैसे दिखते होंगे, अगर वो दिखते हैं तो किस तरह से नज़र आते होंगे। और कहते हैं कि उस दौरान पे राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे क्षेत्रों को देखा, बहुत सारे राज्यों को देखा, उनके पहनावे को देखा, हमारी हर एक खूबसूरत चीज़ों को देखा, ज्वेलरी से लेकर के साड़ी पहनने का तरीका, दिखने का तरीका, फेशियल फीचर्स, बाल कैसे होते हैं, एक महिला के बाल कैसे होते हैं, उनकी आँखें कैसे होते हैं, उनके होंठ, और इन सबको जोड़ जोड़ कर उन्होंने अपनी पहली पेंटिंग बनाई। और वो पहली पेंटिंग आपको बताएं किसकी है, अगर आपको नहीं भी आइडिया है तो चलिए हम बता देते हैं, वो पेंटिंग थी शकुंतला की, जिसमें उन्होंने शकुंतला के जन्म को दर्शाया था।
इसके बाद साल 1894 में उन्होंने पेंटिंग बनाई थी माता लक्ष्मी की, उसके बाद माता सरस्वती की, और धीरे धीरे करके वो आ गए भगवान विष्णु पर, यशोदा माँ पर, कृष्ण की पेंटिंग के साथ। धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस पेंटिंग को बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन उस वक्त पेंटिंग सिर्फ और सिर्फ महलों तक सीमित थी, सिर्फ महलों में ही आपको पेंटिंग्स नज़र आ रही थी। तो उन्होंने सोचा कि ये, क्योंकि भगवान तो सबके होते हैं, तो भगवान का आकार सिर्फ महलों तक क्यों रहे, और इसीलिए उन्होंने इसको प्रिंट कराना शुरू किया। प्रिंट करा कर इसको लोग अपने घरों में लगाने लगे। आस्था को एक स्वरूप दे दिया गया था, आस्था को एक रूप मिल चुका था। जो लोग भक्ति करने के लिए मंदिर नहीं जा पा रहे थे, वो अब घर में मंदिर खोल रहे थे। तो भाई, एक कलाकार जिसकी कला ने आपकी आस्था को आकार दिया है। अब कई लोगों का ये भी मानना होता है, कई लोग इस चीज में आज भी फंसे हुए हैं कि भैया ये जो इंस्पिरेशन मिली थी उनको, वो मिली थी उनकी अपनी बेटी से, जिनका नाम था महाप्रभा अम्मा। जी हाँ, एक पेंटिंग है जो महाप्रभा के नाम पर बनाई गई है, लेकिन उसका नाम है द कम्स पापा, जिसपे उनकी बड़ी बेटी और उसके साथ उनका पोता नजर आता है। हालांकि कई लोग मानते हैं कि भैया जितनी भी देवी देवता की चित्र उन्होंने बनाए हैं वो उसी से इंस्पायर्ड है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने पूरे भारत का दौरा करके, जगह जगह जा करके देखा था कि हमारे भारत की खूबसूरती क्या है, पहनना क्या है, ओढ़ना क्या है, ज्वेलरी क्या है। साउथ इंडिया से लेकर नॉर्थ इंडिया तक, बंगाल से लेकर ईस्ट इंडिया तक, हर एक क्षेत्र उन्होंने देखा, और तब जाकर आपके लिए एक सबसे खूबसूरत आकार तैयार किया गया। अब आप सोचिए कितनी खूबसूरत पेंटिंग है, और आज जो हम देवी देवताओं को देखते हैं, जिनका आकार हम देखते हैं, वो 150 साल पहले राजा रवि वर्मा की एक सोच थी। अगर वो शायद उनको आकार नहीं देते तो शायद आज भी हम सिर्फ और सिर्फ भगवान को यूं ही याद कर रहे होते। फिलहाल कमाल की बात है ना, एक इमेजिनेशन और पूरे भारत को जोड़कर तैयार की गई पहली पेंटिंग शकुंतला, और वहां से इंस्पायर्ड बहुत सारी पेंटिंग्स जो आज हम देखते हैं, जानते हैं। तो अगली बार जब आप किसी की पेंटिंग को देखिएगा, स्पेशली राजा राम वर्मा की, तो जरूर देखिएगा। राजा रवि वर्मा ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से अपनी पेंटिंग्स को तराशा है। एक ऐसा आर्टिस्ट जिनकी पेंटिंग को देखने के बाद आप भी खो जाते हैं। इवन उनकी पेंटिंग्स बहुत डीप होती हैं। जी हाँ, हम आपको बता दें, उनकी पेंटिंग्स में मैसेजेस बहुत डीप होते हैं। और कभी देखा है किसी इंसान को म्यूजियम के बाहर खड़े होकर किसी पेंटिंग को घंटों देखते हुए, और सोचते हो इसमें देख क्या रहा है, कलर देख रहे हैं? नहीं, वो छुपी हुई उन कहानियों को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो एक कलाकार अपने ब्रश के जरिए उस कैनवास पे उतारता है। फिलहाल ये कहानी आपको कैसी लगी, ये जानकारी आपको कैसी लगी, चैट बॉक्स में बताइएगा। और हम मिलते हैं अपने इंस्पायरिंग सेगमेंट को लेकर के। तब तक के लिए बने रहिए, सुनते रहिए, आस्था के साथ एंजॉय करते रहिए। आप सुन रहे हैं आपका अपना गुड मॉर्निंग ओडा विद राजी।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।

हां जी, तो एक बार वापस स्वागत करते हैं आप सभी का हम आपके अपने वाले मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आर श्रुणति, और आपने ट्यून कर लिया है 89.6 FM गोंडा का अपना पहला FM रेडियो ज्ञानस्थली। तो भैया आज जादे का वैसे तो वक्त होता जा रहा है, तो आइए आज आपको सुना देते हैं एक ऐसे इंसान की कहानी जो कि हमारे इंस्पायरिंग स्टोरीज में टॉप पर है। आज इंस्पायरिंग स्टोरी में जिनकी स्टोरी हम लेकर आए हैं वो हैं कानपुर के, और नाम है उनका महबूब मलिक। यूं तो इनका काम है चाय बेचना, लेकिन ऐसा इन्होंने क्या किया जो मैं आपके पास इनकी कहानी लेकर आई हूँ। चलिए बता देते हैं कि महबूब मलिक कानपुर के रहने वाले एक ऐसे इंसान हैं जो चाय बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। कोविड का टाइम था और उस दौरान इन्होंने बच्चों को पढ़ाने के लिए लोन ले लिया, वो भी ऐसा वैसा नहीं, पूरे 50,000 रुपए का लोन लिया है। और कहते हैं कि भैया कानपुर के रहने वाले महबूब मलिक ने खुद तो कभी पढ़ाई नहीं की थी। अब इसके पीछे थी उनकी आर्थिक स्थिति, यानी कि वो आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा कमज़ोर थे और इसी वजह से उनके माँ बाप उन्हें कभी स्कूल नहीं भेज पाए। अब कभी वो स्कूल नहीं गए तो उनका कभी सपना भी पूरा नहीं हो पाया, तो इसीलिए उन्होंने चाय बेचना शुरू किया। क्योंकि भैया बड़े होकर घर को चलाना पड़ता है, जिम्मेदारियाँ तो उठानी पड़ती हैं, और जिम्मेदारियों को समझते हुए वो चाय बेचा करते थे। इस दौरान उन्होंने देखा कि कोविड के टाइम पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और उनके बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उन्हीं की तरह हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर लेकिन पढ़ाई बहुत अच्छी करना चाहते हैं, उनके भी सपने हैं और उनके सपनों को पंख तो लगना ही चाहिए। बस और क्या था, यही उनके लिए काफ़ी था, इतना ही इंस्पिरेशन उनके लिए काफ़ी था। और उन्होंने बैंक से जाकर लिए 50,000 रुपए का लोन। इस लोन के बाद उन्हें करना क्या था, एनी आइडिया? चलिए हम बता देते हैं। उन्होंने एक एक करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को स्कूल भेजना शुरू किया। और अब कहते हैं कि भैया कानपुर के रहने वाले ये चाय वाले महबूब मलिक साहब ने लगभग 3,500 प्लस बच्चों को स्कूल भेजा है, और आज उनकी पढ़ाई का खर्चा वो खुद उठाते हैं, वो किसी से मांगते नहीं हैं, वो मेहनत करते हैं और मेहनत करके उन बच्चों के पढ़ाई का खर्च उठा रहे हैं, वो उन बच्चों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ा रहे हैं। जो कभी खुद के सपने पूरे नहीं कर पाया, जो कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, आज वो किसी और के सपनों को पंख लगाने के लिए मेहनत कर रहा है। ऐसे लोगों को पहचान देना मेरा काम है, ऐसे लोग जो कुछ अलग कर रहे हैं, जो अपने लिए नहीं, जो बहुत सेल्फलेस होकर बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ होकर बस किसी ना किसी की मदद कर रहे हैं, भले ही वो एक इंसान हो, भले ही वो जानवर हो, भले ही वो पूरी टीम हो, बस वो उन्हें मोहब्बत दे रहे हैं, तो उनकी कहानी आप तक पहुंचाना मेरा काम है। तो भाई ये तो कहानी थी हमारे कानपुर से महबूब मलिक जी की, जो कि बहुत ही कम शब्दों में मैंने आपको सुना दिया है। आई होप आपको मजा आया होगा। फिलहाल लेते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं, बने रहिए, सुनते रहिए, और इसके बाद चलेंगे आपके मैसेजेस पर। तो जरा अपने मैसेजेस जरूर से बताइएगा, आज का शो आपको कैसा लगा, अपना फीडबैक जरूर से दीजिएगा। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे हैं गुड मॉर्निंग गोंडा विद राजीव नदी।

हाँ जी भैया, तो वापस से स्वागत करते हैं विशाल की आवाज में। आप एंजॉय कर रहे थे फाइटर फिल्म से हीरा आसमानी, और इसी के साथ अब वक्त है आपके चैट बॉक्स की तरफ बढ़ने का। आपके कुछ पैगाम हमारे पास आ चुके हैं, तो देखते हैं कौन कौन हमारे साथ जुड़ गया है और किस किस ने हमें आज के शो का फीडबैक भेज दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं भेजा है तो इंतजार मत कीजिए, क्योंकि गुड मॉर्निंग होने का ऑलमोस्ट टाइम होने वाला है, हम रैप अप करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपके फीडबैक हमें चाहिए कि भैया आज के प्रोग्राम को आपने कितना एंजॉय किया, एंड सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या लगी, प्लेलिस्ट या फिर इंफॉर्मेशन या दोनों का कॉम्बो। विद्युराज नदी सुनते रहिए, और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। और हमारे पास जो मैसेज आया था वो था अरविंद जी का, आपका स्वागत करते हैं। अरविंद जी कैसे हैं आप? और ओके, हमारे महेंद्र दीपक जी लिख रहे हैं, मैम हमको तो पापड़ पसंद भी नहीं है ना सब्जी आई, तो आप सब्जी नहीं खाते तो आप खाते क्या है, दाल दाल दाल कितना दाल, इतना दाल, दाल में कुछ तो काला है या दाल ही काली है, अभी तो मेरे को यही जानने का है। एंड इसके बाद लिख रहे हैं कि मैम मैं गाना फरमाइश कर सकता हूँ। हाँ जी बेशक कर सकते हैं, लेकिन वक्त वो 3 से 4 वाला होगा, अभी वाला नहीं। इसके बाद हमारे साथ जुड़े हैं कि इसका नाम लिज्जत क्यों पड़ा था, जो कि मैंने आपको बता दिया ऑफकोर्स। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ी है, जो लिखी है वेरी नाइस गुड मॉर्निंग, वेरी नाइस गुड मॉर्निंग टू यू। और अभी आप सफ़र में हैं, तो आपका सफ़र कहाँ तक पहुँच चुका है? वैसे तो हम सब सफ़र में हैं, लेकिन हम जिंदगी के हैं और आप शायद अभी रास्ते वाले सफ़र में हैं। इसके बाद लिख रहे हैं नागेश्वर धाकड़ जी हमारे साथ जुड़े, जो लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड इसके बाद है आर के श्रीवास्तव जी का मैसेज, गुड मॉर्निंग आशुनती जी, गुड मॉर्निंग टू यू। और नागेश्वर जी कह रहे हैं ये सॉन्ग मैंने कल फरमाइश किया था और आज प्ले हो रहा है, इससे पता चलता है कि स्टूडियो में देर है या देर नहीं। बेशक सही कहा आपने। और इसके बाद लगातार मैसेज हैं आपके, अरविंद जी के मैसेज हैं, थैंक यू नति मैम, दिल जीत लिया आपने, तो बस लड्डू चोरी मत करना। अजी हमने गाना ही इसलिए बजाया था ताकि हमको लड्डू मिल सके, और आप कह रहे हो लड्डू मत खाइएगा, ये क्या बात होती है। इसके बाद है आप ही के लगातार मैसेज की, लगता है उन्नति मैम का मौन व्रत है। जी बिल्कुल भी नहीं, मेरा मौन व्रत होगा तो आप परेशान हो जाएंगे, इसलिए हम दिन भर कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। और उसके बाद लिखा है महेंद्र दीपन जी ने, सुबह मेरा नाश्ता आज का पोहा था, क्या बात है क्या बात है, बड़ा लजीज चीज़ आपने खा ली है। फिर घर से निकला और रास्ते में दूध बेचने वाला मिला, आधा लीटर दूध लिया और वहीं पी गया, बिना गर्म किया आप दूध पी गए, वाह। और हम यहाँ जो दूध को हाथ भी नहीं लगा सकते, दूध तो क्या, दूध की बनी चीज़ भी हाथ नहीं लगा सकते, कभी कभी जलसी हो जाती है मुझे। और फिर काम पर आ गए, बहुत बढ़िया, वैसे आपने बहुत ही अच्छे अपने दिन की शुरुआत कर दी है, आपका दिन बहुत अच्छा जाने वाला है ऐसा मुझे उम्मीद है। इसके बाद नाजिया जी लिखा था मैं सफ़र में हूँ, हाँ जी तो बताइए कहाँ जा रही हैं आप, शेविंग के साथ साथ रेडियो ज्ञान असली का लुफ्त उठा रहा हूँ। ओके तो आप शेविंग कर रहे हैं, करते रहिए एंजॉय करते रहिए। पार्ले जी के रैपर पर जो फोटो आता था वो चाची थी जी, बिल्कुल भी नहीं, वो एक क्रिएटिविटी थी, एक इमेजिनेशन थी एक ऐसे इंसान की जो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसके बाद सब लोगों ने यही कहा है कि पार्ले वाला लड़का बड़ा नहीं हुआ, फोटो उसकी छोटी ही रह गई, बल्कि पार्ले का साइज भी अब छोटा हो चुका है। ये बात सच है कि पार्ले ने अपने बिस्किट कम कर दिए हैं और अब वो 5 रुपए का कर दिया है, पहले 4 रुपए में भी बहुत सारे बिस्किट आया करते थे। इस बात का गम हमको भी है, लेकिन क्या करें, महंगाई को मद्देनजर रखते हुए कंपनी को ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं। इसके बाद लिखा है नाजिया अंसारी जी ने, आप चाय पी लीजिए, बहुत बिस्किट बिस्किट हो गया, लाइए दीजिए और हम सिप सिप करके पी के आते हैं, लेकिन इस माइक के उस पार। इसके बाद है महेंद्र दीपन जी का कि पार्ले जी ने कीमत नहीं बढ़ाई लेकिन बिस्किट कम कर दिए हैं। इरफान शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, ओके गुड मॉर्निंग मैम, आफ्टरनून नहीं है, गुड मॉर्निंग टू यू। एंड नाजिया जी लिख रही हैं ओके कि पार्ले वाला लड़का बड़ा नहीं हुआ, हम बड़े हो चुके हैं, ये भी बात सच है। मेरा पसंदीदा सॉन्ग, थैंक यू सो मच श्रुति मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। और वैसे कौन सा था आपका पसंदीदा गाना, हम भूल चुके हैं। इसके बाद है कि श्रुति मैम जी आज ये बचपन के यादों वाला सॉन्ग क्यों प्ले कर रहे हैं, क्योंकि हमको बहुत मजा आ रही थी और हमने सोचा क्यों ना आपके बचपन को याद दिला दिया जाए, बस इसीलिए। एंड थैंक्स मैम, ये मेरा दूसरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है। नागेश्वर धाकर जी ने लिखा है तू छा गई है मुझ पे आसमान की तरह, ओके तो ये आपका पसंदीदा गाना, और यही पसंदीदा गाना आई थिंक हमारी नाजिया अंसारी जी का भी है, जो हमने गेस कर लिया है। ओके इसके बाद लिखा है मेरे घर में आज भी पतंजलि बिस्किट खाते हैं, इंजॉय करते रहिए, मुझे तो नारियल वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, बहुत ही प्यारा सॉन्ग लगाया, दिल खुश हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं बहुत बहुत लकी गाना है हमारा, क्या बात है, तब तो आज का दिन आपका बहुत लकी होने वाला है। इसके बाद है हमारे असलम अंसारी जी जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं हेलो दोस्तों, हेलो कैसे हैं आप, आपका स्वागत करते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा में, एंड स्वादिष्ट को हमारे यहाँ
चोको बोलते हैं, ओके, और हमारे यहाँ चोखा बोलते हैं, वो अलग बात है कि हमारा चोखा वो वाला चोखा होता है। एंड इसके बाद लिखा है धर्मेंद्र जी ने कि मेरे प्यार का रस जरा चखना, खा ले पापड़ मेरे मखना। ओहो हो, क्या बात है, क्रिएटिविटी लेवल देखिए हमारे लिसनर्स की। उसके बाद है असलम जी की तरफ से बहुत सारे इमोजीज, थैंक यू सो मच। और आदर्श तिवारी हमारे साथ जुड़े हैं, हेलो मैम कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं, आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग ओना में। किरण जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत सही लिखा है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदर्श जी सही बात, मैम को हिंदी का ओल्ड सॉन्ग सुना दीजिए, अजी आपकी बात हमने पूरी की और आपने एंजॉय भी किया होगा आई होप। इसके बाद है प्रमुख जी का मैसेज और लिखा है गुड इवनिंग तरन्नुम मैम जी। अभी इवनिंग तो नहीं हुई थी, हम मॉर्निंग स्टार्टिंग ना कर पाए, आपने शाम कर दी है, ये बताइए कैसे हो पाएगा। फिलहाल के लिए गुड मॉर्निंग टू यू। रक्षा जी हमारे साथ जुड़ी है, गुड मॉर्निंग मैम, क्या हाल है? मेरे हाल बिंदास हैं, आप बताइए, आपकी काफी दिनों के बाद हमसे मुलाकात हो रही है, आप कैसी हैं? मेरा सॉन्ग है ओके, तो आप अपना सॉन्ग मुझे भेजिएगा कॉल ट्यून गोंडा में, जब मैं आपको मिलूंगी 3 से 4। गाना बड़ा गजब बज रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, ये गाना अच्छा लगता है, बजने दो मैम, बजने तो दिया भैया, और कितना बजने दूँ। फिलहाल इसके बाद है आप लोगों के लगातार मैसेजेस आपकी अपनी पर्सनल चैट्स के साथ। इसके बाद लिखा है ओके नागेश्वर जी ने, मिलना बहुत ज़रूरी है, ओके तो मिलिए, आगे स्टूडियो का गेट खुला हुआ है, आइए स्वागत करते हैं हम आपका, और मैं आपको डार्क फैंटेसी बिस्किट खिलाऊंगी अगर आप हमारे स्टूडियो आएंगे तो। इसके बाद लिखा है ये लड़की बहुत याद आती है जो एक मैसेज पर रिप्लाई देती थी और कहीं वो कंपनी वाली तो नहीं थी, भले आप ये सजेस्ट करके आइए। इसके बाद आप ही के बहुत सारे मैसेजेस, पर्सनल मैसेजेस चल रहे हैं, एंड लिखा है मेरे घर पर ही पार्ले खा रहे हैं। हाँ जी, तो भैया पार्ले एक ऐसी बिस्किट है जो आई थिंक हर किसी के घर में रहती ही रहती है। अब पार्ले एक ऐसा बिस्किट है जो आप स्ट्रीट डॉग्स को भी खिलाते, कुत्तों को भी खिलाते, हालांकि खिलाना नहीं चाहिए, इंसानों के बिस्किट जानवरों के लिए नहीं बने होते हैं, इस चीज़ को ध्यान ज़रूर रखिए। मतलब कि हम जितने भी भगवान के चित्र देखते हैं वे सभी काल्पनिक हैं, जी हाँ फिलहाल तो ऐसा हम कह सकते हैं, बट कहते हैं कि ईश्वर कणकड़ में होता है और आप ईश्वर को जिस रूप में भी चाहे वो उस रूप में आपसे आकर मिलते हैं। तो अगर किसी कल्पना के जरिए आप उन्हें ढूंढ रहे हैं तो आपको वैसे मिलेंगे, और अगर नहीं तो वैसे मिलेंगे, आपके ऊपर है कि ईश्वर को आप किस रूप में देखना चाहते हैं। इसके बाद है तीसरा सॉन्ग चल रहा है मेरा फेवरेट, तूने पायल है छनकाई, नागेश्वर जी की तरफ से मैसेज है, बहुत बहुत शुक्रिया ओके। इसके बाद है यहाँ का चैट बहुत मस्त है, फ्रॉम प्रमुख जी की तरफ से ये मैसेज था, बहुत बहुत शुक्रिया। रात में कोई पायल छनकाती है तो एक ही बात याद आती है, कौन है वहां पर? भैया ऐसे थोड़ी ना जवाब देगा कोई कि मैं हूं, मैगी बना रही हूं, चाय बना रही हूं, क्या तुमको पीनी है, तुमको खाना है, ऐसा कोई नहीं होता, ये सिर्फ हॉरर फिल्मों में चलता रहता है, कौन है कौन है और कौन है का जवाब मुझे आज तक कभी मिला ही नहीं। तूने पायल छनकाई गाना तो मस्त था, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड ओके अच्छा बाय, मैं सबके साथ सफर में हूं तो आप अपने सफर का एंजॉय करते रहिए। ये चौथा मेरा फेवरेट सॉन्ग चल रहा है और मुझे लग रहा है कि आज की पूरी प्लेलिस्ट हमारे नागेश्वर धाकड़ की पसंदीदा प्लेलिस्ट बन चुकी है, आई थिंक मेरा ख्याल सही होगा ओके। और इसके बाद आप लोगों के लगातार मैसेजेस हैं आज के प्रोग्राम में, ये पार्ले जी वाली बातें अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया नागेश्वर धाकर जी। तरन्नुम मैम जी ये गाना प्ले करने के लिए आपको थैंक यू, ओके वेलकम। एंड इसी के बाद महेंद्र दीपन जी हमारे साथ जुड़े हैं और बैंक से लोन लेकर बच्चों को पढ़ा रहा, बहुत ही नेक काम किया है भाई साहब ने, जी हाँ ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है, और इसीलिए उनकी स्टोरी हम आप तक लेकर आए हैं। चुन चुन के गाना बजा रही है आज उन्नति मैम जी, हाँ आज हमने चुन चुन के गाने निकाले हैं अपनी वाली प्लेलिस्ट के अंदर से, ये खुफिया प्लेलिस्ट हम आपको कभी कभी सुना दिया करते हैं। और उसके बाद लगातार अभी के मैसेजेस हैं, बहुत सारे मैसेज हैं, बाय बाय मेरे प्यारे प्यारे फ्रेंड्स, दिखाए दरक्षा जी ने, बाय बाय टू यू। प्रमुख जी लिख रहे हैं बाय लास्ट लास्ट बाय, यानी कि आखिरी बाय है आपका, इसके बाद आप चैट बॉक्स में नजर नहीं आने वाले, मुझे पता है आप नजर आने वाले हैं, बस आप अभी बोलेंगे नहीं। एंड बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा और आपका दिन शुभ हो। मैम क्या दूध गर्म करना ज़रूरी होता है? मुझे गर्म दूध अच्छा नहीं लगता। तो भैया दूध को गर्म कर लीजिए, उसके बाद उसको ठंडा कर लीजिए, फिर पी लिया करिए। ये कच्चा दूध पीने का क्या मतलब होता है और ये क्यों ज़रूरी होता है, ये हम आपको अपने अगले वाले शो में बताएंगे, अभी हमारे पास वक्त की थोड़ी सी कमी हो चुकी है। उस्मान खान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जी एम आर जी मैम, जी एम कैसे हैं आप, गुड मॉर्निंग का शॉर्ट फॉर्म होता है दोस्तों। एंड इसके बाद लिखा है नागेश्वर जी ने, मैम हंसी तो बहुत मिली होगी, सैड तो हम होने नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं, आप हमें सैड नहीं होने देते हैं, और यही तो खूबी है आपकी कि जब भी चैट बॉक्स में आते हैं आप सबको हंसाते हैं। आ गई घर, आई तो आ गई घर, तो आप थी कहां अभी तक, मतलब आपने मुझे बताया ही नहीं कि आप कहां थी।
एंड ए हम भी एकदम झकास हैं उन्नति मैम जी, क्या बात है दर्शा जी, आप ऐसे ही रहिएगा, आप झकास ही रहती हैं तो अच्छी लगती है मैम। यस मैम, प्लेलिस्ट बहुत अच्छी लगी, बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि वक्त है आपसे विदा लेने का। इतने सारे मैसेजेस, इतने सारे पैगाम, इतनी सारी मोहब्बत देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं 8 से 11 आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में। लेकिन अब आपसे चाहूंगी इजाजत, वक्त है मेरा विदा लेने का, तो ख्याल रखिएगा। अब मुलाकात होगी आपसे 3 से 4 कॉलर ट्यून गोंडा में लेकर आपकी फरमाइशों का कार्यक्रम, फरमाइशों का सिलसिला, तो फरमाइश करना मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं गोंडा का अपना FM रेडियो 89.6 FM। और छोड़कर जाती हूँ एक और 90s के सॉन्ग के साथ, चांद से पर्दा कीजिए, सुनते रहिए।

0: और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
2: हे, क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
3: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
2: यहां होती है BA, MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
3: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
2: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज, गोंडा।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 92 60 981 976 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
6: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम गांव की गूंज। आज हमारे गांव की गूंज पहुंची है उत्तर प्रदेश के एक सुंदर से गांव रामपुरवा में, जो कि अपने गोंडा जिले में स्थित है। अप्रैल का महीना है, चारों तरफ गेहूं की लहलाती बालियां, हरे भरे चने के पौधे इस गांव की खूबसूरती को और बढ़ा रहे हैं।
7: और इसी प्यारी माहौल में आज आपके बीच में आई है हमारी गांव की गूंज की सुरीली टीम, जो आपको बहुत ही प्यारे प्यारे लोकगीत सुनाएंगी।
8: और हम हैं आपकी प्यारी गीता, जया और समता, किरण। आइए हम आपको सुनाते हैं एक बेहद सुंदर सा लोकप्रिय लोकगीत।

0: अरे समता दी, जरा इधर तो देखो, यह सरसों का खेत कितना दूर दूर तक फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी धरती पर पीले रंग की चादर बिछा दी है, और ये हल्की हल्की हवाएं फूलों को हिला रही हैं। सच में मन तो करता है कि यहीं बैठकर बस इसको देखते ही रहें।
1: सच कह रही हो जया, ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने खुद अपने लिए कोई त्योहार मनाने के लिए पीली चुनरी ओढ़ ली हो। हर एक फूल जैसे मुस्कुरा रहा हो और खुशबू इतनी मीठी कि मैं बता नहीं सकती।
0: सच, ऐसी खुशबू का एहसास हमें शहर में कहाँ होता है। मेरा मन तो करता है कि मैं हर हफ्ते गांव जरूर आऊं, और आती भी हूं।
2: और देखो ना, जब हवा थोड़ी तेज चलती है तो पूरा खेत ऐसे लहलहा रहा है जैसे समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हों। और मुझे तो ये पूरा का पूरा पीले रंग का समुद्र ही लग रहा है। और उसके ऊपर, अरे वाह क्या बात है, ये गुनगुनाती हुई चिड़िया इसकी सुंदरता को और बढ़ा रही।
3: सच में ऐसे मौसम में दिल खुद ब खुद गुनगुनाने लगता है। न कोई भाग दौड़, न कोई स्ट्रेस, बस ये खुला आसमान और ये खेत, ये शांति। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमसे खुद ही कुछ कह रही है। रुको रुको, यहाँ तो मन कर रहा है कि थोड़ी देर और बैठ लें और थोड़ा इस पल को जी लें। अब मैं तो यहीं रुकने वाली हूँ थोड़ी देर तक, कहीं नहीं जाऊंगी। गीता मैम, आप लोग भी यहीं रुकिए ना प्लीज।
2: अरे हाँ हाँ, हम सब यहीं रुक रहे हैं। किरण जी, हमें तो यहाँ बड़ा मजा आ रहा है, क्यों जया?
0: बिल्कुल,
2: क्यों समता?
3: हाँ हाँ बिल्कुल।
2: ऐसे ही पलों में गीत जन्म लेते हैं जो सीधे दिल से निकलकर दिलों तक जाते हैं।
0: सच कहा गीता दी आपने, मन तो कर रहा है अगला गीत भी इसी खेत में खड़े होकर के गा लें।
1: यहाँ तो हर मौसम हर फसल एक नई कहानी लेकर आता है, और मार्च का महीना तो फसलों की खुशियों का ही महीना होता है।
3: तो क्यों ना हम इस खुशी के मौसम में सरसों के खेतों पर समर्पित एक प्यारा सा गीत गाएं।

0: अरे जया इधर देखो, वो जो सामने बच्चा है उसे देखो कैसे खेत में घुसकर फसल तोड़ रहा है और कितनी मस्ती में है, जैसे ये पूरा खेत उसी का हो, और अपनी छोटी छोटी जेब में चने तोड़ तोड़ कर कैसे भर रहा है।
1: यही तो असली बचपन है, ना कोई टेंशन ना कोई जल्दी, बस ये खुला आसमान, मिट्टी में खेलना, खेतों से ताजे चने तोड़कर खाना और दोस्तों के साथ हंसते भागते रहना। ऐसे ही पल तो जिंदगी की सबसे सच्ची खुशी देते हैं।
2: सच कहूँ, इन्हें देखकर मन करता है कि हम भी फिर से बच्चे बन जाएं। काश ऐसा होता कि फिर से समय लौट आता तो कितना मजा आता।
0: चलिए अगला गाना हम इन शरारती पर बेहद मासूम बच्चों के साथ चलकर गाते हैं और इन नन्हे श्रोताओं के साथ सभी को ये गीत सुनाते हैं।

0: अब हम आ गए हैं खेतों के बीच, जहां हवा के साथ झूमती हुई गेहूं की सुनहरी बालियां और नीचे जमीन पर झांकते हुए हरे हरे चने के पौधे, ऐसा लग रहा है मानो वो अपनी कहानी खुद ही सुना रहे हों।
1: और ये देखो, इस खेत के मालिक राम भुवन काका खेत में ही खड़े हैं। राम राम काका, कैसे हैं आप? और बताइए, आपके खेतों का क्या हाल है?
2: राम राम बिटिया, इस बार भगवान की बहुत दुआ रही। देख रही हो ये जौ गेहूं कैसे खड़ा है? ऐसे लगता है जैसे हर बाली सोने की बनी हो। और चना, उसका तो क्या ही कहना, उसमें खूब फूल आया है। हरी हरी बालियां देखो जरा, हाथ लगाओ, ऐसे लगेगा जैसे ताजगी बोल रही है।
0: सच में काका, ये गेहूं की बालियां कितनी भरी भरी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हर बाली में मेहनत की कहानी भरी है।
3: ये जो हवा चल रही है ना, और साथ में ये जो बालियां हिल रही हैं, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे पूरा खेत कोई धीमा सा संगीत गा रहा हो और धरती खुद अपनी खुशी व्यक्त कर रही हो। काका, आपको रोज खेतों में आकर कैसा लगता है?
2: अरे बिटिया, ये खेत खेत नहीं बल्कि हमारा परिवार है। जब बीज डालते हैं तो ऐसे लगता है जैसे हमारा अपना बच्चा पाल रहे हैं, और जब ये लहलहाते हैं तो सारी थकान हमारी अपने आप ही मिट जाती है और दिल खुशी से भर जाता है।
1: सच में काका, आप लोगों की मेहनत इस देश की असली ताकत है। अच्छा काका, ये बताइए कि जब फसल अच्छी होती है तो घर का माहौल कैसा होता है?
2: बिटिया, अगर फसल अच्छी हो जाए ना, तो घर में त्योहार आ जाता है और रोटी बहुत स्वादिष्ट लगने लगती है।
3: यही तो असली जीवन है, मेहनत, प्रकृति और खुशी का अनूठा संगम।
4: और संगीत इन सबको जोड़ देता है। तो साथियों, इस मेहनती किसान और लहलहाती फसल के सम्मान में हम पेश करते हैं अगला गीत।

0: अरे देखो देखो, उधर से कौन आ रहा है? जया, लगता है वो दादी जी हैं। सफेद साड़ी में लाठी लेकर धीरे धीरे आ रही हैं।
1: इतनी दूर से इस उम्र में पैदल चलकर वो खेत में आई है। लगता है उन्हें संगीत से बेहद लगाव है। चलो हम लोग उनके पास चलते हैं।
2: नमस्ते दादी जी, कैसी हैं आप? ऐसा लग रहा है आप हम लोग का गाना सुनकर आई हैं।
3: नमस्ते बिटिया, खूब खुश रहो। बहुत अच्छा लगा तुम लोगन का शहर से हमारे गांव आए और सबको इतने सुंदर सुंदर गीत सुना रही हो। बस ऐसे ही गाते रहो, गांव की खुशबू इन गीतों में जिंदा रहनी चाहिए।
1: चलो तो दादी जी के आशीर्वाद के साथ एक और मधुर गीत हो जाए।

0: तो हमारे प्यारे गांव की गूंज के श्रोतागण, धीरे धीरे ये सुहानी शाम अब रात की गोद में समा रही है। आज का दिन बहुत ही प्यारा था। हमने गीत गाने के साथ साथ मिट्टी की खुशबू और मेहनत की ताकत को भी महसूस किया।
1: ये गांव, ये खेत और ये लोग ही तो हमारी असली पहचान है।
2: चलिए अब वापस चलते हैं, हम फिर आएंगे किसी नए गांव में नई कहानियों और नए गीतों के साथ।
3: तब तक इन यादों को संभाल कर रखिएगा और याद रखिए, जहां मिट्टी की खुशबू है वहां दिलों में सच्चाई है और वहीं बसती है गांव की गूंज।
4: जी हां बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्त्री 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
5: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
8: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
9: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब
11: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
12: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
7: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
5: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
6: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
5: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
6: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने, पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल 7234-020-202।
5: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
8: क्या आप ढूंढ रहे हैं ऐसा कॉलेज जहां पढ़ाई के साथ साथ फन भी हो और जो लड़कियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से हो समर्पित, ताकि करियर बने मजबूत और सफल?
13: तो आइए NJPG कॉलेज, जहां 6 वोकेशनल कोर्सेज के साथ में DMC की तैयारी भी कराई जाती है, जो आपको बनाए फ्यूचर रेडी।
8: यहां होती है BA MA और BCom की क्लासेस के साथ साथ रेडियो जॉकी की भी ट्रेनिंग। कॉलेज कैंपस में खेल का बड़ा मैदान, जहाँ सीखने का बिल्कुल ऑथेंटिक वे।
13: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त
8: ऑथेंटिक वे।
13: आधुनिक सुविधाओं से लैस कंप्यूटर रूम्स, ताकि लड़कियों को सशक्त बनाने का हो पूरा मिशन।
8: तो देर किस बात की, आज ही कॉलेज विजिट करिए। पता है दुखरनाथ मंदिर के पीछे, नारी ज्ञानस्थली PG कॉलेज गोंडा।

0: मैं ममता पांडे, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत पॉल्टस किप्स ले चलो।
3: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
4: यहाँ 120 बेड, ट्रेन ICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
3: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
5: अरे सुना?
6: क्या?
5: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
6: वाओ!
5: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइकोंडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस

0: प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 92 60 981 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

वेलकम और वार्म वेलकम लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और आप सभी का करती हूं स्वागत। तो ये दिल से स्वागत आप सभी के अपने वाले शो में जिसका कि नाम है ज्ञान असली लाइव। जो हमें फ्रीक्वेंसी से सुन रहे हैं, जो हमें रेडियो गार्डन से सुन रहे हैं, जो हमें एप्लीकेशन से सुन रहे हैं, उन सभी का तहे दिल से स्वागत है। सो कैसे हैं आप सब और क्या है आप सभी का हालचाल, फटाफट से बताएं, क्योंकि घड़ी में बज चुके हैं 12 और 12 बजते ही टाइम हो जाता है आपके अपने वाले प्रोग्राम ज्ञान असली लाइव का, जो हर दिन लेकर के आता है मोटिवेशन, इन्फॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन के साथ साथ ढेर सारी मस्ती भी। ढेर सारी मस्ती वाली, हंसाने वाली, आपको मोटिवेट करने वाली बातें भी होती हैं हमारे पास, साथ ही में आपके काम आने वाली इन्फॉर्मेशन भी होती है, और आपके लिए अच्छी अच्छी बातें भी होती हैं। सब कुछ फुल ऑन पैकेज होता है हमारे पास, तो आज भी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा मंडे जो होता है वो हमारा काम वाला मंडे होता है, यानी कि हम काम और पढ़ाई को लेकर बात करते हैं। ट्यूसडे को हमने बात की गणपति बप्पा के बारे में, जाना उनके रूप के बारे में, उनकी कहानियों के बारे में, क्योंकि गणेश उत्सव भी शुरू हो चुका है। और आज हम बात करने वाले हैं वेनसडे, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा जो वेनसडे होता है वो होता है हेल्थ को डेडिकेटेड, यानी कि हम बात करते हैं हमारी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ सभी को लेकर के, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम सुपरमैन हैं। हम कितना भी काम कर लें, हम कितना भी पढ़ाई कर लें, लेकिन हम थकते नहीं हैं और हमारी हेल्थ पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। पर ऐसा हमें लगता है, ऐसा होता नहीं है। आप सभी ने सुना होगा ना कि हंसते खेलते भागते दौड़ते हमारा ध्यान कभी इस तरफ नहीं जाता कि हमारी जो ये सुपर लाइफ है, यानी कि जो हम मन में लेकर के बैठते हैं कि मैं तो सुपर मैन हूँ ना, मुझे किसी चीज़ का कोई वो नहीं है, मैं सारा काम करूँगा, थकूँगा भी नहीं और परेशान भी नहीं होऊंगा। हम कुछ ऐसा ही सोचते हैं, पर ऐसा होता नहीं है। हमारी लाइफ पे असर होता है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है दोस्तों, आपने वो गाना तो सुना ही होगा, ज़िंदगी मिलकर बताएंगे, हंसते हंसते सुख दुख सब झेल लेंगे। फिर वो बात भी होती है कि ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है। बिल्कुल, ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है, और ज़िंदगी मिलकर बिताएंगे, सारे सुख दुख बस यूं ही झेल जाएंगे। ये सब कुछ सही है, लेकिन इसके बावजूद भी हम रोज़ कॉलेज जाते हैं, दोस्तों के साथ समोसे चाय पीते हैं, रील्स स्क्रॉल करते हैं, और रात के 2 बज जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और सुबह उठकर फिर भाग दौड़, फिर वही क्लास कि अरे मम्मी मेरी कॉलेज की क्लास है, मुझे जाना है, वही भाग दौड़ फिर से हो जाती है। ये जो उम्र है ना, इसमें हम दुनिया जीतने का दम रखते हैं और सोचते हैं कि हम सुपरमैन हैं, हमें कुछ नहीं हो सकता। यानी कि कहते हैं ना कि जब आप यंग होते हो तो यंग माइंडसेट में क्या होता है कि उसको यही लगता है कि मुझे कुछ नहीं होगा यार, मैं तो सुपरमैन हूँ, मैं तो सारे काम कर सकता हूँ, रात को 2 बजे तक पढ़ भी सकता हूँ, सुबह कॉलेज जा सकता हूँ, पूरा दिन काम कर सकता हूँ, पूरा दिन अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकता हूँ, लेकिन मुझे कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा ही लगता है हमें। लेकिन ऐसा एक्चुअल में होता नहीं है। जब हम रात रात में रील्स देखते हैं,

और हमारी झुकी हुई जो गर्दन होती है उसके साथ में हम असाइनमेंट्स लिखते हैं। आपने देखा होगा कि रात रात भर रील्स देखें या हमारे कॉलेज के असाइनमेंट्स पूरे करें, अचानक हमारी गर्दन में दर्द सा होने लगता है, कंधे जकड़ जाते हैं। हम इसे नज़रअंदाज कर देते हैं ये सोच करके, यार ये तो आम थकान है ना, मैं पूरा दिन असाइनमेंट लिख रही हूँ या मैंने अभी काफ़ी देर तक लेट करके रील्स देखी ना, उसकी वजह से ये आम थकान होती है। लेकिन मैं आपको बता दूँ लिसनर्स कि ये बिल्कुल भी आम थकान नहीं होती है। ये क्या होता है, कैसे शुरू होता है और कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, ये सब हम आज को आपको बताएंगे, क्योंकि हमारी इस अच्छी सी बहुत ही हंसती खेलती और खूबसूरत लाइफ में जहाँ सुपरमैन है वहाँ कुछ विलन भी होते हैं, और विलन का आज हमारा जो कहते हैं ना मूवी में विलन जो है वो सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं होते हैं हीरो के साथ स्पॉटलाइट में, कि भाई हीरो ऐसा है तो वो तो विलन कैसा है। तो मैं बता देती हूँ कि आज का हमारा जो विलन है उसका नाम है नेक सिंड्रोम। नेक सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है और ये हमारी हेल्थ के लिए हमारी डेली लाइफ में कितनी बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है, ये सब आपको हम बताएंगे और आपसे बहुत सारी बातें भी करेंगे, क्योंकि अभी आपको हमें अवेयर करना बाकी है हेल्थ को लेकर। तो नेक सिंड्रोम पर हम बात करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर हम सही टाइम पर इस पर ध्यान न दें तो। लेकिन उससे पहले कि हम बात की शुरुआत करें और आपको बताएं, आइए चलिए सीधे चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, और आती हूँ इस सॉन्ग के उस पार लेकर के इस विलन के बारे में बताएंगे भी और इसका हल भी हम निकालेंगे, यानी कि इसे सॉल्व भी करेंगे कि कैसे दोबारा कभी आपको ये हेल्थ प्रॉब्लम ना हो। तो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग। आप सभी बने रहे आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम में, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9816 9216। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
4: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और वापस आ चुकी हूँ आपसे फिर से कुछ बातें करने और आपको कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सा बताने के लिए भी, जो कि आज हम आपको बताने वाले हैं टेस्ट नेक सिंड्रोम के बारे में। तो आइए जानते हैं कि टेस्ट नेक सिंड्रोम आखिर होता क्या है और ये किस तरीके से हमारी डेली रूटीन में हमें परेशान भी करता है, यानी कहीं ना कहीं हमारी डेली रूटीन के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरह हमेशा हमारे सामने खड़ा होता है और हमें इसे डील करनी पड़ती है। तो सबसे पहले टेस्ट नेक सिंड्रोम होता क्या है, आइए बता देते हैं आपको। टेस्ट नेक सिंड्रोम होता यह है कि पढ़ाई करते वक्त, से मान लीजिए आप लंबे घंटे पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं, लगातार फ़ोन या लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ नीचे झुककर देखने की वजह से गर्दन की जो रीढ़ की हड्डी होती है, यानी हमारी स्पाइन होती है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और इस प्रेशर की वजह से ही हम दबाव महसूस करते हैं। जब बहुत ज़्यादा दबाव होने लगता है तो यही कहलाता है टेस्ट नेक सिंड्रोम, यही दबाव। और ये दबाव ज़्यादा तब होता है, जैसे कि मान लीजिए अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, आप ऑफिस वर्क करते हैं, यूथ हैं, ऑफिस जाते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, तो भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे ऑफिस में भी हमें पूरा टाइम बैठना पड़ता है, पूरा टाइम काम करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं झुक कर हम लैपटॉप और कंप्यूटर को ही यूज़ करते हैं, उसकी वजह से टेस्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा इस समय कहीं ना कहीं लोगों में, स्पेशली यूथ्स में देखा जा रहा है। सबसे पहला कारण मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जब हम झुककर काम करते हैं लैपटॉप या फ़ोन पे, तब होता है। दूसरी चीज़ होती है कि हमारी अनफिट, हमारा जो डेली का रूटीन होता है, उसकी वजह से भी हमें टेस्ट नेक सिंड्रोम हो जाता है। अनसेट रूटीन का मतलब है कि हम एक्सरसाइज नहीं करते, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपको टेस्ट नेक सिंड्रोम हो सकता है। अगर आप बहुत देर तक सोफे पे यूं ही बैठे रहते हैं या घर में लेटे रहते हैं, कोई काम नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो इससे आपको टेस्ट नेक सिंड्रोम का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम अपना ख्याल रखें और ज़्यादातर एक्सरसाइजेस करें, फिजिकल एक्टिविटीज़ करें। लगातार अगर आपके गर्दन में दर्द, कंधों में जकड़न और बार बार सिर दर्द से आपको गुजरना पड़ता है, तो धीरे धीरे हाथों और उंगलियों की नसें जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे कि लिखने या टाइप करने में भी तकलीफ होने लगती है। और जो बच्चे यानी कि स्टूडेंट्स हैं, वो इसे आम थकान समझकर नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये उन्हें रोज़ परेशान करती है। सो इसीलिए कहते हैं कि कहीं ना कहीं टेस्ट नेक सिंड्रोम को हमें कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर आपको लगातार कंधे में, कमर में दर्द हो रहा है, आपकी स्पाइन में पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपको तुरंत से डॉक्टर को दिखाना है, एक्सरसाइजेस करनी है, और सबसे मेन बात कि कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इसी के साथ हमारे साथ तो महेंद्र जी आ चुके हैं जो कि हमें राजस्थान से सुनते हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, नमस्ते आर्य अंशिका मैम जी। नमस्ते महेंद्र जी, गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप? ये प्रॉब्लम होती है और इसके लिए सबसे ज़्यादा मेन जो इलाज मैं आपको बताऊं कि अगर हम इस पर जाएं कि इसके और क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका एक कारण जहां ये होता है वहीं ये भी होता है कि आपने बहुत सारे बच्चों को देखा होगा कि वो बिस्तर पर पढ़ते हैं, कि हम बेड पर जो है लेटे लेटे और बुक लेकर के हम पढ़ रहे हैं, इसकी वजह से भी टेस्ट नेक सिंड्रोम होता है अगर आप लेटे लेटे पढ़ाई कर रहे हैं उसकी वजह से भी। इसलिए अगर आप अपनी डेली रूटीन में पढ़ाई करते हैं तो चेयर पर बैठकर टेबल लेकर के ही पढ़ाई करें, चेयर और टेबल पर, यह बहुत ज़रूरी है क्योंकि बेड पर लेटकर पढ़ाई करने से टेस्ट नेक सिंड्रोम का खतरा ज़्यादा हो जाता है। अगर आपकी सिर में तेज़ दर्द लगातार बना रहता है तो इसका मतलब है कि यह कहीं ना कहीं टेस्ट नेक सिंड्रोम का खतरा हो सकता है, आपको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि हम बस गए केमिस्ट से, हमने कोई भी दवा ले ली, आम थकान आम सरदर्द समझकर और उसे खा लिया, उसे ले लिया, इससे नहीं होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो हो सकता है आपकी एमजी की दवाई ना हो। हम बार बार आपसे कहते हैं कि जब भी मेडिसिन लें तो हमेशा डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई मेडिसिन ही आपको लेनी है, क्योंकि हो सकता है वो मेडिसिन आपने कहा ठीक है मेरे पीठ में दर्द है और उसने आपको मेडिसिन दे दी, पता नहीं वो आपकी एमजी की थी या नहीं। डॉक्टर की प्रिस्क्राइब की हुई हमेशा लें, और इस मामले में मतलब टेस्ट नेक सिंड्रोम के अगर सिम्टम्स आपको फील हो रहे हैं, सिम्टम्स मैं आपको बता देती हूँ, सिर में तेज़ दर्द, गले के पीछे के हिस्से में तेज़ दर्द होना, और साथ ही साथ में हमारी रीढ़ की हड्डी में यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भी दर्द का महसूस करना, ज़्यादा देर बिना सहारे के आपका न बैठ पाना। ज़्यादातर बिना सहारे के न बैठ पाने का मतलब ये है कि जैसे हम मान लीजिए बेड पर बैठे हुए हैं और हमें तकिए लगाने पड़ रहे हैं पीछे सहारे के लिए, हम बिना सहारे के नहीं बैठ पा रहे हैं, 5 मिनट बैठ रहे हैं तो पीठ में दर्द होने लग रहा है, तो ये कहीं ना कहीं लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं टेस्ट नेक सिंड्रोम के, यानी कि आपको नेक सिंड्रोम हो रहा है। सिर में तेज दर्द का मतलब होता है कि अगर आपके फोरहेड में पेन हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये भी टेस्ट नेक सिंड्रोम का खतरा है। अगर आप लैपटॉप पर 1 घंटा 1.5 घंटा आधा घंटा या फ़ोन पे इस पे काम कर ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए नोट्स लिख रहे हैं या ऑफिस का कोई काम कर रहे हैं, और आपको तेज़ दर्द उसी वक्त हो रहा है जिस वक्त आप फ़ोन से या लैपटॉप से काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट नेक सिंड्रोम का खतरा हो सकता है, हमें संभलने की ज़रूरत है। ये सारे थे सिम्टम्स इसके, और इसके कुछ कारण भी मैंने अभी आपको बताए, और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी शुरुआत कैसे होती है। इसकी शुरुआत तभी होती है जब हमारी फिज़िकल एक्टिविटी कम होती है, हम दिन में बहुत एक लंबा टाइम जैसे कि 7-8 घंटे कहीं ना कहीं लैपटॉप फ़ोन के साथ बिता रहे होते हैं, चाहे आप ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं या अपना काम कर रहे हैं। तो भी मान लीजिए आप ऑफिस वर्कर हैं और अपना काम कर रहे हैं, तो भी आपको ये चाहिए कि बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो भी आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेने की ज़रूरत है। आप थोड़े थोड़े ब्रेक्स लीजिए, बीच में से 5 मिनट का 10 मिनट का ब्रेक ले लिया, उठ के चले गए, टहल कर चले आए, और फिर बैठकर अपनी अपना काम जैसे नोट्स बना रहे हैं तो करने लगे। क्लासेस ज़्यादा होती नहीं है, 1 ही घंटे की होती हैं, उतने में आपको दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक कोशिश करें कि रात में 2 या 3 बजे तक ना जागें, रील्स वगैरह आप देख भी रहे हैं अगर, तो रात में जा करके देर तक रील्स वगैरह ना देखें। आइए अब इसी बहुत ही प्यारी सी बातों के साथ चलते हैं लिसनर्स, और सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनते रहिए आपका अपना बेहद पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, वो आदर्श और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVO द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा और प्यारा वाला प्रोग्राम जिसका की नाम है ज्ञानश्री लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका, और फिर से एक बार हाजिर हूँ आपसे बातें करने के लिए। तो आइए, अब तक हमने बात की फिजिकल हेल्थ को लेकर के कि किस तरीके से हमारी जो फिज़िकल हेल्थ होती है वो हमारी डेली रूटीन में कुछ ऐसी डिसीज़ होती है, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट हो जाती है। जो अभी हमने आपको बताया कि टेस्ट नेक सिंड्रोम किस तरीके से होता है, आइए अब बात कर लेते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स की जो कि हमें मेंटली हो जाती हैं और हम समझ नहीं पाते, यानी कि वो कहीं ना कहीं हमारी मेंटल हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। तो आपने सुना होगा कि आजकल सबसे ज़्यादा हम जब मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो सिर्फ दो नाम सामने आते हैं, एन्जाइटी और डिप्रेशन। लेकिन आज के सोशल मीडिया के दौर में यूथ्स के लिए जो मेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ती जा रही हैं, जो कि एन्जाइटी और डिप्रेशन से भी अलग हैं। आज ऐसी ही किसी एक प्रॉब्लम के बारे में आपको बताने वाली हूँ मैं, जो कि डिसऑर्डर हम कह लें, जब भी हम बात करते हैं डिसऑर्डर की कि ये डिसऑर्डर है वो डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी डिसीज़ या डिसऑर्डर्स होते हैं ये सिर्फ हमारी सोच पे होते हैं, जो हम सोच लेते हैं जो समझ लेते हैं उसी पर होते हैं। बच्चों में एक चीज़ होती है ऑब्सेशन, ऑब्सेशन यानी कि ऐसी चिंता, जैसे हम कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा है एन्जाइटी है, लेकिन आजकल बच्चों में ऑब्सेशन बढ़ गया है। ऑब्सेशन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंता करना, जैसे हम जैसे कहते हैं ना कि अरे उसे तो पढ़ाई का पूरा जुनून सवार है, ठीक ऐसा ही ऑब्सेशन में भी होता है, जहाँ हमें हमारी चिंता का एक तरीके से जुनून सवार हो जाता है। और वो चिंता कभी भी ज़रूरी बातों पे नहीं होती है, हमारी चिंता बहुत छोटी छोटी बातों पे होती है, उन बातों पे होती है जो चिंता करने लायक होती भी नहीं है, और इसी को ऑब्सेशन कहते हैं, जो कि यूथ्स में और यंगस्टर्स में, टीनेजर्स में इस समय बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और एक बहुत बड़ी मेंटल प्रॉब्लम की तरीके से सामने भी आ रहा है, जिस पर कि आज हम बात करेंगे। तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले ये होता क्या है। ये एक ऐसा डिसऑर्डर है जो बच्चे को अलग अलग बातों के ज़रिए हो जाता है, जैसे कि कई बार अपने वज़न को लेकर के, अपनी स्किन की कलर को लेकर के, अपनी बॉडी शेप को लेकर के हम बहुत ज़्यादा चिंता में डूब जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके दिखने में कोई कमी है, भले ही वो बाकी लोगों के जैसे ही दिखते हैं, बाकी लोगों के जैसे ही हैं, पर उन्हें लगने लगता है कि उनके अंदर कोई कमी है। वो कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा रिग्रेशन फील करते हैं, उनको लगता है मेरे अंदर ये कमी है, मैं इस कमी की वजह से आगे नहीं जा पाऊँगा, मैं ग्रो नहीं कर पाऊँगा, सब मुझे चिढ़ाएंगे, मैं क्या सोचूंगा, ऐसी ढेर सारी बातों की वजह से वो चिंता करते हैं। आइए इसका एक एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाती हूँ कि मान लीजिए कोई बच्चा है और उसका जो वज़न है वो सामान्य से ज़्यादा है, यानी कि वो मोटा है, तो उसे उस बात को लेकर के चिंता हो जाती है बहुत ज़्यादा। एक ऑब्सेशन हो जाता है कि अरे मैं तो कहीं ना कहीं बहुत मोटा हूँ और कैसे होगा, मेरे सारे दोस्त आगे निकल जाएंगे, मैं पीछे रह जाऊँगा, सब मुझे चिढ़ाएंगे, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, हर वक्त चिंता में डूबा रहता है और कुछ भी करके अपने आप को पतला देखना चाहता है। यही होता है ऑब्सेशन, जहाँ पर हम कुछ भी करके बस उस चीज़ को, उस थिंकिंग को, उस सोच को मिटाना चाहते हैं जो हमें प्रॉब्लम देती है। हमें लगता है कि ये सोच मेरी जो है मुझे प्रॉब्लम दे रही है और मुझे इसे हर हाल में मिटाना है, हर हाल में ठीक करना है। लेकिन वो बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है, आप मोटे हैं, लेकिन आपको कोई हेल्थ इशू नहीं है, आप फिट हो उसके शरीर के साथ भी, उस बॉडी के साथ भी, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में, सोशल मीडिया के टाइम पर सबको यही लगता है कि फिट होना चाहिए, अच्छा लुक होना चाहिए और हमें बिल्कुल हीरो जैसे दिखना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में रील्स में बच्चे एक वर्ड देखते हैं ना जो होता है परफेक्शन, और बस उन्हें उसी की लत लग जाती है, कहीं ना कहीं उसी की एक चीज़ हो जाती है कि सब परफेक्ट होना चाहिए, और यही परफेक्शन की धुन आगे चलकर बच्चों में ऑब्सेशन बन जाती है, जो आजकल नए नए तरीकों से सामने आ रहा है। जैसे मान लीजिए अगर स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें पढ़ाई का ऑब्सेशन है कि अगर 90% 95% कोई बच्चा पा गया तो वो 95% कैसे आया, मुझे 95% लाने थे, और फिर उस बात को लेकर वो इतनी चिंता करते हैं, इतना परेशान हो जाते हैं
कि खुद तो होते ही हैं और अपने मम्मी पापा को भी करते हैं, उसमें खाना छोड़ देते हैं, बाहर घूमना छोड़ देते हैं, दोस्तों से मिलना छोड़ देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं और बस अपनी इसी एक चिंता में घुलते रहते हैं, अपने इसी ऑब्सेशन में पूरा पूरा दिन रहते हैं, जिससे कि आगे जाकर उन्हें और भी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। अब बात करते हैं कि इस ऑब्सेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपका बच्चा अचानक चुप रहने लगे, खुद को कमरे में बंद रखने लगे, किसी से बातचीत ना करे, अपने दोस्तों से ना मिले, अपनी पसंदीदा चीज़ों को न ले, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये ऑब्सेशन जो है ये सिर्फ स्टूडेंट्स में ही नहीं होता है, यूथ्स में ही नहीं होता है, बल्कि बढ़ती उम्र के लोगों में भी हो सकता है। अगर आपको इस तरह के लक्षण किसी में भी दिखाई पड़े, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, कि वो किसी से बात नहीं कर रहे हैं, खुद को कमरे में बंद रख रहे हैं, अपनी बेहद पसंदीदा एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, और दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि खाना नहीं खा रहे हैं, यानी कि उन्हें भूख नहीं लग रही है, फिज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस पूरा पूरा दिन सिर्फ अपने कमरे में रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये ऑब्सेशन के लक्षण हो सकते हैं। किसी भी बात को लेकर के ये ऑब्सेशन, यानी कि एक हद से ऊपर की चिंता हो सकती है, बच्चों में भी, यंगस्टर्स में भी और बड़ों में भी, बस हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं, बस यूं गए और यूं आए, आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम जो कि है ज्ञान असली लाइव, उसे वापस लेकर के। लेकिन उससे पहले आइए सुन लेते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

0: अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में है,
1: तो सिटीमेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9876। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: अरे सुना
3: क्या?
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ!
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर नगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
5: गोंडा शहर की धड़कन का दिल धड़काने के लिए लेकर के फिर एक बार हाजिर हूँ आपका अपना बेहद प्यारा प्रोग्राम जिसका नाम है ज्ञानस्थली लाइव, और मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब बात करते हैं कि अभी तक हमने आपको बताया कि किस तरीके से बच्चों में जो ऑब्सेशन हो जाता है उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं और कहाँ से होती है इसकी शुरुआत। अब बात कर लेते हैं कि इसे ठीक कैसे किया जाए, यानी कि कुछ इसके निवारण। तो इसे ठीक करने के लिए सबसे पहले यही है कि डर और चिंता को एक्सेप्ट करें, यानी बच्चे को ये नहीं कहना है कि ये पागलपन है, तुम जानबूझकर कर रहे हो। उसके डर को समझें और उसे भरोसा दिलाएं कि आप उसके साथ हैं। डांटना या फटकारना बिल्कुल नहीं है। बच्चे को ज़बरदस्ती उसकी आदतों को रोकने के लिए मजबूर ना करें। ऐसा करने से उसकी घबराहट और ज़्यादा बढ़ सकती है और उसका ऑब्सेशन भी। आपको उसका साथ देना है। तीसरी चीज़ होती है कि धीरे धीरे बच्चे के साथ मिलकर धीरे धीरे उसकी आदतों को कम करने के लिए आपको रूल्स बनाने होंगे। जैसे अगर बच्चा बार बार हाथ धोता है तो तय करें कि केवल 2 बार ही हाथ धोना है, फिर धीरे धीरे इसे चेंज करना है। यानी कि हमें सीमाएं तय करनी है कि बच्चा कौन सा काम, जैसे जिस चीज़ से वो डर रहा है या जिस चीज़ से उसे ऑब्सेशन है, वो चीज़ें आपको कम करवानी होंगी। इसी से धीरे धीरे उसकी चिंता भी कम हो जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर बच्चे में डर है कि मुझे नंबर कितने आएंगे, कैसे आएंगे, तो आपको उसे ये भरोसा दिलाना है कि नंबर कैसे भी आए, बस तुम्हें पढ़ाई में 100% देना है। दूसरी चीज़ होती है कि बच्चे को थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करना है, यानी कि जब भी बच्चा किसी ऐसी सोच में फंसा हो जहाँ पर उसे ऑब्सेशन महसूस होने लगे, तो आपको उसे उस ऑब्सेशन को थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिटाना नहीं है, उसका ध्यान चेंज करना है, उसको डिस्ट्रैक्ट करना है कि धीरे धीरे उसे किसी और एक्टिविटी, कोई खेल, पेंटिंग या उसकी कोई पसंदीदा एक्टिविटी की तरफ मोड़े, उसे वो चीज़ सोचने न दे जो कि उसे ऑब्सेस्ड करती है। तीसरा आता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेस फ्री माहौल होना बहुत ज़रूरी है। घर का जो इन्वायरमेंट है उसे स्ट्रेस फ्री रखें ताकि बच्चे पर उसका असर ना पड़े। स्ट्रेस फ्री माहौल रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम माहौल को स्ट्रेस फ्री रखेंगे तो इससे धीरे धीरे बच्चे में भी वो बातें आएंगी और बच्चा ज़्यादा परेशान नहीं होगा। इसलिए स्ट्रेस फ्री रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चे को स्ट्रेस फ्री रखिए ताकि वो चीज़ों को ज़्यादा सोचे नहीं। स्ट्रेस फ्री रखना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब आते हैं, बात करते हैं कि ये सारी चीज़ें तो हो गई, पर कहीं ना कहीं अगर बच्चे में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो आप साइकोलॉजिस्ट की हेल्प भी ले सकते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि बच्चों में ऑब्सेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि हम इन सारी तरीकों के बावजूद भी उसे कंट्रोल नहीं कर पाते। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चे को आप साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाएं। कनेक्टिविटी बिहेवियरल थेरेपी, यानी कि वो बच्चे से धीरे धीरे बात करना, सामना करना चीजों का उसे सिखाते हैं और उसकी चिंता को कम करते हैं। कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं और साथ ही साथ में कुछ ऐसे प्रिकॉशंस भी होते हैं जो फैमिली को भी रखने पड़ते हैं। वो आपको साइकोलॉजिस्ट बताएंगे कि कैसे आपको इस हालत में बच्चे के साथ में डील करनी है, लेकिन उसके लिए आपको बच्चे को उनके पास लेकर के जाना होगा। तो आप बच्चे को उनके पास ले जाएं, वो बताएंगे और उसी हिसाब से बच्चा जो है वो पूरी तरीके से उस चीज़ को डील कर पाएगा और धीरे धीरे उसका ऑब्सेशन कम होकर ख़त्म भी हो जाएगा। सो आइए लिसनर्स, चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, सुनते हैं और इन्जॉय करते हैं। बस यूं गए और यूं आए, आप सुनिए ये बेहद ही प्यारा सा सॉन्ग और हमारे साथ बने रहिए आपके अपने बेहद पसंदीदा प्रोग्राम और प्यारे वाले प्रोग्राम में जिसका के नाम है ज्ञानस्थली लाइव। बस यूं गई और यूं आई। स्टे ट्यून्ड।

0: झुमका।
1: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं आपका अपना बेहद पसंदीदा प्रोग्राम, जिसका नाम है ज्ञान स्थली लाइव, और मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त अंशिका। सो आइए अब चलते हैं, बात करते हैं कि हमारे पास है एक स्टोरी, और अब हो गया है स्टोरी टाइम, यानी कि आपको स्टोरी सुनाने का टाइम। आज हमारी जो स्टोरी है ना, वो भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, जो कि है सूरज की। सूरज कॉलेज का बेहद होनहार स्टूडेंट था, जो अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर भी था। वो अक्सर रात रात भर जाकर असाइनमेंट्स बनाता था, बाहर का फास्ट फूड खाकर काम चला लेता था। उसे लगता था कि सक्सेस पाने के लिए नींद और सेहत से समझौता करना जायज़ है। लेकिन जल्द ही लगातार और रहने वाला सिरदर्द, थकान, कमज़ोर इम्यूनिटी ने उसे घेर लिया। वह एक बड़े एग्जाम के ठीक पहले इतना बीमार पड़ गया कि महीनों की मेहनत के बाद भी वो अपना टेस्ट, यानी कि अपना एग्ज़ाम, सॉरी टेस्ट नहीं, एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया। बिस्तर पर लेटे हुए सूरज को ये एहसास हुआ कि उसने जिस करियर के लिए अपनी सेहत दांव पर लगाई, और उसकी पूरी हेल्थ बिगड़ गई। वो करियर भी उसके हाथ से छूट गया, यानी कि वो अपना एग्ज़ाम नहीं दे पाया जो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था, और जिसके लिए उसने रात रात भर जाकर पढ़ाई की थी, हर चीज़ को सेक्रीफाइस किया, फ्रेंड्स के साथ कहीं नहीं गया, घूमा नहीं, मम्मी पापा से नहीं मिला। बस उसके मन में क्या था कि मुझे पढ़ाई करनी है, और अपनी हेल्थ को भी उसने सेक्रीफाइस किया सिर्फ और सिर्फ अपने बेहतर करियर और अच्छे भविष्य के लिए। लेकिन कहते हैं ना कि बेहतर करियर और अच्छा भविष्य तो आप तभी इंजॉय कर पाएंगे जब आपके पास स्वस्थ शरीर होगा। इसलिए कहीं ना कहीं हमारी जो हेल्थ है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक होने के बाद सूरज ने अपनी डेली रूटीन को चेंज किया। उसने रोज़ 45 मिनट एक्सरसाइज की, और हाँ, फास्ट फूड को छोड़कर पौष्टिक खाने की तरफ ध्यान भी दिया। 7 घंटे की गहरी नींद ली। सेहत सुधरते ही न सिर्फ उसका फोकस बढ़ा, बल्कि उसकी जो एनर्जी थी वो भी बढ़ी, और काम करने की उसने दोगुनी मेहनत के साथ काम किया, जिसने उसने अगले सेमेस्टर में टॉप रैंक हासिल की। इस बदलाव से सूरज ने सीखा कि हमारा जो शरीर है वही एकमात्र जरिया है जिसके ज़रिए हम अपने सपनों को सच कर सकते हैं। ये कहानी आपको और हमें भी सिखाती है लिसनर्स, कि चाहे लाइफ में कितनी भी आप बिजी हों, लेकिन कभी भी स्वास्थ्य के साथ समझौता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि हेल्थ इज़ वेल्थ। इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट हमारी हेल्थ है, जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आलस की वजह से या किसी भी कारण से कभी भी हमें अपनी हेल्थ के साथ समझौता नहीं करना चाहिए। हमेशा पौष्टिक चीज़ें खानी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, अपना डेली रूटीन हेल्दी रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए कि बहुत लोग शिकायत करते हैं ना कि अरे मैम, हम तो बहुत बिजी रहते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं कर पाते, तो आप अपनी 30 मिनट की डेली वॉक करिए, मान लीजिए कि आपका ऑफिस या आपका कॉलेज या आपका स्कूल अगर आपके लिए वर्किंग डिस्टेंस पर है कि आप आराम से पैदल जा सकते हैं, पैदल आ सकते हैं, वॉकिंग डिस्टेंस है, तो आप पैदल आए जाएं। पैदल आने जाने से क्या होगा कि आपकी 30 मिनट की वॉक भी हो जाएगी, आप घर भी पहुंच जाएंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं निकालना पड़ेगा एक्सरसाइज करने के लिए। हम क्या करते हैं कि मान लीजिए हमारा घर, कॉलेज या ऑफिस वर्किंग डिस्टेंस पे ही है, लेकिन हम क्या करते हैं, ऑटो किया बैठ गए, बाइक है बाइक से चले गए या कार है तो कार से चले गए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर डेली रूटीन में आप हैबिट डाल लें कि मुझे चल कर के ही जाना है, तो इससे आप फिट भी रहेंगे और साथ ही साथ में आपका काम भी होगा। ऐसे ही खाने के बाद नाइट वॉक की हैबिट डालें, खाने के बाद आप आधा घंटा नाइट वॉक कर लें, और अगर आप सुबह उठ सकते हैं तो सुबह उठ करके मॉर्निंग वॉक कीजिए। अगर मान लीजिए बिजी शेड्यूल है, सुबह नहीं कर सकते हैं, तो सुबह ना उठ करके आप शाम में या रात में भी वॉक कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है कि अगर उठ सकते हैं तो सुबह मॉर्निंग में उठकर एक्सरसाइज करना, योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सरसाइज और योगा इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्थ। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, वॉकिंग करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, तो इससे फिट रहेंगे, और फिट रहेंगे तो हम अपनी ही चीज़ों को, अपनी ही सेहत को और बेहतर कहीं ना कहीं कर पाएंगे। इसलिए फिट रहना बहुत ज़रूरी है। कहते भी है ना, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो आज हमारे जितने भी स्टूडेंट्स सुन रहे हैं, यंगस्टर्स सुन रहे हैं, उन सभी को कहना चाहती हूँ कि सूरज की कहानी से आप भी सीखिए और अपनी हेल्थ पे फुल फोकस दीजिए, और किसी भी चीज़ के लिए, चाहे वो पढ़ाई हो, करियर हो, जॉब हो, कुछ भी हो, उसके लिए कभी अपनी हेल्थ को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो ये था आपका अपना ज्ञानश्री लाइव में आज हेल्थ वाला हमारा वेनसडे, तो यहीं तक था। अब मिलूंगी आपसे थर्सडे को, बहुत सारी बातें लेकर के, बहुत कुछ शेयर करना है हमें आपसे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा लिसनर्स, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, रेडियो ज्ञानस्थली को सुनते रहिए। और हाँ, अभी के लिए मुझे यानी अपनी होस्ट एंड दोस्त अंशिका को इजाज़त दीजिए। अब मिलती हूँ आपसे आपके अपने पसंदीदा शो सुन सहेली में। तब तक के लिए बाय बाय।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, आ गई 1 फरवरी जब सुन पाएंगे आप ये नई कड़ी। सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। फाइलेरिया एक गंभीर बीमारी है जो मच्छरों के काटने से फैलती है और इसका असर सालों तक रह सकता है।
2: पैरों में सूजन, बुखार।

0: सेहत की श्रृंखला सेहत सही लाभकई के नए एपिसोड में हम स्वागत करते हैं और मैं हूं आपका अपना आरजे अदनान। दोस्तों, अब पोषण माह की बात हो रही है और एनीमिया जैसे संगीन मुद्दों पर चर्चा ना हो ऐसा हम होने नहीं दे सकते, जिसके लिए इस एपिसोड में हम लाए हैं सेहतिया भैया को और साथ एक पोषण विशेषज्ञ को, जो कि हमें बताएंगे बहुत सारी बातें सेहत को लेकर, जिसका मुख्य विषय होगा एनीमिया। सेहतिया भैया, कल मैंने ना एक पत्रिका में रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे काफी चिंतित कर दिया। मुझे तो पता ही नहीं था कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 यानी NFHS 5 2019-21 के अनुसार हमारे देश में एनीमिया 6 महीने से 5 साल तक की उम्र के 67.1% बच्चों में पाया गया है। पढ़कर काफी ज्यादा आश्चर्य हुआ मुझे, लेकिन इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, ये बात समझ में नहीं आई।
1: जी हाँ, और ये सच्चाई या परेशान करने वाले आंकड़े यहीं तक सीमित नहीं हैं। आपको पता है 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से भी ज्यादा लड़कियां एनीमिक हैं, यानी हर 10 में से 6 लड़कियां। और गर्भवती महिलाओं की बात करें तो उनमें 52% यानी आधी से ज्यादा महिलाएं एनीमिया की शिकार हैं।
0: ओहो हो, और 5 से 9 साल के बच्चों का क्या, क्या उनके लिए कोई जानकारी है आपके पास?
1: NFHS में इस उम्र के बच्चों का डाटा सीमित है, लेकिन अलग अलग अध्ययनों के अनुसार इस आयु वर्ग के लगभग 23.5% बच्चे एनीमिया से प्रभावित हो सकते हैं।
0: मतलब ये तो एक बहुत बड़ी चुनौती है, और हम अक्सर सोचते हैं कि ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा है, लेकिन क्या पुरुष भी एनीमिया से प्रभावित होते हैं?
1: जी हाँ, ऐसे पुरुष जिनकी उम्र 15 से 49 वर्ष के बीच में है, इनमें 25% पुरुष और किशोर लड़कों में लगभग 31% भी एनीमिक पाए गए हैं, यानी यह एक पूरे समाज की समस्या है।
0: तो क्या आपके पास केवल बिहार में ही एनीमिया के आंकड़े हैं?
1: जी हाँ, NFHS 5 के आंकड़ों के अनुसार बिहार में 70.4% बच्चे जिनकी उम्र 6 से 59 महीने है और 63.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 63.1% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। कुल मिलाकर 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह दर 63.5% है। किशोरियों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है यह और भी ज्यादा खतरनाक है और इसकी प्रतिशतता लगभग 65.7% है। पुरुषों में भी 30.8%, यानी जिन पुरुषों की उम्र 15 से 49 साल है उनमें 30.8% है और 35.6% ऐसे पुरुषों में है जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
0: यानी ये एनीमिक है?
1: बिल्कुल सर,
0: बिल्कुल। और अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो क्या स्थिति है?
1: यहाँ भी स्थिति चिंताजनक है। 67% 50.6% गैर गर्भवती महिलाएं और 45.9% गर्भवती महिलाएं एनीमिक हैं। 15 से 49 वर्ष की महिलाओं में यह 50.4%, किशोरियों में 52.9% और पुरुषों में 22.2% और 28.9% ऐसे पुरुषों में जिनकी उम्र 15 से 19 साल है।
0: सेहतिया भैया, हमारी दोस्त प्रियंका अभी जल्द ही एनीमिया को लेकर के डॉक्टर अमर निधि से मिली थी, सो क्यों ना हम एक एक्सपर्ट के दृष्टिकोण से भी जान ले।
1: अरे नेकी, और वो भी पूछ, बिल्कुल सुनते हैं डॉक्टर अमर निधि का एनीमिया पर क्या कहना है।
2: आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV/AIDS और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ

0: बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमरनीति, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका, मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूँ जिससे वो लाभ उठा सकें।
0: हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं?
1: ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं।
0: क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है?
1: अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें, इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है।
0: जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को?
1: जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं।
0: तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है?
1: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं, इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए।
0: तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं?
1: ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं, उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है।
0: मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है?
1: ये आसान है। परिवार जो है वो नज़दीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन सी की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं।
0: तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि एनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में जी।
1: इसको मैं दो भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये है कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनबाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनबाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है वो सबसे नज़दीकी सब सेंटर, PHC, CHC या जिला अस्पताल में जाएं तो वहाँ हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है।
0: जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है?
1: जी हाँ बिल्कुल होता है। ICDS और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है।
0: मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं?
1: थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है।
0: तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें?
1: आजकल की पीढ़ी के लिए खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत ज़रूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है लेकिन ज़रूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं जैसे बर्गर पिज्ज़ा नूडल्स मोमोज जो इस तरह की चीज़ें होती हैं उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा।
0: एक और सवाल मैम मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं, और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में?
1: आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर ANM द्वारा वितरित किया जाता है इनको और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं जो भी माँ बनने की आशंका हो सकती है उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक ज़रूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे ANM हो वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती है। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है।
0: थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे अच्छे से, उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो सुना ना दोस्तों, एनीमिया क्या है और क्यों होता है? तो इस बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए सेहतिया जी से पूछते हैं कि आखिर उनकी भतीजी आरती दीदी को क्या हुआ था। मुझे पता लगा था कि उनको काफी खून की कमी थी और उनके प्रसव में काफी दिक्कत भी हुई थी।
3: हाँ भैया अदनान, क्या ही बताऊँ, तुम्हें तो पता है कि आरती कितनी खाने पीने की शौकीन थी। मोमोज हो या चाउमीन, मिठाई हो या सूखे चने, हर चीज काफी शौक से खाती थी। पर इतने चटोरेपन का क्या ही फायदा होता जब वो उसका खाना पौष्टिक ना होता।
2: क्यों भैया, वो तो काफी हेल्दी थी, फिर उनको आखिर किस चीज की दिक्कत हुई?
3: यही चाउमीन और मोमोज खा खा करके उसको लगता था उसका सारा पोषण पूरा हो रहा है, पर गर्भावस्था में ज्यादा नमकीन और तेल वाली चीज खा खा करके उसका ब्लड प्रेशर अलग बढ़ा, ऊपर से एनीमिया यानी खून की कमी। छठे महीने में डॉक्टर ने तो सख्ती से कह दिया था कि अब अगर पोषण का ध्यान नहीं दिया तो प्रसव के समय काफी दिक्कत हो जाएगी।
2: हाँ तो आपकी भतीजी है ना, समझदार तो होंगी, ख्याल तो रख ही लिया होगा, ख्याल तो रख ही लिया होगा।
3: इसी चीज का तो दुख है, मेरी भतीजी होने के बावजूद डॉक्टर की बातों को अनसुनी करके लापरवाही करती रही और प्रसव के समय कितनी दिक्कतें आई यह बस या तो डॉक्टर साहब जानते हैं या आरती।
2: पर फिर भी बताएं तो ऐसा आखिर हो क्या गया?
3: होना क्या था, प्रसव के समय जहां खून की मात्रा अधिकतम होनी चाहिए उसको जब भी कमी थी, धर्मवीर भैया और मुझे एक एक यूनिट खून देना पड़ा, तब जाके उसकी बेटी का जन्म हो पाया। पर सिर्फ आरती पर असर नहीं पड़ा, अब उस आने वाली नन्ही सी जान भी काफी दुबली पतली खून की कमी से ग्रसित है।
2: हाय, ये तो काफी चिंताजनक मामला हो गया। तो अब कैसी है आरती दीदी?
3: अब तो काफी बेहतर है, हमारा जमाई काफी समझदार है, उसने डॉक्टर से सलाह ली और जिस तरह से डॉक्टर ने खाने पीने का बोला था वैसे वैसे ध्यान रख रहा है। अब चाहे सप्लीमेंट देना हो या टाइम टाइम से पौष्टिक आहार या दवाएं, सब कुछ खुद संभाल रहा है ताकि आरती की हालत सही रहे और उसकी नन्ही परी की भी।
2: ये तो अच्छी बात है काफी। आरती दीदी को सोचना चाहिए था कि पोषण की कमी सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहेगी, हमारी गुड़िया भी झेल सकती है। अच्छा सिहतिया भैया, तो क्या कोई सरकारी रुझान है इस पर?
3: अरे सरकार बहुत सक्रिय है, पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत, पोषण पखवाड़ा, सुपोषित पंचायत जैसी योजनाएं चला रही है, जहां आंगनवाड़ी केंद्रों, स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से IFA की गोलियां दी जाती हैं और पोषण पर सलाह भी दी जाती है।
2: मुझे याद है भैया, भारत सरकार ने 2018 में एनीमिया मुक्त भारत यानी AMB अभियान शुरू किया था और इसका उद्देश्य जीवन चक्र दृष्टिकोण अपनाकर एनीमिया को कम करना है।
3: बिल्कुल भैया, इस अभियान के प्रमुख घटक हैं आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, नियमित डीवॉर्मिंग, व्यवहार परिवर्तन संचार अभियान, आयरन युक्त भोजन का सेवन बढ़ाना, डिजिटल तरीकों से एनीमिया परीक्षण और उपचार, गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव के बाद देरी से कार्ड क्लैपिंग सुनिश्चित करना। इस अभियान का लक्ष्य हर साल एनीमिया की दर को 3% तक कम करना है।
2: सेहतिया भैया, ये योजना तो बहुत ही व्यवस्थित योजना है, और भी क्या कोई कार्यक्रम है?
3: हाँ अदनान जी, और भी कई योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RKSK। इसमें खास ध्यान किशोर लड़के लड़कियों पर है, खासकर स्कूल से बाहर रहने वाले बच्चों पर। इसमें WIFS यानी हफ्ते में एक बार आयरन की गोली, पोषण शिक्षा और परामर्श शामिल है। ऐसे ही राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी कि RBSK बच्चों में 30 बीमारियों की पहचान और इलाज का कार्यक्रम है, जिसमें एनीमिया भी शामिल है, स्कूल और आंगनबाड़ी के जरिए किया जाता है। ऐसे ही स्कूल हेल्थ वेलनेस प्रोग्राम यानी कि SHWP ये स्कूलों में स्वास्थ्य शिक्षा देता है, जिसमें एनीमिया की जानकारी भी शामिल है। ICDS आंगनबाड़ी केंद्रों से बच्चों और माताओं को पोषण मिलता है, जिसमें फोर्टिफाइड खाना और टेक होम राशन भी शामिल है। ऐसे ही पोषण अभियान पोषण 2.0, ये पोषण को लेकर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें सभी योजनाओं को जोड़ा गया है और रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। ऐसे ही पीएम पोषण योजना, ये स्कूल के बच्चों को पौष्टिक मिड डे मील देती है जिससे एनीमिया और अन्य कमियों को रोका जा सके।
2: शुक्रिया भैया, आपने तो इतनी सरलता से और फिर भी इतनी गहराई से ये सब जानकारी दे दिया। सो दोस्तों, अब बात करते हैं आयुष्मान आरोग्य मंदिर की। ये सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। यहाँ कई और सुविधाओं के साथ अगर हम सिर्फ एनीमिया की बात करें तो आपको कई सारी सुविधाएं मिलती है, जैसे मुफ्त हीमोग्लोबिन परीक्षण और एनीमिया उपचार, IFA गोलियों का वितरण भी होता है, पोषण संबंधी परामर्श और आयरन युक्त भोजन की जानकारी भी यहीं से मिल जाती है। और तो और, इसके अलावा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी PMJAY के तहत गंभीर मामलों में कैशलेस इलाज भी उपलब्ध कराया जाता है।
3: मैं तो महिलाओं से कहना चाहूँगा कि आप स्वस्थ रहेंगी तो आपका परिवार भी स्वस्थ रहेगा और खुशहाल रहेगा। आप खुद सोचिए कि एक माँ अगर थकी होगी तो बच्चे की देखभाल कैसे करेगी। खेत में काम करने वाली महिला अगर चक्कर खाकर गिर जाए तो फसल कैसे काटेगी। अपना ध्यान आपको खुद ही रखना है।
2: बिल्कुल सही कहा भैया। तो श्रोताओं, सुना आपने, संतुलित भोजन, नियमित रूप से आयरन व फोलिक एसिड की गोलियां, समय समय पर कीड़ा मारने की दवा, किसी भी संक्रमण का इलाज और कोई भी एनीमिया के लक्षण दिखाई देने पर स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानना ही आपको एनीमिया के दुष्परिणामों से बचा सकेगा।
3: बिल्कुल, सेहत है तो सब कुछ है और इसकी शुरुआत होती है सही खून से।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि हम फिर आएंगे सेहत से जुड़ी नई जानकारी और सुझावों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए, खून बढ़ाइए, आपका स्वास्थ्य ही आपकी ताकत है। तो साफ है कि जानकारी, जागरूकता और सही इलाज से एनीमिया को हराया जा सकता है।
3: बिल्कुल अदनान जी, और इस लड़ाई में हम सबका साथ जरूरी है, घर में, स्कूल में, पंचायत में और पूरे समाज में।
2: बिल्कुल सही कहा आपने। सो बहुत बहुत धन्यवाद सेहतिया सिंह जी भैया। और दोस्तों, सेहत से जुड़ी ऐसी ही जरूरी बातों के लिए सुनते रहिए सेहत सही लाभ कई। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और दूसरों को भी जागरूक बनाइए। तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का। सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे। अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
2: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
1: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
2: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
1: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
2: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
1: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें।
2: तो सुनना ना भूलें, 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।
3: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
4: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
5: सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
6: सत श्री अकाल दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता
7: और मैं हूँ आरजे अंशिका।
6: तो फटाफट शुरू करते हैं आपके बेहद पसंदीदा शो को, जिसका नाम है
7: सुन सहेली।
6: और बिल्कुल सुन सहेली में आ गए हैं प्यारे से दोपहर, क्योंकि बारिश हुई है और इस बारिश का कारण भी बताऊंगी कि ये बारिश को क्या कहते हैं, और अगर धूप है, बारिश है, तो उसका कारण भी क्या होता है, वो मैं सब बताऊंगी। लेकिन उसके पहले आइए इस धूप को विश कर देते हैं दोनों एक साथ एक ही फ्रेम में।
7: शुभ दोपहरिया। शुभ दोपहरिया लिसनर्स, और मौसम है बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि हम दोनों भी हैं मस्त मस्त और मस्त, और आज बहुत खुश भी हैं, और आज खुशी का एक राज भी है। अब आप सोच रहे होंगे कि हमारी खुशी का राज क्या है, तो बता दिया जाए। बता देंगे। अभी तो सुन सहेली की सिर्फ शुरुआत हुई है, यानी कि सहेलियों की गपशप की अभी तो सिर्फ और सिर्फ शुरुआत हुई है। अभी तो हमने बातें करना सिर्फ शुरू ही किया है। सो बातों की जब शुरुआत कर ही दी है, तो आपको ये भी बता देंगे कि हम इतने खुश क्यों हैं, हमारी खुशी का क्या राज है, हम आज क्या महसूस कर रहे हैं, ये सब बताएंगे आपको। और बताएंगे भी क्यों नहीं, क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की बातें अगर दोस्तों से नहीं कहेंगे तो फिर किससे ही कहेंगे।
6: तो सबसे पहले तो बता दूं कि आप लोगों ने, जो लोग एस्ट्रोलॉजी में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, थोड़ा थोड़ा हम भी रखते हैं अंशिका, ज्यादा नहीं रखते, लेकिन हाँ थोड़ा थोड़ा रखती हूँ। तो आज की और कल की डेट में कुछ ऐसा था कि एक ऐसा पक्षी होता है जो स्वाति नक्षत्र की बूंदों को ही वो लेता है, मतलब कि वो पीता है, ग्रहण करता है, और जिसके बाद में एक बूंद उनके उसके मुंह में रह जाती है और वो मोती बन जाता है। तो ये जो बारिश हुई ना, जो कल बारिश हुई थी 1 बजे के अंदर और जो आज हुई है
7: जी,
6: ये स्वाति नक्षत्र की ही बरसात थी। और कहा जाता है कि अगर इस बारिश में आप हल्की सी भी बूंदे अगर आपके ऊपर पड़ गई ना, या फिर अगर नहीं भी पड़ी, अगर आपने इस बारिश को होते हुए भी देखा, तो आप अपने लिए, आप किसी अपने लिए और आप किसी अपने लिए, किसी के लिए भी आप विश मांग सकते हैं एंड विश वो पूरी होती है, ऐसा एस्ट्रोलॉजिस्ट ने मैंने सुना है। एंड ये 3 साल में एक बार बारिश होती है और अब 2029 में आई थिंक ये बारिश होने वाली है, ये स्वाति नक्षत्र वाली।
7: ओके, तो मतलब आज तो फिर बहुत अच्छा हुआ क्योंकि जब मैं आ रही थी मैम स्टूडियो तो बारिश हो रही थी और मैं थोड़ा भीग भी गई।
6: भीगी ना?
7: भीगी आज।
6: और लोग आज के दिन ना जानबूझ के भीगते हैं, चाहे उन्हें वायरल क्यों ना हो जाए लेकिन भीगते जरूर है, पर इतना नहीं भीगना, नहाना नहीं,
7: थोड़ा सा भीगी,
6: हल्की सी बूंदे अपनी बॉडी पे इसको लेना चाहिए। तो ये आज का दिन बहुत ही अच्छा वाला है क्योंकि 15 और 16 दोनों दिन के लिए ये उसमें बताया गया था कि इस बारिश की बूंदे आपने, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि ये पूरा ग्लास भर के रखना चाहिए और फिर उसको फिल्टर करके उसको मतलब अपने घर में, पूरे घर में उसका छिड़काव करना चाहिए, पौधों में डालना चाहिए, क्योंकि ये जो स्वाति नक्षत्र का पानी होता है ये बहुत ही शुभ माना जाता है। अपने मंदिर में कहीं पर रख दें आप ग्लास भर करके, ऐसा सुना है, बट मैंने ये चीज़ तो खैर नहीं करी, बट हाँ मैं भीगी आज जरूर थोड़ा सा। और मेरे साथ कुछ मेरी बहुत ही प्यारी सी स्टूडेंट्स थी, मैंने उनको भी बोला कि चलो भीगते थोड़ा थोड़ा, और हम लोग भीगे और देखते हैं विश पूरी होती है कि नहीं।
7: तो भाई ये तो देखना है हमें कि मैम की और हमारी दोनों की ही विश पूरी होती है या नहीं। खैर ये तो भविष्य की बात है, विश पूरी होगी तो हमें पता ही चल जाएगा। तो फिलहाल चलिए चलते हैं हमारे सबसे पहले वाले सेगमेंट की तरफ, क्योंकि आज का ये दिन बहुत ही प्यारा सा वेनसडे यानी कि हमारा विमेन सेंट्रिक डे।
6: और विमेन सेंट्रिक के दिन पोयम भी हमारी एक महिलाओं के ऊपर ही होती है, उन्हीं को आश्रित होती है। हालांकि हर दिन महिलाओं को समर्पित होना चाहिए क्योंकि कहा जाता है कि घर जो होता है वो महिलाओं से ही सुशोभित होता है। तो चलिए फटाफट देर नहीं करते हुए पोयम शुरू करते हैं।
7: वो मकान को घर बनाती है, वो मकान को घर बनाती है, उसे सजाती है, उसे सवारती है, उसका एक अलग ही रूप निखारती है
6: जी।
7: तो आइए आज करते हैं उसी की बात, इस प्यारी सी पोयम के साथ, करते हैं एक नई शुरुआत आपकी अपनी आरजे समता के साथ।
6: ओके, तो शुरू करें आज की जो पोयम की मेन कहते हैं ना कि जो हेडलाइन है वो महिला शक्ति और गरिमा को समर्पित है, उनकी गरिमा को समर्पित है। सृष्टि का आधार है नारी, शक्ति का अवतार है, नेह समर्पण और त्याग बहता निर्मल धार है, हर रूप में उसने बिखेरा जग में पावन प्यार है, उसके बिना सूना लगता या सुंदर संसार है, कदम मिलाकर चलती रही बनकर वो अर्धांगिनी, कठिन राह को सुगम बनाती जीवन की वो संगिनी, ममता का सागर है दिल में लोरी गाती रागिनी, संकट में वो बन जाती है रणचंडी और वाहिनी, चूल्हे चौके से उठकर अब छू रही है आसमान, अपनी मेहनत के बल पर वो बना रही है पहचान, विज्ञान हो या खेल जगत हर जगह बढ़ा रही मान, गर्व से शीश झुकाता है देखकर उसका सम्मान, सहनशीलता की मूरत है फिर भी वो कमजोर नहीं, उसके जैसा धीरज वाला जग में कोई और नहीं। आज के इस पावन अवसर पर यानी आज हमारा जैसे विमेन सेंट्रिक प्रोग्राम होता है, मिलकर हम सभी उनको मान दें, महिला शक्ति को नमन करें और उनका पूरा सम्मान करें।
7: वाह, बहुत ही प्यारी सी पोयम, बहुत ही प्यारी लाइन, और वाकई सम्मान कहीं ना कहीं बहुत ज़रूरी होता है। और आज इसी से कुछ जुड़ा हुआ हमारा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ भी है जो कि मैं आपको बता देती हूँ, वो ये है कि सम्मान बिना प्यार के अधूरा होता है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई आपका सम्मान करे तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप बदले में प्यार दें। होता है ना मैम कि रिश्तों में हम सम्मान तो वैसे भी करते हैं, कोई हमारे सामने होता है तो हम कहते हैं नमस्ते और आप ठीक है कैसे हैं, लेकिन एक होता है कि हम ऊपर मन से कहते हैं और दूसरा होता है कि मन में प्यार होता है और तब रिस्पेक्ट होती है।
6: बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जहाँ पर प्यार है जहाँ प्यार नहीं है, मतलब मुझे लगता है ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं कि अगर हम किसी को भी लाइक करते हैं ना, प्यार करते हैं, वो कोई भी रिश्ता होता है, एक माँ बेटी का होता है, माँ बहन का होता है, एक बेटे और भाई का, जितने भी रिश्ते हैं, एक स्टूडेंट एंड टीचर का भी होता है, कि अगर आप हमें प्यार कर रहे हैं, अगर आप मुझे सम्मान कर रहे हैं, अगर मैं एक टीचर हूँ और अगर बच्चे हमारा सम्मान करते हैं, तो बदले में उन बच्चों के प्रति जो प्यार होता है ना, वो बाकी बच्चों से थोड़ा सा ज्यादा होता है। ऑब्वियस सी बात है कि ज्यादा होता है, क्योंकि सम्मान जो होता है ना वो आंखों से होता है, रिस्पेक्ट से होता है। क्योंकि मैं विश्वास करती हूँ अंशिका कि सम्मान वो नहीं जो आप सामने झुक करके सलाम करें और नमस्ते करें बट पीठ पीछे बिचिंग करें, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं इन सब चीज़ के खिलाफ हूँ। आपको जो भी कहना है ना आप मुझे सामने बोलो, लेकिन पीठ पीछे बुराई बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैं ये नेवर टॉलरेट, मैं बिल्कुल नहीं इसको टॉलरेट कर सकती हूँ उस चीज़ को। क्योंकि हर एक चीज़, हर एक इंसान की कुछ ना कुछ ऐसी वीक पॉइंट्स होते हैं। मेरा सबसे पहला वीक पॉइंट ये अंशिका अभी तक जानी गई हैं और काफ़ी सालों से ये करती भी आ रही हैं, वही मतलब नहीं करती आ रही हैं, गधा हम ये कह रहे हैं हाँ। नहीं करती आ रही हो, मतलब करने की कोशिश की थी पर नहीं करती
7: नहीं करती मतलब इन ऑल कि मैम मुझे फंसा के
6: बनी ओवरऑल, मतलब नहीं इसने ये सुधर गई, मतलब बहुत ही
7: सुधार दिया गया है,
6: सुधार दिया गया है और चाह करके भी नहीं, मतलब लोग इसको इतना प्रोवोक करते हैं ना तब भी ये नहीं बोलती। और अब सुनने को ये मिलता है कि समता मैम ने इसको इतना डरा के रखा है कि पीठ पीछे भी कुछ नहीं बोलती है, बट ऐसा हाँ। नहीं, ये सम्मान है, ये प्यार है हम एक दूसरे के प्रति की, ये प्यार और सम्मान हमेशा से बना रहे। तो चले अंशिका
7: जी, तो आइए इन्हीं प्यारी प्यारी बातों के साथ चलते हैं लिस्नर्स, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, बस यू गए और यू आए। स्टे ट्यून्ड।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत

0: सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838288386।
1: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं NVO की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही 10 प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: गोंडा शहर की धड़कन।
5: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
6: गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
7: और मैं हूँ RJ अंशिका।
6: इतना खुश हो गई है कि अब इनसे हम इनकी जान भी मांग लेंगे तो ये दे देंगे एक छोटी
7: खुशी
6: सी
7: खुशी
6: एक छोटी सी बात के लिए बहुत ज्यादा खुश हो गई। हाँ जी गीता जी, मुझे याद है और आपने मैसेज कर दिया तो और भी पक्की वाली याद हो गई। वेलकम बैक RK जी, महेंद्र जी, गीता जी और हरिश्चंद, सविता जी, अरविंद जी। तो चलिए फटाफट अभी हम एक लिंक लेंगे, यानी एक हम आपको टॉपिक बताएंगे और उस ब्रेक के बाद, यानी इस ब्रेक के बाद हम सीधे गाना सुनेंगे। किसका? गीता जी का।
7: बिल्कुल। तो आइए लिसनर्स, हर दिन हम आपको महिलाओं से जुड़ी हुई कोई डिसीज बताते हैं, कोई मेंटल डिसऑर्डर बताते हैं या कोई हेल्थ प्रॉब्लम। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं वो कोई डिसीज नहीं है, कोई हेल्थ प्रॉब्लम नहीं है, बस वो छोटे छोटे इश्यूज हैं जो हमें अपनी डेली लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहला आता है कि बहुत ज़्यादा थकान होना और एनर्जी की कमी लगना। अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में जो वर्किंग वूमेंस होती हैं और जो घर में भी रहती हैं, यानी कि होम मेकर होती हैं, वो भी इसको ज़रूर फेस करती हैं। यानी कि बहुत ज़्यादा थकान लगना मतलब घर, ऑफिस, सब कुछ संभालते हुए कई बार हमें बहुत ज़्यादा थकान लगती है। मतलब ऐसे लगता है जैसे कहते हैं ना कि शरीर टूट रहा है, ऐसी थकान महसूस होती है। और इसी के साथ कई बार बोरियत भी फील होती है, यानी कि एनर्जी की कमी। यानी कि जो काम आप डेली करते हैं, आपकी डेली रूटीन में है, कई बार आप उससे बोर होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए मैम कि कोई होम मेकर है, मतलब लेडीज़ हैं, वो होम मेकर है, वो रोज़ लंच बनाती है, डिनर बनाती है, फिर सुबह का नाश्ता बनाती है, लेकिन एक टाइम आता है वो बोर होने लगती है। मतलब हम काम तो करते हैं क्योंकि वो तो हमें डेली करना ही है, लेकिन एक खुशी नहीं होती है उसमें, एक बोरियत महसूस होती है कि यार जल्दी से हो जाता, समय बीत जाता तो बहुत अच्छा था।
6: सही बात है।
7: अगर आप अपने काम के साथ ये महसूस करने लगते हैं तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एनर्जी की कमी हो रही है। ये सिम्टम्स होते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी कम हो रही है, क्योंकि जब एनर्जी कम होती है तभी हम मेंटली खुश नहीं रह पाते। और एनर्जी कम होने के कई सारे कारण होते हैं, जैसे कि मान लीजिए घर पे कोई ऐसी बात हुई जो आपको नेगेटिव लगी हो, या सुबह सुबह कोई नेगेटिव इंसान ही मिल गया हो आपको। ऐसा भी होता है,
6: या तो चेहरा दिख जाए
7: सुबह सुबह कहीं भी। कई बार घर से निकलते वक्त होता है कि आप घर से निकल रहे हो और पीछे से किसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो चुभ गई बात, या नहीं भी हम चाहते थे कि ध्यान दें पर ध्यान चला गया। वो नेगेटिविटी अगर आप लेकर चलते हैं तो आपको डेली रूटीन में बोरियत महसूस होती है। लेकिन कई बार ये शरीर में एनर्जी की कमी से भी हो सकता है। दूसरी प्रॉब्लम आती है कि कई बार हम अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते, यानी कि भावनाओं पे कंट्रोल नहीं रख पाते। भावनाओं पे कंट्रोल न रखने का मतलब होता है कि जैसे जब भावनाओं पे कंट्रोल रखने की बात आती है मैम, तो हम सबसे पहले किस पॉइंट पे जाते हैं कि गुस्सा बहुत आता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। भावनाओं पे कंट्रोल रखने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ गुस्सा कंट्रोल करेंगे। अगर किसी पे गुस्सा आ रहा है तो हम मन को ये रखेंगे कि नहीं नहीं मुझे गुस्सा नहीं करना, बाकी फीलिंग्स भी आपको कंट्रोल करनी पड़ती हैं। जैसे कि कई बार किसी को लेकर के, जैसे कहते हैं ना, कोई कोई इंसान बहुत ज़्यादा उतावला होता है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा एनर्जी उसमें आ जाती है। जैसे मान लीजिए हमें किसी से मिलने जाना है तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी वो करते हैं, अरे जल्दी करो, 5 मिनट क्यों बचा है, 5 मिनट पहले पहुंच जाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलो जल्दी जाना है, मतलब पूरी हड़बड़। तो वो भी अच्छी नहीं है, आपको वो भी कंट्रोल करना है। माना कि आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है, हर किसी को एक्साइटमेंट होती है जब हम कहीं बाहर जाते हैं, लेकिन ज्यादा उतावला होना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट करता है और आपका काम भी सही तरीके से नहीं होता है। और तीसरी और सबसे मेन प्रॉब्लम जो कहीं ना कहीं महिलाओं को सबसे ज़्यादा फील करनी पड़ती है, महसूस करनी पड़ती है, चाहे वो लड़कियां हो या फिर होम मेकर हो या ऑफिस वूमेन हो जो ऑफिस में काम करती हैं, होता है कि कई बार जो काम हमें बहुत ज़्यादा खुशी देते हैं हमारा उन्हीं में मन नहीं लगता है। मन न लगने का सेंस ये है कि आपको करने का मन तो है, आप करना चाहते हैं, पहले जैसे मैम एक ये होता है कि पहले हमें पेंटिंग बहुत पसंद थी, लेकिन अब हम पेंटिंग करते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
6: हाँ।
7: तो जब ऐसा आपको महसूस होता है तो इसका मतलब है, ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर है जो आप इग्नोर कर रहे हैं। और सबसे पहला पॉइंट यही है कि इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। और चौथी और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो कि हमारी हेल्थ को सबसे ज़्यादा ख़राब करती है, और वो होती है भूख ना लगना और नींद ना आना। नींद ना आना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपको नींद नहीं आती है, इट मींस कि वो सीधा सीधा मेंटल डिसऑर्डर की तरफ ले जाता है। और एक सामान्य इंसान को अपनी एज के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें,
6: मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि एज के हिसाब से कितना सोना।
7: हाँ, एज के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अगर आप बात करेंगे 6 साल से लेकर के और 15, 16, 17 साल के बच्चे तक की, तो जो कि उनकी ग्रोइंग एज होती है इसलिए उन्हें फुल नींद आती है। फुल नींद का मतलब होता है, ज़रूरी नहीं है कि वो 8 घंटे 7 घंटे सोएंगे, वो 9 घंटे भी सो सकते हैं, वो 10 घंटे भी सो सकते हैं। और बच्चों के साथ कई बार ऐसा होता है कि वो दिन में थोड़ा थोड़ा सोते हैं, जैसे मान लीजिए दोपहर आए लेट गए, फिर उठे, फिर शाम को थोड़ी सुस्ती लगी, खेल कर आए, फिर लेट गए। तो हम कहते हैं कि बच्चा बार बार सो क्यों रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं है कि बीमार हो रहा है, बट ऐसा नहीं है, जो कि उनकी ग्रोइंग एज होती है इसलिए उनके साथ ये होना स्वाभाविक है कि उनको 9 घंटे 10 घंटे की नींद आएगी और वो दिन में कई बार सोएंगे। अब बात करते हैं यंगस्टर्स की। यंगस्टर यानी कि 25 साल से लेकर कर अगर हम बात करें 40 तक की, तो उनको जो नींद आती है वो एक आती है सिर्फ वो 6 घंटे या 7 घंटे सोते हैं
6: 24 घंटे में।
7: जी मैम, सिर्फ 6-7 घंटे सोते हैं। और वो क्यों होती है, क्योंकि
6: यंग के लिए पर्याप्त कितनी होती है?
7: मैम, पर्याप्त तो ये है कि 7 से 8 घंटे आपको सोना ही सोना चाहिए,
6: 7-8 घंटे।
7: लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि उनकी एक एज बहुत भागम भाग वाली एज होती है, और उसमें वो काम ज्यादा करते हैं, तो काम का, यंगस्टर है तो कॉलेज का, इन सब का स्ट्रेस होता है, जिनकी वजह से उनकी नींद में थोड़ा बहुत फेरबदल हो जाता है। अब आते हैं 40 to 60, 70, 80, जब इस एज में पहुंचते हैं तो कैसी नींद आनी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि इस एज में जो लोग होते हैं, यानी कि 40 से लेकर के 80, 60, 70, तो उनकी जो कि हम कहते हैं ना कि थोड़ी ढलती उम्र कहीं ना कहीं होती है, उस वजह से उन्हें नींद कम आती है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी एज में अगर आप ठीक से 5 घंटे भी सो लेते हैं ना, इट मीन्स कि आप हेल्दी हैं। 40 to 60, 70, 80, अगर आपको 5 घंटे की अच्छी नींद आती है, अच्छी नींद का मतलब है कि हम सो रहे हैं और आराम से सो रहे हैं,
6: गहरी नींद,
7: बार बार आप रात को उठ नहीं रहे हैं और आप 5 घंटे भी सो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी एज के अकॉर्डिंग फिट हैं। और वैसे तो WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से ये कहा जाता है कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद प्रॉपर आनी ही चाहिए, चाहे जो भी एज हो,
6: चाहे आप जितने बजे भी सोएं।
7: हाँ, जितने बजे भी सोएं। लेकिन एज के अकॉर्डिंग अगर हम इसको डिवाइड करें तो 5 घंटे 7 घंटे 8 घंटे 10 घंटे इस टाइप से आपको सोना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ अच्छी रहे। दूसरी चीज होती है भूख ना लगना। भूख ना लगने का भी एक सेगमेंट होता है कि अगर हम बच्चों की बात करें तो आजकल मैम बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती है, उसका कारण ये है कि उनका झुकाव जंक फूड की तरफ होता है, कि आप घर के दाल चावल रोटी सब्जी देंगे तो वो उन्हें नहीं खाने हैं, लेकिन अगर हम पैकेट फूड दे दे रहे हैं, चाउमीन दे दे रहे हैं, तो वो उन्हें खाने हैं, जिससे भूख कम हो जाती है। अब आते हैं कि यंगस्टर्स को भूख कम क्यों लगती है। तो यंगस्टर्स को भूख कम लगती है, उसका सबसे बड़ा कारण होता है उनकी एंजाइटी, वर्क प्रेशर, अगर आप स्टूडेंट हैं तो कॉलेज प्रेशर, कहीं काम कर रहे हैं तो हमारे सिर पे एक ये होता है ना कि वर्कलोड होता है कि हमें इतना काम इतने टाइम पीरियड में करके देना है, तो उस एंजाइटी की वजह से कई बार वो अपनी भूख को इग्नोर करते हैं। भूख लगी होती है लेकिन अरे चलो बाद में खाएंगे, पहले ये कर रहे हैं ये कर लेते हैं।

0: बच्चियां जो होती हैं, तो उनके लिए भी ये चीजें होती हैं कि किस तरीके से उन्हें भूख नहीं लगती। लेकिन भूख लगने के लिए, मतलब अगर आप खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये चीज होती है कि आप कुछ टिप्स ऐसी होती हैं जिनकी वजह से हमें भूख लगने लगती है। और उसमें सबसे मेन होता है कि खाने को देखना चाहिए। ये लोगों को थोड़ा सा मैम कॉमेडी लगता है कि क्या हम थाली सजा के बैठे हैं तो हम खाने को देखेंगे, लेकिन ये होता है कि अगर आप देखेंगे मतलब उसे, तो आपको भूख का एहसास होगा कि हाँ मुझे खाना चाहिए। ये चीज होती है
1: जी। तो बाकी और भी जानकारी लेंगे, लेकिन अभी गीता जी का एक गाना जो कि कल से बोल रही हैं हमको सुनना है, तो आई थिंक सुना देना चाहिए अंशिका।
0: बिल्कुल, तो आइए लिसनर्स सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग, एंजॉय कर लेते हैं। बस यूं गए और यूं आए। स्टे ट्यून्ड।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं KNVU की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान, पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व KNVU द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
3: 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।
5: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी RJ समता, यानी मैं हूँ आपकी RJ समता
6: और मैं हूँ RJ अंशिका।
5: तो भाई आज नेक्स्ट टॉपिक हमारा बहुत ही संगीन होने वाला है। जो संगीन का हम उसको ले सकते हैं, मतलब कि जब काफी औरतें, जो कि विमेंस को लगता है कि हमारे हाथ में पैसा होना चाहिए, हर किसी को लगता है, हर किसी की पॉकेट मनी की इच्छा होती है। क्यों अंशिका, तुम्हारी भी होती होगी?
6: मेरी भी होती है
5: ना, हर एक औरत की होती है, हर एक लड़की की होती है कि उसके हाथ में कुछ इतने पैसे हो जाएं जो अपनी मनचाही चीजों को बिना किसी की रोक टोक के वो फटाफट ले सके, है ना। तो इसके लिए जरूरी है कि वो बाहर निकल करके काम करे, किसी कंपनी में जाके जॉब करे, किसी स्कूल में जाके जॉब करे, किसी के कहीं पे भी कोई जाके जॉब करे। ऐसा क्या जरूरी है? नहीं ना, नहीं। तो आज हम वही बताने वाले हैं कि घर बैठे मल्टीमीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से किस तरीके से हम अपना अर्न कर सकते हैं और हमारे हाथ में कुछ पैसे आ सकते हैं।
6: बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स हमारे पास हैं जिन पर भी कि हम आपसे बात करेंगे कि ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जो हम घर बैठे कर सकते हैं और उनसे कमाई भी हो सकती
5: है। बिल्कुल, तो पॉइंट है कि सबसे पहला पॉइंट है कि रिलीजिंग बिजनेस, आजकल जो होता है वो बिना पैसा कमाए, बिना पैसा लगाए या बहुत कम कहते हैं उसको निवेश में बिजनेस शुरू करने वाला सबसे अच्छा एक तरीका है। क्या करना है बताती हूँ। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज आजकल चल रही हैं, मीशो है, ग्लो रोड है, सुपी है, इसमें प्लेटफॉर्म पर जो कि है ना रिलेजर्स बन सकती हैं। वहाँ मौजूद कपड़ों को, ज्वेलरी को, होम डेकोरेट के प्रोडक्ट्स के लिंक्स को अपने व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर शेयर करना होता है। उसके आगे का प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम इस चीज़ को अपने छोटे से व्यवसाय से, छोटी छोटी चीज़ों से, आप छोटे छोटे स्टेप से आप इसको काम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या करना है, करना ये है कि आप अपने जो कि आपके रिलेटिव हैं, 5-10 जो भी हैं आपके, उनका एक छोटा सा ग्रुप बनाइए। उस ग्रुप में ये लिंक्स को भेजें। उससे क्या होगा कि आपके पास ऑर्डर आना शुरू हो जाएगा और उसी ऑर्डर से आप मनचाहा पैसा, मतलब बहुत ही कम कहते निवेश में और बहुत ही कम खपत में, बहुत ही कम लागत में आप अपने इस बिजनेस को लगा सकते हैं। कमाई कैसे शुरू होगी? प्रोडक्ट्स की असली कीमत पर आप अपना मुनाफा यानी कि मार्जिन जोड़कर बेचती हैं। ऑर्डर मिलने पर कंपनी खुद सामान डिलीवर करती है और आपका मुनाफा सीधे आपके बैंक अकाउंट में जाता है। यानी आपका हाथ पैर भी गंदा नहीं होगा, आपको कहीं जाना भी नहीं पड़ेगा, एंड जो कंपनी आपको हायर करेगी उसी के माध्यम से आपके अकाउंट्स में पैसा ये आने लगेगा जो भी आपने इसमें मार्जिन कर आप लोग करते हैं। सेकंड पॉइंट इज कि सोशल मीडिया मैनेजर, यानी कि छोटे बिजनेस डॉक्टर्स, ब्यूटी पार्लर ओनर्स या लोकल ब्रांड्स को अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब हैंड्स को संभालने के लिए काफ़ी लोगों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले क्या करना है, मोबाइल का इस्तेमाल करके उनके पेज पर पोस्ट डालना है, रील्स अपलोड करना है और अपने आने वाले मैसेजेस या कमेंट्स को जवाब देना है। इसके लिए आप ऐसे आसान से कोई भी बैनर बना करके इससे आप सीख सकती हैं।
6: बिल्कुल, अब आइए बताते हैं कि इससे कमाई कैसे होती है। तो घर बैठे 2 से 3 अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट्स को संभाल रहे हैं तो इसके लिए हर क्लाइंट पे आपको प्रति माह के हिसाब से एक अच्छी फीस मिल सकती है। अब आती है थर्ड पे, जो कि होता है थर्ड हमारा जो है वो है, अगर आपकी आवाज़ अच्छी है और आपका जो प्रोनाउंसिएशन है वो साफ है। प्रोनाउंसिएशन साफ होने का मतलब होता है कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों के वर्ड साफ और अच्छी तरह बोल सकते हैं। आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि हिंदी तो बहुत अच्छी होती है मैम,
5: पर इंग्लिश के प्रोनाउंस गलत होते हैं,
6: थोड़े फंसते हैं कुछ शब्द। लेकिन अगर आपके नहीं फंसते हैं, आप अच्छे से बोल लेते हैं, तो आपके लिए जो अब मैं बताने जा रही हूँ वो सबसे बेस्ट है, जो कि होता है वॉइस ओवर असिस्टेंट। यानी कि यूट्यूब वीडियो हो, बच्चों की कहानियां हो, या कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो आजकल एड्स आती हैं, वो सभी ई लर्निंग हो गई हैं। ई लर्निंग ऑडियो का मतलब होता है कि आप जब यूट्यूब कोई वीडियो देखते हैं तो उसमें पिक्चर्स आ रही होती हैं और पीछे से उस टॉपिक पे किसी की आवाज़ में वो पूरा एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां होती हैं जिन्हें वॉइस ओवर आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है।
5: एग्जैक्टली, और मुझे लग रहा है कि अंशिका हम लोगों ने इसकी ट्रेनिंग की हुई है ओवर ये वॉइस ओवर की, कि कई बार ऐसे होता है कि हम लोगों की आवाज़ को कहीं पर यूज़ किया जाता है, तो ये बहुत ही अच्छा वाला प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपकी आवाज़ को आपका बिना चेहरा दिखाए हुए यूज किया जाता है।
6: बिल्कुल, और जैसे कि बहुत लोगों को ये होता है मैम, अब तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ घरों में होता है कि सोशल मीडिया की वजह से ये कहा जाता है कि आपको फेस नहीं रिवील करना है। लेकिन इसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि सिर्फ हमारी आवाज़ जाती है, और मैं बता दूं कि इससे कमाई जो होती है वो अगर आपके वीडियोज़ अच्छे जाने लगे, मतलब अगर लोग पसंद करने लगे, तो यूट्यूब पर और बाकी सारे प्लेटफॉर्म्स पर भी इसकी एक अच्छी, मतलब कहीं ना कहीं हम कह लें कि 25,000-30,000 रुपये पर मंथ मिलने लगते हैं अगर आपकी उसको पसंद किया जाए तो। सो ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हर महिला को कोशिश करनी चाहिए।
5: बिल्कुल।
6: अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जो कि हमारी महिलाओं का बहुत फेवरेट काम है ये। अगर आप ये करने के लिए कहेंगे तो मुझे लगता है कोई महिला इनकार नहीं करने
5: वाली।
6: नहीं,
5: बातें
6: और थोड़ा सा आगे,
5: मेकअप मेकअप
6: पहुंच गई
5: है। तीनों चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को बहुत पसंद है, शॉपिंग, बातें और मेकअप।
6: बिल्कुल, ये मेकअप से ही जुड़ा हुआ है कि होममेड हाइजीन प्रोडक्ट्स। यानी कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना अकाउंट बना सकते हैं और होममेड हाइजीन प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं। आजकल हमने देखा होगा कि बहुत सारी केमिकल वाली क्रीम्स होती हैं या ब्यूटी प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको महिलाएं इस्तेमाल नहीं करना चाहती हैं। उनके मन में कहीं ना कहीं शंका होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं ये क्रीम लगाऊं और मुझे कुछ इसका साइड इफेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आप होममेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं तो उसमें भीड़ लग जाती है कि नहीं मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और होममेड बनाया है इसका मतलब है कि हमें कोई भी उससे खतरा नहीं है और होममेड चीजों में
5: सेफ जोन में रहती हैं और उनको लगता है कि हाँ ये इसका साइड इफेक्ट नहीं होगा और वो निश्चिंत होकर के उसको आपसे क्या कहते हैं कि सेल भी करती हैं, वो ले भी लेती हैं।
6: बिल्कुल सही कहा मैम ने। अब आते हैं फिफ्थ पॉइंट पे, जो कि बहुत अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट हमारा ये है कि अगर आप लिखते अच्छा हैं, आपको लिखने का
5: जो मैंने इसको हमेशा से कहा है कि अपनी एक डायरी बनाओ, इसने अभी तक मेरी बात को लाइटली लिया है, कभी इस बात को ये कभी भी गंभीर रूप में नहीं लेती है हमारी बात को। क्या तुमने डायरी बनाई है?
6: अब तो मैं आपको डायरी दिखाऊंगी कि मेरे पास है।
5: ठीक है,
6: मैंने डायरी बनाई है क्योंकि मैं बता दूं आपको कि मुझे लिखने का जो शौक है, जो कभी कभी मैं लाइंस बोलती हूं,
5: बहुत अच्छा लिखती है,
6: बहुत अच्छा मैं लिखती हूं, तो वो मुझे अभी से नहीं है, मुझे जब मैं थोड़ी बड़ी हुई थी तभी से शौक था। तो मेरे पास 2 रफ रखी हुई है जो पूरी भरी हुई है।
5: तो वो डायरी में कब कन्वर्ट होंगे?
6: मैम जल्दी ही कन्वर्ट होंगे।
5: तो तुमने अभी तुमने कहा कि अब तो डायरी दिखानी पड़ेगी, यानी तुमने लद्दी क्या कहते हैं रद्दी वाली जो रफ में तुमने लिख के रखी है। मैंने आपसे कहा था कि मैं उसको पब्लिश कराऊंगी, तब भी आपने नहीं उस बात को सुना।
6: मेरे पास अच्छी रजिस्टर में है, मैं आपको दिखाऊंगी।
5: ठीक है,
6: तो मेरे पास है। कहने का मतलब ये है कि हमारी तो ये बातें यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन आजकल क्या होता है कि सोशल मीडिया पे, जैसे अभी मैम ने बोला डायरी में लिखो, सोशल मीडिया पे होता है कि ब्लॉग्स में बहुत पसंद किए जाते हैं, या कुछ लोग मैम अपनी आवाज़ में उसको बोल करके, रिकॉर्ड करके और फिर उसमें म्यूजिक वगैरह करके आजकल डालते हैं अपने थॉट्स को।
5: आशु जी, हम तो कोई क्रीम लगाते ही नहीं है, हम केवल मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वो भी कभी क्या कहते हैं आयुर का जो क्लिजन मिल्क आ जाता है, मैं तो वही यूज़ करती हूँ ऑल टाइम, हमेशा से, बस सुबह नहा करके वही लगा दिया और पूरा टाइम पूरा दिन बस वही लगा रहता है। एंड अंशिका क्या लगाती है? आई डोंट नो क्या लगाती है, क्योंकि अंशिका पूछा गया है कि आप दोनों कौन सा क्रीम लगाती हैं।
6: मैं अगर बता दूं तो मैं जो क्रीम अपने डेली रूटीन में यूज करती हूं, तो मैं ज्यादातर बहुत मतलब जो वो वाली होती है ना, थोड़ी मेडिकेटेड वाली होती है, वही यूज करती हूं।
5: और मैंने तो आपको बता दिया कि आयुर का जो क्लींजिंग मिल्क आता है वो सदियों से चला आ रहा है, अभी का नहीं है क्लींजिंग मिल्क, क्योंकि वो हर स्किन टाइप के लिए यूज होता है और मेरी स्किन थोड़ी सी सेंसिटिव भी है, तो मुझे और जल्दी कुछ सूट भी नहीं करता है, बस वही लगाती हूँ। और सनस्क्रीन कभी कभी लगा लेती हूँ, कभी मन होता है तो लगा ले, क्योंकि उससे स्किन मेरी डार्क हो जाती है। तो अच्छा वाला, अच्छी वाली ब्रांड का आप लिया है तो उससे स्किन मेरी बहुत बची रहती है, क्योंकि धूप में आना जाना होता है, तो बस हम लोग यही यूज़ करते हैं, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं। बाकी होममेड्स तो आपको पता ही है कि हम लोग, मेरा सबसे अच्छा फेवरेट गुलाब जल और एलोवेरा जेल, और उसमें क्या कहते हैं विटामिन ई कैप्सूल, तो ये सारी रेमेडीज तो हम लोग घर पे अपने ऊपर करते ही रहते हैं।
6: बिल्कुल, तो आइए बात करते हैं, चूँकि हम आपको पॉइंट बता रहे थे कि आर्टिकल्स जो लोग लिखते हैं, देखिए जैसे नॉर्मल कविता जो मैं लिखती हूँ और जो आप आर्टिकल लिखते हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है, क्योंकि आर्टिकल्स में हमारी बातें होती हैं, उसमें पोइट्री नहीं होती है। इसलिए आर्टिकल्स वगैरह जिन्हें भी लिखने का शौक़ है, वो कंटेंट राइटिंग में सोशल मीडिया पर अपना एक अकाउंट बनाइए और अपनी आप पेजेस डालिए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कई सारे जो न्यूज़पेपर्स होते हैं और भी प्लेटफॉर्म्स के लोग होते हैं वो उसे पसंद करते हैं, और हो सकता है कि आपको उसमें कोई अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिल जाए।
5: तो भाई घर बैठे अगर सोशल मीडिया पे आपको अपना एक प्लेटफॉर्म बनाना है, अपनी एक स्पेस बनानी है, एक पेज बनाना है, तो ज़रूर से हमारी कही भी बातों पर गौर करिएगा और अपने लिए कुछ अच्छा सोचने और आगे बढ़ने के लिए ज़रूर विचार करिएगा। चलिए तो अब गाने का टाइम हो गया है, सुन लेते हैं गाना।
6: तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुन लेते हैं, इन्जॉय कर लेते हैं। स्टे ट्यून्ड।

छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जोकर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840339584। अब सपने होंगे साकार।

0: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
2: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद RJ समता एंड RJ अंशिका।

0: देती है कि जैसे नहीं वो एक शहंशाह बैठा होता है अपनी सीट पे और उसको अपने पति को कहता है ना बोलो वही वाला ही हमको ये क्या ये क्या होता है। वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आर्जे समता, यानी मैं हूँ आपकी आर्जे समता
1: और मैं हूँ आर्जे अंशिका।
0: तो फटाफट शुरू करते हैं आज के नेक्स्ट टॉपिक पर।
1: बिल्कुल, तो आइए आ जाते हैं टॉपिक पर, क्योंकि क्या होता है ना कि कई बार जो है वो यथा स्थिति में रहने में ही अच्छी बात होती है।
0: हम भी
1: तो चलिए, जब कही दिया वजीर बेगम बादशाह,
0: तो बादशाह जैसे बादशाह लोग नहीं करते अपने वजीर को हाँ वजीर बोलो,
1: नहीं वो नहीं था मैम,
0: आप गलत, क्या था
1: तो वो तो ये था कि मतलब
0: अरे वही
1: वही वही वही
0: तुम जोक को जोक क्यों नहीं लेती हो, तुम जोक की
1: ये जोक था।
0: चलो
1: फिलहाल हम ये जोक और ये सारी चीजें करते रहेंगे और डाइवर्जन से फिर हम डाइवर्ट करके अपनी जो यथा स्थिति है उस पर भी आते रहेंगे, आपको लेकर के आते हैं, क्योंकि अब हम जो बताने वाले हैं वो महिलाओं की कहीं ना कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है बट एक सिचुएशन होती है। और वो सिचुएशन क्या होती है ना कि हमारी महिलाएं जो होती हैं वो कई बार कहीं ना कहीं इमोशनली जो होता है वो वीक नहीं कहेंगे हम, क्योंकि वीक नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, लेकिन इमोशनली कुछ चीज़ों से इतनी ज़्यादा अटैच हो जाती है कि उससे दूर होने में फिर उन्हें प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। तो ये प्रॉब्लम शुरू कहाँ से होती है ये भी बताएंगे और कुछ पॉइंट्स कि कैसे आप इसे कम कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते। सबसे पहले आते हैं कि शुरू कहाँ से होती है
0: जी।
1: तो ये शुरू तब होती है जब जैसे हम इसमें ये नहीं लेंगे कि किसी इंसान से किसी चीज़ से, कई बार होता है कि अगर घर में आपने पेट्स भी रखे हुए हैं तो हम उनसे भी अटैच हो जाते हैं।
0: एक मिनट, मिश्रा जी कोई हैं वो बोल रहे हैं कि मैम म्यूजिक कम कर लो, आपकी आवाज़ ठीक से नहीं आ रही। ओके आप देखिए आ रही है ना ठीक से, प्लीज़ लिसनर्स आप सभी बताएं कि हमारी आवाज़ प्रॉपर ठीक से आ रही है कि नहीं आ रही है। जी
1: तो हम यहाँ इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर लेंगे और आप सभी प्लीज़ इसे एक एग्जाम्पल समझिएगा कि जब हमारे घर में कोई पेट्स होते हैं मैम, चाहे पैरट हो चाहे डॉग हो या कोई भी हो, तो हम इमोशनली उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं। हमें लगता है चोट नहीं लगनी चाहिए, कहीं गिरना नहीं चाहिए, प्रॉपर खाना मिलना चाहिए, प्रॉपर उसको सारी ट्रीटमेंट्स मिलनी चाहिए, कहीं ना कहीं एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाती है। ये इमोशनल अटैचमेंट है कि हम ख्याल रखते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट तब शुरू हो जाती है जब आप एक मिनट भी छोड़ नहीं सकते। जैसे कुछ लोगों को आपने देखा होगा ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं कि हम जरूरत से भी ज्यादा छोड़ नहीं सकते, अरे दो मिनट छोड़ के नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा नहीं हो गिर गया चोट लग गई। ठीक यही सिचुएशन अगर आप इसको रिवर्स कर देंगे तो कई बार ये हमारे बड़ों के साथ हो जाती है। और महिलाओं में ये ज़्यादातर तब होती है जब वो अपने रिश्तों को लेकर के ओवर सेंसिटिव कहीं ना कहीं हो जाती हैं, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाती। ओवर सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आपका बच्चा है या घर में और भी मेंबर्स हैं, ये इस तरह से लेते हैं कि हमारे मम्मी पापा ही हैं, हम उन्हें लेकर भी ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं कि मम्मी यहाँ मत जाना नहीं तो ये हो जाएगा, देख रहे हो बाहर माहौल ठीक नहीं है, या पापा ये मत करिएगा, आपको पता है ना कि आपको दिन में एक बार दो बार मेडिसिन लेनी
0: है। ये चीज़ तो हमारे अंदर भी है बच्चों को लेकर के, जैसे अभी ये वर्ड तुमने बोला ओवर प्रोटेक्टिव, तो ये वर्ड ये चीज़ें मेरे अंदर भी हैं। जैसे बच्चे कहीं जाते हैं ना, जिया कहीं जाती है ना, तो वो मतलब दिमाग में वो बातें रहती हैं कि भाई वो जल्दी से घर आ जाए, स्कूल जा रही है तो ठीक से आ जाए, मतलब ओवर थिंकिंग करना
1: जी।
0: तो क्या ये अच्छी बात है कि बुरी बात है?
1: नहीं, ये ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है। जैसे आपने अभी बताया ना कि वो जाती है तो मन में रहता है, ये सभी के साथ होता है। मतलब मैं अपने लिए भी बताऊं मैम, तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूं लेकिन फिर भी जब मैं घर से निकलती हूं तो मम्मी मुझे कहती है रास्ते में जा रही हो आराम से जाना। तो ये ओवर प्रोटेक्टिव नहीं है। लेकिन मान लीजिए कि मुझे मैं रोज 3 बजे घर जाती हूँ, ठीक है, मान लीजिए मुझे किसी काम की वजह से 4 बज गए, मुझे लेट हो गया एक दिन हल्का सा, और मतलब ओवर हो जाना, बहुत ज़्यादा सोचना अरे कहाँ चली गई इतनी देर हो गई, और बिल्कुल सर कहते हैं ना कि घर सिर पे उठा लिया, तो वो एक जो सिचुएशन आ जाती है कि हम घर पर सिर पर उठा लेते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बोलने लगते हैं कि अरे कहाँ चले गए, अपने टाइम से आना चाहिए, और बिल्कुल लापरवाह है बिल्कुल कोई, ये होता है ओवर प्रोटेक्टिव।
0: ओके,
1: ये होता है आपके रिश्तों को लेकर के आपका ओवर ऑब्सेशन कहीं ना कहीं, ये गलत है। और बाकी चिंता तो हम सभी नॉर्मली करते हैं। मेरी मम्मी अगर बाहर चली जाती हैं और उनको 6 बजे आना है, किसी के यहाँ पूजा है कुछ भी है, और 7:30 अगर बज गए या 7 बज गए 6:30 बज गए, तो मुझे चिंता होने लगती है कि बगल में गई थी इतना टाइम क्यों लगा, टाइमली आ जाना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अब मैं उस पर ओवर थिंकिंग करने लगूं, ऐसा तो नहीं रास्ते में आ रही थी कहीं कुछ हो गया, ऐसे तो नहीं एक्सीडेंट हो गया होगा, ऐसे तो नहीं ये हो गया, ये ओवर थिंकिंग है जो महिलाओं में सबसे ज़्यादा करने की आदत होती है, अपने लिए भी और अपनों के लिए भी। इसका एक पॉइंट मैं आपको और बताती हूँ, कि क्या होता है, कई बार हमें कहीं जाना हो, मान लीजिए आपको कहीं जाना है और आपको 5 दिन पहले से पता है, 6 दिन पहले से कि आपको कहीं जाना है, वो चाहे आपको कोई फंक्शन है फैमिली का या कहीं बाहर जाना है, अब हमारे मन में वो चल रहा होता है मुझे जाना है, मुझे ये काम करने है, मुझे ये काम ख़त्म करने है, वो टेंशन जो एक बनी होती है वही ओवर थिंकिंग होती है। और कुछ लोगों के अंदर होता है कि वो स्टेप बाय स्टेप करके अपना सारा काम ख़त्म कर लेते हैं और फिर खुशी खुशी जाते हैं, तो ये एक ओवर थिंकिंग होती है जो महिलाओं में ज़्यादा होती है। इसे कभी नहीं बढ़ने देना चाहिए और अपनी सोच को वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए अगर आप ओवर सोचते हैं तो।
0: ओके। तो चलिए, ये तो जो कि तो मतलब मैंने अपने आप को निश्चिंत किया कि मतलब ये बात नहीं है, मतलब मुझे लेकर के नहीं है मतलब,
1: बिल्कुल नहीं,
0: मैं जो सोच रही थी तो वैसा कुछ भी नहीं है,
1: कुछ भी नहीं है। तो आइए लिसनर्स, मुझे लगता है कि अब टाइम हो गया है, हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं और इस सॉन्ग के उस पार आएंगे, क्योंकि अभी हमारी मोटिवेशनल स्टोरी बाकी है।
0: ओके,
1: वो आपको सुनाना है। तो आइए सुनते हैं इस बहुत ही प्यारे से सॉन्ग को। स्टे ट्यून्ड।

0: आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर, तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
0: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए कैरेटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स ईदगाह के सामने पटेल नगर गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
0: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
3: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
4: वेलकम बैक दोस्तों, आ गई आपकी आरजे समता, यानी मैं हूँ आपकी आरजे समता और
5: मैं हूं आपकी आरजे अंशिका।
4: जी हाँ, तो बिल्कुल लास्ट बट नॉट लीस्ट वाले सेगमेंट पे आ गए हैं, क्योंकि आज की मॉरल स्टोरी यानी कहते हैं ना कि जब एक महिला सशक्त होती है तो उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो जाती हैं और उन्हें एक अलग राह से मिल जाती है और लोग भी उन्हें अलग अलग रूपों में देखना पसंद करते हैं। तो आइए आज ऐसी एक महिला सशक्तिकरण में सबसे ज़रूरी एक बात मैं बता दूं कि जो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ ना, जिस स्टोरी, ये बिल्कुल रियल स्टोरी है, ये स्टोरी नहीं है, ये किसी एक महिला पर उनके खुद की प्रेरणा शोध कहानी है। क्यों अंशिका?
5: बिल्कुल,
4: भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर डेसी थॉमस की कहानी हर एक महिला के लिए बेहतरीन प्रेरणा का स्रोत बन गई है। केरल के एक साधारण परिवार में जन्मी टेसी ने बचपन से ही आसमान में उड़ते रॉकेट्स को देखकर वैज्ञानिक बनने का सपना चुना था और समाज के इस रूढ़िवादी तानों को तोड़ दिया और डिफेंस और स्पेस साइंस सिर्फ पुरुषों का क्षेत्र नहीं है, इसको भी पीछे छोड़ा। अपनी कड़ी मेहनत और अटूट आत्मविश्वास के बल पर अग्निवी मिसाइल प्रोजेक्ट की डायरेक्टर बनकर इतिहास रच दिया। वाह, एक माँ, पत्नी और देश की शीर्ष वैज्ञानिक की जिम्मेदारियों को एक साथ संभालते हुए उन्होंने साबित कर दिया कि जब एक महिला अपनी मानसिक शक्ति और दृढ़ संकल्प को पहचान लेती है तो वह न केवल अपने सपनों को आसमान को छुआती है बल्कि दुनिया के सामने नेतृत्व की एक नई मिसाल भी पेश करती है। और मैं बताऊं कि भारत की मिसाइल वुमेन डॉक्टर डेसी थॉमस की, जो जैसा कि नाम आप सब सुन रहे हैं, उन्होंने अग्निवीर मिसाइल, आपको कुछ याद आ रहा है अग्निवीर मिसाइल से?
5: अग्निवीर आई थिंक वही है,
4: अग्निवीर मिसाइल, हाँ,
5: जो डॉक्टर एपीजे कलाम ने भी शायद इसमें कुछ कंट्रीब्यूट किया था, ऐसा कुछ मुझे शायद याद आ रहा है।
4: हाँ, लेकिन जो अभी एक युद्ध चल रहा था उसमें इनकी मिसाइल को छोड़ा गया था, जब कहा गया था कि याद करो कि मोदी जी को मैसेज भेजा था आतंकवादियों ने कि ये मोदी जी को मैसेज देना, जब उनके सब कश्मीर वाला जो हुआ
5: जी,
4: था
5: जी, जी, जी,
4: तो उसमें एक महिला सशक्तिकरण पे नहीं, उनकी महिलाओं के ही द्वारा बनाया गई मिसाल को उनके ऊपर छोड़ी गई
5: जी,
4: तो
5: जी,
4: ये
5: जी,
4: वही मिसाइल थी कि ये अग्निवीर मिसाइल।
5: ओके,
4: ठीक है, चलिए।
5: सो लिसनर्स, अभी आपने सुनी कहानी मिसाइल की कि कैसे उन्होंने किया, और जैसे कि मैम ने बताया कि ये कहा जाता था कि स्पेस का
4: सिंदूर ऑपरेशन, मुझे याद नहीं आ रहा था,
5: ऑपरेशन सिंदूर,
4: हाँ, ऑपरेशन सिंदूर में जो भी मिसाइल्स कहते हैं यहाँ से चलाई गई थी, उनमें से एक मिसाइल ये भी थी।
5: ओके, तो ये तो बहुत ही कहीं ना कहीं प्राउड,
4: ये सब सोचो तो कितना गर्व होता है ना कि मतलब एक महिला ने मतलब वैज्ञानिक बनी और किस तरीके से मिसाइल जैसी चीजों पर काम किया,
5: कहां से कहां मतलब एक महिला पहुंच गई है।
4: सिर्फ एक रोटी बनाने और सब्जी काटने के तक सीमित नहीं है, वो आसमान को छू सकती है जब अपने मानसिक और दृढ़ संकल्प पर काम करने लगे तो।
5: बिल्कुल,
4: इसलिए अंशिका
5: अपने मानसिक और दृढ़ संकल्पों पर
4: काम करना चाहिए। कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है,
5: हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन जहां आजकल महिलाएं इतनी बड़ी बड़ी पोस्ट पर पहुंच रही हैं, इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं, वहीं पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आज भी रूढ़िवादी सोच रखते हैं। तो अपनी सोच को बदलें, नजर बदलेंगे तो ही नजरिया बदलेगा।
4: एग्जैक्टली, नजर बदलेंगे तो नजारे बदलेंगे और नजारे बदलेंगे तो बहुत कुछ बदलेगा।
5: अच्छी अच्छी चीजें देखने को भी मिलेंगी,
4: अच्छी चीजें देखने को मिलेगी, अच्छे लोगों से मुलाकातें होंगी, आपका जीवन सुखमय और शानदार बीतेगा,
5: आनंदमय
4: बीतेगा। तो चले इसी सत्संग
5: जैसे कि फिलहाल हमारा आनंदमय बीत रहा है।
4: हाँ, तो अभी आनंदमय बीत रहा है, तो अब ज्यादा मतलब प्रवचन वाली बात हाँ। को छोड़ करके चलिए अब हम लेते हैं यहाँ पर आपसे अलविदा और मिलेंगे कल सेम प्लेस सेम टाइम पर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय
5: बाय दोस्तों।

0: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
1: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
2: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
1: पता है, सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
4: मतलब?
3: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
5: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416।

0: हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
0: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
0: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतरौला रोड पर है। और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
1: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

हाँ जी, हेलो एंड नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। घड़ी में वक्त हो चला है 3:08 बाय स्टूडियो क्लॉक, और आपने ट्यून कर लिया है गोंडा का अपना पहला एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम।

प्रोग्राम आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आपकी अपनी आरचुनती, मौजूद हूं आप सभी के साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। और प्रोग्राम चल रहा है आपका अपना गोला ट्यून गोंडा, यानी कि फरमाइशों वाला कार्यक्रम, जिसमें अपनी फरमाइशें करने के लिए आपको करना पड़ेगा कॉल 6393316429 पर। और हमारी पहली फरमाइश के साथ आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। और आज की फरमाइश हमारे पास आई है सबिया जी की, फूल मैं भेजूं पर तेरा पता मालूम नहीं है। कुमार सानू और लता जी की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए, हम मिलेंगे अगली फरमाइश को लेकर के। तो इंतजार किस बात का, अपनी फरमाइशें करते रहिए, स्टे ट्यून्ड।

आप एंजॉय कर रहे थे सबिया जी की फरमाइश को। बहुत ही प्यारा सा नगमा था, फूल मैं तुम्हें भेजूं पर तेरा पता मालूम नहीं। लता जी और कुमार सानू की आवाज़ में आपने इस बेहतरीन से नगमे को एंजॉय किया। सलाम पे सलमा पे दिल आ गया, गाने फिल्म का नाम है एक्चुअली। और इसी के साथ आइए चलते हैं आपकी चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में हमारे साथ मौजूद हैं रिजू, आपका स्वागत करते हैं। पप्पू जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। नाजिया अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, लिख रही हैं वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। रतिमाम जी गुड आफ्टरनून टू यू, कैसी हैं आप, आपका भी वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अब्दुल मजीम हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत है, इस्तकबाल है कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड धर्मेंद्र मोहन जी हमारे साथ जुड़े हैं जो लिख रहे हैं उन्नति जी गुड आफ्टरनून टू यू, कॉलर ट्यून गोंडा में आपका स्वागत है। भैया हम सबका स्वागत करते हैं, हमारे धर्मेंद्र मोहन जी हमारा स्वागत करते हैं, ये देख के हमें बड़ा अच्छा लगता है। आपका भी इस्तकबाल करते हैं, वेलकम करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। और इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने पर। नजराना फिल्म से आप सुनने जा रहे हैं हमारी अनु पांडे जी की फरमाइश को, और ये फरमाइश डेडिकेटेड है हमारे विजय पांडे जी को, शारदा जी को, आप सभी को और मुझे भी। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुलाबशाह जी, रोशनी जी, ये सभी आप लोगों के लिए डेडिकेटेड सॉन्ग है हमारी अनु पांडे जी की तरफ से। एंजॉय और अपनी फरमाइशें भेजते रहिए। भैया इतना सन्नाटा काहे है हमारे चैट बॉक्स में और हमारे कॉल के ऊपर, हमको कॉल चाहिए बिकॉज ये कॉल अट्यून गोंडा है, यानी कि आपके अपना कॉलिंग वाला प्रोग्राम। तो इंतजार मत कीजिए बॉस, वक्त बहुत तेजी से गुजरता है यहाँ पर।

और आप सुन रहे थे हमारे अनु पांडे जी की फरमाइश को फिल्म नजराना से। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आपके अपने चैट बॉक्स की तरफ, क्योंकि हमारे पास कुछ पैगामात और आ चुके हैं। अरविंद जी फ्रॉम मनकापुर हमारे साथ जुड़े हैं, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून अरति मैम, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप। एंड बाबू अंसारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी स्वागत करते हैं, आप हमें सुन रहे हैं बाराबंकी से। और लिखा है गुड आफ्टरनून मैम, पहला गाना बहुत ज़बरदस्त बजाया भैया, क्रेडिट तो हमारी सबिया जी को जाता है इसका। एंड महेंद्र दीपन हमारे साथ जुड़े फ्रॉम राजस्थान और लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, नमस्ते आयुष्मती मैम जी, नमस्ते, गुड आफ्टरनून टू यू, कैसे हैं आप, आपका भी स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड मैं बढ़िया हूं, आप बताइए। रोशनी रावत हमारे साथ जुड़ गई हैं फ्रॉम उन्नाव और लिखा है गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड माई डियर क्यूट क्यूट उन्नति मैम जी, आप कैसी हैं, मैं खुश हूं। और आपके मैसेज पढ़ने के बाद 32 पूरी दिखा दी है, तो आप सोच सकते हैं हम कितने खुश हो चुके हैं। एंड आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। अरविंद जी लिख रहे हैं कॉल पे तो खुद आप बात नहीं कर रही हैं उन्नति मैम, लगता है आपको जुकाम हो गया है। अजी अगर हमको जुकाम हो चुका होता तो ऑन ईयर आपको सुनाई नहीं पड़ जाता, हमको जुकाम नहीं हुआ है, हमारी टीम आपके कॉल को एक्सेप्ट कर रही है। तो आप अपने फरमाइशों को भेजते रहिए 6393346429 पर। अगले गाने के लिए पेश करते हैं, क्योंकि अगला सॉन्ग हमारे पास आया है मुजीब जी का, तो आइए एंजॉय करते हैं 90s का एक प्यारा सा नगमा हमारे पास है, माटी के पुतले तुझे कितना गुमान है, और एंजॉय कीजिए इस प्यारे से मोटिवेशनल थोड़े से इंस्पायरिंग सॉन्ग को। हम मिलते हैं इस गाने के उस पार लेकर आपकी फरमाइश, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

हाँ जी, तो आप एंजॉय कर रहे थे हमारी मुजीब जी की फरमाइश, और हम वेलकम करते हैं हमारी रीना शर्मा जी का, जो हमने मैसेज कर रही हैं व्हाट्सएप पर। आपका स्वागत करते हैं कॉलर ट्यून गोंडा में। एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास आई है रिजू की, तो आइए उनकी फरमाइश को ट्यून करते हैं नेकी और पूछ पूछ। और आप एंजॉय करने जा रहे हैं हमारी अगली फरमाइश। हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, तब तक के लिए अपनी फरमाइशें भेजते रहिए 6393316429 पर, क्योंकि ये है आपका अपना कॉलर ट्यून गोंडा विद योर आरजे उन्नति। और ये गाना बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि गाने का नाम है भाग भाग डीके बॉस डीके बॉस डीके भाग। सुनते रहिए, और भागना नहीं है आपको, तो यही ठहरना है। हम क्योंकि हम मिलेंगे इस गाने के उस पर।

बॉस डीके बॉस भाग भाग डीके बॉस भाग और डीके बॉस कहीं भाग भी चुके हैं फिलहाल के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ और इस गाने को कौन गाने वाला है मेरे साथ बताइए जरा, किस में है दम जो लेगा ये चैलेंज, करेगा चाय गम पानी वाला काम और बोलेगा डीके बॉस डीके बॉस डीके बॉस डीके बॉस डीके बॉस डीके बॉस भाग। अगर आप में दम है तो बताइए जरा और आइए एंजॉय करते हैं हमारे अगले गाने को। हमारा अगला सॉन्ग आया है देवी प्रसाद जी की फरमाइश पर, कोई भी सैड सॉन्ग और हमारे सैड सॉन्ग के नजरिए में आया है हमें राजा हिंदुस्तानी से तेरे इश्क में नाचेंगे। तो आइए एंजॉय करते हैं मिल करके।

हाँ जी, और आप एंजॉय कर रहे थे तेरे इश्क में नाचेंगे, देवी प्रसाद जी की फरमाइश थी, आवाज थी हमारी कुमार सानू अलीशा और सपना मुखर्जी का, नदीम श्रवण का संगीत, समीर साहब के बोल, राजा हिंदुस्तानी फिल्म से आपने एंजॉय किया एक हार्ट ब्रेकिंग टॉक्सिक सॉन्ग। और इसी के साथ आइए बढ़ते अगले गाने पर। और हमारे अरविंद जी लिख रहे हैं कि भैया आप एक्सपर्ट हो इन सब मामलों में, हम नहीं बोलेंगे। चलिए ना बोलिए, कोई बात नहीं। नाइस सॉन्ग, थैंक यू सो मच। महेंद्र दीपन जी ने लिखा है क्या गाना है, गाने का नाम है तेरे इश्क में नाचेंगे। फिलहाल आइए अगला गाना आपके लिए पेश करते हैं, और बहुत ढूंढने के बाद गुलफशा जी के लिए हमें मिला एक खूबसूरत सा गाना दीवाना फिल्म से, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। और ये गाना डेडिकेटेड है महेंद्र जी को, अरविंद जी को, रोशनी जी को, अनु जी को, नागेश मधाकर जी को, और ऑफकोर्स मुझे भी, हालांकि पहले मुझे ही बोला गया था लेकिन हम खुद को आखिरी में रख रहे हैं। तो भैया आप सभी को डेडिकेटेड सॉन्ग है, सुनते रहिए, एंजॉय करते रहिए ऐसी दीवानगी।

ये थी हमारी गुलाबशाह जी की फरमाइश। दीवाना फिल्म से आप एंजॉय कर रहे थे, ऐसी दीवानगी देखी नहीं कहीं। शाहरुख खान और दिव्या भारती पर फिल्म आया गया गाना था, अलका जी और विनोद राठौड़ की आवाज़, नदीम श्रवण का म्यूजिक और भैया लिखे थे बोल हमारे समीर साहब ने। इसी के साथ आइए बढ़ते अगले गाने की तरफ। बहुत ही ज़बरदस्त फरमाइश आ चुकी है हमारे इम्तियाज़ जी की तरफ से, अर्जुन पटियाला से आप सुनने जा रहे हैं गुरु रंधावा की आवाज़ में और निकिता गांधी की आवाज़ में, मैं दीवाना तेरा मैं, दीवाना तेरा मैं। सुनते रहिए।

0: हाँ जी, और ये था दीवाना तेरा मैं दीवाना तेरा मैं, और आप सुन रहे थे बहुत ही प्यारा सा गाना गुरु रंधावा की आवाज में एनर्जेटिक बीट के साथ था। और अमर जी कह रहे क्या मैं बोलूं।
1: हाँ जी बोलिए, आपको क्या बोलना है?
0: चलिए आप बोल के दिखाएंगे मुझे, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़, पक्का पापड़ कच्चा पापड़। अगर आप ये बोलते हैं तो अच्छी बात है, और यही बोलना भी है आपको। फिलहाल आइए चलते अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। अगला सॉन्ग हमारे पास महाराष्ट्र से है, रमेश जी की फरमाइश। तो भैया एंजॉय करने के लिए हो जाए तैयार, क्योंकि सलूमिया पेश कर रहे हैं आपके लिए। पहली पहली बार जब प्यार किसी से होता है तो क्या फील होता है, आइए एंजॉय करते हैं इस गाने के जरिए कुमार सानू की आवाज़ में। और हम मिलेंगे इस गाने के उस पार, स्टे ट्यून्ड।

और देखते ही देखते 40 मिनट गुजर चुके हैं, तो क्या ख्याल है आगे बढ़ा जाए? अगर ख्याल यही है तो बहुत नेक ख्याल है, आइए आगे बढ़ते हैं और हम आपको सुनवाते हैं हमारे बाबू अंसारी जी की फरमाइश हुआ सलाम दिल का। ये गाना डेडिकेटेड है महेंद्र जी को, रोशनी जी को और सभी को, सभी में हमारे अरविंद जी, नागेश्वर धाकड़ जी, अमर जी, सभी लोग आते हैं, तो इंजॉय कीजिए हमारे अपने बाबू अंसारी जी की फरमाइश जो हमें सुनते हैं बाराबंकी से।

वक्त को मद्देनजर रखते हुए आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगला सॉन्ग हमारे पास है धर्मेंद्र मोहन जी का। पहली पढ़ाई की बात हो रही है और वो ABCD छोटा बड़ा नहीं पढ़ रहे हैं, वो सीधे पढ़ रहे हैं, पहली पढ़ाई तेरा प्यार होगा। तो जी आइए एंजॉय करते हैं। आखिरी रास्ता फिल्म से अमिताभ बच्चन और जया जी पर फिल्माया गया गाना है। एस जानकी और मुन्ना अजीज की आवाज़ में एंजॉय करते रहिए। मिलेंगे अगले सॉन्ग पर, अगले गाने को लेकर के, अगली फरमाइश को लेकर के। तब तक स्टे ट्यून्ड।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली फरमाइश को ट्यून करने के लिए। अगली फरमाइश हमारे पास है रईस साहब की, और रईस जी सुनना चाहते हैं, करती हूँ मैं प्यार मगर सिर्फ और सिर्फ संडे को। एंजॉय कीजिए और हम मिलेंगे अगले गाने को लेकर के। अगला सॉन्ग राजू सलमानी जी, अरविंद जी, राकेश वर्मा जी, रीमा रीना शर्मा जी, विजय पांडे, नफीस, मोहम्मद रफीक, उस्मान खान और महेंद्र जी। भैया इतनी फरमाइशें हैं, लेट्स सी टाइम मुझे चैलेंज कर रहा है या मैं टाइम को चैलेंज करने वाली हूँ। अब सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। स्टे ट्यून्ड।

और ये थी फरमाइश हमारे रईस साहब की, एंड इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगली गाने को ट्यून करने के लिए। अगला सॉन्ग है हमारे पास राजू सलमानी जी का, तो एंजॉय करते रहिए। और हमारे साथ जुड़े हैं रांची से दीपक जी। भैया आपको करना पड़ेगा कॉल, क्योंकि ये कॉलिंग प्रोग्राम कॉल ट्यून गोंडा।

इसी के साथ आइए बढ़ते हैं अगले गाने की तरफ। अगला गाना बहुत ही जबरदस्त है, हमारे अरविंद जी की फरमाइश है, और ये गाना सुनने के बाद आप झूमने वाले हैं, बिकॉज झांझरिया उसकी छनक गई। आइए एंजॉय करते हैं साथ में मिल करके। और जैसे टाइम बहुत कम होता जा रहा है, फरमाइश बहुत ज्यादा है, तो स्पीड को यहां से करेंगे अपनी दुगनी रफ्तार पर तेज। सुनते रहिए कॉलर ट्यून गोंडा विद योर आरजे उन्नति।

हाँ जी, और उसकी दुनिया ही रुक गई। फिलहाल के लिए आइए बढ़ते अगले गाने पर। अरविंद जी की फरमाइश थी मन कपूर से, बहुत ही जबरदस्त गाना आपने एंजॉय किया। और अब बात करेंगे हमारी अगली फरमाइश की। बात क्या करेंगे भैया, एंजॉय करेंगे डायरेक्ट, बिकॉज सच कहते हैं कसम से कसम से कसम से।

और ये फरमाइश थी हमारे राकेश वर्मा की, माफी चाहते हैं आपसे, आपके गाना यहीं को रोकने पड़ा। और फिलहाल के लिए आइए अगले गाने को ट्यून कर लेते हैं, हंस हंस के मेरे पेट में हो चुका है दर्द, क्योंकि भैया जहां हमारे लिसनर्स मौजूद हों, स्पेशली हमारे अरविंद जी, महेंद्र जी, नागेश्वर धाकर जी, वहां किसी को हंसी ना आए ऐसा कभी हो नहीं सकता। एंड अगली फरमाइश हमारे पास है रीना शर्मा जी की, इंजॉय करते रहिए। इसके बाद हम मिलेंगे विजय पांडे, नफीस, मोहम्मद रफीक, उस्मान खान और महेंद्र जी की फरमाइश को लेकर के।

और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। विजय पांडे जी की फरमाइश को हम आपके लिए पेश करते हैं। लता जी की आवाज है, अखियों को रहने दे अखियों के आसपास, एंजॉय करते रहिए। और हम मिलेंगे अगले गाने पर, अगले सॉन्ग को, अगली फरमाइश को लेकर के। हमारे पास वक्त है 7 मिनट, और 7 मिनट में भैया 7 गाने बचे हैं। जस्ट इमेजिन।

इन खूबसूरत नगमों को बीच में रोकने की माफी तो नहीं होती है, लेकिन माफी चाहेंगे। आइए चलते हैं अगली फरमाइश की ओर। हम इंजॉय करने जा रहे हैं नफीस जी की फरमाइश, पायलिया पायलिया। सुनते रहिए, और इसके बाद बैक टू बैक मैं आपको दो गाने सुनाने वाली हूँ। पहली फरमाइश हमारे मोहम्मद रफीक जी की होगी, दूसरी हमारे उस्मान खान जी की होगी। तो वक्त को मद्देनजर रखते हुए इंजॉय करते रहिए। मिलेंगे अगले गाने पर, अगली फरमाइश पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

और ये फरमाइश थी हमारे मोहम्मद रफीक जी की, भैया बीच में रुकने के लिए माफी चाहेंगे। अगली फरमाइश हम पेश करते हैं आपके लिए, गोरी है कलाइयां बाय उस्मान खान जी की फरमाइश है ये। इसके बाद हम मिलेंगे हमारे महेंद्र जी की फरमाइश को लेकर के, और जाते जाते हमारे पास एक और फरमाइश आ गई है, कोशिश करूंगी पूरा करने की, अगर नहीं हो पाती है तो आपसे तहे दिल से माफी चाहेंगे।

0: गोरी है कलाइया चला दे मुझे हरी हरी थोड़िया।
1: और भाई ये फरमाइश थी हमारे उस्मान खान जी की, अगली फरमाइश को हम ट्यून कर लेते हैं जो हमारे महेंद्र जी की है, मेरा यार दिलदार। और आखिरी फरमाइश होगी हमारे नरेश प्रजापति जी की। फिलहाल अब चाहूंगी आपसे इजाजत क्योंकि वक्त है मेरा विदा लेने का। ये गाना डेडिकेटेड है हमारे सभी लोगों को, मुझे, अरविंद जी को, रोशनी रावत जी को, गुलफशा जी को, अनु जी को, विजय जी को, बाबू अंसारी जी को, जितने भी लिसनर हमारे साथ जुड़े हैं, अंबर गोयल जी को, नाजिया अंसारी जी को। तो सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप सुन रहे कॉल ट्यून गुना। इसी के साथ जी मुझे इजाजत, कोशिश करूंगी कि नरेश जी आपका गाना प्ले करके जाऊं, और अगर नहीं होता है तो माफी चाहूंगी।

0: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
1: मतलब?
0: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8919-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।

कनेक्ट की तदी मशीन पे बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हिटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ड्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे गोरट मेरे रैप बेबी माइंड होते ब्लो जब बीट करे

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।
1: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
2: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
1: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
2: आज ही कॉल करें 9861996 9816 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
1: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
2: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: Abby.
1: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोदली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोदली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधुली में, स्टे ट्यून्ड।
1: Now listening 11.39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। आपका होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो 11.39.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन। हर रोज हमारे साथ में गोधुली में अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग क्षेत्र के हमारे बीच में मेहमान आते हैं, जो अपने कार्यक्षेत्र के बारे में अपने बारे में बताते हैं, जिनसे हमको न जाने कितनी सारी चीजें देखने को जानने को समझने को मिलती हैं। आज उसी कड़ी में हमारे बीच में एक और स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं। जी हाँ, तो हम बहुत ज्यादा सस्पेंस क्रिएट किए बिना हम बता दें कि आज हमारे साथ में डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी जी मौजूद हैं, जो कि ओनर हैं प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के। सबसे पहले तो हम आपका वेलकम करते हैं आपके अपने शो में, जिसका नाम है गोधुली।
2: थैंक यू नंद जी,
1: थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाई आप डॉक्टर हैं, आपसे आपकी पद्धति के बारे में, आयुर्वेद के बारे में बहुत सारी बातें होनी है और बहुत अहम बातें होनी है, लेकिन उससे पहले हम चाहेंगे कि आप अपना एक परिचय दें ताकि हमारे श्रोताओं को पता चल सके कि आप कौन हैं।
2: मेरा नाम डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी है, मैं यहीं गोंडा का रहने वाला हूँ। गोंडा के पास ही एक छोटा सा विलेज है चांदपुर, वहीं का रहने वाला हूं। मेरी शिक्षा दीक्षा भी गोंडा में ही हुई है। मैं यहीं आपके पड़ोस में GIC का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूं, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन कर्नाटका के पास शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां बापूजी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज से की है। और गोंडा में मेरा एक छोटा सा आयुर्वेदिक क्लिनिक है प्रभात आयुर्वेदिक चिकित्सालय के नाम से।
1: जी, ये आपने अपना परिचय दिया, हम जानना चाहेंगे आपके माता पिता के बारे में, सिबलिंग्स के बारे में।
2: मेरे पिताजी गोंडा डीजल से रेलवे में ही एक कर्मचारी थे, अभी रिटायर्ड हैं। माताजी हाउसवाइफ हैं, दो भाई दो बहन हैं। मेरा छोटा भाई जो है, मेरा एक हॉस्पिटल है फरीदाबाद में, वो ओन करता है, वो देखता है वहीं, और मैं यहाँ हूँ जैसा जानते हैं। मेरी एक बड़ी सिस्टर है, वो टीचर है प्राइमरी स्कूल में, और छोटी सिस्टर हाउसवाइफ है।
1: ओके, ये तो बड़ा अच्छी बात आपने बताई, और लगता है कि हाँ, एक छोटी और शॉर्ट सुखी फैमिली के बारे में आपने बताया। बचपन कैसा बीता आपका?
2: गांव में रहा चुकी, तो जैसा गांव के सभी लड़कों का बचपन बीतता है वैसा ही बीता, कुछ स्पेशल नहीं रहा ऐसा। घर पे रहना, खेती का काम करना और साथ में पढ़ाई करना, ये सारी चीजें जीवन के साथ जुड़ी रही। तो मैं अभी कह सकता हूँ कि मैं अपनी जमीन के साथ काफी जुड़ा हुआ हूँ, और आज भी इसी शायद यही वजह है कि मैं अपने गाँव को छोड़ नहीं पा रहा हूँ, आज भी मैं वहीं रहता हूँ।
1: क्या बात है। और कहते भी हैं कि जो लोग भाई अपने गांव से जुड़े हुए होते हैं, वो हमेशा ही उसकी मिट्टी उनको सोंधी।
2: हाँ, मुझे लगता है कि वो सुकून कोई और जगह दे नहीं पाती है जो हमारा गांव हमें देता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच। अभी आप हमको ये बताइए कि आपने पढ़ाई की, गोंडा से शुरुआती पढ़ाई आपकी हुई, उसके बाद आप कर्नाटका चले गए आयुर्वेदिक डिग्री प्राप्त करने के लिए। आपके जहन में ये कैसे आया कि आपको डॉक्टर ही बनना है?
2: कुछ इस पे

0: वहाँ भी काफ़ी डॉक्टरों से मुलाकात हुई। काफ़ी चीज़ें देखने और जानने के बाद में मुझे लगा कि आयुर्वेद जो है वो उसकी आवश्यकता है आज हमारे समाज में, आज हमें ज़रूरत है आयुर्वेद की, क्योंकि बीमारियों का इलाज तो हमारे पास अवेलेबल है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका मॉडर्न ट्रीटमेंट में बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज अवेलेबल है, पर हमें स्वस्थ कैसे रहना है वो हमें नहीं पता चल पा रहा। वो हमें आयुर्वेद ही बता सकता है कि हमें बीमारियों से बचा कैसे जा सकता है।
1: ओके, तो आप तो अभी बीमारियों को ख़त्म करने के लिए काम कर ही रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: जानना ये चाहेंगे कि क्या बचपन से ही आपके घर में भी ऐसा ही माहौल था चीज़ों को लेके कि आयुर्वेदिक चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती थी, या कैसे क्या होता था?
0: नहीं, सामान्य परिवार जैसा होता है, हम वैसे ही थे, गांव से जुड़े थे, खेती किसानी था। मुख्य पापा ही एक गवर्नमेंट जॉब में थे, बाकी हमारे घर में कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं था। मुख्य जो व्यवसाय था वो कृषि खेती और पशुपालन ही था, जो नॉर्मली एक औसत भारतीय परिवार किसान परिवार में होता है। मेरा जीवन भी वैसे ही गुजरा, कुछ स्पेशल नहीं था।
1: डॉक्टर साहब, वैसे जहाँ तक हम जानते हैं कि ऐसे घरों में ज़्यादातर ये जो कहते हैं होम रेमेडीज, घरेलू इलाज, इसको प्रायोरिटी दी जाती है। चोट लगने पे हल्दी का लेप बांधना है या कहाँ पे कड़वे तेल का इस्तेमाल करना है, ये सब बड़ा अभी भी है। क्या अभी भी गांव में इस तरह का माहौल है कि पहले चीज़ों को डॉक्टर के पास ना जाके पहले घर पे ही देखा जाता है क्या ऐसी चीज़ है जिससे इलाज किया जा सके?
0: इस विषय में मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि ये कोई अलग से नहीं आया, ये हमारा आयुर्वेद है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ था। धीरे धीरे कुछ हम मॉडर्न होते गए, कुछ भ्रांतियाँ फैलती गईं, कुछ अपने ही पैथी से हम दूर होते गए। तो जो हम हमारे जुकाम होते ही हमारी माँ हमें अदरक और हल्दी का वो पिला देती हैं दूध में डाल के, और हमारा जुकाम हमें आराम हो जाता है, वो कुछ अलग से नहीं आए, वो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, हमारा आयुर्वेद ही है। पर क्या हुआ, हम उनसे अनजान हो गए। हमारे कुछ गाँव के कुछ बुजुर्ग अभी उन पैथियों को जिंदा रखे हुए हैं, उन्हें बचाए हुए हैं, पर ऐसा नहीं है कि वो कहीं अलग से आया है, वो सब कुछ आयुर्वेद है, हमारे जीवन में जितना कुछ जुड़ा हुआ है। इवन अगर आप रात को कुछ ऐसा खाने लगते हैं, गलत खाने लगते हैं, तो आपकी दादी, आपकी नानी आज भी आपको टोक देती हैं कि ऐसा मत खाओ नहीं बीमार हो जाएंगे। तो क्या उन्होंने कोई डिग्री ले रखी है डॉक्टरी की? उन्होंने कोई डिग्री नहीं ले रखी, उन्हें ये सारी चीज़ें पता है, क्योंकि आयुर्वेद हमारे जीवन सा हुआ करता था। आज हम थोड़ा सा उससे दूर हुए हैं, या कह सकते हैं हम भटक गए हैं, पर हम पूर्णतया उससे भटक नहीं, दूर नहीं रह पाएंगे, हमें उसके पास जाना पड़ेगा।
1: ओके, तो अगर आपने इतनी ही तारीफ कर दी है आयुर्वेद की, तो फिर अब हमको और हमारे श्रोताओं को ये जरूर बताएं कि आयुर्वेद है क्या?
0: देखिए, आयुर्वेद के बारे में वैसे एक्सप्लेन, बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन देना तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। इतना हम कह सकते हैं कि सुख दुख और आयु के लिए हितकर और अहितकर विषयों का मापदंड जहाँ बताया गया है वही आयुर्वेद है। हमारे लिए सुखकारी क्या है, दुखकारी क्या है, हमारे आयु के लिए क्या हितकर है, क्या अहितकर है, ये जहाँ पर भी बताया गया है वही आयुर्वेद है।
1: ओके, आपने कहा सुख दुख में जो भी हितकर बताया गया,
0: हाँ,
1: वही आयुर्वेद है।
0: हाँ।
1: ओके, तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद का मूल सिद्धांत क्या है?
0: देखिए, आयुर्वेद का अगर मूल सिद्धांत की हम बात करते हैं तो एक संस्कृत का छोटा सा श्लोक है जो लिखा गया है, स्वास्थ्यस्य स्वास्थ्य रक्षणम्, आतुरस्य विकार प्रशमनम् च। इसका मतलब ये होता है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाए सबसे पहले, उसके बाद जो बीमार हैं उनका इलाज किया जाए। अर्थात आयुर्वेद ये चाहता है कि लोग बीमार ही न पड़े, जो स्वस्थ हैं वो स्वस्थ ही रहे। तो आयुर्वेद का मूल सिद्धांत यही है कि व्यक्ति को स्वस्थ कैसे रखा जाए, फिर जो बीमार होते हैं उनका इलाज कैसे किया जाए।
1: तो जो मान लीजिए जो स्वस्थ है तो उनका फिर इलाज, या कह सकते हैं उनको स्वस्थ बनाए रखने के लिए कैसे क्या क्या होता है?
0: हाँ, वही हमारी जैसे दिनचर्या होती है, हमें क्या करना चाहिए, हमें कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए। आयुर्वेद में तो दिनचर्या, ऋतुचर्या, भोजन, ऋतु अनुसार भोजन, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विस्तृत एक्सप्लेन किया गया है।
1: जी,
0: शुरुआत में जो भी हमारे आयुर्वेद, जैसे हमारा अष्टांग हृदय है, तो उसकी शुरुआत ही होती है दिनचर्या से, कि हमें कब उठना चाहिए, कब सोना चाहिए, क्या खाना क्या पीना चाहिए, किस ऋतु में क्या खाना पीना चाहिए। तो आयुर्वेद तो बहुत विस्तृत इस चीज को बताता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे कर सकता है।
1: बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ अगला हमारा क्वेश्चन ये भी है कि भाई इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में अगर आयुर्वेद को देखे तो?
0: जैसे मैंने बताया कि आपके आयु के लिए और सुख के लिए क्या हितकर ही आयुर्वेद में बताया गया है, तो अगर हमें सुखी रहना है और स्वस्थ रहना है तो आयुर्वेद आवश्यक है।
1: अगर हमें स्वस्थ रहना और सुखी रहना है
0: तो बिना आयुर्वेद के संभव नहीं है।
1: ओके, चलिए, ये तो आपने बता दिया। अगर ऐसी ही बात है तो फिर हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर डिफरेंस क्या है बाकी पैथियों में और आयुर्वेद में।
0: हाँ, देखिए,

0: होम्योपैथियों के बारे में ज़्यादा, मैं ये कह सकता हूँ कि आयुर्वेद ऐसी पद्धति है, ऐसी चिकित्सा है जिसके जिसमें आपको अपने चिकित्सा के लिए कुछ भी बाहर से ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी आपके डेली यूज की सामग्री है, उसी से आप अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, हमारे घर में हल्दी भी होती है, हमारे घर में सौंठ भी होती है। अगर हमें जुखाम होता है तो हम हल्दी काली मिर्च का काढ़ा बना के हमारी माताएं आज भी हमें पिलाती हैं और हमें आराम मिलता है। कहीं चोट लग जाती है तो तेल गर्म करके मालिश कर लगा दिया जाता है और हमें आराम मिल जाता है। तो कहने का मतलब है आयुर्वेद ऐसी पद्धति है जिसके लिए आपको कुछ बाहर से नहीं ढूंढना, जो आपके पास अवेलेबल है उसी से आपकी चीज। जैसे गांव में कहते हैं कि फोड़ा हो गया है, पस पड़ गया है, तो नीम की पत्ती ले आओ, उबाल के धुल दो। तो कहने का मतलब है कुछ आपको बाहर से ढूंढना नहीं है, कुछ आपको फैक्ट्री में तैयार नहीं करना। आपके पास जो भी सामग्री अवेलेबल है आप उसी से अपनी चिकित्सा कर सकते हैं।
1: ओके, तो आपने कहा कि जो भी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं, चाहे वो आपके घर की बात हो या आपके आसपास की बात हो।
0: बिल्कुल।
1: तो डॉक्टर साहब, ये तो समझ में आया कि आखिर अलग कैसे है, लेकिन सारी चीजों में ऐसा देखा जाता है जब कुछ इमरजेंसी होती है या बहुत पेन बढ़ जाता है तो लोग एलोपैथ की तरफ ज्यादा जाते हैं क्योंकि वो जल्दी आराम देता है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे जल्दी आराम देता है तो उस तरह से उसके साइड इफेक्ट्स भी काफी ज्यादा होते हैं। आयुर्वेद को प्रेफर किया जाता है कि आयुर्वेद अगर थोड़ा लॉन्ग टर्म कोई चीज चल सकती है, तो जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे गिल्टी की प्रॉब्लम है, गांठ जो पड़ जाती है, उसका एक अच्छा इलाज होता है। दूसरी चीज हम ये जानना चाहेंगे, जो बीमारियां जैसे शुगर और बीपी की ये कॉमन बीमारियां होती हैं, इसमें कितना रोल अदा होता है आयुर्वेद का?
0: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जैसे कोई भी पैथी है, जैसे एलोपैथी या आयुर्वेद है, इन दोनों का एक मुख्य उद्देश्य जो है हमें स्वस्थ रखना है।
1: बिल्कुल।
0: तो दोनों के अपने अपने लाभ फायदे हैं और अपने अपने नुकसान हैं। जैसे एलोपैथ का नुकसान है कि लंबे समय तक उसका साइड इफेक्ट होता है, वैसे ही आयुर्वेद में कहीं ना कहीं हम इस चीज को कह सकते हैं कि इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, इमीडिएट पेन रिलीफ के लिए हमारे पास पेन किलर नहीं है, या ऐसा कई सारी चीज़ें होती है जिसमें हम अब भी बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है, तो हम उसमें ना पढ़ के थोड़ा सा बाहर रह के हम ये बात करेंगे कि हर पैथी की अपनी गुणवत्ता होती है। एलोपैथ की अपनी गुणवत्ता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, बड़े बड़े रिसर्च है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास ऐसी हैं जिससे हमें चिकित्सा करने में बड़ी सुविधा मिलती है। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों को मिला के अगर कोई चिकित्सा की जाती है, अगर कोई पेशेंट है जिसको जोड़ों का दर्द है और बहुत भयंकर दर्द है, तो उसको एक पेन किलर अगर दिया गया है किसी डॉक्टर द्वारा, उसने खा लिया, उसे आराम हो गया, लंबे समय के लिए उसे ठीक करने के लिए अगर वो आयुर्वेदिक चिकित्सा करता है, तो हो सकता है, संभावना इस चीज़ की भी रहती है कि उसका घुटने का दर्द परमानेंट ठीक हो जाए बिना किसी दर्द की दवा के, उसे दर्द की दवा का सेवन परमानेंट नहीं करना पड़ेगा, और वो जो लंबे समय तक इलाज करवाएगा उसका उसे कोई साइड इफेक्ट नहीं झेलना पड़ेगा। यह आयुर्वेद का फायदा है। लेकिन एलोपैथ का फायदा यह है कि अगर इमीडिएट उसको किसी तरीके का बहुत सीवियर पेन है तो वो इमीडिएट उसमें आराम पा सकता है एलोपैथ में। आयुर्वेद में इंजेक्शन जैसी अभी चीजें अवेलेबल नहीं है।
1: ओके, तो ये तो आपने बताया कि कुछ जैसे नुकसान ये होते हैं कि भाई इमीडिएट फौरन आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल पाता है।
0: हाँ,
1: आयुर्वेद की साइड से क्या और भी साइड इफेक्ट्स वगैरह का भी खतरा इसमें रहता है?
0: देखिए, आयुर्वेद में साइड इफेक्ट नहीं है, पर आयुर्वेद का नुकसान, आयुर्वेद में नुकसान अगर आप सही दवा नहीं लेंगे, सही समय से नहीं लेंगे, तो उसका नुकसान होता है।
1: क्या हो सकता है नुकसान?
0: जैसे फॉर एग्जांपल मैं बता दूं कि अगर किसी को बहुत सीवियर एसिडिटी है और वो खट्टा दही खा लेगा तो उसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। ये हमारे भोजन की बात हुई, अगर हम गलत तरीके से भोजन भी करते हैं ना तो हमें नुकसान करता है। इसी तरह से अगर हम गलत तरह की आयुर्वेदिक मेडिसिन भी लेते हैं वो भी हमें नुकसान करती है। हाँ, लॉन्ग टर्म तक अगर हम आयुर्वेदिक मेडिसिन लेते हैं तो उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अगर आप किसी डॉक्टर से, ढंग के डॉक्टर से लेते हैं। अभी आजकल हमें बहुत बार ये देखने को मिलता है कि लोग आयुर्वेद के, लोगों का जो आयुर्वेद पे भरोसा है उसका बहुत सारे ठग, मतलब आयुर्वेद में एक वर्ड आया छद्मचर वैद्य, मतलब जो पढ़े लिखे नहीं है, जिनको शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिन्होंने कोई अभ्यास नहीं किया है, लेकिन वो वैद्य बनके लोगों की चिकित्सा करते हैं। तो क्या होता, उनकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, तो वो क्या होता, उनका एक ही उद्देश्य होता है लोगों को ठगना और पैसे कमाना। तो वो कुछ भी उल्टा सीधा मिला के, कोई भी दवाइयां मिला के, कुछ भी करके लोगों को दर्द का, घुटनों के दर्द का इलाज कराते। बहुत सारे पेशेंट मुझे ऐसे मिले हैं जो किसी ऐसे डॉक्टर से इलाज करा के आए, बाद में उन्हें ढेर सारा साइड इफेक्ट हो, किडनी फेलियर हुआ, चेहरे पे सूजन थी, या बहुत सारे साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो वो जो लोगों का आयुर्वेद के प्रति भरोसा है उसका गलत लाभ भी समाज में बहुत सारे लोग उठा रहे हैं।
1: हाँ, क्योंकि अक्सर देखा जाता है मार्केट में जब आप जाते हैं तो कोई साइकिल पे बेच रहा है,
0: हाँ,
1: कोई
0: हाँ,
1: तंबू
0: हाँ,
1: लगा के साइड बेच रहा है, और बहुत सारे दिक्कतों का निवारण बताते हैं।
0: बिल्कुल, ये हमारी सरकार की जिम्मेदारी है कि इन चीजों पे थोड़ा सा नियंत्रण करे वो, क्योंकि लोगों का जो भरोसा है वो बना रहना चाहिए आयुर्वेद पे। क्योंकि हम जैसे अच्छे डॉक्टर जब किसी अच्छे व्यक्ति से, पढ़े लिखे व्यक्ति से बात करते हैं कि हम आपके घुटने का दर्द का इलाज करेंगे, तो हमसे कहता है कि नहीं नहीं यार, हमारे पड़ोसी ने तो कराया था, उसका तो घुटना फेल हो गया। पर वो ये नहीं कहता कि उन्होंने किससे कराया था, या वो ये जानता नहीं है। तो कहीं ना कहीं आयुर्वेद बदनाम होता है ऐसे ठगों के चक्कर में।
1: ओके, यानी आपके कहने का मतलब ये है कि भाई हर पैथी में जैसे उसका फायदा होता है,
0: बिल्कुल,
1: लेकिन उसी तरह कुछ ठग भी ऐसे होते हैं जो उसका भरोसा
0: गलत उपयोग करते हैं,
1: गलत उपयोग करते हैं, और लोग उस पर झांसे में आने के बाद कहीं ना कहीं उनका विश्वास सही पद्धति से भी हटने लग जाता है। तो ये जागरूकता की भी कमी है, और कहीं ना कहीं सिस्टम को इस पे थोड़ा और ध्यान देना।
0: कभी भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवाने जाते हैं तो ऐसे डॉक्टर के पास ही, जो पढ़ा लिखा है, जिसके पास डिग्री है, और जिसकी समाज के प्रति एक जिम्मेदारी है, वो अपनी जिम्मेदारी से, एक डॉक्टर जो पढ़ा लिखा है, जिसने डिग्री की है, वो कभी अपनी जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ सकता, वो किसी भी पैथी का हो। पर उसकी कहीं ना कहीं समाज के प्रति एक जिम्मेदारी होती है, और जो उसके मन में दिमाग में बस जाती है, उससे भाग नहीं सकता।
1: बिल्कुल सही बात है कि भाई जिस भी पैथी के डॉक्टर हो, उनकी अपने एक समाज के लिए जिम्मेदारी होती है,
0: और हर पैथी के डॉक्टरों ने समाज की सेवा की है समय समय के हिसाब से, अपने हिसाब से जो भी उनका रहा, वो सभी ने बहुत समाज की सेवा की अपने अनुसार।
1: बिल्कुल सही बात है। इसी के साथ में, चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया, श्रोताओं से हम ये कहेंगे कि डॉक्टर साहब से हमारी बातचीत का दौर जारी रहेगा। बहुत सारे अभी अहम सवाल हैं बाकी, जिसको सुनने के बाद आपको काफी कुछ समझने को, जानने को मिलने वाला है। इसलिए कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
2: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
3: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
2: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
3: आज ही कॉल करें 9216 9876 9819716। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
2: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
3: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल, पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन। पता है LIC कॉलोनी, निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।
1: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करता है आपका अपना होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान, मौजूद है आपके साथ आपके अपने वाले स्टूडियो में। शो चल रहा है गोधुली और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थल 0.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से, जिसमें हम काफी ज्यादा अहम मुद्दों पर बात कर रहे हैं आयुर्वेद को लेकर। डॉक्टर साहब, जाने से पहले काफी सारी बातें हुई जो हमारे और आपके सभी के जीवन में काफी ज्यादा पता होना उसको जरूरी होता है, जानकारी होनी चाहिए। इसी के बाद हमारा अगला क्वेश्चन एक और आ रहा है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आयुर्वेद इतना पुराना बताया जाता है कि सालों साल कई हजार साल पुरानी पद्धति है, क्या आज भी क्योंकि देखा जाता है कि फायदा करता है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है जबकि समय के साथ चीजें चेंज की जाती हैं, अपडेट होते हैं, तो आज भी कैसे इतने रिलेवेंट है, कितनी बीमारियों में ये काम आ जाती दवाएं?
0: देखो, आयुर्वेद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको किसी एक आदमी ने लिख दिया हो या किसी एक आदमी ने बता दिया हो, ये सालों साल रिसर्च का परिणाम है। हमारे ऋषियों ने बहुत गहरी शोध इस पर की है, किस तरह से की है उस पर तो सोच पाना आज मुश्किल है। आज मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा
1: जी,
0: कि जैसे हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि अगर किसी को खून की कमी होती है, एनीमिया होती है, तो उसको लोहासो देना चाहिए, यानी आयरन कंटेंट देना चाहिए। लौह भस्म होता है लोहासो में, आयरन कंटेंट देना चाहिए। आज मॉडर्न साइंस इतनी मॉडर्न होने के बाद, इतनी सारी रिसर्च के बाद, सब कुछ होने के बाद में आज हम जानते हैं कि मॉडर्न में भी, मॉडर्न जो एलोपैथी ट्रीटमेंट है हमारा, उसमें भी अगर किसी को एनीमिया होती है तो उसे आयरन देते हैं। तो आप इस चीज़ को समझिए कि कहते हैं 2000 साल पुराने ग्रंथ हैं हमारे, तो उस समय ना हमारे पास कोई मॉडर्न इक्विपमेंट हुआ करते थे, ना कोई मॉडर्न रिसर्च हुआ करती थी। तो हमारे ऋषियों ने, हमारे जो भी हमारे ऋषि मुनि रहे, उन्होंने किस तरह से इसकी खोज की होगी, कितनी रिसर्च की होगी, उसके बाद इस चीज़ को लिखा।
1: बिल्कुल,
0: तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ आयुर्वेद में जो भी बताई गई है वो हमारे शरीर को और उस चीज़, जो भी चीज़ हमारे खाने पीने वाली चीज़ है या जो भी चीज़ दवा में यूज़ होती है, उसके बारे में अच्छे से जान के समझ के, उसका प्रभाव और दुष्प्रभाव सब चीज़ों को समझ के तभी बताया गया है। मतलब हम इस चीज़ को भी कह सकते हैं कि आयुर्वेद की दवाइयों को आप लंबे समय तक यूज़ करते रहें, जो भी इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट बताया गया है ग्रंथों में, उसके अलावा शायद ही आपको कोई और देखने को मिले। इतना ज्यादा प्रामाणिकता है इस आयुर्वेद की
1: जी। तो ये तो आपने बताया कि 2000 साल पुरानी पद्धति बताई जाती है और आज भी रिलेवेंट है, लेकिन फिर एक सवाल जहन में उठता है,
0: बिल्कुल,
1: कि अगर आखिर ये इतनी कारगर पद्धति है और बिना नुकसान पहुंचाए इतना ज्यादा हमको फायदा देती है, स्लो प्रोसेस होता है, तो फिर आज के टाइम में ये पद्धति खोती क्यों जा रही है? आज लोग बाकी पद्धतियों की तरफ ज्यादा झुकाव हो गया है, इससे हटते जा रहे हैं, ऐसा क्यों हुआ?
0: नहीं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अब लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग जागरूक हो रहे हैं आयुर्वेद के प्रति। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे रीजन थे, हम 200 साल अंग्रेजों के गुलाम रहे, उससे पहले और बहुत सारी चीज़ें रहीं, तो कहीं ना कहीं हम लोग वही चीज़ उपयोग करने लगे या उन्हीं चीज़ों का सेवन करने लगे जो उनके द्वारा हम पर थोपा गया। हम अपनी मूल संस्कृति में बहुत सारी चीज़ें जो है मिस करते गए, खोते गए, आयुर्वेद भी उन्हीं में से है, पर हमने आयुर्वेद को पूर्णतया खो दिया ऐसा संभव नहीं, क्योंकि आयुर्वेद आज भी हर घर के, हर माँ में, हर नानी में, हर दादी में आज भी जिंदा है। आप छोटी छोटी चीज, आप ठंडी में दही खाओगे तो आपके घर में कोई बुजुर्ग हुई टोक देगी, मत खाओ जुकाम हो जाएगा।
1: सही,
0: तो ये कहीं ना कहीं वो आयुर्वेद जो उनके मन में जिंदा है ना, वही उनसे कहलवाता है, कुछ अलग सा नहीं है ये।
1: बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं देखा ये जाता है कि लोग जिसे प्रेफर करते हैं डॉक्टर के पास फौरन जाते हैं एलोपैथ का इलाज, क्योंकि उनको इंस्टेंट सब कुछ चाहिए होता है। जैसा कि अभी हमारी आपकी बात भी हुई थी कि लोगों को जल्दी फायदा चाहिए होता है, लेकिन उस चक्कर में कहीं ना कहीं ऑर्गन्स पे भी बुरा असर पड़ता है। और बहुत सारी ऐसी रिसर्च है कि जहां बताया जाता है कि अंग्रेजी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से बुरा प्रभाव पड़ता है, चाहे वो किडनी हो या बाकी ऑर्गन्स हो। लेकिन आपने कहा कि ये टाइम टेकिंग तो होता है बट बेनिफिट देता है, तो हम एक साथ ये भी चीज एक बार जानना चाहेंगे कि आखिर किन किन रोगों के लिए ज्यादा बेस्ट इलाज इसमें है, हम टाइम भी दे सकते हैं और बाद में हो सकता है ये पूरी तरह से सही भी कर दें।
0: देखो, इसको मैं 2-3 तरीके से आपको बताऊंगा। पहली चीज तो ये है कि टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट एलोपैथ या जो भी है, जिस भी पैथी, हर पैथी में होता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है और आप किसी डॉक्टर के पास गए और उसने आपको एक पेन किलर दे दिया, आपको दर्द से आराम मिल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं हुआ कि आप ठीक हो गए
1: जी।
0: आपको ठीक होने के लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा और कुछ दिन तक चलेगा वो।
1: बिल्कुल,
0: तो ये कहना कि सिर्फ आयुर्वेद ही टाइम टेकिंग है, ऐसा सही नहीं है। सारी पैथी टाइम टेकिंग है। आयुर्वेद में हम जोड़ों के दर्द का इलाज करते हैं, हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं यूज़ करते? क्योंकि दुष्परिणाम ना हो उसके। अगर आप 6 महीने दवा खाते हो तो अगर आप घुटने का दर्द ठीक करवाने आए और किडनी भी आपकी फेल हो गई, तो वो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा किसी भी पैथी के लिए। तो हम बहुत ज़्यादा पेन किलर यूज़ नहीं करते, या हमारा जो कह सकते हैं कि हमारा जो मूल पर्पज़ होता है, वो जो डिजीज़ है वो पूर्णतया समाप्त हो जाए। ऐसा ना हो कि आपको आज आराम मिला है, कल फिर से आपको वही प्रॉब्लम हो गई, या फिर से आपको आराम मिला इलाज करवाया, दो चार दस दिन आप ठीक रहे, फिर आपको समस्या होने लगी, वो ना हो। अगर आप एक बार ढंग से प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट करवाएं, जो समस्या है उसका पूर्णतया समाधान हो जाए।
1: ओके, मतलब आपको टाइम देना पड़ेगा और प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा।
0: हर पैथी के लिए ये आवश्यक है। कोई भी पैथी ऐसा नहीं कह सकती कि वो दो खुराक दवा में, भाई अगर किसी को बुखार आता है वो एक डोलो खा लेता है उसका बुखार उतर जाता है, पर बुखार ठीक नहीं हो जाता। बुखार ठीक होने में तो जो 5-6 दिन का निश्चित टाइम हो वो लगेगा,
1: यानी एक नेचुरल टाइम तो जो लगना है वो लगना ही है।
0: हम बुखार को कम कर सकते हैं पर बुखार को ठीक नहीं कर सकते एक दिन में एक खुराक में।
1: बिल्कुल सही बात है। इसके साथ ही जैसे कि अभी लास्ट हमने अभी क्वेश्चन किया था आपसे कि इतनी पुरानी पद्धति है तो जैसे सभी चीजों में चेंज आया है, तो हम जानना चाहेंगे क्या आयुर्वेद में भी कुछ चेंजेस आए हैं, क्या टाइम टू टाइम रिसर्चेस हुई हैं और कितनी आवश्यकता है इसमें और रिसर्चेस की?
0: अब रिसर्च की आवश्यकता, देखो रिसर्च की आवश्यकता तो हमेशा बनी रहती है हर चीज़ में। जैसे जैसे हमारा स्वभाव बदलता है, हमारी चीज़, जैसे पहले क्या होता था कि आयुर्वेद में चूर्ण दिया जाता था, चटनी दी जाती थी, हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, हम टेबलेट और कैप्सूल्स पे आ रहे हैं, हम जो आसो अरिस्ट है उनको भी थोड़ा सा ढंग से प्रिपेयर कर रहे हैं कि लोगों को लेने में सुविधा हो। आज आदमी को अगर आप 3 ग्राम चूर्ण सुबह 3 तरह का और 3 ग्राम चूर्ण रात को 3 तरह का देने की कोशिश करें तो वो नहीं खाएगा या नहीं खा पाएगा या उसे तमाम तरह की समस्या होगी। तो वो आदमी आजकल कैप्सूल और टेबलेट्स में ज़्यादा भरोसा करने लगा है। तो हम भी इस आयुर्वेद को धीरे धीरे करके इस तरह से मॉडर्न कर रहे हैं कि लोगों को दवाइयाँ लेने में असुविधा ना हो। वो जिस तरह से और किसी पैथी की दवाई लेता है उसी तरह सेम उसी तरह से आयुर्वेदिक दवाइयाँ भी ले सके, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स ना हो दवाइयाँ लेने में।
1: जी, ये तो आपने कहा कि ये आप मॉडिफाइड कर रहे हैं।
0: हाँ,
1: हम जानना ही चाहेंगे कि कोई जैसे ट्रीटमेंट की जहाँ बात आती है तो ट्रीटमेंट में भी कोई क्या फ़र्क आया है कि पहले आप दवाओं को कुछ इस तरह देखते थे अभी कुछ अलग तरह से देखते हैं, या कुछ चीज़ों को और ऐड किया जाता है कि नहीं इसमें ये चीज़ की कमी होने पर इन चीज़ों को भी ऐड करके आफ्टर कोई रिसर्च के?
0: देखो ट्रीटमेंट में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आयुर्वेद परफेक्ट है, मुझे ऐसा लगता है, मैं और नहीं कह सकता।
1: ओके,
0: पर डायग्नोसिस में फर्क आया है, तमाम तरह के मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस आ गई हैं, जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ और खून की जांचें हुई, एक्सरे हुआ, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ गई हैं। तो डायग्नोसिस में तो डिफरेंस आया है, थोड़ा सा हम डायग्नोस करना ईजी हो गया है आज के समय में, पर ट्रीटमेंट मुझे लगता है कि लगभग वैसा ही चल रहा है, उसमें कोई बहुत फर्क नहीं आया है। Okay. और कारगर है, पूर्णतः कारगर है। इस विषय में मैं पूर्णतः विश्वास और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट जो है वो बहुत ही कारगर है।
1: ठीक है, ये तो आपने कहा कि बहुत ही कारगर है। एक बात जहन में बहुत टाइम से आ रही है, अब सोच रहा हूँ कि पूछ ही लूँ आपसे।
0: बिल्कुल,
1: कि आप डॉक्टर हैं, आपने पढ़ाई की है आयुर्वेदिक की, इसके साथ ही हमारे ही शहर में या कहीं भी चले जाइए बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे बाबा होते हैं जो इसका इलाज करते हैं, तो फिर कोई भी शख्स आपके ही पास क्यों आए?
0: हाँ बिल्कुल, ये सही सवाल आपका है। मैंने इस शुरुआत में ही इसका जवाब दिया था कि एक व्यक्ति है जो जिसने पढ़ाई की है, जिसका रजिस्ट्रेशन है, तो उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं होता, उस रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि उसकी एक बाध्यता है समाज के प्रति, वो गलत नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार की नज़रों में है। ऐसे लोग जिनकी कोई डिग्री नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दवाई या हो सकता है बहुत अच्छा इलाज करता हूँ, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, पर विश्वसनीयता के मामले में अगर मुझे इलाज कराना हो तो सामने वाले की विश्वसनीयता किस वजह से है वो मैं ढूंढना
1: चाहूंगा। कोई पैरामीटर तो होगा।
0: हाँ,
1: जाहिर सी बात है।
0: तो अगर वो किसी पैरामीटर्स को पूरा करता है आपके, कि आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ है, इसने ऐसा ऐसा किया था, कई लोग कहते हैं कि उनके दवा में बहुत फ़ायदा है, तो वो फ़ायदा तो मतलब कोई भी लेमैन दे सकता है, और कोई दवा अच्छी है या बुरी है उसका डिसीजन मेरे ख्याल से लेने के लिए एक योग्यता चाहिए कि किस दवा, कोई दवा फ़ायदा करती है या कोई दवा नुकसान करती है, वो डिसीजन लेने के लिए एक विशेष योग्यता होनी चाहिए मेरे ख्याल से। जैसे कोई रिसर्चर है वो बताएगा कि ये दवा खाने से फ़ायदा होता है हमें, या इस दवा खाने से तुरंत तो फ़ायदा होता है लेकिन कुछ समय के बाद में नुकसान होने लगता है। मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे लोग बहुत सारी उल्टी सीधी दवाइयाँ देकर लोगों को और पहले से ज़्यादा बीमार कर देते हैं। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि वो मेरे पास ही आए, पर मेरे कहने का मतलब ये ज़रूर है कि वो देखे कि जिस व्यक्ति के पास जा रहा है वो प्रमाणिक है, वो ऐसा है कि उसकी समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी है, वो गलत ना हो, वो ठग ना हो, वो लोगों को मतलब दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं भ्रमित ना कर रहा हो।
1: करेक्ट। हाँ, और मुझे लगता है ये सिर्फ ट्रीटमेंट करने वालों के साथ ही दिक्कत नहीं है, यानी ये सिर्फ ठग अगर जिनकी बात हम कर रहे हैं, ये सिर्फ इलाज करने वाले के रूप में ही नहीं बल्कि ये कंपनीज के रूप में कैसे प्रोडक्ट हैं, जैसे कुछ तेल हुआ, कुछ ऐसे चीज़ें बना बना के चूर्ण को बहुत सारी ऐसी दावे किए जाते हैं कि फला बीमारी में एकदम तरीका है।
0: देखो हमारे हम कुछ भी कहें कि आयुर्वेद हमारे यहाँ से लुप्त हो गया है या हम आयुर्वेद से दूर चले गए हैं, पर हमारे मन में हमारे जहन में आयुर्वेद के प्रति जो एक भरोसा है ना वो अभी भी बना हुआ है, और उस भरोसे का फ़ायदा उठाने की बहुत सारे लोग कोशिश करें। अभी दो दिन पहले मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा, तीन दिन पहले, कि कम से कम 30-40 ऐसी दवाइयाँ थी जिनको सरकार ने बैन किया, नुकसान वो मतलब प्रतिबंधित चीज़ों को मिक्स करके दवाइयाँ बना रहे थे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी पढ़े, जैसे आपका सवाल था कि आपके पास ही क्यों आए, तो मेरे पास अगर कोई आएगा और मैं कोई दवा किसी पेशेंट को लिखूंगा तो सबसे पहले ज़रूरी है कि मैं उसके बारे में जानता हूं कि नहीं जानता हूं। तो कोई डॉक्टर या कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर आपको कोई दवाई देगा तो वो ज़रूर उसकी
1: जांच कर लेगा
0: कि वो कितना अच्छी है, कैसे है, आपके लिए नुकसानदायक तो नहीं है, क्या है। कोई भी डॉक्टर गलत दवा नहीं लिखेगा, वो किसी भी पैथी का हो
1: जी, क्योंकि मुझे भी लगता है कि जो बाकी अदर जिनकी बात हमने की, वैद्य जो बाबा कहलाते हैं, वो आप करताल तो नहीं करते हैं, वो सबको बस एक कॉमन दवा उठा के दे देते हैं, और ये बिल्कुल भी नहीं होता है, क्योंकि हर इंसान की अपनी प्रॉब्लम होती है। हो सकता हो हम और आप एक ही चीज़ के पेशेंट हो लेकिन बॉडी टाइप अलग होता है, हो सकता है एक के साथ हमारे साथ दूसरी बीमारी हो, तो उसके लिहाज से दवा थोड़ा सा और चेंज होनी चाहिए।
0: मैं इस विषय में थोड़ा सा और क्लियर करूंगा कि आयुर्वेद में तो ये कहा जाता है कि अगर किसी को फीवर है तो फीवर के तीन कॉज होते हैं, तीन सिम्टम्स होते हैं, मूलतया तीन दोष बताए जाते हैं, वात और पित्त और कफ आयुर्वेद में। तो फीवर भी वातज हो सकता है, पित्तज हो सकता है, कफज हो सकता है, और तीनों का डिफरेंट ट्रीटमेंट बिल्कुल डिफरेंट होता है। मतलब अगर वातज फीवर है तो उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो कफज में नहीं होगा, और जो कफज फीवर है उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो वातज में नहीं होगा। तो सभी को एक तरह की दवाई देके ठीक करना ये आयुर्वेद में संभव नहीं है
1: जी।
0: अगर सभी को एक दवा बता दी जाए कि ये दवाई है, ये सारे बुखार में काम करती, तो ऐसा आयुर्वेद में संभव नहीं है। आयुर्वेद में हर बीमारी को बहुत बारीकी से परख कर देख कर तभी उसका इलाज किया जाता है
1: जी, जैसे बाकी अदर पैथीज में भी होता है। हाँ। और ये एक सही तरीका भी है।
0: बिल्कुल
1: बिल्कुल सही बात है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बता दें हमारे श्रोताओं को कि ये वायु पित्त कफ होता क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग।
0: आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ये तीन दोष होते हैं, वात पित्त कफ, और इन तीनों से ही हमारे शरीर की रचना होती है। अगर ये तीनों साम्य अवस्था में होते हैं, जितना शरीर में होना चाहिए, तो हम आरोग्य होते हैं, और अगर इनमें विषमता आ जाती, जितना होना चाहिए उससे घट जाते हैं या बढ़ जाते हैं, तो उसी स्थिति को बीमारी कहते हैं।
1: ओके,
0: इन तीनों की विषमता ही बीमारी है
1: जी। तो आपने कहा कि अगर जैसे ये बैलेंस अगर है तब तो ठीक है, अगर इससे घटे या इससे बढ़े तो फिर दिक्कत आती है।
0: बिल्कुल,
1: और फिर ट्रीटमेंट के लिए इंसान आता है।
0: हाँ।
1: इसी के साथ चूंकि अब हमारे छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक का भी वक्त हो गया है, आएंगे तो आपसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक जीवन कैसा होना चाहिए किसी भी मनुष्य का, जो कि आयुर्वेद में बताया गया है, लेकिन इस छोटे से शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक के बाद। सो कहीं मत जाइएगा, सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने प्रोग्राम में जिसका नाम है गोधुली। नाउ यू लिसनिंग ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन। हमारी बातचीत का दौर जारी है डॉक्टर प्रभात रंजन तिवारी सर से। सर, जाने से पहले अभी हमने आपसे और श्रोताओं से ये कहा था कि आने के बाद हम बात करेंगे कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, इस विषय में विस्तार से हमारे श्रोताओं से बताइए।
1: हाँ जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूँगा और मुझे इस बारे में तो जरूर ही बात करनी चाहिए अगर हम आयुर्वेद पे बात कर रहे हैं।
0: बिल्कुल,
1: देखिए स्वस्थ जीवन के लिए आयुर्वेद कहता है कि जो हमारे तीन दोष होते हैं वात पित्त कफ, इनका साम्य होना जरूरी है और इनको साम्य अवस्था में रखने के लिए मुख्य रूप से दो तीन चीज़ें जिम्मेदार होती हैं। पहला तो होता है आहार, हम भोजन क्या करते हैं। दूसरा होता है विहार। विहार का मतलब हम कह सकते हैं कि हमारी दैनिक क्रियाकलाप क्या है
0: जी।
1: सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, व्यायाम, सब कुछ विहार में आता है। और तीसरा होता है हमारी मानसिक अवस्था, हम कैसे हैं, हम दुखी हैं, हम खुश हैं, हम कैसे हैं। ये तीनों चीज़ जो है आपके दोषों को साम्य अवस्था में रखने में मदद। तो सबसे पहले हम आते हैं आहार पे। जो हमारा आहार, हमारा भोजन है, कुछ चीज़ें हैं जो वात बढ़ाती हैं, कुछ चीज़ें हैं जो पित्त बढ़ाती हैं और कुछ चीज़ें हैं जो कफ को बढ़ाती हैं। अब कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका कफ प्रकोपित है और वो कफ को बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन करेगा तो उसको बीमारी होगी। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, सॉरी जोड़ना चाहूँगा कि आयुर्वेद का एक सिद्धांत ये भी है, आयुर्वेद ये भी कहता है कि जो भी शरीर में होने वाली जितनी भी बीमारियां हैं उसका मुख्य अधिष्ठान होता है हमारी अग्नि, हमारा पेट, जो हमारा डाइजेशन सिस्टम है। कहते हैं अगर आपका डाइजेशन सिस्टम वीक है तो ही आपको जॉइंट्स की प्रॉब्लम होगी, तो ही आपकी हड्डियाँ कमजोर होंगी, या तो ही आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कार्डियक्स, मतलब एक हिसाब से हम कह सकते हैं कि हमारा जो पेट है, हमारा डाइजेशन सिस्टम है, वो मुख्य केंद्र है हमें स्वस्थ रखने का। तो सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारा डाइजेशन सिस्टम कैसे स्वस्थ रहे, उसके लिए हमें किस समय क्या भोजन करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम रात को दही खाते हैं वो हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है, या रात को हम बहुत हैवी डाइट लेते हैं, या रात को हम बहुत देर से खाते हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वो सारी चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए। रात को हमेशा सुपाच्य और हल्का भोजन लेना चाहिए। दिन में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट, आयुर्वेद की ब्रेकफास्ट जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। दोपहर सुबह का भोजन और शाम का भोजन,
0: अच्छा दो ही भोजन की बात,
1: दो भोजन की बात, और जो शाम का भोजन है उसका समय 5 से 6 बजे के सूर्यास्त से पहले होना चाहिए।
0: ओके,
1: मतलब देर रात को खाने जैसा कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए। मतलब हम सुबह भोजन करते हैं, 8-9 बजे हमने खाना खाया और 5-6 बजे फिर हमने खाना खा लिया। रात को हम लिक्विड पानी, दूध या कुछ ऐसा ले सकते हैं। यही चीज, मतलब 80% समस्याएं तो मुझे लगता है यही चीज समाप्त कर देती है। दूसरा, हम भोजन में क्या खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेल वाली चीज़ें खाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल बताएं कि घी, कहते हैं कि हिंदुस्तान में जो तलने वाली चीज़ें बनाई जाती थी कुछ समय पहले, आज के बहुत ज़्यादा पहले नहीं, मेरे ख्याल से 70-80 साल पहले, वो देसी घी में ही बनती थी या सरसों के तेल में बनती थी
0: जी।
1: देसी घी एक ऐसी चीज़ है, आप कभी अपने घर पर भी अजमा के देख सकते हैं कि एक दिन आप रिफाइंड या डालडा से पूड़ी बना के खाएं, आप देखेंगे आपको इंडाइजेशन होगा, एसिडिटी होगी, सारी समस्या होगी। दूसरे दिन वही पूड़ी आप देसी घी में बनाकर खाएं, आप देखेंगे आपको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी और आपका डाइजेशन पहले से अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो पित्त शामक और अग्निवर्धक है, यानी आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करने वाला है। आप कभी भी, आपको एसिडिटी हो रही है, आप थोड़ा सा घी खा के देखो, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि चिकित्सा जो है वो करने के लिए कुछ अलग से ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, हमारा जो भोजन है वही हमारी चिकित्सा है। हमें कब खाना है और क्या खाना है, अगर हमें ये पता चल जाए तो हमें चिकित्सा के लिए कुछ और ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और कुछ चीज़ें मैं बताना चाहता हूँ। बिहार जैसे हुआ, बिहार में जैसे कहते हैं कफ वृद्धि, अगर कोई व्यक्ति है वो भोजन करने के तुरंत बाद सो जाता है दिन में, तो उसको इंडाइजेशन हो जाएगा, उठने के बाद उसका पेट भारी भारी रहेगा, सर दर्द होगा, थोड़ा सा सर भारी भारी सा रहेगा, क्योंकि दिन में सोने से कफ प्रकोपित होता है। कफ प्रकोपित होगा तो अग्नि को मंद करेगा, डाइजेशन वीक हो जाएगा उसको। अगर कोई आदमी रात्रि जागरण करता है उससे क्या होता है, वात प्रकोपित होता है। आप स्वयं पे भी इसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अगर आप एक रात पूरी रात जागो, आप देखो आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, पैरों में दर्द होगा, सर भारी भारी सा रहेगा, शरीर में झंझनाहट सी होगी, आपका पूरा मतलब वात के जितने शरीर में ड्राइनेस हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सोचो कि अगर आप रात को जागते हैं तो आप सुबह अपने शरीर में ड्राइनेस फील कर सकते हैं। तो इन चीज़ों से ये सिद्ध होता है कि आयुर्वेद में जो भी सिम्टम्स और जो भी चीज़ें बताई गई हैं उन पर बहुत गहरी रिसर्च की गई है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि जिनको सुन के या थोड़ा सा जान के बता, हमारे शरीर के बारे में बहुत गहरी रिसर्च करके तभी हमारे आहार और विहार का निर्धारण किया गया है। आयुर्वेद में दिन के हिसाब से, ऋतु के हिसाब से, दिनचर्या और ऋतुचर्या दोनों बताया गया है। ये भी बताया गया है कि किस ऋतु में किस चीज़ का सेवन नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अभी बारिश का मौसम चल रहा है, इस मौसम में लगभग सभी का डाइजेशन वीक हो जाता है, पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ जाती हैं, लोगों को गैस्ट्राइटिस जैसे होने लगता है। क्यों? क्योंकि इस मौसम में आयुर्वेद के अनुसार हमें हल्का भोजन लेना चाहिए। लेकिन हमारा चूंकि अब ऐसा समय हो गया कि सबके पास स्टोर होता है सारा राशन, पहले समय होता था कि लोग खेत से पैदा होता था वही खाते थे, अब क्या है कि हमारे पास सब कुछ स्टोर होता है, दाल है, चावल है, आटा है, सारी चीज़ें हमारे पास होती है। तो हमारा जो भोजन है वो एक रूटीन बन गया, दाल चावल रोटी सब्जी हम परमानेंट खाते हैं, या पूड़ी पराठा जो भी हम खाते हैं अभी वो परमानेंट खाते हैं। इस वजह से हमें हमारी पेट से संबंधित समस्याएं बढ़ने लगी, पाइल्स जो है, लोग पाइल्स का, मुझे बहुत सारे लोग मिले कि सर हम पाइल्स की दवा खा रहे हैं लेकिन पाइल्स ठीक नहीं हो रहा। पाइल्स अलग से कोई बीमारी नहीं है, पाइल्स इनडाइजेशन और कॉन्स्टिपेशन की वजह से होने वाला बदलाव है शरीर का, ये कह सकते हैं हम। मतलब अगर आपका डाइजेशन फिट है तो कभी पाइल्स जैसी समस्या नहीं होगी। अगर आपका डाइजेशन फिट है तो शायद ही घुटनों का दर्द हो। अगर आपका डाइजेशन फिट है, माइग्रेन जैसी समस्या, हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या, कोलेस्ट्रॉल जैसी समस्या, ये सारी समस्या अपने आप ही धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी अगर आपका डाइजेशन फिट है तो।
0: जी, तो मतलब आपने ये बताया कि एक तो खाने का वक्त निर्धारित होना चाहिए,
1: बिल्कुल।
0: दूसरी चीज है जैसे विहार के बारे में आपने बताया,
1: बिल्कुल, कि जैसे व्यायाम जैसे है, व्यायाम के बारे में हम आज के समय में हम जिम जाते हैं, परमानेंट एक्सरसाइज करते हैं, खूब अच्छे से करते हैं, पर आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें सर्दियों में, जो सर्दी का मौसम है, उसमें खूब अच्छे से एक्सरसाइज करना चाहिए। मतलब हमारी शक्ति का आधा, जितना हमारी टोटल शक्ति है उसकी आधी शक्ति हमें व्यायाम में खर्च कर सकते हैं हम सर्दियों के महीने में। गर्मियों में अपने शक्ति का एक चौथाई हम खर्च कर सकते हैं व्यायाम में, और बारिश में हमें बिल्कुल व्यायाम नहीं करना चाहिए, कोई भी बहुत हैवी एक्सरसाइज हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारी अग्निमांद होती है, अगर हम ज़्यादा व्यायाम करेंगे हमें ज़्यादा भूख लगेगी, लेकिन हमारी अग्नि डाइजेशन वीक है, हम उतना जो भी खाएंगे वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें समस्या उत्पन्न होने लगेगी।
0: वाह, मतलब सीजन भी आपको ध्यान, कौन से सीजन में कितना क्या करना है,
1: क्या खाना है, क्या करना है, दोनों चीज़ें।
0: और आपके अकॉर्डिंग आपने कहा कि अगर इन चीज़ों को समय अनुसार कर लिया जाए तो 80% बीमारियां तो वैसी दूर हो जाएंगी।
1: मुझे तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हम अपने खाने पे ध्यान रख लें, अपने डाइजेशन पे, तो 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी, और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। समय से खाएं और उचित, जो हमारे लिए उचित है वो खाएं। और एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहूँगा
0: जी,
1: कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे खाने के लिए क्या उचित है, हर व्यक्ति को पता है कि उसे क्या नुकसान करता है और क्या उसके लिए उचित है। हम जानबूझ के नुकसान करने वाली चीज़ें स्वाद के लिए खाते हैं, कि आप पूछ लो कि आपके लिए क्या नुकसानदायक है, वो सारी चीज़ें बता सकता है, क्योंकि हमारे मूल से आयुर्वेद जुड़ा हुआ है। ये भी एक एग्जांपल है कि आयुर्वेद से हम अलग नहीं हो पाए आज तक भी।
0: सही बात है।
1: हाँ।
0: और आपने बिल्कुल सही कहा कि स्वाद और स्वास्थ्य में कई लोग स्वाद को प्रायोरिटी देते हैं तो कई लोग स्वास्थ्य को देते हैं,
1: बिल्कुल,
0: और उसका परिणाम सामने दिखने को आ ही जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: डॉक्टर साहब, इसी कड़ी में हम आपसे अब ये भी जानना चाहेंगे, एक अहम बात होती है फूड कॉम्बिनेशन की, कि क्या खाना है, किस चीज़ के साथ क्या बिल्कुल भी नहीं खाना है। बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जब एक साथ दो ऐसी चीज़ों को खाया जाता है जो विषम होती है तो उससे कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है,
1: बिल्कुल,
0: उसके बारे में।
1: बिल्कुल, मैं बताऊँगा। एक सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे उसको आयुर्वेद में कहा गया विरुद्ध आहार, मतलब दो चीज़ें ऐसी जिनको साथ में मिला के खाने से आपको फायदा नहीं नुकसान होगा, उन्हें विरुद्ध आहार कहते हैं। जैसे शहद और घृत, ये दोनों हमारे लिए बहुत फायदेमंद हैं, पर अगर दोनों को सम इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके खाया जाए तो हमारे लिए नुकसानदायक है, जहर जैसे होता है, मतलब एलर्जिक होती है। मछली और दूध या दूध में नमक, ये विरुद्ध आहार है। और हम कह सकते हैं कबूतर का मांस सरसों के तेल में, इसे विरुद्ध आहार बताया गया है आयुर्वेद के अनुसार। शराब पीने के बाद में दूध पीना विरुद्ध आहार बताया गया है। बहुत लोग कच्चे अंडे को दूध में मिला के खाते हैं, ये भी विरुद्ध आहार है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो विरुद्ध आहार के अंतर्गत आती है। कुछ चीज़ों को हम आज के समय में पालन कर सकते हैं, मतलब कुछ चीज़ों से दूर रह सकते हैं और कुछ चीज़ों से नहीं रह सकते हैं।
0: जैसे
1: पनीर, अब अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद देखा जाए तो पनीर भी विरुद्ध आहार है।
0: किसके साथ?
1: पनीर की सब्जी।
0: ओके,
1: विरुद्ध आहार है लेकिन हम खाते हैं, ठीक है। लेकिन पनीर हम खा सकते हैं पर उसकी सब्जी बना के नहीं खा सकते, कच्चा पनीर हम खा सकते हैं।
0: अच्छा, लेकिन इसमें भी क्या डॉक्टर साहब कुछ कम और ज्यादा का है? जैसे एक चीज तो है कि कुछ भी आपने एक बार में लिया तो बहुत ज्यादा रिएक्शन हो गया, पनीर का आपने एग्जांपल दिया, तो क्या मतलब कुछ चीजें चलाऊ हो जाती है क्या?
1: ऐसा नहीं है, विरुद्ध आहार जो भी है वो ऐसा नहीं है कि आप तुरंत खाओगे जानलेवा हो जाएगी
0: जी,
1: पर आप लंबे समय तक जब उसका उपयोग करेंगे तो शरीर में बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। लंबे समय जब आप उसको रेगुलर यूज करते रहेंगे तो आपको उसका दुष्प्रभाव दिखना चालू होगा। ऐसा नहीं है कि आप एक डोज लेंगे और आपको समस्या होने लगेगी।
0: ओके, एनी टाइम टेकिंग ये भी है?
1: हाँ हाँ बिल्कुल, लंबे समय तक जब आप विरुद्ध आहार का सेवन करेंगे तो आपको समस्या उत्पन्न होगी, बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी
0: जी। तो हमारे ख्याल से हमारे श्रोताओं को ये विरुद्ध आहार के बारे में जानकारी मिलके उनको काफी ज्यादा समझ में आई होगी बातें, और ये बहुत ही अहम बात है कि हमको ये पता होना चाहिए कि हमारा फूड कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में अभी एक क्वेश्चन मेरा और है आपसे कि जैसे कि हमने देखा है कि एलोपैथ में भी लोग यह करते हैं कि जरा सा बुखार आता है तो कुछ दो चार ऐसी गिना चुना दवाएं हैं जो जाके ले लेते हैं मेडिकल स्टोर से। आयुर्वेद में बहुत सारे मेडिकल स्टोर्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी दुकान होती है जहां आदमी जाके चूर्ण, कोई ऑयल या कोई ऐसे पेय पदार्थ होता है वो ले लेता है, लेकिन डॉक्टर से सलाह नहीं लेते हैं और उनको लगता है ये बता दिया जाता है कि ये चीज़ फ़ायदा करेगी, ले लेते हैं। तो ये कितना इस चीज़ को आप सही मानते हैं?
1: देखो, आयुर्वेद में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो फ़ायदेमंद होती हैं हमेशा के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, हर घर में लगभग हर आदमी जानता है आंवला, आंवला बहुत फ़ायदेमंद है। पर एक चीज़ और है कि अगर किसी को अंग्रेजी में हिंदी में सफ़ेद दाग कहते हैं, अगर किसी को सफ़ेद दाग है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। किसी की अग्नि जो है बहुत मंद है तो उसे आंवला नहीं लेना चाहिए। आंवला पित्त शामक होता है और पित्त की कमी से की वजह से जो होने वाली बीमारियां हैं अगर आंवला आप ज़्यादा लेंगे तो बढ़ जाएंगी। ऐसे ही कोई भी चीज़ आप अगर ले रहे हैं, कुछ भी आप ले रहे हैं और आपको उसकी आवश्यकता नहीं है तो वो आपको नुकसान करेगी। आपको एसिडिटी है, आप दही खाएंगे आपको नुकसान करेगा। आप हाई ब्लड प्रेशर में नमक नहीं खाते, जिससे आप नमक खाएंगे आपको प्रॉब्लम होगी। तो कहने का मतलब है कि आपको सलाह जरूर लेनी चाहिए डॉक्टर से। आपको अभी फीवर आया रात में, इमरजेंसी, आपने एक डोलो खा लिया, ठीक है, पर डोलो के स्ट्रिप पे देखो आप, उस पे लिखा हुआ है कि इंजीरियस टू हेल्थ।
0: जी जी,
1: इंजीरियस टू हेल्थ मतलब कोई भी आप बुखार की दवा खाते हैं तो उस पे लिखा होता है इंजीरियस टू हेल्थ या इंजीरियस टू लीवर, कुछ भी इंस्ट्रक्शन होते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी दवा बिना डॉक्टर के
0: प्रिस्क्रिप्शन
1: के नहीं लेना चाहिए, कुछ भी, कोई भी दवा आप ले रहे हैं। क्योंकि आयुर्वेद हमारे खान पान से जुड़ा हुआ है तो लोगों को लगता है कि हमारे रोजमर्रा की चीज़ों जैसा ही है, पर कई बार वो चीज़ें नुकसान भी करती हैं।
0: यानी सलाह बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, बिना सलाह के कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए।
0: कोई बात नहीं, ये बिल्कुल सही बात आपने कही। और एक बात हम आपसे और पूछना चाहेंगे, चूंकि अब हमारे आपके चलने का वक्त भी हो चला है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन जाने से पहले एक लास्ट क्वेश्चन आपसे कहना चाहेंगे कि आप बैठे हैं स्टैम्प रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम के स्टूडियो में, जो कि देवी पाटन मंडल और गोंडा का पहला एफएम है।
1: बिल्कुल,
0: तो इसको लेके आपको क्या लगता है कि जिस तरह के प्रोग्राम हम प्रसारित कर रहे हैं, इसके आने से गोंडा में कितना चेंज होने वाला है? इसको सुनने के बाद जो लोग सुनते हैं उनके जिंदगी में कितना चेंजेस आएंगे?
1: जैसा कि पहले मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं अपने गांव से, अपने घर से काफ़ी गहरा जुड़ाव मेरा रहा। तो जब पहली बार एफएम चालू हुआ ये, तो उस समय मैं दिल्ली में था, मेरे किसी मित्र ने बताया कि अपने गोंडा में भी एफएम चालू हुआ है। तो जब मैंने पहली बार एप्लीकेशन डाउनलोड किया इसका, जो कि प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, और सुना तो मुझे बड़ा जुड़ाव महसूस हुआ, बड़ा अपनापन सा लगा। ऐसा नहीं लगा, नॉर्मली हम कार में चलते हैं किसी शहर में हैं तो वहाँ एफएम बजता रहता है तो हम एफएम गाने सुनने के लिए लगाते हैं, पर जब हम ज्ञानस्थली को प्ले करते हैं और ख़ास करके जब हम गोंडा से बाहर हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने शहर में आ गए हैं, अपने शहर से जुड़ गए हैं।
0: क्या बात है, तो वो एहसास कराता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, अपनेपन का एहसास कराता है।
0: क्या बात है, और पहली बार इस तरह का आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, मतलब ये चीज़ मुझे बहुत खुशी हुई। हर गेस्ट आते हैं उनकी अपनी एक राय होती है, आपका ये है कि जुड़ाव बहुत ज़्यादा महसूस होता है जब स्पेशली आप बाहर होते हैं, ये बहुत अच्छा मुझे लगा जान के। और हमारी कोशिश भी है कि हमेशा लोग इससे जुड़े रहें और हम ऐसे ही जनहित की जानकारी हमेशा इस तरह देते रहें कि लोगों में एक जागरूकता आए, एक ऐसा मंच हो जहाँ पे एक पसमानदा समाज आए जहां पे हम एक दूसरे से बातचीत करें और बहुत सारी समस्याओं को सिर्फ और सिर्फ जागरूकता के माध्यम से ही सॉल्व कर लिया जाए, ये हमारी हमेशा की कोशिश रहेगी। आप डॉक्टर साहब आए, आपने अपना कीमती वक्त निकाला, हमने आपके जीवन के बारे में बात की, आपने अपने जीवन के बारे में बताया, आपने अपनी पढ़ाई के बारे में बताया और साथ ही आयुर्वेद से जुड़ी हुई न जाने कितनी सारी हमने बातचीत की, न जाने कितने सारे हमने आपसे प्रश्न किए जिसका आपने बखूबी उत्तर सरलता व सहजता के साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अदनान जी, मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा, आपकी मीठी आवाज़ रेडियो पे अक्सर सुनते रहते हैं, मुझे कभी नहीं लगा था कि जब पहली बार मैंने सुना आपकी आवाज़ रेडियो पे, लगा था कि हम आप आमने सामने बैठ के बात करेंगे, आज मुझे बात करके बहुत खुशी हुई और मुझे लगा कि आपकी आवाज़ रेडियो पे जितनी मीठी है वास्तव में भी उतनी ही मीठी है, कोई फ़र्क नहीं है।
0: बिल्कुल, लेकिन इसका हम कोई दवा नहीं बताने वाले।
1: थोड़ा कम कीजिए, नहीं तो शुगर और बढ़ जाएगा।
0: लेकिन हम बता दें कि हम भी जो इस्तेमाल करते हैं वो आयुर्वेद की दवा है जो कि नुकसान नहीं करने वाली।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो वो बस सीधा सा प्रेम है और कुछ नहीं है आप सभी लोगों का। और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और जनहित की बात हमारी हुई, लोगों को बहुत फायदा इससे जरूर होगा। जो भी हमारे श्रोतागण इस वक्त सुन रहे हैं वो इन बातों को अगर ध्यान रखेंगे तो न जाने कितनी सारी बीमारियों से बच सकते हैं और एक स्वस्थ जीवन जीने की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।
1: थैंक यू
0: सो मच। अपने श्रोताओं से कहेंगे कि हम सुनते रहे रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, कल फिर से हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ, उनसे जुड़ी हुई कई बातें करेंगे, उनके जीवन से बहुत कुछ सीखेंगे और उनके कार्यक्षेत्र के बारे में भी जानेंगे। सुनते रहिए रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो, आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: भाई जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM, और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM।
2: ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन, गोंडा शहर की धड़कन।

क्या बात क्या बात क्या बात। कहते हैं कि ढलती हुई शाम ने जब सूरज को छुआ, जब ढलती हुई शाम ने सूरज को छुआ तो फिर क्या था, बस वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है आपके वाले शो गोंडा मैसेज मसाला में। एंड यस, वी आर रेडी टू गो ऑन म्यूजिकल लॉन्ग ड्राइव। जी हाँ, एक म्यूजिकल लॉन्ग ड्राइव पे चलने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आज भी ना आपके साथ है। अंताक्षरी का दिन आज है, लेकिन बातें होंगी बहुत सारी। तो कुछ कहा था मैंने, कुछ अर्ज किया था मैंने कि ढलती हुई शाम ने जब सूरज को छुआ, आसमान ने जैसे कोई खत लिखा हुआ, हवा में घुली थी तेरी याद की खुशबू, हवा में घुली थी तेरी याद की खुशबू, खामोश रास्तों पर था तेरा ही जादू, चाय की प्याली खिड़की और हल्की सी ठंडक, तेरी बातों की यादों में मिली दिल को राहत। ये शाम की कितनी अजीब होती है, दूरियां हो फिर भी मोहब्बत करीब होती है। सूरज ढलता तो रंग और

0: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
1: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
1: आज ही कॉल करें 9260 9861 9816। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
0: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
1: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।
2: क्या आप गोंडा से हैं और आप भी अपने लुक को देना चाहती हैं एक नया और शानदार मेकओवर? तो अब इंतजार हुआ खत्म।
1: ग्लैम स्टूडियोज लाया है मॉनसून धमाका ऑफर। हर सर्विस पर 1499 से ऊपर के बिल पर पाइए फ्लैट 20% की छूट।
2: चाहे आपको पार्टी के लिए ग्लोइंग मेकअप चाहिए हो या बालों के लिए केराटिन और बोटॉक्स जैसे एक्सपर्ट ट्रीटमेंट, हम देते हैं आपको प्रीमियम सर्विस, वो भी आपके बजट में।
1: पता है यूनिटी ऑर्किड कॉम्प्लेक्स, ईदगाह के सामने, पटेल नगर, गोंडा। अभी कॉल करें 7234-020-202।
2: ग्लैम स्टूडियोज, यहाँ स्टाइल और भरोसा दोनों मिलते हैं।
3: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं ओटीपी अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
4: अरे सुना
5: क्या?
4: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
4: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
6: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब
6: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
7: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-8914416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
8: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
9: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
8: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
9: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
8: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
9: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 8888-100-9400।
10: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन,
11: गोंडा शहर की धड़कन।
12: हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियां यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हाइपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हाइपेटाइटिस ए, हाइपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

तू है जहां मैं हूं वहीं, तेरी मंजिल है जहां वहीं मेरी मंजिल भी है कहीं। तो भाई सभी का स्वागत है आज वाली शाम में। आज की शाम शाम नहीं है, आज की शाम है खास, इसलिए क्योंकि हम करने वाले हैं बात आप लोगों से, आपकी और अपनी, यानी कि आपकी अपनी से मतलब मेरा ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको सुन के मन खुश हो जाता है, कुछ ऐसे डिवोशनल सॉन्ग हैं जिन्होंने हमारे बचपन को बदल दिया। अब कहीं दूर नहीं जाते हैं और एक गाना मैं बताती हूँ जिसको सुन के, अब आप सोच रहे होंगे मैं इस गाने के बारे में बात ही क्यों कर रही हूँ, लंबी कहानी है, थोड़ी देर में जानेंगे। गुड इवनिंग अनूप, गुड इवनिंग अरविंद, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है। आपने गाना सुना होगा।

तो ये गाना आज मैं इसलिए बता रही हूँ, आप सोचोगे ये तो मीरा भाई ने लिखा है और मीरा भाई की भक्ति के ऊपर ये गाना है। आज आरजे बीना को क्या हो गया है, आज तो कोई ऐसा फेस्टिवल भी नहीं है। कहते हैं ना कि हर शुरुआत के पीछे एक लंबी कहानी होती है, तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। यानी कि आज कहानी नहीं लेकिन हाँ कुछ बताने के लिए आरजे बीना आपके साथ है और अंताक्षरी की शुरुआत भी होगी। बिल्कुल परेशान ना हो, बस हमारे साथ बने रहें, जैसे कि अनूप जी हैं, बाकी सारे लड़कियों की टीम मेंबर्स को भी बोलूँगी फटाफट से आप लोग भी आ जाइए। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको भारत में जो भारत की प्रसिद्ध म्यूज़िक जो है वो है भारतीय शास्त्रीय संगीत, और हमारे ही देश की महान शास्त्रीय संगीत गायिका जिनका नाम है MS सुब्बू लक्ष्मी, नाम तो सुना ही होगा आपने। इन्हें कर्नाटक संगीत में भी एक लंबी उपाधि मिली और इन्हें कर्नाटक संगीत की रानी भी कहा जाता है। इनका जन्म हुआ 16 सितंबर 1916 को मदुरई तमिलनाडु में, निधन हुआ 11 दिसंबर 2004 को चेन्नई में। खास बात आज इनके लिए ये है, इनकी बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि ये वो पहली महिला थी जिन्हें एज ए संगीतकार भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला था, भारत रत्न। अब आप सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये नाम तो हमारे मतलब सुना था कभी बचपन में, जीके की बुक में फ़ोटो के साथ ये नाम होता था, लेकिन इतना ध्यान से तो कभी पढ़ा नहीं। जी हाँ, MS सुब्बू लक्ष्मी जी पहली वो महिला थी जिन्हें एज अ संगीतकार 1998 में भारत रत्न यानी कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। इसके साथ भी उन्हें बहुत सारे सम्मान मिले, 1974 में रैमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। इसके साथ ही पुरस्कार पाने के साथ वो संगीतकार के रूप में पहली भारतीय महिला के रूप में प्रसिद्ध हुई दुनिया भर में। 1966 में संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी कि UNGA में प्रस्तुति देने वाली भी ये पहली भारतीय कलाकार बनी थी। मतलब वहाँ पे कोई प्रस्तुति जल्दी इंडियन नहीं दे पाता था उस दौर में, लेकिन इन्होंने जाके अपनी प्रस्तुति दी और अपनी पहचान बनाई। अब बात करती हूँ फिल्म और संगीत की। उन्होंने बचपन से ही संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 1945 में फिल्म आई थी मीरा, और उसमें उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई और उसमें उनके गाए हुए जो गाने थे वो बड़े प्रसिद्ध हुए थे। उन्होंने ज़्यादातर भजन गाए और तमिल भाषा में बहुत सारे गीत गाए। इनकी उपाधियों की बात करूँ तो एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में बात करूँ तो शायद पूरी शाम लग जाएगी, लेकिन मुझे बता के बड़ा अच्छा लग रहा है। आपने विष्णु सहस्त्र नाम सुने होंगे, अक्सर हम लोग कोई भी अच्छा डिवोशनल टाइम होता है तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि विष्णु सहस्त्र नाम सुनना चाहिए, तो ये भी इन्हीं की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था पहली बार। तो उनकी जो अद्वितीय संगीत प्रतिभा थी, उनके शांत और सादगीपूर्ण जीवन की जो कहानी थी, राष्ट्रवादी आंदोलन में भी उन्होंने हिस्सा लिया था, भारतीय जनता के प्रति उनकी सेवा और दान देने की जो शाश्वत अवधारणा थी वो बड़ी खास थी। उनकी आवाज़ एकदम ऐसा लगता था कि म्यूज़िक के साथ गा रही हैं। हम लोग गाते हैं तो हमें म्यूज़िक लेना पड़ता है, लेकिन वो गाती थी तो लगता था कि जैसे अपने आप सितार बजने लग रहे हों। उनकी उपलब्धियों की सूची अगर बनाने बैठे तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन जो मुख्य मुख्य थी उनके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। अब आगे बात करती हूँ, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरोजनी नायडू जैसी हस्तियों ने भी उनकी गायन प्रतिभा को अनमोल माना और उन्होंने राष्ट्रवाद के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी प्रतिभा का योगदान दिया। जब महात्मा गांधी को बताया गया कि MS सुब्बुलक्ष्मी जो हैं उनकी पसंदीदा भजन को गाने से मना कर सकती हैं क्योंकि उस समय उन्हें वह भजन ज्ञान नहीं था या आता नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं इसे दूसरों से द्वारा गाए जाने की बजाय मैं चाहूँगा कि इन्हें फिर से यही गाएं, मतलब कोशिश करें। और सुब्बू लक्ष्मी जी ने उस गाने को गाने के लिए जो तैयारी थी वो बना ली। बाद में उन्होंने पश्चिम के कई संगीतकारों और आलोचकों को प्रभावित भी किया, मतलब जो लोग बहुत अच्छा गाते थे उनको उनके करियर से छुट्टी मिल गई क्योंकि इन्होंने अपना करियर बहुत अच्छा बना लिया। फिलहाल आपके साथ आरजे बीना है, सिंपल मैम कल थी आज नहीं है। तो चलिए और बताती हूँ कि
बहुत सारे ऐसे संगीतकार हुए, चाहे वो सिद्धेश्वरी देवी, चाहे विलायत खान जैसे हिंदुस्तानी परंपरा के दिग्गजों की बात करूं, वो सभी हमारी सुब्बुलक्ष्मी का सम्मान करते थे। अब बात करते हैं उनके पति की। अपने पति और भारतीय राष्ट्रवादी त्यागराजन सदाशिवम और उनके प्रख्यात पत्रकार सहयोगी कल्की कृष्णमूर्ति के कथक प्रयासों से सुब्बुलक्ष्मी और सदाशिवम ने अपने संगीत कार्यक्रमों के माध्यम से धर्मार्थ संगठनों के लिए लाखों की धनराशि जुटाई। संगीत का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं किया जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ सुब्बुलक्ष्मी और सदाशिवम ने अपने जीवन भर के सभी संगीत कार्यक्रमों से जो प्राप्त आय थी उसे विभिन्न धर्मार्थ संस्थानों को दान दिए। इसके साथ ही परोपकार और जरूरतमंदों के प्रति उनकी आजीवन प्रतिबद्धता जो थी वो जितनी भी तारीफ की जाए वो कम थी। एक सौम्य शांत और सरल स्वभाव की भोली भाली इंसान जिन्होंने सादगी मतलब पूरा जीवन सादगीपूर्ण जिया और ना सिर्फ जिया बल्कि औरों को भी ऐसी प्रेरणा दी। सदाशिवम के साधारण से घर में आने वाले हर व्यक्ति मित्र परिचित परिवार सदस्य से उनको सिर्फ प्रशंसा मिलती थी। सब ये कहते थे सादा उनका व्यवहार, राष्ट्रवादी युग की काली और सफेद तस्वीरों से सजा हुआ था उनका घर, गर्मजोशी से स्वागत करना उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं था, वो हमेशा से सादगी भरा अपना अंदाज रखती थी। ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि भारत में MSS का आदर पारंपरिक संगीत जगत में कहीं अधिक व्यापक है, हमारे समय के किसी भी अन्य शास्त्रीय संगीतकार की उपलब्धियों से कहीं बढ़कर है। विश्व भर में भारतीय हिंदू और अलग जितने भी संगीत गाने वाले हैं, चाहे वेंकटेश सुप्रभातम हो, सब लोग हों, लेकिन हमारी सुब्बुलक्ष्मी जी की भी सानी नहीं थी। तो ऐसे लोगों को याद करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। तो चलिए हम अब म्यूजिकल ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज तो बातें हो गई MS सुब्बुलक्ष्मी के बारे में और मैं चाहती थी कि उनके बारे में बात हो। ऐसी प्रतिभावान महिला के बारे में बात होना ज़रूरी भी है जिसने अपने जीवन को संगीत को समर्पित कर दिया। चलिए एक गाना सुनते हैं जो ओल्ड इज गोल्ड टाइप नहीं होगा बल्कि 2026 के हिट गाने होंगे।

भाई ये गाना सुन के हमेशा से मैं शॉक हो जाती हूँ, और मिर्ज़ापुर 2 रॉक, क्योंकि ये गाना मिर्ज़ापुर 2 का है और हम इमेजिन कर सकते हैं कि मिर्ज़ापुर द मूवी का ये गाना दिल छू छू के जा रहा है बार बार, और जब भी बजता है तो दिल के तार बजते हैं कई बार कई बार कई बार। तो गुड इवनिंग वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर, और भाई फिर से आप सभी का स्वागत कर रही है आपकी अपनी आरजे बिना आपके अगले शो गोंडा मैसेज मसाला आरजे बिना वाला में, ठीक है।

काम। यस, देखो गाना मैंने कितना अच्छा से बना दिया। तो भाई 89.6 FM के जो हमारे लिसनर्स हैं, हमारे प्यारे लिसनर्स हैं, जो हमेशा सुनते सुनते मुस्कुराते हैं कुछ बातों पे, और कुछ बातों पे आंखें नम कर जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सुनते सुनते मुंह बनाते हैं, उन सभी का स्वागत है भाई। क्योंकि आरजे बीना के दिल में तो वो सारे ही बसते हैं, जो देख के मुस्कुराते हैं, जो आंखें भर जाते हैं, जो सुनते सुनते ड्राइव करते हैं, जो सुनते सुनते खाना बनाते हैं, जो चाय भी पी रहे होंगे, और शायद कुछ तो ऐसे भी हैं, क्या बताऊँ, अभी नाम लूँगी तो आप लोग कहेंगे ऐसे वाले भी लिसनर्स हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी होंगे जो वॉशरूम भी जाते हैं तो फ़ोन साथ लेके जाते हैं। कुछ है भाई, एडिक्शन टाइप का है, क्या कह सकते हैं, या अपने 89.6 FM से प्यार है जो आपको कहीं भी तनहा नहीं होने देता है। धर्मेंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हैं? और सभी लोग भाई उठ जाओ, शाम हो गई है, और कॉल का इंतज़ार कर रही हूँ ना मैं। हाँ यस, मैं तो भूल ही गई थी। तो चलिए अंताक्षरी शुरू करने के लिए हम करते हैं आगाज़ आज की शाम का, जो कि म्यूज़िकल होने वाली है, एंटरटेनिंग होने वाली है, और जर्नी लॉन्ग ड्राइव चलने वाली है। तो वैसे जर्नी की बात से मुझे याद आया कि यार मैंने MS सुब्बुलक्ष्मी जी की आप पूरी जर्नी बताई, कैसा कैसा क्या क्या किया। पहला भारत रत्न उन्हें मिला, तो मतलब सोचना चाहिए अपन लोग को भारत रत्न ना मिले, लेकिन हाँ अच्छे ह्यूमन बींग का रत्न तो मिल ही जाना चाहिए। मोहल्ले में चार लोग हमारी बैठ के परपंच ना करें, बुराइयाँ ना करें, अच्छाइयाँ करें, ये वाला रत्न तो हमें मिल ही जाना चाहिए कि फलनवा तो बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ यूपी बिहार में जब जिसका नाम नहीं पता होता है, या गांव में जैसे किसी का नाम लेना नहीं होता लेकिन गालियाँ दे लेते हैं मन लगा के, उसे फलनवा कह दिया जाता है। एनीवे आपके साथ आपकी फलनिया को बुला लीजिए, एंड अगर फलानी सुन रही हैं तो अपने फलानास को बुला लीजिए, तो फटाफट से लाइव हो जाइए, क्योंकि अंताक्षरी में आप दोनों की ही ज़रूरत है। तो जो जो जहाँ जहाँ से हैं और अपनी टीम को मजबूत करना चाहते हैं, तो अपने दोस्तों के साथ लाइव हो जाएं, क्योंकि अकेले अकेले गाने गुनगुनाने से क्या फ़ायदा है, क्योंकि

भाई मुझे इतना ये गाना आता नहीं है, पर कोशिश कर ली मेरे। लेकिन दोनों गानों को देखो कितना बढ़िया मिक्सअप हो गया ना, जैसे कहते हैं ना कि ब्लेंड हो गया बढ़िया से, बढ़िया से बढ़िया से ब्लेंड हो गया। जैसे कहते हैं ना कि जो अच्छी चीज़ें होती है जैसे पानी में पानी मिल जाता है, अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, वैसे कुछ गाने भी एक दूसरे के भाई बहन टाइप लगते हैं। और आज अचानक से मुझे गलियां याद आ गया, और गलियां इसके साथ बहुत सही फिट हो रहा है। हो सकता है गलियां बनाने वाले ने ये गाना बना दिया हो। फिलहाल हमें और आपको तो दुनिया बनाने वाले ने बनाया, तभी तो सब एक जैसे हो, किसी का एक्स्ट्रा हाथ पैर नहीं है। एनीवे एक्स्ट्रा उंगलियां तो हो ही जाती हैं, हर दूसरे तीसरे चौथे पांचवें इंसान की छठी उंगली रहती है। और मतलब छह उंगली वालों का भी बड़ा सीन है, अपने यूपी बिहार में कहते छह उंगली है तो ये बहुत अपनी कनाई होत है। मतलब क्या हो, छह उंगलियां तो बढ़िया है ना, एक उंगली एक्स्ट्रा है, कोई काम कर सकता है कुछ, मतलब तीन चार पॉलीथीन उठाने तो एक उसमें भी फंसा सकता है। हम लोग गुड्स नहीं देखते हैं, बैड्स देखते हैं। और अभी जल्दी वो कौन सा त्यौहार था भाई, चौथ का, ये नहीं तीज का त्यौहार था, तीज पे ना चांद नहीं देखना होता है अपने इधर। और पता चलता है कि बिहार में तीज का चांद का व्रत रखा जाता है, चांद देख के व्रत खोला जाता है। भाई मतलब इतना कंफ्यूज कर देती हैं कुछ चीज़ें ना, जबकि पड़ोसी है बिहार, लेकिन बिहार में ये नियम है। एनीवे ये नियम तो सबके घर के अलग अलग हैं, किसी के घर में बच्चे बिस्तर पे खाना खाते हैं, तो किसी घर में ज़मीन पे, तो किसी घर में पीढ़े पे, तो किसी के घर में डाइनिंग टेबल पे, तो नियम सबके घर के अलग होते हैं। गुड इवनिंग जुगल जी, कैसे हैं, क्या हाल है भाई, सारे लोग आज अंदाज जी कहने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। फिलहाल मैं फुल मूड में हूँ, और मैं यार ये गाना सुन के जाऊँगी यार, मुझे ये बड़ा पसंद है गाना, चलो साथ में सुनते हैं। प्रीतम का कुछ दोष नहीं है, वो तो है निर्दोष। यार वो सारे मतलब ये गाने कभी कभी मुझे बहुत बेकार लगते हैं, तब जब मतलब सामने वाले से शिकायत भी है, फिर उसके बाद उसको तारीफ करना, मतलब ये क्या, ये कौन सी शुगर कोटिंग है। बुराई भी किया जाओ फिर बड़ाई भी करो कि नहीं प्रीतम का कुछ दोष नहीं, और प्रीतम से पूरी नाराज़गी है। नहीं, जो मतलब बोलना हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब या दोष है या नहीं है, आप दोनों के बीच में मत ऐसे घुमाइए गोल गोल गोल गोल। तो चलिए हम सुनते हैं गाना और सोचते हैं कि प्रीतम का दोष है कि नहीं है।

भाई मिर्ज़ापुर की बात करें तो प्रीतम कट्टा लेके घूम रहे हैं और प्रीतम का कोई दोष नहीं है, मतलब ये सही है। गाना भी ऐसा बना देते हैं कि हंसी आ जाए। फिलहाल कोई बात नहीं, नहीं होगा दोष।

0: क्या बात, क्या बात, मजा आ गया भाई ये गाना सुन के। लेकिन पूरे गाने को जब आप दिमाग लगा के देखो तो मतलब आपको दोष ही दोष दिखते हैं। क्या कहूँ मैं, फिलहाल चलिए गाना बड़ा बढ़िया सा था। हमारे साथ राहुल हैं, कहाँ से हैं भाई राहुल जी आप बताइएगा। और धर्मेंद्र, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? थैंक यू, गाना बहुत अच्छा था। वैसे गाना सच में है भी बहुत अच्छा है। आज का गाना नहीं है, इसको 2-3-4 बार रीमेक कर दिया गया है। लेकिन जितनी भी मर्जी बार रीमेक करें, गाना वैसे के वैसा, मतलब क्या लिरिक्स है। कहते ना कुछ गाने लिरिक्स से अच्छे होते हैं, है कि नहीं? चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। नहीं नहीं नहीं, प्रभु का नाम इतनी छोटी छोटी चीजों के लिए लेंगे ना तो प्रभु सोचेंगे यार ये लोग तो हर चीज के लिए बुलाते रहते हैं, अंताक्षरी भी नहीं गाना गा के जीत पाते हैं, हर चीज के लिए तंग करते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू 89.6 FM का लेके नाम और देखते हैं कौन आने वाला है सबसे पहले हमारे काम, क्योंकि जिसकी आवाज सबसे पहले आएगी उसी से तो अंताक्षरी शुरू हो जाएगी। तो पहले कॉल का इंतजार करते हुए आर जबीना, लेटर आपको सबसे पहले मैं ही दे दूंगी और कॉल आ भी चुका है। चलिए आवाज सुनते हैं किसकी है। हेलो
1: संध्या बीना जी।
0: शुभ संध्या, कैसे हैं? आपका शुभ नाम?
1: मैं तो पिछड़ा बोल रहा हूँ
0: जी। अनूप जी कैसे हैं, क्या हाल है भाई ये बताइए, अभी आप बिल्कुल ठीक हैं? क्या बात है, तो आप पहले आए हैं तो पहले आपको लेटर भी दे दिया जाए। तो आप आज सुना दीजिए गाना सबसे पहले चा से।
1: चम्मच
0: जी, बस चा से चम्मच।

0: जुड़े वाली मुनिया।
1: क्या बात है, क्या बात है, मजा आ गया सुनकर। और आपने गाना नहीं सुनाया, आपने एनर्जी भर दी है शाम में
0: जी।
1: तो भाई चा से चम्मच से गाना सुना दिया गया है टीम बी की तरफ से, और टीम बी ने आज शुरुआत की है। चलिए देखते हैं जीतता कौन है आज। फिलहाल जीत हार तो लास्ट की बात है, पहले देखते हैं कौन कितना मन लगा के खेलता है। अब बारी है, देखते हैं। वैसे बारी तो लड़कियों की है, लेकिन कोई भी कॉल कर सकता है फर्स्ट राउंड में। आपको ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि अभी लड़का लोग कॉल करेंगे फिर लड़की लोग, नहीं, सब एक साथ कॉल कर सकते। एक साथ मतलब कि कोई भी कॉल कर सकते हैं, मतलब एक साथ सारे लोग कॉल करोगे तो मैं बात ही कैसे करूँगी। तो 30 पॉइंट्स मिल जाते हैं लड़कों की टीम को। और छह से चम्मच से गाना गाया गया। भाई चम्मच खाने का के लिए यूज़ करें, कृपया खुद चम्मच ना बने, क्योंकि अगर आप चम्मच बनेंगे तो आप हमेशा चम्मच बन के रहेंगे, भगवाना नहीं बन पाएंगे। चलिए अगला, ये थोड़ा सा मतलब जनहित में जारी वाली जानकारी थी। अगला कॉल ऑन एयर करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम।
2: मैं आशु मिश्रा बोल रही
1: हूं। तो भाई आरजे बीना के साथ लाइव हैं आशु मिश्रा जी, जो कि लखनऊ से हमें सुनती हैं। तो इन्हें मैं लेटर देना चाहूंगी, इनकी अगर अनुमति हो तो। तो चलिए आप गाना सुना दीजिए आज। आ से
2: आते हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मेरे तेरे में रहना तुम प्यार प्यार बनके, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके।
1: क्या बात है, क्या बात है, और बहुत प्यारा सा गाना गाने आज बहुत अच्छे चुने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच आशु जी, अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए। मुझे तो लड़कियां दिख ही नहीं रही थी, दिल से पहले तो आभार कॉल करने के लिए, क्या बात है। तो लड़के चैट रूम में सोच रहे होंगे लड़कियां दिख नहीं रही हैं तो लड़कियां कॉल नहीं करेंगी, ऐसा कुछ नहीं। लड़कियां बहुत सारा काम करती हैं, बिजी होती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी से पीछे रहें। कहते हैं ना कि लड़कियां हर क्षेत्र में अपनी जो कहते हैं शक्ति का प्रमाण देती, तो बिल्कुल इस क्षेत्र में कैसे पीछे रह सकती हैं। फिलहाल आगे चलते हैं। और ये गाना जो आपने सुना अभी, आए हो मेरी जिंदगी में तुम बहार बनके, मैं छोटी थी तो मतलब जब भी मैं अपने गांव पे जाती थी तो मेरे गांव में बच्चे गाने बहुत बिगाड़ते थे, और गाने बिगाड़ बिगाड़ के ऐसे गाने सुनाते थे कि क्या बताऊं। पहले ये गाना सुन ले तब बताती हूँ कि उस गाने का कौन सा रूप था बचपन में। हेलो,
2: गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम। फर्स्ट राउंड में कोई टर्न नहीं है, आप कितनी भी बार कॉल कर सकती हैं, लेकिन काट के। फिलहाल प्रीति जी कैसी हैं, क्या हाल है, बारिश हुई है आपके क्षेत्र में?
2: जी जी आज हुई है,
1: हमारे यहाँ भी हुई है, लेकिन थोड़ी सी उस बारिश के होने के बाद गर्मी और बढ़ गई। चलिए कोई बात नहीं, इसी के साथ आप गाना सुना दीजिए। बस है बा, बा।
2: बा?
1: बा।
2: बाबूजी फिर चलना बड़े धोखे चलना।
1: क्या बात है, क्या बात है प्रीति जी, आप गाने अलग अलग लेके आती हैं, मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच। तो चलिए हमारी प्रीति जी ने गाना सुना दिया, उसी के साथ टीम ए के हो जाते हैं 60 पॉइंट्स। और मैं कोई गाना सुनाने वाली थी, हाँ मैं बता रही थी कि मैं गांव जाती थी तो मेरे गांव में एक लड़का था जो गाने बना बना के सुनाता था, मतलब कोई भी अच्छे से अच्छा गाना हो उसकी धज्जियाँ उड़वानी हो तो उसके पास चले जाओ, तो वो इस गाने का उल्टा वर्जन सुनाता था। कहता था, आए हो मेरे गन्ने में तुम सियार बन के, और मेरे गन्ने में यूं ही आना कुत्ता बिलार बनके, कुछ ऐसा करके बनाया था। मतलब मैं कहती थी कि यार तुम इतना टैलेंटेड हो, कोई ढंग का कुछ काम करो, मतलब तुम ये अच्छे अच्छे गानों को क्यों ख़राब करते हो। तो कहता था ये मेरा टैलेंट है, और ये टैलेंट मैंने देखा बहुत सारे बच्चों में होता है। फिलहाल कोई बात नहीं, अच्छी चीज़ों को ख़राब करना तो बच्चों की आदत ही होती है, और लड़कों की मतलब लड़कों की नहीं, लड़के सारे अच्छे होते हैं। कैसे देखिए, अब अरिजीत सिंह को देख लीजिए, कितने बढ़िया बढ़िया गाने सुना देता है। फिलहाल हमारी टीम में भी देखो अच्छे अच्छे लड़के, इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाते हैं, मज़ा ही आ जाता है। चलिए अगला कॉल ऑन एयर करते हुए मैं आपकी अरिजीत बिना आपके साथ अगली आवाज़ सुनते हैं, कौन है हमारे साथ। हेलो,
3: हेलो, शुभ संध्या मैम।
1: शुभ संध्या, आपका शुभ नाम।
3: मेरा नाम जुगल किशोर वर्मा एमपी से।
1: जुगल जी कैसे हैं, क्या हाल है पहले ये बताइए।
3: बढ़िया है मैम।
1: क्या बात है, तो चलिए जुगल जी ये बताइए कि आपके यहाँ का मौसम कैसा है।
3: मौसम आज दिन भर तो साफ रहा, धूप खिली रही, लेकिन अब शाम शाम को पानी गिर रहा है।
1: क्या बात है, मतलब गर्मी कम है।
3: हाँ।
1: क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। तो चलिए मैं आपको दे देती हूँ अक्षर, द से गाना सुना दीजिए। द से द द द द से दवात।
3: द से दवात। दुनिया में आए हो तो लव कर लो, दुनिया में आए हो तो लव कर लो, थोड़ा सा जी लो, थोड़ा थोड़ा मर लो।
1: क्या बात, बिल्कुल और सही आपने कहा कि दुनिया में आए हो तो फालतू की टेंशन ना लो, अपनी जिंदगी को जियो। क्या बात है, थैंक यू सो मच अर्जुन जी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच जुगल जी। मुझे लगा मैं चैट रूम में अरविंद जी का नाम देख रही हूँ इसलिए अरविंद जी बोल दे रही हूँ। सॉरी सॉरी सॉरी जुगल जी, और आपने बहुत अच्छा सा गाना सुनाया। और सच्ची बता रही हूँ, एमपी का मौसम बहुत अच्छा रहता है। मेरा एमपी जाने का मन करता है कि मैं जाऊँ, कुछ महीने एमपी रह के आ जाऊँ, क्योंकि हेलो
4: हेलो मैम, गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं। गुड इवनिंग मैम।
1: गुड इवनिंग, कैसी हैं हमारी प्यारी गीता जी, क्या हाल है? और आपकी टीम देखिए, एक से दो, दो से तीन होती जा रही है, बढ़ते जा रहे हैं मेंबर्स धीरे धीरे, कॉल करके मुझे पता चल रहा है। तो गीता जी आपको लेटर दूं मैं?
4: जी मैम।
1: आप गाना सुना दीजिए त से।
4: किसे?
1: त त
4: त से तरबूज वाला
1: जी।
4: अच्छा

0: सनम हम तो सिर्फ तुम से प्यारी करते हैं।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो चलिए अगले कॉल की ओर रुख करते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि इतने सारे कॉल आ रहे हैं, लग रहा है कि आज मतलब मजा ही आ जाएगा।
2: हेलो
1: हेलो,
2: शुभ संध्या वीना मैम, कैसे हैं आप?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शुभ संध्या, आपका शुभ नाम?
2: अरविंद।
1: अरविंद जी, ओके, कैसे हैं?
2: इतने देर से ट्राई कर रहा हूँ, आप उठा लिए कॉल, लग गई, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। खेल तो एक अलग है, लेकिन उठ गया कॉल, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। फर्स्ट टाइम आज आपसे बात हो रही है।
1: क्या बात है अरविंद जी, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा
2: है बहुत तमन्ना थी, बहुत इच्छा थी आपसे बात करने की।
1: आज फाइनली तमन्ना पूरी हो गई आपकी, कांग्रेचुलेशन।
2: बिकॉज इसलिए क्योंकि जस्ट अभी थोड़ी देर बाद हमें कहीं निकलना है, और जब तक फ्री था मैं बहुत कोशिश कर रहा था, जब से चैट बॉक्स से मैसेज नहीं आ रहे हमारे, समझ लीजिए मैं कॉल ही ट्राई कर रहा हूँ।
1: फाइनली देखिए, मशक्कत करने के बाद कोई भी चीज हासिल हो जाती है, तो
2: इससे पता चलता है, एक कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जाते सिल पर परत निशान।
1: बिल्कुल, एक मामूली सी रस्सी जब बड़े से पत्थर को तोड़ सकती है, तो ये तो एक कॉल है।
2: हाँ, तो कॉल क्या चीज है।
1: चलिए, वैसे आप, मैं लेटर दे देती हूँ, आप कहाँ से बात कर रहे हैं अभी?
2: मनकापुर
1: से बात कर रहे हैं, ओके, बहुत अच्छा लगा जान के। और मैं आपको लेटर
2: दे रही हूँ। हाँ, जैसे कि क्या पूरा सॉन्ग जैसे हो सकता है मैं ना भी गा पाऊँ, बट हाँ शुरू स्टार्टिंग कर सकता हूँ।
1: नहीं नहीं, बस मुखड़ा ही गाना भी है, पूरा गाना।
2: हाँ बस, अब मुखड़ा मुखड़ा चांद सा मुखड़ा है ना।
1: जय से गाना सुना दीजिए।
2: किससे मैम, सॉरी?
1: जय से
2: जा जा जाफर जाफर जग।
1: जी जी, जाफर जग।
2: अरे यार, सारा एक्साइटमेंट कहाँ चला गया मेरे। जस्ट मिनट मैम, प्लीज। जाना है ऐसे करके ही है मैम, बस आगे समझ जाइए।
1: अब इतने पे पॉइंट कैसे मिलेगा, थोड़ा और सोचिए, कोई और गाना
2: आ जाएगा। नहीं मिलेगा,
1: कम से कम
2: जा बेवफा जा, हम प्यार नहीं करना, तन्हाई भी जी लेंगे जब है तन्हा मरना, जा बेवफा जा, हम प्यार नहीं करना।
1: गाना भले सैड है, लेकिन आपको पॉइंट दिलाने वाला गाना है, क्या बात है।
2: ओ थैंक यू सो मच मैम।
1: थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
2: वेलकम।
1: तो भाई बैक टू बैक आज नए नए लोगों से बात हो रही, मजा आ रहा है। और चलिए देखते हैं अगला कॉल किसका है। हेलो,
3: हेलो मैम।
1: हेलो, गुड इवनिंग अगेन, मुझे आवाज जानी पहचानी आशु जी की लग रही है।
3: जी मैम, जी मैम।
1: तो आशु जी, था से गाना जल्दी से सुना दीजिए।
3: मैम,
1: था
3: ओ रानो, ओ सीला, जरा तो संभालो, कहीं हम गिर न पड़े, थोड़ी सी जो पीली है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच आशु जी। तो चलिए अगले कॉलर को मौका देते, मैं सबकी बैक टू बैक कॉल ले रही हूँ, और अभी देखते हैं किसका कॉल है। कॉल कट भी गया यार, और मतलब सच्ची बता रही, इतने सारे कॉल आ जाते हैं, मैं कन्फ्यूज हो जाती हूँ किसका कॉल उठाऊँ किसका ना उठाऊँ, और अभी देखते हैं किसकी आवाज़ है। हेलो
4: जी, गुड इवनिंग।
1: गुड इवनिंग, योर गुड नेम?
4: आप कैसी हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आपका नाम बताइए।
4: पहले वर्ड दीजिए तब।
1: वर्ड नहीं, लेटर राउंड चल रहा है, मैं आपको अक्षर दूंगी और आपको ना से गाना सुनाना है।
4: ना से?
1: ना से।
4: नाम सारे मुझे भूल जाने लगे, वक्त बे वक्त तुम याद आने लगे।
1: ओ श्रीदेवी जी, तो ना से आपने गाना सुनाया और लाभ के लड़कों की टीम को मिल जाता है पॉइंट, क्या बात है श्रीदेवी जी, बड़ा अच्छे से अपने गाना चुना और बहुत कम समय में सुना दिया, कैसे हैं आप?
4: तबीयत गड़बड़ चल रही है आज 3-4 दिनों से।
1: चलिए अपना ध्यान रखिए, और देखिए मौसम थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है, तो इस मौसम में हमें थोड़ा सा सतर्क रहना होता है, ठीक है। तो चलिए अगले कॉल को मौका देते हैं, थैंक यू सो मच, अब देखते हैं आप किसकी आवाज़ है। हेलो
5: मैं अनु पिछड़ा बोल रहा हूँ।
1: अनूप जी स्वागत है वापस से आपका, इतने सारे कॉल्स, मैं तो कंफ्यूज हो जाती हूँ आवाजें सुन के।
5: दोबारा मौका ही नहीं मिला।
1: अनूप जी के लिए मैं दूंगी एक बढ़िया सा लेटर, जिससे अपने पुराने गानों की डायरी में से एक बढ़िया सा गाना सुना देंगे हमें। आप सुना दीजिए गाना ल से।

0: क्या बात, क्या बात, क्या बात। तो चलिए, हमारे अनूप जी ने गाना सुना दिया। लो आ गई उनकी याद, वो नहीं आए। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को याद कर रही हूँ मैं दिमाग में, लेकिन वो लोग अभी दिख नहीं रहे। एनीवे, कोई बात नहीं, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। और एक लास्ट कॉल ऑन एयर करने के बाद अब हम नेक्स्ट राउंड की ओर तशरीफ़ करेंगे। हेलो, तशरीफ़ मतलब रुख। अगला कॉल, आवाज़ नहीं आ रही। हेलो हेलो हेलो, वापस से स्वागत है। प्रीति जी, कैसी हैं आप?
1: लेटर राउंड अभी चल रहा है, खत्म।
0: अभी ये लास्ट आपका कॉल लेने के बाद हम नेक्स्ट राउंड की ओर तशरीफ करेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। अब आपको सुनाना है गाना झ से। मतलब गाने जैसे लगता है, जैसे लगता है कि गाने मुंह में ऐसे रखे रहते हैं। लेटर आए तुरंत मैं दीवा लगा दूंगी।
1: इतना दिन मैम गाते गाते हो गया, अभ्यास हो गया।
0: क्या बात है, मतलब आरजे बीना ने कुछ तो कर दिया इतने सालों में अंताक्षरी करा करा के। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो चलिए, लड़के लड़कियों की टीम को देखें तो दोनों टीम के पॉइंट्स कितने हो चुके हैं? लड़कियों की टीम के पॉइंट्स भी हो चुके हैं 150-150, दोनों इक्वल पे चल रहे हैं। तो मैं अब चलती हूँ एक ब्रेक की ओर, और उस ब्रेक के बाद हम लोग वर्ड राउंड शुरू करेंगे, सबसे फेवरेट वाला राउंड, जिसको सुनने के बाद मज़ा आ जाता है। तो लड़के और लड़कियों, प्लीज़ आप लोग दूसरों को ऐसे एक दूसरे को शब्द दें कि दोनों टीमें अच्छे से गा पाएं। हाँ, कुछ टफ शब्द भी ढूंढें, लेकिन हाँ, कोशिश ये करें कि जो भी शब्द हो उससे कम से कम दो चार गाने तो हो। तो अभी दोनों ही टीमों के पॉइंट्स 150-150 चल रहे हैं, बहुत बढ़िया दोनों ही टीमें खेल रही हैं। तो चलिए, एक म्यूजिकल ब्रेक का हम लोग ब्रेक मतलब वो लेते हैं, अंतराल लेते हैं, और फिर चलते हैं आगे आप लोग के पास बढ़िया सा गाना सुनने और गुनगुनाने।

0: ले चले जहाँ तू संसार जाना है, ले चले जहाँ तू संसार जाना है।
1: क्या गाना था यार, मजा आ गया। कुछ गाने यार अजीब से होते हैं, अचानक से दिमाग में आते हैं और सुन के लगता है यार कुछ मजा ही सा आ गया। तो नॉट ऑलवेज ट्रेंडिंग गाने ही हमें सुनने चाहिए, कुछ ऐसे गाने हैं जो पिछले बोरों में, मतलब पूरी या पुरानी जो हमारी म्यूजिक एल्बम्स हैं उनमें बने हैं, जिनको सुन के आहा दिल झूम जाता है। वेल स्वागत है वापस से आपका आपके वाले अंताक्षरी में। महेंद्र जी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? राजस्थान से आशु जी लखनऊ से सबका स्वागत है। मराठी भाषा थोड़ा थोड़ा मुझे आती है लेकिन बहुत ना के बराबर आती है, मतलब आप बोलोगे तो मेरे पल्ले नहीं पड़ेगी। गुड इवनिंग दरक्षा अंसारी, कैसी हैं आप? स्वागत स्वागत स्वागत। तो चलिए आगे चलते हैं, थोड़ी देर में आपसे बातें करते करते ये शाम और ब्यूटीफुल होने वाली है। तो इसी के साथ चलिए हम सबसे पहले टीम ए या बी, दोनों में से जो टीम सबसे पहले वर्ड दे देती है दूसरी टीम को गाना गाना होगा। तभी तो चैट रूम ही चल रहा है, तो चैट रूम में आप वर्ड दीजिए और उस वर्ड से गाने की शुरुआत कौन सी टीम करेगी तो आप लोग डिसाइड करेंगे। तो कौन वर्ड दे रहा है सबसे पहले जल्दी से दीजिए, कोई भी दे सकता है। आप खेल रहे हैं, मतलब आप गा रहे हैं नहीं गा रहे हैं, डजंट, मतलब ये डिस्कशन का कोई पॉइंट ही नहीं है इसमें। आप कोई भी आके मतलब अपना वर्ड दे सकते हैं। जी हाँ जी हाँ।

0: कौन दे रहा है भाई वर्ड? वर्जिश। अरे बाप रे प्रीति जी, मतलब क्या है? तो लड़कों की टीम को गाना है, गाना वर्जिश से। वर्जिश, वर्जिश किसको बोलते हैं? एक्सरसाइज को। प्रमुख गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? लुधियाना से हमारे साथ लाइव हैं प्रमुख जी भी, और प्रीति जी हमारे साथ हैं बहराइच से। तो सबका सबका सबका सबका स्वागत है, और देखते हैं कौन गाना गाता है वर्जिश से। अनूप जी और अपनी टीम मेंबर के सारे लोगों को एकदम तैनात कर दीजिए, गाना सुना दें। और भाई सब लोग इतनी दूर दूर से सुन रहे हैं, कोई तेलंगाना से सुनता है, कोई कहीं से सुनता है, तो आप लोग क्यों नहीं मतलब गाना सुनाते हैं लाइव आके? कोशिश क्या करिए कि आप सभी लोग आइए लाइव और गाना सुनाइए, जिससे कि आपकी आवाज में गाने सुन के हम झूम उठें। प्लीज तुझको बुलाऊं। महेंद्र लिख रहे हैं, मैम हमें तो मराठी, गुजराती, राजस्थानी, हिंदी, इंग्लिश, थोड़ी थोड़ी भोजपुरी भी आती है। प्रयास जा रही है भोजपुरी में। मैं आपको भोजपुरी में एकदम सॉलिड बना दूंगी, आप बस कल मेरा प्रोग्राम सुनिएगा। चलिए देखते हैं आवाज किसकी है। हेलो,
1: मैं अनूप मिश्रा बोल रहा हूँ।
0: अनूप जी, मुझे पता था ये साहस आप ही करेंगे। वर्जिश से गाना सुना दीजिए।
1: मैम एक गाना है, बड़े मियां दीवाने ऐसे ना बनो, उसमें एक स्टेंजा है, उसमें एक वर्ड आया है, सबसे पहले सुनो मियां करके वर्जिश बनो जमा, पीना ज्यादा तो पेट कम, ऐ कि बुला उजले बालों को रंग डालो।

0: जी मैम, ये गाना है।
1: क्या बताऊं अनूप जी, मन कर रहा है आपको इसके लिए 100 पॉइंट दे दूं। मुझे तो लगता है गाना ही नहीं किसी को आता होगा। फिलहाल आपने
0: मैम ये बताइए, मैं ऑनलाइन वर्ड दे सकता हूँ?
1: ऑनलाइन हाँ बिल्कुल आप दे सकते हैं, बताइए।
0: मंजुल मंजुल मंजुल
1: मंजुल
0: जी, मंजिल नहीं है,
1: मंजुल है। मंजिल नहीं है, मंजुल है। आप प्लीज चैट रूम में भी अपना वर्ड दे दीजिए, जिससे किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो लड़कियों को गाना गाना है मंजुल से, मंजुल मंजुल मंजुल। ऐसे ऐसे शब्द देंगे मुझे तो गाने कभी नहीं आएंगे, मैं बस आप लोग की क्या कहते हैं ना जजमेंट करूंगी बैठ के। कितने बजे सुनना होगा आपका प्रोग्राम, टाइम बता दो। बस इसी टाइम, बस पूरे वीक में एक दिन शाम को 6 बजे थर्सडे को हम सुनते हैं भोजपुरिया शो। जैसे कल मैं स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाली हूँ, एक खास म्यूज़ियम बन रहा है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, हमारे डिस्ट्रिक्ट के पास वाले डिस्ट्रिक्ट में, अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, उसी म्यूज़ियम की बात वैसे मैं करूँगी। तो भोजपुरी एंड अवधी मिक्स होगी, तो आप महेंद्र जी सुनिएगा, आपको मज़ा आएगा और आप भी बहुत सारी चीज़ें सीख पाएंगे भाषा के रूप में और बहुत सारी चीज़ें जान भी पाएंगे। मंजुल है भाई, मंजुल से गाना सुनाने के लिए लड़कियां कहाँ चली गई। सब तितलियों को मैं कहूँगी फटाफट से आ जाओ और अपना दिमाग लगाओ और मंजुल से गाना जल्दी से सुनाओ। 6393316429 6493 3961 3464 29 ये आप ही का नंबर है, कृपया डायल करो और गुनगुनाओ।

भाई कोई लड़की मंजुल से गाने के लिए तैयार ही नहीं है। दिमाग लगाइए, गाने होंगे बहुत सारे। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, जय जयकार करने से नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी, यार इसके बाद तो मुझे कविता ही नहीं याद आ रही। कोशिश करती हूँ याद करने की कि कोशिश करने वालों की कभी हार, देखो ये भी तो बात सही है ना, ये कोशिश कर रही हूँ मुझे कविता भी याद आ जाएगी। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और जय जयकार करने से नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए कितना मोटिवेट कर रही हूँ मैं आप लोग को। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जैसा कि हम सभी देख पा रहे हैं कि मंजुल से गाना गाने के लिए हमारी लड़कियों की टीम से कोई नहीं दिख रहा है, क्या फिल्मी सॉन्ग है या नहीं अनूप जी बताइए। हाँ भाई अनूप जी, इतनी तो मदद आप कर ही सकते हैं। अनूप जी आपको बता रही हूँ, अनूप जी अगर आपकी टीम के किसी मेंबर ने मंजुल से गाना सुना दिया तो आपकी टीम को बोनस पॉइंट 50 मिल जाएगा। तो ये सोचिए, आप फ़ोन करके किसी दूसरे को गाना नहीं बताएंगे आप, ये समझ लीजिए। लड़कियों की लड़कियां सब मंदिर चली गई, ऐसी बात नहीं है, लड़कियां सब बैठी हुई हैं। देखिए गीता जी भी हैं, तेज नारायण शुक्ला जी सबको स्वागत है। और आपके मेरे सारे प्रतिभागी जो हैं वो अंताक्षरी में टीम ए और टीम बी में बने हुए हैं। टीम ए जो है वो लड़कियों की टीम है, लड़कियों में हर उम्र की लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो जो फ़ोन मिला के बात कर सकती हैं। बाकी 5 साल की उम्र से कम वालों को मैं अलाउ नहीं करती क्योंकि उन्हें फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए। इसके बाद हमारे लड़कों की टीम में जी हाँ 5 से ऊपर के सभी पुरुष कॉल कर सकते हैं, और क्या कोई भी कॉल कर सकता है। और मैंने ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं लगाया, अगर आप चाहते हैं कि आप स्त्रियों की टीम से या लड़कियों की टीम से गाना चाहते हैं तो कोई भी किसी की टीम से गा सकता है। ऐसा बहुत सारे मेरे लिसनर्स हैं जो किसी की भी टीम को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक उन्हीं की तरह जो किसी की मदद करना चाहते हैं। सपोज किसी की टीम कमजोर है तो आप उसकी टीम का साथ दे सकते हैं। महेंद्र दीपेन जी लिखते हैं, जग उठे मंजुल कलोल फिल्म बंधन 1940। महेंद्र जी अब ऐसे आप फोन करेंगे देखिए, कोई भी लड़का चैट रूम में गाना बताएगा तो पॉइंट नहीं मिलेगा, ऑन एयर आके गाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात है। महेंद्र जी मैं चाहूंगी कि आप कॉल करके अपनी टीम की मदद करें और फटाक से गाना सुना दें। तो लड़के या लड़कियों की टीम कोई भी मंजुल से गाना सुना सकता है, अनूप जी को छोड़ के, क्योंकि शब्द उन्होंने दिया तो ऑब्वियसली उनको आता ही होगा गाना। तो कौन सुनाने वाला है गाना जल्दी आ जाइए, वो दीवाना या दीवानी जिसको आता है गाना। मुझे तो नहीं आता भाई, मुझे नहीं आता इतने कठिन कठिन शब्द से, मुझे नहीं आता। मेरी पावर को अंडर एस्टिमेट आप ना ही करें, मुझे बहुत सिंपल से गाने आते हैं, मैं वही गा पाती हूँ। कितनी दफा देखूं तुझे धड़के, कितनी नहीं है जितनी है। वाह भाई मैं भी तो एकदम गानों का क्या ही बना देती हूँ। देखें कौन सुना रहा है। यूं तेरा मेरा मिलना, यूं दिलों का खिलना। चलिए इस शब्द को मैं यहीं पे खारिज करती हूँ, और अब मैं लड़कियों की टीम से कहूंगी लड़कों की टीम को शब्द दें। कौन शब्द देने वाला है भाई, ये भी बात याद रखिए, एक बार आप शब्द देंगे तो दोबारा आप शब्द नहीं देंगे। जैसे कि प्रीति जी और अनूप जी ये दोनों शब्द दे चुके हैं, तो लड़के और लड़कियों की टीम से ये दोनों शब्द नहीं देंगे। अब मैं चाहूंगी लड़कियों की टीम से कोई और गीता जी या कोई भी शब्द दे सकता है। क्यों नहीं महेंद्र जी, आप ट्राई करेंगे तो क्यों नहीं ऑन एयर आ सकते। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती ऑफ कोर्स, और जैसा कि आप चाहेंगे तो आप बिल्कुल गाना सुना सकते हैं। तो देखते हैं कौन आता है ऑन एयर।
शब्द कौन दे रहा है? कौन दे रहा है भाई शब्द? आप लोग इतना स्लो दे रहे हैं, मतलब क्या बताऊं मैं।

0: हेलो
1: हेलो, मैं मंजू से गा सकते हैं?
0: मंजू से आप गाने के लिए आई हैं? बिल्कुल, अगर आपको आता है तो आप गा सकती हैं, क्योंकि अभी तो शब्द भी नहीं मिला।
1: शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल, शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल, सजना तेरे नैना बड़े चंचल, सजना तेरे नैना बड़े चंचल, शीतल मंजुल कोमल तेरा आंचल।
0: ये किस फिल्म का गाना है?
1: मैं नहीं पता,
0: मतलब गाना है? ये
1: गाना है
0: किसकी आवाज में है?
1: सहल चौधरी, सिंगर अंतरा चौधरी।
0: ओह, क्या बात है। चलिए, आपने गाना सुना दिया और इसी बात पे आपको पॉइंट भी मिल गया। थैंक यू सो मच। तो भाई, प्रीति जी ने अपनी टीम को बचाते बचाते बचा ही लिया और मिसल से गाना सुनाना है। आशु जी ने सबसे पहले वर्ड दिए, तो गीता जी आपका वाला वर्ड हम नेक्स्ट मतलब के लिए रख लेते हैं, ढूंढ ली। और अभी पहले मिसल से गाना सुनाइए। मिसल से कौन सी लड़कों की टीम से कौन गाना सुनाने वाला है? मिसल मिसाइल ही दे देना चाहिए था। ऐसे ऐसे शब्द देंगे ना, मिसाल की मिसल। आशु जी जरा कन्फर्म करिए, मिसाल या मिसल? अच्छा, मिसाल। आशु जी ने तो कन्फर्म किया है, मैं भी ना क्या पढ़ती हूँ। मिसाल से गाना गाने के लिए कौन आ रहा है कमाल करने फटाक से? चलिए देखते, कॉल आ ही चुका है, आवाज़ सुनते हैं कौन।
2: हेलो
0: हेलो
2: जी, मैम
0: जी,
2: अनूप बोल रहा हूँ।
0: अनूप जी, मिसाल।
2: क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की? ये है गाना, दिलीप कुमार साहब हैं इस गाने में।
0: क्या बात है, क्या बात है।
2: आगे कुछ है कि कलियां हुस्न बन गई है परी महताब की, अब क्या मिसाल दूँ मैं तुम्हारे शबाब की।
0: क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। तो अनूप जी ने गाना गा के अपनी टीम को दिला दी है 50 points। और आगे चलते हैं और देखते हैं लड़कों की टीम को शब्द देने के लिए कौन, लड़कियों की टीम को शब्द देने के लिए कौन आगे आता है। भाई, अनूप जी शब्द नहीं दे सकते, लड़कों की टीम से कौन शब्द देना चाहता है? महेंद्र जी, लड़कों की टीम में तो बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, धर्मेंद्र जी, महेंद्र जी, और क्या कहते हैं, नागेश्वर जी, सारे लोग, बहुत सारे लोग हैं। तो जो भी शब्द देना चाहता है फटाक से शब्द दे लड़कियों की टीम को, और इसके बाद हम देखते हैं कौन सा गाना गाने का मौका मिलने वाला है लड़कियों की टीम को। यार मज़ा आ रहा है, सच्ची बता रही हूँ। तो चलिए, हम गाने भी साथ ही सुनते रहते हैं इन लोग का, तो मतलब शब्द ऐसे ऐसे देंगे, एक दूसरे को फंसाते ही रहेंगे और हम गाने भी साथ साथ सुनते रहते हैं, जिससे हम लोग का मूड फ्रेश होता रहे। तो ये गाना बड़ा प्यारा सा है, सुन के बताइए आपको अच्छा लगा या नहीं।

0: Drop the belt.
1: लड़कियों की टीम के लिए शब्द है टुकड़ा। टुकड़ा से गाना कौन सुनाना चाहता है, जल्दी से कॉल करिए, आपका इंतजार है।
2: दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे।
1: मुंह दिखाई देना बाद में, फिलहाल ये गाना सुनते हैं आप लोग के साथ। कौन है? हेलो,
3: गीता श्रीवास्तव बोल रहे हैं।
1: गीता जी, टुकड़ा।
3: मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है, अफसोस है कि वो मुझसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज के बरस गए, पर उनकी एक झलक को हम ऐ हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझे इन आँखों की, दिनी रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है।
1: क्या बात है, थैंक यू सो मच।
3: वेलकम।
1: तो भाई, लड़कियों की टीम भी बहुत एक्टिव चल रही है, और जो कहते हैं ना कि मुकाबला बराबरी का है, तो लड़कों की टीम के लिए शब्द गीता जी ने पहले ही दिया था, ढूंढ ली। ढूंढ ली से गाना सुना दीजिए। तब तक के लिए हम गाना सुनते हैं, पल्लो लटके रे मारा पल्लो लटके।
0: ड्रॉप द बेल्ट।

0: अगला कॉल देखते हैं किसका है। हेलो
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार, गुड इवनिंग, आपका शुभ नाम।
1: जी मैं अविनाश बोल रहा हूँ, त्रिपुरा से।
0: ओ अविनाश जी, कहाँ, मतलब आप रास्ता भूल गए थे क्या, कहाँ चले गए थे काफी देर से?
1: थोड़ा बिजी था तो इसलिए अब जाते जाते सोचा अब टाइम थोड़ा मिला तो एक गीत सुना देते हैं।
0: डेफिनेटली धुंधली से गाना सुनाना है। धुंधली
1: कैसे
0: शब्द है? धुंधली धुंधली
1: धुंधली। ओहो तो फंस गया मैं।
0: अब सोचिए, आपके पास बहुत सारे गाने होते हैं, दिमाग लगाइए।
1: धुंधली
0: धुंधली
1: नहीं है तो आंखें धुंधली हो गई है।
0: कोई बात नहीं, सोचेंगे तो कहते ना कितनी भी धुंध हो कोहरा छट जाता है।
1: हाँ तो मैं दूसरे दोस्तों के लिए मैं छोड़ देता हूँ, देखते हैं।
0: हाँ डेफिनेटली, हाँ कोई बात नहीं, कोई कॉल करता उससे पहले आप दो लाइनें सुना दीजिए। आए हैं तो थोड़ा गुनगुना के जाइए, थोड़ा वार्म अप हो जाएंगे। कोई भी दो लाइनें।
1: अच्छा कोई भी दो लाइनें, तो फिर एक गीत सुना देते हैं।
0: बाकी लड़के लोग प्लीज तैयारी करते रहिए, धुंधली से गाना सुनाना है।
1: जी जी जी
0: यस।
1: हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, हमको सिर्फ तुमसे प्यार है, कह रही है दिल की बेखुदी, बस तुम्हारा इंतजार है, ढूंढते हैं हम तुमको दर बदर, जाने कब कहाँ मिलोगे हमसे हम सफर, कैसी दूरियाँ कैसे फासले, आए फिर की ऐसा ही कुछ गीत है ये मेरा तो अभी चलिए वार्म अप हो गया थोड़ा सा।
0: थैंक यू सो मच अविनाश। तो चलिए अविनाश ने गाना सुना दिया, लेकिन लड़कों की टीम अभी भी बाकी है गाना सुनाने के लिए। कोई बात नहीं, चलता रहेगा। और हम गाना सुन रहे थे कौन सा, पल

0: शब्द देने वाली गीता जी के अलावा कोई भी अगर धुंधली से गाना गा देगा तो उसे पॉइंट मिल जाएगा लड़कियों की टीम से। हेलो
1: जन्मस्थली।
0: हेलो गुड इवनिंग, शुभ संध्या।
1: गुड संध्या, बीना मैम बोल रही हैं।
0: जी मैं बीना बोल रही हूँ, आपका
1: जी। मैं रमेश गुप्ता, मैं रमेश गुप्ता बहराइच से बोल रहा हूँ।
0: रमेश जी कैसे हैं, काफी दिनों बाद आपकी आवाज़ सुन रही हूँ, मुझे आपकी कहानी याद है। सो कैसे हैं?
1: बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। आज लगाया मैंने ज्ञान स्थली और आपकी आवाज सुनी तो धुंधली से तो मुझे कोई गाना नहीं याद आ रहा था, लेकिन मैंने ये कहा कि जो धुंधली हुई यादें हैं उनको ताजा कर लेते हैं, बीना जी से कुछ बात कर लेते हैं।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। और
1: जी
0: मतलब मुझे अच्छा
1: मुझे बहुत खुशी। जी
0: थैंक यू सो मच। तो मैं चाहूंगी कि
1: बहुत खुशी हो रही है।
0: दो लाइनें गा दें, आप आए हैं तो प्लीज अपनी याद को थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर ले, दो लाइनें गा।
1: जी बिल्कुल सही बात है, दो लाइनें जरूर गाएंगे। गाते तो हम है नहीं और आपको पता है कि मैं टीचर हूँ, तो मैं कोई पैट्रियोटिक सॉन्ग सुना देता हूँ।
0: नहीं आप कविता भी सुना सकते हैं, इट्स नॉट मैंडेटरी।
1: अच्छा कविता, कविता भी सुना सकते हैं।
0: ऑफ कोर्स।
1: आज मैं अपने बच्चों को कराता हूँ, वही उसी दो लाइन में सुना देता हूँ।
0: बिल्कुल स्वागत है।
1: चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जहाँ सवेरा शंख बजाता, लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल्के नीचे खेला करती सीता है। ज्ञान जहाँ गंगा जल सा निर्मल है, अविराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। बस इतना ही।
0: क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। और उम्मीद करूंगी कि नेक्स्ट मंडे आपका कॉल जरूर आएगा कुछ बेहतर।
1: बिल्कुल बिल्कुल, मैं टीवी पर अपने अब आपके ज्ञानस्थली को सेट कर लिया है।
0: क्या बात है।
1: तो जी तो अब मैं ज्ञानस्थली सुनने लगा हूँ। आज शाम थी और मैं ड्यूटी से आया था और मैंने लगा दिया, अचानक से बीना जी की आवाज सुनाई पड़ी। तो मैंने कहा बीना जी की आवाज और रमेश गुप्ता बात ना करें, बहराइच से बात ना हो तो फिर कुछ अधूरा सा लगता है। मैं सुनता भी रहूं और बात ना हो अच्छा कम लगेगा। तो मैंने उन धुंधली हुई यादों को ताजा करने के लिए आपको कॉल किया और सौभाग्य मेरा ये कि आपको कॉल एक ही बार में लग गया मुझे।
0: एक्चुअली शब्द इतना डिफिकल्ट था ना तो कॉल कम आ रहे थे। बहुत साकार किया, शब्द आपने साकार कर दिया।
1: नहीं नहीं बहुत बहुत सच में बहुत अच्छा लगा बीना जी। और एक मेरा ख्याल है कि मैं आज कम से कम 6 महीने बाद तो आपसे बात कर रहा हूँ, उससे ज्यादा ही हो गया होगा। और मैं खुश इस बात से हूँ कि आपको मैं याद हूँ। एक आरजे की मेमोरी में रमेश गुप्ता बहराइच पड़ा हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत सौभाग्य है मेरा कि वो यादें धुंधली नहीं हुई हैं, आज भी ताजी हैं। और मैं ये आशा करूँगा कि अभी कोई भाई मेल से धुंधली पर गाना सुना दे और मैं भी सुनूं। और वीना जी आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया रमेश जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा।
1: जी धन्यवाद धन्यवाद।
0: तो चलिए रमेश जी ने धुंधली यादों को मतलब क्लियर आउट किया। और देखिए मैं बताऊं, आप लोग के नाम के साथ जो आपकी जगह है वो मुझे मेमोरी में एकदम फिक्स हो जाती कि यहाँ से मैं इन लोगों से बात करती हूँ। नॉट ओनली एक जगह, मतलब ऐसे बहुत सारे लिसनर्स हैं जो अलग अलग स्टेट से बात करें, मध्य प्रदेश से पता नहीं कितने सारे लिसनर्स हैं, और कोई महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से हमारी बहुत प्यारी प्यारी लिसनर्स हैं, चाहे वो सबलू जी हों, चाहे बहुत सारे लोग। तो चलिए कॉल कनेक्ट करते हैं। वैसे मैं आज आगे आपका 5-10 मिनट लूंगी, आपका वो क्या कहते हैं फरमाइशी, तो फरमाइशी तो रोज ही करते हैं, खेलते रोज नहीं है, तो आज आपके साथ खेलेंगे थोड़ी देर। हेलो
2: हेलो मैम।
0: हेलो
2: हेलो
0: जी आशु जी, आप धुंधली से गाना सुनाने तो नहीं आई हैं?
2: जी मैम।
0: चलिए सुनाइए।
2: धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ, धुंधली धुंधली शाम हुई अब तो वापस आ जाओ। जी मैम।
0: क्या बात है। और इसी के साथ आपकी टीम के हो जाते हैं 300 पॉइंट्स, क्या बात। तो धुंधली धुंधली शाम हुई, मैं तो वापस आ जाऊंगी आप लोग के पास। आप लोग बताइए आप लोग आने वाले हैं कि नहीं। तो बहुत अच्छा खेला आप लोगों ने। अब हम लेते हैं 2 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक और इसके बाद हम शुरू करते हैं 1 मिनट राउंड। 1 मिनट मैं दूंगी लड़कों की टीम को और 1 मिनट दूंगी लड़कियों की टीम को, और उस 1 मिनट में जिसने जितने ज़्यादा गाने गाए उसको उतने ज़्यादा पॉइंट्स मिलने हैं। फिलहाल आज मैं कोई भी बाउंडेशन नहीं रख रही हूँ, यानी कि कोई पर्टिकुलर शब्द की बाउंडेशन नहीं रखी हूँ, क्योंकि उस दिन तो बर्थडे था शाहरुख का, तो मतलब मुझे ऐसे बाउंडेशन रखनी पड़ी। तो आज शाहरुख का नहीं, अक्षय का बर्थडे था आज, तो ऐसा नहीं है कि मतलब कोई ऐसे स्पेशल सेलिब्रिटी का बर्थडे है। तो MS सुब्बुलक्ष्मी जी का जन्मदिन है, जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं, लेकिन उनके बॉलीवुड में एज सच बहुत सारे गाने नहीं हैं, उन्होंने ज़्यादातर भजन ही गाए हैं। तो मैं आज ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं रख रही हूँ, ये बाउंडेशन उसी दिन की थी। तो आज आपको 1 मिनट मिलेगा जिस 1 मिनट में आप बहुत सारे गाने गाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं छोटा सा ब्रेक लूँगी 2 मिनट के गाने वाला। तो आप लोग भी एंजॉय करिएगा ये गाना, और एंजॉय करने के बाद 2 मिनट में हम लोग फिर करेंगे बात आप लोगों से। तब तक के लिए वार्म अप हो जाइए और अपनी गानों की लिस्ट तैयार कर लीजिए, टीम A एंड B।

0: डांस बसंती।
1: ऊंची वाली जीन्स पहन के, ऊंची वाली हील्स पहन के, यार क्या मतलब, बिना हील्स के भी तो डांस हो सकता है। फिलहाल कोई बात नहीं, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ एनर्जी हाई करते हैं, लिरिक्स तो क्या ही कहें। फिलहाल लिरिक्स की बात बाद में करेंगे, अभी तो हम बात करते हैं एक मिनट की। और जैसा कि मैंने कहा कि आपकी फरमाइशी वाले दिन से मैंने 10 मिनट चुरा लिए हैं, ऐसे खींच के ले रही हैं, और अभी देखते हैं कौन आने वाला है एक मिनट राउंड में सबसे पहले अपने किस्मत आजमाने। तो लड़के लड़कियों की टीम को खुला न्योता है, एक मिनट मिलेगा लड़कियों की टीम को, एक मिनट मिलेगा लड़कों की टीम को। देखते हैं लड़के या लड़कियों की टीम से कौन आके सबसे पहले अपनी जो कहते हैं ना एनर्जी का पावर पैकेज दिखाता है। वैसे आपको मैं बता दूं, एक मिनट में आपको मैक्सिमम गाने गाने होते हैं, मैक्सिमम मतलब कि जितने आप गा सकें, और मैं यहाँ पे आपका टाइमर चला और उस टाइमर के हिसाब से आपने जितने भी गाने गाए होंगे वो मैं काउंट कर लूँगी। आप खुद भी काउंट करते हैं, वैसे तो मैं ही काउंट करती हूँ, तो जितने गाने मेरे काउंटिंग में आते हैं उसी के हिसाब से आपको पॉइंट्स मिल जाते हैं। एक गाने का 10 पॉइंट मिलता है, और आप 50 गाने गाते हैं तो आपको सीधे सोच लो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 500 पॉइंट मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं कौन कॉल कर रहा है। मतलब मेरा तो अभी से हार्ट बीट बढ़ने लगी है, क्या कहने देखते कौन आता है।

0: पहला कॉल आ चुका है, चलिए सुनते हैं कौन है हमारे साथ।
1: हेलो।
2: हेलो मैम।
0: सो हमारे साथ लाइव हैं आशु जी। आशु जी आप बिल्कुल मतलब एकदम तैयार होके आ गई हैं?
2: जी मैम।
0: मतलब तैयार होने का मतलब ये नहीं कि आप साड़ी वाड़ी चेंज कराएंगे। मेरे कुछ लेसर सोचेंगे कि तैयार होना है, अरे तैयार मतलब कपड़े बदल लेता हूँ। तो भाई मैं तैयारी की बात कर रही हूँ कि आपने गाने अपने प्रिपेयर कर लिए, तो चलिए एक मिनट शुरू करने के लिए मैं आपसे लूंगी आधा मिनट। तो टाइमर शुरू करने की अनुमति चाहती हूँ, अगर आप अनुमति दें तो मैं बिल्कुल आपका टाइमर शुरू कर दूँ। रेडी है एकदम?
2: बिल्कुल मैम।
0: तो भाई सारे लोग तैयार हो जाओ, देखते हैं हमारी आशु जी, ये तो बहुत तेज से बोल गई आशु जी, एक बॉल पे कितने सिक्सर लगाने वाली हैं। आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: दिल का खिलौना है तू, दिल दिल प्यार दिल दिल है की मानता नहीं, दिल वालों का दिल का शीशा हो या दिलो, ये दिल तुम दिल दिल तो है दिल, दिल का कौन दिशा में लिखा, अखियों के झरो को तुमने पुकारा, आजकल याद आए हो मेरी जिंदगी तेरी, राम तेरी गंगा मिली पत्थर के सनम बरसात में, जब आज झुमका गिरा रे मैं ना भूलूंगी, या साथ है तो हमें क्या, हमने सनम को खत लिया, जिंदगी प्यारी का तुमसे भरकर दुनिया में जाने क्यों लोग मोहब्बत, हम तुम्हें इतना प्यार, जब हम जवान होंगे ताले से ताले मिला, मैं तेरी दुश्मन तुझे जीवन की दौर कोयल से तेरी बोली बलमा हो बलमा, मैं तेरी दुश्मन देश जाके पल पल से निकलते ही जन्म जन्म का साथ आने से उसके आए बाग, और खिला शायद मेरी शादी का ख्याल, बहुत प्यारी करते तुमको सन अपना घर है ना, ना कजरे की
0: स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप स्टॉप मतलब मेरी सांस फूलेंगे कितने। क्या कहने, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, अरे बाप रे 39 गाने गाए हैं आपने। 39, ओ माय गॉड। आशु जी क्या था, लिख लिख के बैठी थी क्या? लिख के बैठी थी?
2: नहीं मैम, जो आया मन में वो गाई दिया।
0: अरे बाप रे, हाँ दो दो एक गाना जो है आपने दो बार गाया उसको मैंने नहीं गिना। 390 points, ओ माय गॉड। आज तो मतलब लड़कों को इतनी खतरनाक टक्कर मिलने वाली है, मुझे नहीं पता था, अब तो मैं शब्द रख दिया करूंगी जिससे इतनी तगड़ी टक्कर ना बने। 690 point के साथ लड़कियां हमारे साथ आगे बढ़ चुकी हैं, अब देखते हैं लड़कों में से कौन दावेदार आता है और ज्यादा गाने सुनाता है। लेकिन यार ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, नहीं मतलब मैं गिन ही नहीं पा रही थी, मेरी सांस फूल रही थी गिनते गिनते। 39 songs, 390 points, ओए होए होए क्या कहने, 390 points सीधे इसी के मिल गए। क्या गाया क्या गाया, मज़ा आ गया। मतलब क्या ये लड़कियाँ मतलब क्या सोचती हैं, इतने गाने, हो हो क्या कहने क्या कहने। चलिए देखिए आप लोग फरमाइशी सुनते हैं, लेकिन एक मिनट में 39 गाने सुनने की फरमाइशी मतलब कोई कर सकता है? इतने गाने आपको एक मिनट में कोई सुना सकता है? नहीं, सोच लीजिए तो 39 लोगों की फरमाइश पूरी हो गई। हाँ थोड़ा थोड़ा सा मुखड़ा मुखड़ा ही गाया हमने, लेकिन गाया तो कम से कम। चलिए अब देखते हैं लड़कों की टीम से कौन है हमारे साथ। हेलो हेलो
2: हेलो
0: हेलो अनूप जी, आपकी आवाज पहचान पा रही हूँ मैं।
3: हेलो
0: हेलो अनूप जी, स्वागत है आपका, और बिल्कुल फुल नेटवर्क में आगे छत वत पे खड़े होकर आराम से गाइए जिससे एक भी गाना कटे नहीं। 45 गाने गाने
3: हैं। मैम ये बताइए लड़कों का स्कोर कितना है?
0: 250।
3: मैम नामुमकिन आपका।
0: 45 गाने आप लोग को गाने, 45। अरे आशु जी तो ऐसे ऐसे भाग रही थी, मैं तो गिन ही नहीं पा रही थी फटाफट फटाफट कितनी।
3: वो उनकी उनकी जो है वो चल रही थी, लखनऊ मेल चल रही थी।
0: एक गाना रिपीट, सोचिए कितना हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, एक गाना रिपीट भी हो रहा है।
3: उन्होंने खाली एक गाना रिपीट किया था।
0: हाँ बस एक गाना रिपीट हुआ था, मतलब आप भी एकदम अलर्ट होके सुन रहे थे मेरी तरह।
3: हाँ मैं गिन रहा था।
0: मैं एक कागज ले लेती हूँ, उस पर टिक लगाती चलती हूँ, फिर उसको गिनती हूँ। क्या करूँ, आप लोग ऐसे गाते ही हैं, ओ माय गॉड। चलिए अगले, मतलब आप भी ऐसे कुछ गाएंगे फिर मेरे को अपनी सांस फुलानी पड़ेगी।
3: कोई नहीं मैं।
0: थोड़ा सा अनूप जी आप नेटवर्क में आ जाइए, आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है थोड़ी सी। हेलो हेलो हेलो अनूप जी आपकी आवाज कट रही है, थोड़ा सा आप नेटवर्क में आ जाइए।
3: एक मिनट
0: तो चलिए देखते हैं, लड़कों की टीम से अनूप जी आए थे और अभी फिर आएंगे, मुझे लगता है वो नेटवर्क देखने गए हैं। तो भाई देखते हैं लड़के 45 गाने गा पाते हैं कि नहीं। गीता जी ने तो कैलकुलेट वैलकुलेट करके रख लिया और खुशी मारे मतलब फूल रही हैं एकदम कि आज तो हम जीते ही हैं। चलिए देखते हैं ये 45 गाने कहीं गा ना दें। हेलो
3: जी मैम।
0: जी अनूप जी बिल्कुल फुल नेटवर्क में आ गए हमारे साथ और एकदम वार्म अप हो गए गाने वाने की डायरी।
3: मैं वार्म अप नहीं है अब, ये मतलब एक जो टास्क है ये नामुमकिन टास्क है। मेरे लिए तो नामुमकिन ही है, मैं नहीं गा सकता भाई। मैं
0: मन के हारे हार है मन के जीते जीत, अगर आप प्रयास करेंगे तो बिल्कुल संभव है।
3: ठीक है मैं शुरू करता हूँ।
0: मेरे से तो संभव नहीं है, आपका समय शुरू होता है अब।
3: चले तो कट ही जाएगा, चले जैसे हवाएं सनन सनन, दिल दीवाना ढूंढता है दिल विल प्यार व्यार साजन तुमसे, लो आ गई याद आ रही है देखो कसम से आज जाने की जिद ना करो ये दिल दा मामला, दिल तोड़ के हंसती हो मेरा मेरी वफाएं याद करोगी, वफा ना रास आई इससे पहले कि याद तू आए, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो मैंने प्यार तुम्ही से किया, प्यार मांगा है तुम्ही से अब तो है तुमसे, तुम आए तो आया मुझे याद, चांद से पर्दा कीजिए होली आई रे कन्हई कन्हैया, किसको कहेगा तुम या फूलों का तारों का, ये मेरा दीवानापन है थोड़ा है थोड़े की देखा ना है रे, हाय हाय ये मजबूरी दिल खो गया क्या हो गया, दिल मेरा चुराया क्यों चुरा के दिल मेरा, मेरा दिल भी कितना प्यार इश्क और मोहब्बत मोहब्बत दिल का सुकून है, प्यार मांगा है तुम्ही से प्यार हुआ इकरार हुआ है फूलों के रंग से।
0: आपने एक मिनट के अंदर आपने फूलों के रंग से कैलकुलेट नहीं हुआ, एक मिनट के ऊपर हो गया था, आपके 39 गाने हो गए हैं।
3: ओके मैम
0: 39 मतलब बराबर बराबर तो एटलीस्ट क्या okay, गया? लेकिन आपने मतलब मैं ये कहूंगी आपने इत्मीनान से थोड़ा सा गाया, स्टार्टिंग में आप चाहते तो थोड़ा गानों को लिरिक्स को थोड़ा और कम करते कंप्रेस करते।
3: मैम दिक्कत ये थी ना कि मैंने केवल 28 गाने लिखे थे, बाकी जो मैंने गाए हैं वो मैंने अपने मन से पहले से दिमाग में प्रिपेयर कर रखे थे, वही जो मैंने पहले गा दी वही दिक्कत हो गई।
0: मतलब नॉट बैड आपने 39 गाने गाए एटलीस्ट, तो ये बहुत अच्छी बात है। और वही 50 का जो लॉस चला स्टार्टिंग में वो आप लोग पे भारी पड़ गया, बाकी लड़कों की टीम ने भी बेहतरीन खेला। ओए होए होए क्या कहने क्या कहने, मजा आ गया।
3: आज मैम वॉइस थे भी नहीं ना, आज मेन बात ये भी थी वॉइस में था भी नहीं।
0: आज लड़कों की टीम थोड़ी कमजोर दिख रही है मुझे
3: जी,
0: गए होंगे कहीं,
3: कोई बात नहीं
0: किसी और को गाना सुनाने।
3: कांग्रेचुलेशंस टू आशु जी, गर्ल्स टीम, गर्ल्स टीम का गुरूर।
0: क्या थैंक यू सो मच। तो भाई लड़कियों की टीम ने आज धमाल कमाल क्या क्या कहूँ सब कुछ कर दिया और मजा ही आ गया भाई, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, ओहो मजा आ गया बहुत, मतलब मजा आ गया, मतलब कितनी तारीफें करूँ उतनी कम होंगी। और कुड़ी जो है वो पटोला बन के ही आ जाई और पटोला बन के ऐसा मतलब आप लोगों ने गाया, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, यू डिड फैब। और आप लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं, लड़कियों की टीम ने आज धमाल कर दिया है धमाल, एंड 690 पॉइंट्स थोड़े पॉइंट्स नहीं होते, बहुत बढ़िया खेलने वाले लोग ही मतलब इतना बढ़िया कर सकते हैं। और स्पेशली लड़कों की टीम के लिए मैं अनूप जी को थैंक्स बोलना चाहूँगी, जो शुरुआत से अंत तक लगे रहे, वो चाहते तो मतलब बीच में ब्रेक ले सकते थे कि यार अभी तो लड़कों की टीम बिल्कुल एक्टिव नहीं है, पर यही होती है टीम पावर, अगर बाकी लोग कहीं बिजी हैं तो बाकियों को भी सपोर्ट करना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी आप लोग अपनी टीम मेंबर्स का लगातार सपोर्ट किया करें, जो जहाँ जहाँ से जुड़ते हैं, कश्मीर जम्मू जहाँ जहाँ से, मतलब कोई शिमला से है, कोई मध्य प्रदेश से है, राजस्थान से, तो आप लोग प्लीज़ अपनी टीम को एकदम फुल सपोर्ट करें, प्लीज़ आप लोग प्रिपरेशन करें और इसको एंजॉय करें, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक सेकेंड भी हम लोग पीछे नहीं जा सकते। और अगर हमें थोड़ा सा समय मिला है इतने सारे लोगों से जुड़ने का, तो यार प्लीज़ एंजॉय दिस प्लेटफॉर्म, ये पहला एक प्लेटफॉर्म ऐसा है 89.6 FM जो आपको लाइव अंताक्षरी खिला रहा है, वो भी पूरे देश भर में लाइव होके, दैट्स द ग्रेट थिंग। तो ऐसे एंजॉय करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बजाते रहिए अपना वाला रेडियो स्टेशन ज्ञान 89.6 FM, स्टे ट्यून्ड। एंड बिल्कुल सेलिब्रेशन बनता है हमारी टीम वुमनिया का, एंड वुमनिया के लिए गाना भी बन जाए ये वाला, ओ वुमनिया, यस। तो हमारी वुमनियाज ने ये गाना अपने लिए ही बनाया, क्योंकि इनकी जो पावर है वो हर जगह दिखती है, नॉट ओनली वुमनियास की, मैंस की भी पावर बहुत अच्छी है, ये लोग हर जगह अपना परचम लहराते हैं। तो चलिए सुनते हैं ये गाना हमारी टीम लड़कियों के लिए। कुछ बेहतर सुन रहे हैं तो डेफिनेटली आरजेबीना के साथ शाम का शो गोंडा मैसेज मसाला आरजेबीना वाला सुन रहे हैं अपनी फेवरेट फ्रीक्वेंसी 89.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन के साथ।

नमस्कार आदाब एंड सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और जिन लोगों ने अभी तक फरमाइशी की गटरी को नहीं खोला, किसका है ये तुमको इंतजार में होना। मैं आ चुकी हूँ फटाफट से, अपनी फरमाइशी की गटरी को खोल लीजिए, उसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और डेफिनेटली लगा दीजिए हजारों लाखों करोड़ों चांद, क्योंकि शो आपका, गीत आपके, जज्बात आपके और ये आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है ही ना दोस्तों। क्या हाल चाल है पब्लिक, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जग्गू दादा एमपी से, महेंद्र राजस्थान से, धर्मेश त्रिपाठी गोंडा से, निधि सीतापुर से, मोहित मालवे नगर गोंडा से, नागेश्वर धाकड़ इंडिया से, सोनिया तिवारी गोंडा से, राजेश कुमार सिंह जी मालवे नगर गोंडा से आपका भी स्वागत और इस्तकबाल है, राजू सीतापुर से स्टे ट्यून्ड, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, राजेश कुमार सिंचाई विभाग गोंडा से आपका भी स्वागत है, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से, उषा कश्यप गोंडा से, प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका भी स्वागत है। इसी के साथ में आशा मिश्रा जी लखनऊ से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, रितेश साहू कार्तिक कश्यप गोंडा से, शशि सिंह जी गोंडा से, सुरेश कुमार जी चौक से, बजीरानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, सबीहा गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो। सो एंजॉय कर लेते हैं बिना किसी देरी के हमारी आज की पहली फरमाइश, लेकिन आज का विनर ऑफ द डे कौन था मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। और कैसी चल रही है आपके यहाँ गणेश जी की पूजा, गणपति बप्पा की पूजा, मुझे चैट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये पहला पहला पहला गाना। पहली फरमाइश हमारे पास में है जग्गू दादा की जुगल किशोर वर्मा जी की एमपी से, और हमारे जग्गू दादा को जुगल किशोर वर्मा जी को एमपी से सुनना है गाना आज सुबह जब मैं जगा। से एंजॉय करते हैं मोहम्मद अजीज और लता मंगेशकर जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर। और ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी कड़वी लेकिन रियलिटी चेक करवाने वाली बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो 11 स्थल 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हमने एंजॉय किया है लता जी की और मोहम्मद अजीज जी की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, हमारे जग्गू दादा की फरमाइश पर, हमारे जुगल किशोर वर्मा जी की फरमाइश पर, जो कि है एमपी से। बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। मालवी नगर से राजेश सिंह जी आपका स्वागत है, नाजिया अंसारी गोंडा से आपका भी स्वागत है, स्टे ट्यून्ड। इसी के साथ में मालवी नगर से राजेश सिंह जी का कहना है, ओहो गुड सॉन्ग है, आहा राजेश सिंह जी हमको भी पता था कि ये गुड सॉन्ग है और हमको भी ये सॉन्ग बहुत ही गुड गुड लगता है। सो एंजॉय कर लेते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश, और अगली फरमाइश भी बहुत ही गुड गुड गाने की है। जी हाँ दोस्तों, अगली फरमाइश है महेंद्र की राजस्थान से, और महेंद्र को राजस्थान से सुनना है गाना, मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, और अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा बहुत दिनों बाद महेंद्र की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

क्यों इतने खूबसूरत गाने इतने लंबे क्यों होते हैं, लेकिन फिर भी वक्त का पता क्यों नहीं चलता है। वाव, हमने एंजॉय किया है बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। मिलते मिलते हंसी वादियों में मैं खो गया तो क्या करोगे, ओ माय गॉड। अनुराधा जी की और विपिन सचदेवा की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा महेंद्र की फरमाइश पर। और इतना ही नहीं, महेंद्र का कुछ कहना भी है। इनका कहना है कि टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी में, टूट कर बिखर जाते हैं वो लोग मिट्टी में जो खुद से ज्यादा किसी और से मोहब्बत करते हैं। वाओ, थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच महेंद्र जी, इतने खूबसूरत से गाने की फरमाइश करने के लिए। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है धर्मेश त्रिपाठी की, गोंडा से। एंजॉय करेंगे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश, लेकिन इसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मोहब्बत से अब नफरत हो गई है हमें। और फिर इसी में जवाब देते हैं महेंद्र राजस्थान से कि हमें भी। धर्मेश त्रिपाठी कहते हैं सही है, तो महेंद्र जी कहते हैं कि तभी तो रेडियो की दुनिया में आए थे। अरे भाई लोग, काय झूठ बोल रहे हो अपने आप से। हाँ, दुनिया से तो झूठ बोल ही रहे हो, लेकिन अपने आप से भी झूठ बोल रहे हो कि मोहब्बत से नफरत हो गई है। जिनको मोहब्बत से नफरत होती है वो तो बाय गॉड कभी नहीं कहेंगे कि मोहब्बत से नफरत होती है, वो तो और शब्दों में चाशनी मिला मिला के आपको देते रहेंगे और आप शब्द अपने उनसे लेते रहेंगे, है ना। कितनी अच्छी बात है, मोहब्बत से नफरत कोई नहीं करता है। और जो कहता है कि बहुत नफरत है मोहब्बत से, जिससे मोहब्बत किया है एक बार उससे नफरत करके देखो, फिर मोहब्बत से नफरत कर लेना। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश, मीन्स धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश। और उनको सुनना है तड़कता भड़कता सा एनर्जी से भरपूर वाला हरियाणवी सॉन्ग सपना चौधरी का। एंजॉय करते हैं तेरी आख्या का यो काजल मने करे से गोरी घायल से पौसे, धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।

सुपर हिट न्यू हरियाणवी, न्यू नहीं ओल्ड हरियाणवी सॉन्ग, सिर्फ और सिर्फ हमारे धर्मेश त्रिपाठी की फरमाइश पर, जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन उसके पहले धर्मेश त्रिपाठी का कहना है कि मेरी फरमाइश को सजाकर सुरों में आपने ढाल दिया, एक प्यारा सा गीत सुनाकर दिल को खुशहाल कर दिया। आपकी आवाज में मिठास है, हाय कहां से, आपकी आवाज में मिठास है, हर पल दिल को छू जाती है। धन्यवाद सिंपल जी, आपकी अदाओं ने शाम सजा दी है। आए हाय, थैंक यू सो मच धर्मेश त्रिपाठी। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निधि की, सीतापुर से, और निधि को सीतापुर से सुनना है गाना आप मुझे अच्छे लगने लगे। अच्छा जी, हम आपको अच्छे लगने लगे? अरे नहीं भाई, हम इनको नहीं अच्छे लगने लगे, इनको ये वाला गाना सुनना है। तो एंजॉय करते हैं आप मुझे अच्छे लगने लगे, अलका याग्निक और अभिजीत जी की आवाज़ में। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

अच्छे लगने लगे। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, किसकी फरमाइश पर? निधि की फरमाइश पर, जो कि है सीतापुर से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। लेकिन दोस्तों ये गाना सच में बहुत अच्छा था, मैंने जितना नहीं सोचा था उससे कहीं ज्यादा अच्छा था। सो थैंक यू सो मच। हम एंजॉय करते हैं अब हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश है मालवीय नगर से मोहित की, और मालवीय नगर गोंडा से मोहित को सुनना है गाना सूरज कब दूर गगन से। सो एंजॉय करते हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। कुमार सानू, अलका याग्निक, उदित नारायण, इन तीनों सुपरस्टार की आवाज में सिर्फ और सिर्फ मोहित की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आपका नाम बहुत अच्छा है।

0: बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है। अच्छा, सामने एंजॉय करिए बहुत ही खूबसूरत सनगमा मोहित की फरमाइश पर, जो कि है मालवीय नगर गोंडा से। और एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे पास में है नागेश्वर धाकड़ की, और नागेश्वर धाकड़ को इंडिया से सुनना है गाना। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे, लेकिन जहां होंगे वहां पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। सो एंजॉय करेंगे ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, बहुत ही प्यारा सा नगमा, मेरी प्लेलिस्ट वाला गाना नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन,
1: सारेगामा कारवा डिजिटल ऑडियो।
0: वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। लवली सिंह गोंडा से आपका स्वागत है, और आपकी आरजे सिंपल, हाँ आप ही लोग के साथ में बहुत ज़्यादा बिजी है इस टाइम पे, और आपकी आरजे सिंपल का हाल चाल एकदम चुस्त दुस्त और तंदुरुस्त है। बस आप सभी की दुआओं का असर है। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।

जमा होंगे, जाने कहाँ होंगे, लेकिन जहाँ होंगे वहाँ पर याद करेंगे, तुझे याद करेंगे। शब्बीर कुमार लता जी की आवाज में हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश पर। बढ़ते हैं हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ, और अगली फरमाइश हमारे पास में है सोनिया तिवारी की गोंडा से। सोनिया तिवारी को सुनना है गोंडा से गाना, ऐ हवा मेरे संग संग चल, मेरे दिल में हुई हलचल। तो एक बार फिर से ये गाना एंजॉय करते हैं। ये गाना दोस्तों मैंने पहली बार तो यहाँ फरमाइशी की महफिल में ही सुना है, और नो डाउट मैं झूठ बिल्कुल भी नहीं सुना बोलना चाहूँगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। ये गाना मैंने यहाँ ही भले सुना है, लेकिन ये गाना मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगने लगा है। सो एंजॉय करते हैं लता जी की आवाज़ में ये बहुत ही सुरीला सा और बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी बहुत ही प्यारी सी सोनिया तिवारी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, और जो जो ये गाना पहली बार सुन रहे ध्यान से सुनना, आपको भी अच्छा लगेगा सच्ची में।

संग संचल मेरे दिल में हुई हलचल, हमने एंजॉय किया है लता जी की आवाज में। ये बहुत ही सुरीला और बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी सोनिया तिवारी की फरमाइश पे जो की है गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगली फरमाइश की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है मालवे नगर से राजेश सिंह जी की, और मालवे नगर से राजेश सिंह जी को सुनना है किशोर कुमार जी की आवाज में नगमा जिंदगी हंसने गाने के लिए है। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा मालवे नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और नागेश्वर धाकड़ का पूछना है, मैम आप कल क्यों नहीं आए थे, कहाँ चले गए थे? तो मैं आपसे बोलना चाहूंगी कि मैं कल आई थी, आप नहीं आए थे। शायद मैं आई थी लेकिन मैं गोंडा मैसेज मसाला की महफिल में आई थी।

ने गाने के लिए है पल दो पल बाव। हमने एंजॉय किया किशोर कुमार जी की आवाज में ये ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा। हमारे मालवीय नगर से राजेश सिंह जी की फरमाइश पर बढ़ते हमारी आज के अगली फरमाइशी गीत की तरफ। एंजॉय करेंगे, लेकिन इसके पहले मैं बताना चाहूंगी दोस्तों कि इस फरमाइशी गीत की उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहां गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपके अपनी आरजे सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो जिन लोगों ने पेट पूजा नहीं की है फटाफट से जाके पेट पूजा कर लेना, और जिन लोगों ने अभी तक गणपत बप्पा की आरती वारती नहीं की है वो लोग भी जाके आरती वारती करके भोग वोग लेके और आपस में मिल बांट के खा के फिर वापस से आइएगा फरमाइशी की महफिल में, इंजॉय करेंगे। फिर से वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो पप्पू हार्डवेयर गोंडा से आपका स्वागत है। स्टे ट्यून्ड, इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। राजू को सीतापुर से सुनना है गाना सुन मेरी शहजादी। सो इंजॉय करते हैं ये गाना अंबा पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ राजू की फरमाइश पर जो कहें सीतापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ईपीएफओ के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली का आग्रह किया। छत्तीसगढ़ की एक विशेष एनआईए अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई और दिग्गज कन्नड़ अभिनेता अनंत नाग को 2024 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत के तकनीकी भविष्य को आकार देने में सरकार और सेमीकंडक्टर उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग बहुत महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रधानमंत्री ने प्रतिभा, प्रौद्योगिकी अपनाने और बुनियादी ढांचे के मामले में भारत की मजबूत नींव का उल्लेख किया। उन्होंने कौशल विकास, नवाचार और एआई तथा क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उभरती प्रौद्योगिकियों में उद्योग की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेमीकंडक्टर तंत्र अब व्यापक स्तर और अवसरों के चरण में पहुंच रहा है। बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। प्रधानमंत्री कल नई दिल्ली के यशोभूमि में सेमिकॉन इंडिया के 5वें संस्करण का शुभारंभ करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में सहयोग को बढ़ावा, नवाचार को गति, विनिर्माण क्षमताओं को मजबूती देने तथा निवेश आकर्षित करने का अवसर मिलेगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के अंतर्गत अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपए से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह कर दिया है। संशोधित वेतन सीमा कल विश्वकर्मा जयंती से प्रभावी हो जाएगी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इससे श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा का दायरा काफी बढ़ जाएगा।
1: आज कैबिनेट में हमारे देश भर में इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया है। प्रोविडेंट फंड का जो नियम है, उस नियम में अब तक 15,000 रुपीज की सीलिंग रहा करती थी। ये सीलिंग 2014 में तय की गई थी, इसको बढ़ाकर 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी पे लेके आ गए। इससे करीब 51 लाख एम्प्लॉयज को इसका बेनिफिट मिलेगा।
0: इससे सरकार का वार्षिक व्यय लगभग 11,339 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस मंजूरी से भविष्य निधि बचत तक पहुंच बढ़ेगी और कर्मचारी पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन सुरक्षा का विस्तार होगा।
2: वेतन की सीमा बढ़ाने का फैसला देश में सभी कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फिलहाल अगर कोई नया कर्मचारी हर महीने 15,000 रुपए से अधिक वेतन पर नौकरी शुरू करता है तो वह अपने आप कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ के दायरे में नहीं आता था। वहीं अब वेतन सीमा को बढ़ाकर 25,000 रुपए करने से अब बड़ी संख्या में कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था से जुड़ सकेंगे। इससे अस्थायी और औपचारिक रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। केंद्र सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों को भविष्य निधि में बचत, कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन और बीमा सुरक्षा का लाभ मिल सकेगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने 3 लाख रुपए तक की छोटी निर्यात खेपों के लिए पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र RCMC या पंजीकरण प्रमाण पत्र की आवश्यकता से छूट दी है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य नए और छोटे निर्यातकों के लिए अनुपालन बोझ कम करना तथा डाक, कुरियर और अन्य उभरते माध्यमों से निर्यात को सुगम बनाना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: ध्यान दें, आपकी मेहनत को राष्ट्रीय पहचान, पशुपालन क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने और नवीन प्रौद्योगिकी प्रथाओं को अपनाने वालों को भारत सरकार का पशुपालन एवं डेयरी विभाग प्रदान करता है राष्ट्रीय सम्मान। आज ही नामांकन करें राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 के लिए। इस पुरस्कार के लिए 3 श्रेणियों में होता है चयन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति और सर्वश्रेष्ठ AI तकनीशियन। उत्तर पूर्वी क्षेत्र और हिमालयी राज्यों के लिए विशेष पुरस्कार का प्रावधान। नामांकन की तिथि 10 अगस्त से 30 सितंबर 2026 2022 तक, तो देर किस बात की। आज ही आवेदन करें www.awards.gov.in पर या संपर्क करें नजदीकी CSC केंद्र पर। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2026 पशुपालन एवं डेयरी विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी गुट घोषित किया है। ये गुट युवाओं और छोटे मोटे अपराधियों को आतंकवाद के लिए उकसाने के अलावा सीमा पार हथियारों, विस्फोटकों और नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। इस गुट ने भारत की लोकतांत्रिक संरचना और सांप्रदायिक सद्भाव को निशाना बनाते हुए नफरत फैलाने वाली डिजिटल सामग्री भी प्रकाशित की है। आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के अनुसार ये कार्रवाई की गई है। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के नजदीक ड्रोन हमले की घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत सऊदी अरब पर हमलों में लोगों और बुनियादी ढांचे को खतरे में डालने वाली कार्रवाइयों की कड़ी निंदा करता है। श्री जायसवाल ने कहा कि भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की शीघ्र बहाली की उम्मीद करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते को ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इससे 1 अरब 40 करोड़ भारतीय उपभोक्ताओं तक पहुंच आसान होगी और न्यूजीलैंड में रोजगार तथा आय में वृद्धि होगी। इससे पहले आज न्यूजीलैंड की संसद में भारत के साथ समझौते को लागू करने के लिए आवश्यक विधेयक पारित किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर कल 1 महीने का सेवा संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। इस दौरान भाजपा द्वारा देश भर में 12 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। श्री मोदी 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में अपना 25 वर्ष का कार्यकाल पूरा करेंगे। कोलकाता में एक प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि श्री मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूरे होने पर यह अभियान समाज से हर वर्ग से जुड़ने का अवसर है।
4: इस अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव यह है कि जिस सेवा, जिस समर्पण और जिस निष्काम भाव से मोदी जी ने आजीवन काम किया है, उसी स्पिरिट के साथ हम उनके जीवन के माइल स्टोन्स को भी मनाएं। और सेवा संकल्प अभियान, मैं मानता हूं कि यह केवल एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को सेवा, सहयोग और जन भागीदारी से जोड़ने का हमारा यह फर्म कन्विक्शन है, एक दृढ़ संकल्प है।
0: जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने आज स्वच्छता ही सेवा अभियान 2026 का शुभारंभ किया। अभियान का विषय है स्वच्छता में सहभाग, स्वच्छ भारत विकसित भारत।
5: स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने।
0: श्री पाटिल ने कहा कि इस वर्ष अभियान का उद्देश्य स्वच्छता के लिए लोगों की भागीदारी और सहभागिता को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि देश में स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं।
6: आज देश के 5.25 लाख से अधिक गांव ODF प्लस मॉडल घोषित हो चुके हैं। साथ ही वर्ष 2014 से अब तक 12.22 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों का निर्माण हो चुका है। यह स्वच्छता के क्षेत्र में बड़े बदलाव को दर्शाता है। स्वच्छता इस सेवा 2025 में 18 करोड़ से अधिक नागरिकों ने भाग लिया, जिनमें से लगभग 14 करोड़ लोग ग्रामीण क्षेत्रों में से हैं। यह दिखाता है कि देश में स्वच्छता के प्रति जन भागीदारी लगातार मजबूत हो रही है।
0: इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में दिल्ली को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शीर्ष स्थान मिला है। दिल्ली के बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक, चंडीगढ़ और गोवा का स्थान है। नीति आयोग के सदस्य राजीव गौबा ने कहा कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ना 2047 तक विकसित भारत की महत्वाकांक्षा के लिए एक आर्थिक, पर्यावरणीय और रणनीतिक अनिवार्यता है।
7: दुनिया भर में लोग तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों को अपना रहे हैं। अनुमान है कि साल 2040 तक बिकने वाली हर 10 नई कारों में से 4 कारें इलेक्ट्रिक होंगी। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि इस क्षेत्र में हमारे देश के लोगों की नौकरियां बची रहें और ऑटोमोबाइल सेक्टर तरक्की करता रहे, तो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग को भी इन वैश्विक रुझानों के साथ बदलना होगा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
8: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
9: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
8: अब तक इस योजना से 9 करोड़ 50 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: ये आकाशवाणी है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA की जगदलपुर स्थित विशेष अदालत ने झीरम घाटी कांड के सभी 10 दोषियों को आज फांसी की सजा सुनाई। वर्ष 2013 में छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी में माओवादियों के हमले में कांग्रेस के अनेक वरिष्ठ नेताओं सहित 27 लोगों की मौत हो गई थी और 35 अन्य घायल हुए थे। NIA ने इस मामले में 11 माओवादियों को गिरफ्तार किया था। एक आरोपी की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई। दिग्गज अभिनेता अनंत नाग को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि ये पुरस्कार 22 सितंबर को गुजरात के केवड़िया में 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रदान किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
10: प्रेम प्रसंग हो या कॉमेडी या फिर सीरियस पात्र, अभिनेता अनंत नाग का सरल अभिनय पर प्रेक्षकों द्वारा प्रशंसा प्राप्त हुई है। मिंचिना ओटा, हमसे गीते, अंकुर, मंथन, मालगुडी डेज, गणेशना मधुवे, गौरी गणेशा और 250 से ज्यादा फिल्मों में उनका पात्र अभिनय ने अपनी अनोखी छाप छोड़ी है। अभिनेता ने 5 दशक के अपने फिल्म जगत के सफर में कई फिल्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दिया है, जिसके लिए उनको आज ये सम्मान प्राप्त हो रहा है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री अनंत नाग को बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि उन्होंने सहज अभिनय और बहुमुखी प्रतिभा से कई दशकों से भारतीय सिनेमा और विशेषकर कन्नड़ सिनेमा पर अमिट छाप छोड़ी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव और राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि ये पुरस्कार देश के महानतम कलाकार के लिए उपयुक्त सम्मान है। सरकार ने केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए पुनर्गठन किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया है कि पुनर्गठित बोर्ड में विनोद अनुपम, मनोज जोशी, हंसराज हंस, प्रीति जिंटा, पंकज त्रिपाठी, रिकी केज, सुनील शेट्टी, रूपा गांगुली और प्रियदर्शन सहित 18 सदस्य शामिल हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर लोगों से विज्ञान आधारित उपायों, टिकाऊ शीतलन और पर्यावरण के अनुकूल तकनीकों को अपनाने का आह्वान किया है। श्री यादव ने कहा कि ओजोन परत पृथ्वी की सुरक्षा कवच है और इसकी रक्षा करना हम सभी की साझा जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राप्त स्मृति चिन्हों और उपहारों की ई नीलामी कल से शुरू होगी। नई दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि इस वर्ष नीलामी के लिए लगभग 1500 वस्तुएं रखी गई हैं। श्री शेखावत ने लोगों से ई नीलामी में शामिल होने का आग्रह किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में भारत को अग्रणी बनाने के लिए उद्योग जगत की अधिक भागीदारी का आह्वान किया। सेमीकंडक्टर गोलमेज बैठक में प्रमुख वैश्विक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भारत की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने EPFO के अनिवार्य दायरे में शामिल होने के लिए वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए प्रति माह करने को मंजूरी दी। इसका 51 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सरकार ने पाकिस्तान के शहजाद भट्टी नेटवर्क को आतंकवादी संगठन घोषित किया। भारत ने सऊदी अरब के मक्का के पास हुए ड्रोन हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की। छत्तीसगढ़ की एक विशेष NIA अदालत ने बस्तर जिले में 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमले के मामले में 10 दोषियों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। ये फरमाइश हमारे पास में आई हुई थी निशा की पटेल नगर गोंडा से। और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सो क्या आप लोगों ने पेट पूजा किया? अगर हाँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। लेकिन उसके पहले मैं कहना चाहूंगी दोस्तों कि तुझको भी बिछड़ने का बहाना चाहिए, मुझको भी अब शायद चले जाना चाहिए। हो गया है दो दिलों में फासला ए दोस्त, हम दोनों को अब जुदा हो जाना चाहिए। जो तेरा है रख ले तू, जो मेरा है मुझको दे दे। जो तेरा है रख ले तू, जो मेरा

0: है तेरी सूरत देखकर हमें एंजॉय कहे गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पे जो की है आवास विकास गुंड से। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है राजेश कुमार की सिंचाई विभाग गोंडा से। उनको सुनना है गाना मुझे कुछ कहना है आपसे। सो एंजॉय करते हैं ये गाना दिल तेरा आशिक पिक्चर का सिर्फ और सिर्फ राजेश जी की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।
1: सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द

कहना है आपसे। हमने एंजॉय किया ये गाना राजेश कुमार जी की फरमाइश पर, जो कि है सिंचाई विभाग गोंडा से। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश गीत की तरफ दोस्तों, और अगली फरमाइश हमारे पास में है क्या बात है गाने की। सो एंजॉय करते हैं ये नगमा सिर्फ और सिर्फ सबीहा की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हमने एंजॉय किया है ये गाना सभी की फरमाइश पे। बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइशी गीत की तरफ। अगली फरमाइश हमारे पास में है निब्बर जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, और उनको सुनना है गाना भीगी हुई है रात मगर जल रहे हैं हम। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू और कविता कृष्ण मूर्ति की आवाज में संग्राम पिक्चर का ये गाना सिर्फ और सिर्फ निब्बर जी की फरमाइश पर, जो की है रानी बाजार गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।

रात मगर जल रहे हैं हम। हमने एंजॉय किया ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। बढ़ते हैं अगली फरमाइशी गीत की तरफ। ये तो फरमाइश थी निब्बर्जी की रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में मुमताज अंसारी जी की गोंडा से। सो दोस्तों, इसी फरमाइशी गीत के साथ में आपके अपने आरजे सिंपल नॉन सो सिंपल लेना चाहती है आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन आपके अपने आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। सो गाइज, हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली एज वेल। समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना। आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है। और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। बहुत सारा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, आप सबकी तरफ से बे इंतहा बेतहाशा प्यार आपके आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल के लिए। लव यू ऑल, स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं कल फिर से। और आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: गोंडा वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बेहतरीन ऑफर्स और प्रीमियम क्वालिटी इलेक्ट्रॉनिक्स का नया ठिकाना अब अपने शहर गोंडा में खुल गया है, गैलेक्सी हैवेल्स। जी हाँ, अब अपने घर को दीजिए एक नया और मॉडर्न लुक। पावर सेविंग BLDC व डिजाइनर पंखे, फैंसी प्रोफाइल एंड ग्लैम ट्यूब लाइटिंग, हेल्थ के लिए अल्कलाइन RO वाटर प्यूरिफायर्स, किचन के लिए चिमनी HOB और मिक्सर ग्राइंडर्स, और घर की सुरक्षा के लिए मजबूत MCB एंड वायर्स और बहुत कुछ। जब चाहिए हो बेस्ट और नंबर 1 प्रोडक्ट तो बस एक ही नाम, हैवेल्स गैलेक्सी। पता है NV ट्रेडर्स, कचहरी रोड, DM आवास के बगल, गोंडा। कॉल करें 9019353594 और 8726168000। हैवेल्स गैलेक्सी, आपकी अपनी शॉप।
2: अरे सुना
3: क्या,
2: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
3: वाओ,
2: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545853546।
4: क्या आप अपने और अपनों के लिए एक भरोसेमंद इलाज की तलाश में हैं?
5: तो सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लाया है एक्सपीरियंस डॉक्टर्स की टीम, जहां आपको मिलेंगे जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, आर्थोपेडिक्स, एनेस्थीसिया और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
4: अनुभवी डॉक्टर ए सिंह और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा मिश्रा की स्वास्थ्य सेवाएं अब आपके शहर में।
5: आज ही कॉल करें 9260 9816 9 81 9 76। पता है गुरु नानक स्कूल वाली गली के पास, रिलायंस ज्वेलर्स, स्टेशन रोड, गोंडा।
4: सिटी मेड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल,
5: क्योंकि आपका स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी।

0: यह संदेश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन PSI इंडिया एवं केनव्यू की ओर से जनहित में जारी।
1: CMO गोंडा की आम जन से अपील।
2: नमस्कार, मैं CMO गोंडा। स्टॉप डायरिया कैंपेन 25 जून से 25 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। डायरिया 5 वर्ष से छोटे बच्चों में मृत्यु का बड़ा कारण है और इसकी रोकथाम ही दस्त प्रबंधन की कुंजी है। डायरिया की रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल, अच्छी तरह से साबुन पानी से हाथ धोना, छोटे बच्चों में केवल स्तनपान पूरक आहार शामिल करना, ORS और जिंक समय से देना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस साल की थीम है स्वच्छ जल समुचित उपचार, डायरिया से बचें हर बार। स्टॉप डायरिया कैंपेन में PSI इंडिया व कैंपव्यू द्वारा डायरिया से डर नहीं प्रोग्राम के माध्यम से सहयोग प्रदान किया जा रहा है। प्रचार वाहन चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। डायरिया से डरने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत है। डायरिया होने पर बच्चों को जल्द से जल्द ORS का घोल और जिंक देना सुनिश्चित करें। धन्यवाद।
1: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है, अपने सभी गोवंशीय एवं महिष वंशीय पशुओं को खुरपका मुहपका रोग का टीकाकरण अवश्य कराएं। ये पशुधन टीकाकरण अभियान 22 जुलाई 2026 से 8 सितंबर 2026 तक चलाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं। छूने दो बच्चों के हाथों को चांद सितारे, यही प्यारे बच्चे हैं भविष्य हमारे। प्रोफेसर डॉक्टर शेर बहादुर सिंह, पूर्व सदस्य उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग, प्रख्यात शिक्षाविद के सपनों का इंग्लिश मीडियम CBSE पैटर्न वाला मॉडर्न पब्लिक स्कूल एवं मॉडर्न किडीज प्ले ग्रुप से क्लास 9th। आपके बच्चों के लिए मिलने वाली सुविधाएं हैं क्रिएटिव प्लेवे मेथड से पढ़ाई, थीम बेस्ड क्लासरूम, ऑडियो वीडियो विजुअल्स, कंप्यूटर स्मार्ट क्लास, वाहन की सुविधा, CCTV कैमरे से लैस कैंपस और स्विमिंग पूल पूल डे की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन, पता है LIC कॉलोनी निकट गोंडा मेडिकल सेंटर, पटेल नगर गोंडा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9670931251 और 8840098123। मॉडर्न पब्लिक स्कूल, निखार रहे हैं आपके बच्चों का भविष्य।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, शुभ संध्या शुभ संध्या शुभ संध्या, शाम का सलाम कबूल करें, आदाब आप सभी को। आप सुन रहे हैं और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन और अब कार्यक्रम है बहारे गजल। और आज का कार्यक्रम हमारा नहीं है भाई, आज का कार्यक्रम तो आप सभी श्रोताओं का है, क्योंकि आज के दिन हमारे जो श्रोता होते हैं वही बन जाते हैं वक्ता, और हम तो मात्र श्रोता होकर आप सभी को सुनते हैं। बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ भाई प्रबल मिश्रा जी, आपको बहुत अच्छा लगा देख करके। गुड इवनिंग श्री मनु जी, राधे राधे, आप कैसे हैं भाई? बहुत दिनों के बाद पश्चात आपका देव दर्शन हुआ और देखकर अच्छा लगा आपको। जी हाँ, तो भाई नंबर तो वही है आपका, दूरभाष क्रमांक वही है 63 93 31 64 29। आज तो दिन है आप सभी श्रोताओं का, आज आप सुनाएंगे और हम सभी सुनेंगे, लेकिन देखना महत्वपूर्ण ये है कि शुभारंभ यानी कार्यक्रम की आधारशिला, कार्यक्रम की नींव कौन रखता है, क्योंकि कहा जाता है कि फर्स्ट स्टेप इज ऑलवेज टिपिकल। पहला कदम सामान्यतया कठिन होता है और हर बार इस पहले कदम को कोई ना कोई उठाता ही उठाता है। आज देखने वाली बात होगी भाई हमारे लिए कि ये पहला कदम हमारे लिए आज कौन उठाने वाला है। जी हाँ, तो भाई चलते हैं और देखते हैं हमारे पास सबसे पहला फोन किसका आने वाला है। दूरभाष क्रमांक वही है 63 93 31 64 29, 63 93 31 64 29। हमारे साथ श्री तेज नारायण शुक्ल जी भी जुड़ चुके हैं। शुभ संध्या मनु जी, आपको भी चरण स्पर्श और शुभ संध्या। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। जी हाँ, तो अब चलते हैं और देखते हैं भाई कौन जुड़ चुका है हमारे साथ। वैसे बहुत प्यारे प्यारे श्रोता हमको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं, क्या बात है भाई। उस्मान खान जी की कभी आवाज़ सुनने को नहीं मिली, लवली सिंह जी की आवाज़ नहीं सुनी, धर्मेंद्र मोहन जी की आवाज़ बहुत प्यारी है लेकिन कभी कभी गुनगुनाते हैं, और आशु मिश्रा जी से भी उम्मीद आज की जाती है कि भाई कुछ इस मौके पर। लेकिन फिलहाल हमारे साथ एक कॉल आ चुकी है और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: हाँ सर जी नमस्कार।
0: जी नमस्कार,
1: मुमताज अंसारी बात कर रहा हूँ सर।
0: हाँ आदाब, कैसे हैं आप?
1: बस आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है।
0: क्या बात है, तो आज हमने शुरुआत ही मुमताज से की है।
1: जी सर
0: जी, तो क्या सुनने वाले हैं हम आपसे?
1: अब जो सर मुझे कुछ टूटा फूटा आएगा आपकी नजर करूंगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे आप बहुत अच्छा गाते हैं।
1: जो करूं सर?
0: जी जी निसंदेह।
1: हाँ

तू ही आशिकी है, तू मेरी जिंदगी है, तू मेरी हर खुशी है, हर वक्त

0: तुझको भुला ना पाया मेरी बेबसी है तू, मेरी जिंदगी है तू, मेरी हर खुशी है।
1: जी सर,
2: कविता का केवल एक ही स्टैंजा और वो भी बहुत प्यारे तरीके से गाते हैं आप।
1: जी सर, बस आपकी दुआ है, ऊपर वाले का करम है।
2: जी नहीं, लेकिन इतना ही गाते हैं, लेकिन बहुत प्यारा गाते हैं।
1: जी सर
2: जी,
1: दूसरा सुनाते सर क्या?
2: जी
1: अगर आपकी इजाजत हो तो दूसरा सुना दें।
2: जी जी,
0: आज सुबह जब मैं जगा तेरी कसम ऐसा लगा कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिची हिची लगी है, हिची

0: क्या ले गया था, क्या ले गया था, क्या ले गया था, क्या दे गया था। जान चली जाती मगर ऐसे में आई खबर कि तूने मुझे याद किया है, तूने मेरा नाम लिया है। हिची हिची हिचकी लगी हिचकी जिस वक्त।
1: क्या बात है भाई, हिचकी बहुत शानदार लग चुकी है आपकी।
0: बस आपकी दुआएं हैं।
1: जी जी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा, खुदा हाफिज।
0: खुदा हाफिज सर।
1: हेलो, देखते हैं भाई अब कौन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो
2: हेलो
1: हेलो,
2: नमस्ते सर।
1: अरे क्या बात है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही हैं जिसकी आवाज लोगों को मदहोश कर देती है, मतलब नाम के अंत में हमारा ब्रेकफास्ट है
2: जी। चना
1: जी, अर्चना जी नमस्कार, कैसी हैं आप?
2: मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: जी आपका आशीर्वाद, आपकी दुआएं। तो बहुत ही प्यारे से स्वर में आज हम क्या सुनने वाले हैं?
2: दादी एक मिनट।
1: जी
2: सर, एक सॉन्ग है, एक मुलाकात हो।
1: क्या बात है, क्या बात है, क्या गीत चुना है आपने। पिछली बार भी गीत आपका बहुत शानदार था
2: जी।
1: जी तो
2: एक मुलाकात हो, तुम मेरे पास हो,

0: बात है भाई, क्या बात है। मतलब पंजाबी सांग में भी वही टच, आप गजल गाती हैं तो गजब का गाती हैं, और ये क्या रूहानी अंदाज में आपने अपनी पेश कर दी है।
1: थैंक यू सो मच सर।
0: बहुत प्यारा गीत गाया, और चंद पंक्तियां हम आपसे और सुनना चाहेंगे जो आप सुना दें।
1: ठीक है सर, एक मिनट। चंद सेकंड आप रुक सकते हैं?
0: जी, चंद सेकंड क्या हम

0: कैसे तारे हागिर हाय तुझे।
1: क्या बात है भाई, क्या बात है। सुरों को इस तरह ऊपर चढ़ाना और फिर उतारना वास्तव में बड़ा कठिन काम है, और आप बड़ी खूबसूरती के साथ करती हैं। और सब लोग पूछ रहे हैं कि भाई काल पर कौन थी। जी हाँ, काल पर रूहानी अर्चना, बिल्कुल वही। और लिखा है नागेश्वर ने कि मेरा तो गला खराब हो जाए इतना गालू। तो श्री तेजनारायण जी लिखते हैं, भाई बेहतरीन पेशकश और आशीर्वाद आपको। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी दुआओं से और आशीर्वाद से आपको नवाजा है।
0: थैंक यू लिसनर्स एंड थैंक यू ज्ञानस्थली
1: परिवार, बहुत बहुत धन्यवाद आप इस परिवार का एक अंग है इसके लिए।
0: थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर।
1: जी प्रणाम। अभी शुभ रात्रि 10:30 पर। जी हाँ, तो ये भाई हमारे साथ अर्चना जी हैं, हमारे साथ बहुत दिन के बाद देख रहा हूँ भाई। राजेश कुमार सिंह जी को भी भाई बहुत अच्छा लग रहा है, बढ़िया गाते हैं, लेकिन गोल वाली पेशकश रहती है। नीना जी को देखे तो हमको लगता है ऐसे सदियाँ बीत गई हों, लेकिन फिलहाल आज जो उपस्थिति है नीना जी की, भाई आदाब करते हैं, कैसे हैं आप? और जी अब चलते हैं और देखते हैं कौन है हमारे साथ। हेलो।
2: हेलो।
1: हाँ, मतलब अगर मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ?
2: नहीं जी, सामने से देख लिया। आपके सामने वो सबने क्या देखना है
1: जी? सबसे पहले तो प्रभु चरण स्पर्श आपको जी। जो रेडियो थोड़ा सा अगर धीमे हो जाए तो आपकी आवाज और क्लियर हो।
2: हाँ, मैं जो है आज थोड़ा सा, एक तो हिंदी पखवाड़ा हमारा मनाया जा रहा है, तो उसके रिलेटेड मैं सोच रहा था कि कुछ फिल्मी गानों से संबंधित जुड़े तथ्य आपके सामने रखे जाएं।
1: जी तो सबसे पहले आपका परिचय बता दूं, आप श्री अशोक त्रिपाठी जी हैं, जो इस समय प्रयागराज में डाक अधीक्षक के पद पर हैं। और हमारा सौभाग्य है कि गोंडा में भी आपने सेवा दी, और जिसके पश्चात दुर्भाग्य रहा कि वो सेवा कुछ ही समय तक रही, लेकिन अच्छी बात यह है कि ये दिल का रिश्ता है ज्ञानस्थली से, जो सद आपने अभी तक बनाए रखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम।
2: मैं जो है थोड़ा सा, क्योंकि अब हम लोग बॉलीवुड से रिलेटेड हैं और हिंदी फिल्में देखते सुनते हैं, हिंदी फिल्में के गाने देखते सुनते हैं
1: जी,
2: उसी से संबंधित कुछ तथ्य हमारे सामने थे। मैंने सोचा आपसे शेयर किया जाए कि कुछ फिल्में ऐसी भी बनाई गई हैं जिनमें एक भी गाने नहीं रखे गए हैं। ऐसा एक्सपेरिमेंट किया हमारे कुछ बनाने वाले ने, जैसे बी आर चोपड़ा साहब ने और यश चोपड़ा साहब ने एक एक फिल्म बनाई थी जिसमें एक भी गाना नहीं है।
1: हाँ।
2: वो तो कानून फिल्म है, 1960 में बनाई थी, इत्तेफाक 1969 में। और एक फिल्म जिसमें सबसे ज्यादा गाने हैं, 72 गाने हैं, ये भी अब तक का एक रिकॉर्ड ही है। फिल्म इंद्र सभा में 72 गाने उन्होंने बनाया। ऐसे ही एक फिल्म ऐसी भी बनाई एक्सपेरिमेंट करने वालों में जिसमें एक ही कलाकार केवल है।
1: हाँ? एक ही कलाकार है।
2: हाँ, सुनील दत्त ने ही अभिनय किया है टोटल पूरी फिल्म में, और कोई आर्टिस्ट है ही नहीं। 1964 में बनी थी फिल्म यादें, उसमें अकेले है। और एक फिल्म ऐसी बनी है जिसमें 94,560 कलाकारों को पेमेंट किया गया था, 1,00,000 के आसपास कलाकारों को पेमेंट किया गया था, इतनी ज्यादा कलाकार थे उस फिल्म में।
1: और उस फिल्म का नाम
2: गांधी फिल्म, रिचर्ड एटनबरो की 1982 में जो रिलीज हुई थी यहाँ पर बनी थी। बेन किंग्सले ने गांधी का रोल अदा किया था उसमें। वैसे तो थे लगभग 3,00,000 कलाकारों को उन्होंने लिया था, लेकिन पेमेंट जिनको मिला था वो ऐसे 94,560 थे। और एक फिल्म ऐसी भी बनाई यहाँ पर जिसमें एक बंदर का रोल था, जिस बंदर को चंकी पांडे और गोविंदा जो फिल्म में हीरो हैं उनसे ज्यादा पैसे का भुगतान किया गया उस बंदर को, और वो फिल्म है आंखें, 1993 में।
1: अच्छा, मतलब बंदर को ज्यादा पेमेंट किया गया।
2: बंदर को उतना ही वीआईपी ट्रीटमेंट भी दिया गया था, उतनी सिक्योरिटी में बंदर लाया भी गया था दक्षिण भारत से।
1: अच्छा।
2: और उसका एक भी सीन बंदर का रीटेक नहीं करना पड़ा, वो इतना ट्रेंड था बंदर।
1: क्या जानकारी।
2: सारे सीन उसके फर्स्ट उसमें ही ओके किए हुए।
1: अरे वाह। और ये 72 गानों वाली फिल्में कौन सी थी?
2: 72 गानों वाली फिल्म इंद्र सभा है, उसमें तो उसके वो एक सभा लगती है और वो राजा बैठता है कि यहाँ लाइए कुछ गीत संगीत शुरू हो, और फिर एक बढ़कर एक गाने आते जाते हैं, उसको कोई गाना पसंद आता नहीं और पूरी फिल्म इसी में खत्म हो जाती है।
1: अरे वाह, तो मतलब हमको, हम तो आपको सम्राट जो है वो राग यमन कल्याण का समझते थे, लेकिन विश्लेषण तो आपका सदैव शानदार रहता है।
2: अब हम जो अपने आज के उस पर आ रहे हैं कि हिंदी पखवाड़े में जो मैं हिंदी फिल्मों और हिंदी फिल्मी गीतों पर चर्चा करना चाह रहा था, तो हिंदी फिल्मी गीतों को ऐसे भी लिखा लोगों ने कि हिंदी के साथ साथ उसमें दूसरी भाषा भी मिला दिया। आधा गाना हिंदी में है, आधा किसी और भाषा में, तमिल, तेलुगु, स्पेनिश, चाइनीज, तमाम तरह की भाषाओं में उन्होंने डाला।
1: अच्छा, वो
2: तो ऐसी तमाम सारे आपने सुना ही होगा, जैसे द ग्रेट गैम्बलर का है 1979 फिल्म में रिलीज हुई, उसमें स्पेनिश से स्टार्ट करता है वो, स्पेनिश वाला तो मैं थोड़ा सा याद कर रहा था, याद नहीं कर पाया, दो लफ्जों की है प्रेम कहानी।
1: हाँ,
2: उसमें शुरू में स्पेनिश में गाता है नाव वाला, कहते ये कश्ती वाला क्या गा,
1: क्या
2: रहा,
1: गा रहा है,
2: दो लफ्ज वो स्पेनिश में बोलता है। और ऐसे ही मर्डर का आपने देखा होगा फिल्म, कहो न कहो तवंडी में आकर के वो
1: बोलती है।
2: तो एक्सपेरिमेंट करते करते इस लेवल पर पहुंच गए कि जैसे शुरू से एक्सपेरिमेंट चल रहा था, और 1975 में वो एक उन्होंने सोचा कि लाइए क्या ना पूरा ही दूसरी भाषा का ही गाना डाला जाए हिंदी फिल्म में, देखते हैं कैसे चलता है
1: जी।
2: तो उन्होंने जोड़ी फिल्म में डाला था माई हर्ट इज बीटिंग, पूरा अंग्रेजी का गाना है।
1: किस फिल्म का?
2: माई हर्ट इज बीटिंग, कीप ऑन रिपीटिंग।
1: मतलब ये अद्भुत जानकारी का मतलब आपने ये सब जुटाया कहाँ से, हम तो बहुत आश्चर्यचकित है।
2: मतलब ये तो कॉमन जानकारी का, 10 गीत ऐसे हैं जो दो भाषाओं को मिला करके लिखे गए हैं, तो ज्यादा संख्या उनकी है नहीं, इसलिए वो तो जवान ही है, जवान पर ही है। और अभी पूरा का पूरा अंग्रेजी में डाला, वो आपने सुना भी, तमाम लोग सुनते हैं, बट है कि उस पर वो एनालाइज नहीं करते हैं, सुन करके बह जाते हैं।
1: मतलब यू आर द बेस्ट एनालाइजर, मतलब मुझको तो लगता है
2: अब उसको किसी न किसी कारनर से एनालाइज करते रहते हैं, इसलिए कि अपने साथ तमाम सारे श्रोता लोग हैं इसमें कार्यक्रम में आपके साथ में, तो अभी जुड़ेंगे और ऐसे गानों को भी गाएंगे कि हिंदी के साथ उस टोन को भी दोहरा देंगे, कोई ऐसा थोड़े है गांधी के लिए, जब वो के जे बाल सुब्रमण्यम और सारे लोग हमारी हिंदी के गाने गा सकते हैं, तो दो चार लाइनें तमिल वाली वो भी गुनगुना देंगे, स्पेनिश का भी।
1: हाँ, मतलब जब इनका आगमन हुआ था तो मतलब लक्ष्मीकांत पैरेलल तैयार नहीं थे, और कमल हासन की शायद वो पहली मूवी थी जिसमें वो शायद बाला सुब्रमण्यम साहब ने आया जी ना, शायद जहाँ तक मुझको याद आ रहा है। और चूंकि कमल हासन उस फिल्म में भी थे, तो उन्होंने कहा अगर ये हिंदी में डब हो रही है तो अगर थोड़ी सी आवाज़ हल्की सी खराब भी होती है तो कोई बात नहीं, चलेगा, ऐसा कुछ जहाँ तक मुझे लगता है ऐसा कुछ था। तो ये तो बात फिल्म की जानकारी की हुई, लेकिन आपके मधुर कंठ से कुछ सुनना भी चाहेंगे।
2: अब मधुर कंठ क्या ही कहा जा सकता है कि मधुर कंठ क्या कहूँ, बट आपने कहा है और हमारा जो पुराना शुरू से चला हमारे पास है, एक ही राग को मैं इधर से उधर घुमाता हूँ, चाहे उसको किसी भी लैंग्वेज में पकड़ा ले जाऊं, लेकिन हमारा तो राग वही हमारे पास है, दूसरा कोई है ही नहीं।
1: नहीं तो वो बादशाहों का राग है।
2: नहीं, बादशाहों का क्या है, बट और आगे कुछ लंबा उसमें गा भी नहीं पाऊंगा इस समय, मैं थोड़ा सा किसी अन्य तैयारी में बिजी हूँ, बट लेकिन एक दो लाइनें आपके सामने जरूर ही रखूंगा मैं
1: जी।
2: कभी फिल्मों के लिए जो लोग लिखते थे, जैसे ये भरत व्यास जी तो विद्वान, साहित्यिक विद्वान थे, वो गीत को अपनी बिल्कुल उस टोन में लिखते थे जैसे बिल्कुल शुद्ध साहित्यिक कविता हो, उसको गाते भी लोग तबीयत से थे, रागों पर आधारित ही गा भी पाते थे उसको। और राजा मेहंदी अली खान साहब, ये लोग अपने अलग तरीके से लिखते थे। तो उन्हीं भरत व्यास जी का एक है फिल्म सती सावित्री का
1: जी,
2: राग यमन कल्याण पर, उसी को मैं थोड़ा सा दो चार लाइनें आपके सामने रख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ रखने की, शायद निभा पाऊँ उसको।

0: भूल ही गया, तो काफी दिन बाद इसको उठाया था, तो इसके आगे मैं कुछ नहीं सुना पा रहा हूँ।
1: हमने कुछ दूसरा सुन लेते हैं, अगर कहीं इसमें दिक्कत है।
0: नहीं, मैं तो उसको ढूंढ लेता मैं, लेकिन अब क्या ही सुना पाऊंगा, जब वो ब्रेक हो जाता है तो फिर रह ही जाता है।
1: तुम गगा, अब मैंने पहली बार ये गीत सुन रहा हूँ मैं।
0: नहीं, इसके पहले भी मैंने, अच्छा आपको सुना ही देता हूँ।
1: जी जी।

मैं समर्पित फूल हूँ, तुम हो पूजा मैं पूजा।

के सर मैं अधूरी सांस भर तू हो काया मैं हूँ छाया तुम क्षमा।

मैं धरा की धूल मैं धरा की धूल तुम उषा की लालिमा हो।

0: के चंद्रमा हो, मैं धरा की धूल हूँ, मैं धरा की धूल हूँ। यही है सती सावित्री का गीत।
1: क्या बात है, हमको लगता है कि ये गीत निसंदेह लता जी ने तो जरूर गाया होगा।
0: हाँ यस, लता ही जी ने ही गाया था, और बीच में जो मेल वॉयस है वो मन्ना डे साहब की थी।
1: अरे वाह, और इस गीत को शायद मैंने पहली बार सुना है, शायद संभवतः।
0: हाँ।
1: क्या हाँ। गीत चुना आपने, मतलब इसे कहते हैं जैसे रत्नों के भंडार में हम हैं लेकिन कोहिनूर तलाश करना हो तो कोई आपसे सीखे, कैसे तलाश किया जाता है?
0: जैसा जी, जो कुछ भी रहता है अपने पास अपने खजाने में आपके साथ मैं शेयर करता रहता हूँ।
1: जी वास्तव में बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छी जानकारी मिली हमको आज।
0: ओके थैंक यू, हमने कहा किसी दिन ऐसी जानकारियों से भरा हुआ एक कार्यक्रम आपके यहाँ से सुनने को मिलेगा तो अच्छा लगेगा।
1: बिल्कुल, अब आपने
0: चुन चुन करके उन फिल्मों के जो किसी वजह से अपने आप में यूनिक है उन फिल्मों के गानों को रखते हुए कार्यक्रम आप बनाए तो अच्छा लगेगा।
1: हाँ ये आपका सुझाव बहुत अच्छा है कि ऐसी फिल्में जो अपने आप में यूनिक हो।
0: हाँ यूनिक है किसी कारण, बस कोई ना कोई रीजन ऐसी फिल्में हैं जिनमें उसने क्या किया है कि जैसे इंटरमिशन होता है फिल्मों जो इंटरवल होता है
1: जी,
0: उसके पहले तक तो पूरी कहानी चलाता रहा और इंटरवल के बाद जब बैठेगा ऑडियंस तो सारे गाने ही प्ले करता रहा, ऐसी फिल्में बनाए लोगों ने और वो ये सब सुपर डुपर हिट हुई फिल्में जो मैं बता रहा हूँ।
1: हाँ नहीं नहीं, मतलब आपका विश्लेषण बता रहा है कि आपने गहन अध्ययन किया है और आपके आप इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप व्यक्ति नहीं व्यक्ति
0: नहीं मैं क्या पढ़ाई में थोड़ा सा जब इंटरेस्ट नहीं था तो फिल्में ज्यादा देखता था तो जाहिर सी बात है कि फिल्मों के देखते देखते ही उसमें कहाँ तक मैं पहुँच गया कि इंडस्ट्री तक नहीं पहुँचा। बाकी
1: फिल्मों ने आपको ढाक अधीक्षक बना दिया इतने बड़े।
0: बिल्कुल जरूर ही, फिल्मों का भी कुछ न कुछ रोल ही रहा।
1: सही बात है, कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन मिलती ही रही होगी।
0: जी हाँ जी,
1: आपकी प्रतीक्षा हमको पुनः भी रहेगी।
0: क्या
1: मतलब आपकी प्रतीक्षा हमको अगले बुधवार को भी?
0: बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों के साथ मिल करके एक बार फिर हमें लगता है कि वहीं आप सभी के साथ हूँ।
1: हाँ मतलब हमको भी यही फील होता है, यही एहसास होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू
1: जी। चरण स्पर्श जी। हाँ भाई, तो ये श्री अशोक त्रिपाठी जी डाक अधीक्षक अपने गोंडा में रहे और फिलहाल प्रयागराज में है। मेरे साथ नीना जी भी जुड़ी हुई हैं, बा जी और राजेश सिंह भी जुड़े हुए हैं, धर्मेंद्र मोहन जी हैं, नागेश्वर धाकर जी हैं, भाई सबकी हाजिरी और नीना जी के साथ। नीना जी 2 भी आ चुकी हैं, देखिए भाई इनका लेटेस्ट वर्जन भी है और हमको लगता है कि ये नीना 2 कहीं नेहा जी तो नहीं है। आहा क्या बात है भाई, और गोंडा के किशोर कुमार हमारे श्री आर के श्रीवास्तव जी भी उपस्थित हैं और क्या डीपी लगा रखी है शानदार। और जी आपका प्रणाम मैंने उन तक पहुंचा दिया है। फिलहाल आपका दूरभाष क्रमांक कब कर रहा है आपकी परीक्षा और देखते हैं कौन है हमारे साथ इस वक्त। हेलो हेलो
2: हेलो
1: हेलो
2: हेलो
1: जी, अगर आपके आसपास अगर कहीं रेडियो बज रहा है तो उसकी आवाज़ थोड़ी कम कर दीजिए।
2: हेलो
1: हेलो जी, नमस्कार।
2: गुड इवनिंग सर
1: जी, आपका शुभ नाम?
2: माही।
1: माही जी कैसी हैं आप?
2: सर मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं?
1: जी जी बस आपका आशीर्वाद है और बहुत दिनों के बाद आपने याद किया हमको, कोई नाराजगी हमसे?
2: जी नहीं सर, बिल्कुल नाराज ही नहीं है, और मैं भला आपसे कैसे नाराज हो सकती हूँ।
1: हाँ ये तो बात सही है, आप हमसे कैसे नाराज हो सकती हैं?
2: यस
1: तो
2: आप तो सच्ची नाराजगी दूर करते तो फिर आपसे कौन नाराज हो सकता है।
1: हाँ अच्छा, ये चलिए आपने कहा तुमने मान लिया।
2: यस
1: तो आज क्या सुनने वाले हैं माही जी आप?

0: जटाकटाह शंप वंप निज निर्जली विलोल बीज वल्लवी विराजमान मोदनी धगट पाव पाव पाव के किशोर चंद शेखरे रतिपति शिशम नम हय हय शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आय चरणम से हारे ज्ञान ऐसा विशाल बैठो मेरन ताई माथे चंद विराजे
1: क्या बात है भाई, क्या बात है भाई। और सावन के महीने में, भादो के महीने में क्या बात है, आपने एक बार पुनः एहसास दिलाया कि अभी सावन गया नहीं है।
0: यस सर, बिल्कुल नहीं गया,
1: बिल्कुल नहीं गया, आया सावन झूम के।
0: यस सर
1: जी, बहुत अच्छा। कुछ और फिल्मी? जी हाँ जी जी
0: हाँ, ये जॉन साहब का एक दो चार स्टैंजा है, बोलूंगी मैं
1: जी।
0: क्योंकि मुझे लगता है मैं जॉन साहब के अंदर मैं ढली जा रही हूँ
1: जी,
0: क्योंकि वो ऐसे इंसान थे कि उनसे कोई भी, तो सुनाती हूँ मैं
1: जी।
0: सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में। कि सर ही अब फोड़िए नदामत में, नींद आने लगी है फुरकत में, है दलीलें तेरे खिलाफ मगर दोस्ता हूँ तेरी हिमायत में। रूह ने इश्क का फरेब दिया जिस्म को, जिस्म की अदावत में, अब फकत आदतों की वर्जिश है, रूह शामिल है शिकायत में। थैंक यू सर।
1: क्या बात है माही जी, बहुत प्यारा शेर आपने सुनाया।
0: वेलकम सर।
1: जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम आपको
0: सर। नमस्ते
1: जी। हाँ, तो ये हमारे साथ भाई माही जी और जॉन एलिया साहब की बहुत बड़ी वाली फैन, जिसको कहा जाता है भाई एकदम से वाह। और ये क्या सुनाया जी? हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार सुनाया। और भाई नेहा जी से भी उम्मीद करेंगे कि आज बहुत दिनों के पश्चात 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, ये हमने पहली बार सुना था और लगता है वो आखिरी बार हो गया। और भाई तारीफ बहुत हुई है, नागेश्वर धाकड़ ने भी कहा है भाई बहुत अच्छा गाया आपने, राजेश कुमार सिंह जी भी हैं हमारे साथ, पुराने गीतों के बहुत अच्छे श्रोता भी हैं और बहुत प्यारे इंसान भी हैं, और भाई आवाज़ भी बहुत प्यारी सी है। तो देखते हैं क्या, श्री राजेश सिंह जी भी हमारे साथ आते हैं, लेकिन फिलहाल देखते हैं कौन हमारे साथ। हेलो,
2: हाँ जी, गुड इवनिंग।
1: हाँ, चरण स्पर्श,
2: खुश रहिए, खुश रहिए।
1: कैसे
2: और बताइए?
1: जी हाँ बिल्कुल, मैं एकदम ठीक हूँ। श्री आर के श्रीवास्तव जी,
2: आवाज वगैरह सही जा रही है?
1: क्रिस्टल क्लियर।
2: अच्छा अच्छा,
1: मतलब अब आपकी आवाज गूंज रही है आपकी।
2: मैं छोटा सा गीत सुना दूं?
1: जी जी,
2: आज मैं पहली बार बहुत दिन बाद चैट बॉक्स पे आया हूँ
1: जी। बहुत अच्छा लगा आपको देखकर।
2: सभी को हमारा नमस्ते, जितने भी लोग सुन रहे हैं। चलिए आज मैं लता जी की आवाज में सुनाने जा रहा हूँ, बहुत पुराना गीत है लेकिन उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा।
1: 100% आएगा।
2: बहुत ज्यादा तो नहीं, दो लाइन ही आते, एक लाइन दो लाइन।
1: चलिए सुनिए, एक स्टैंजा तो बनता है।
2: चलिए। मानो तो मैं गंगा

0: हरिओम हरिओम हरिओम, जय गंगा मैया की।
1: अब बात है भाई, और भाई सब में लिखा है कि राजेश सिंह जी लिखते हैं नाइस सॉन्ग, और नागेश्वर लिखते हैं आर के सर जी को मेरा सादर प्रणाम, बहुत दिनों बाद आपकी आवाज़ सुनने को मिली।
0: अच्छा,
1: भाई बहुत दिनों के बाद नहीं, लेकिन सर तो हमारे महफिल में एक हमारी महफिल का एक अटूट हिस्सा है।
0: क्या हुआ?
1: हमने कहा आप हमारी महफिल का एक अभिन्न अंग है।
0: अरे नहीं सर, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, जितने भी लोग हैं। देखिए ऐसा है, पांच उंगली बराबर नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई खराब होता है, सब अच्छे हैं, सब अपने कैपेसिटी के अनुसार सीख रहे हैं, आगे बढ़ेंगे और हमारी उम्र तक बहुत अच्छा सीख जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं
1: जी।
0: और चले जी,
1: अच्छा तो कुछ
0: चलिए आप आने
1: कुछ और चार लाइन सुनाएंगे आप?
0: अब तो याद तो रहे नहीं, चलिए जो याद है सुना देते हैं
1: जी।
0: कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का

0: तो लोग कहेंगे। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, अब लगा बोला के किशोर कुमार जी को सुना।
0: अरे भाई सर, किशोर कुमार वाले तो सबके गाने गा लेते हैं थोड़ा बहुत।
1: नहीं लेकिन किशोर कुमार के गाने आप बहुत अच्छे गाते हैं, क्योंकि लिखा है श्रीवास्तव जी हमेशा की तरह बेहद बेहतरीन और बहुत शानदार। ये श्री तेज नारायण शुक्ल जी का कथन
0: है भाई। जिन जिन लोगों को पसंद आए उनको धन्यवाद, जिनको नहीं भी पसंद है उनको भी धन्यवाद।
1: अरे ना पसंद आने का सवाल ही पैदा।
0: अरे नहीं
1: क्या बात है। गौर राजेश ने लिखा कि आपकी आवाज मुकेश जी से मिलती है, बताइए। अब ये मुकेश जी से आपको
0: देखिए, सबकी अपनी अपनी पसंद है, सबकी अपनी सोच है। हाँ। और कम से कम किसी से कंपेयर किया, किसी ऐसे आदमी से तो नहीं कर दिया। और बहुत उनको भी धन्यवाद जिसने भी लिखा है, हम सुन नहीं पाए किसने लिखा है।
1: जी राजेश ने लिखा और है कि आपकी आवाज।
0: राजेश जी को धन्यवाद, कम से कम उन्हें जो लगा उन्होंने कम से कम कहा। आपको मैं एक सोशल मीडिया की बात बताऊं।
1: हाँ।
0: कि सोशल मीडिया के मैं आने के बाद जब मैं एक फोटो डाल देता था तो हमारे एक फोटो पे हजारों लाइक आती। जब से मैं थोड़ा बहुत डेवलप किया हूँ दूसरे क्षेत्र में, आप बिलीव नहीं करोगे, कम से कम ज्ञान स्थली पे लोग कुछ लिखते तो हैं, वहाँ एक लाइक नहीं करते। और खास बात यह है कि जो आपके अपने, तो मैं ज्ञान स्थली के जितने भी लिस्नर हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि कम से कम आप दूसरे को ओबलाइज करते रहिए। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है, ये बड़ी महंगी चीज होती है, हर आदमी के पास नहीं होती। चलिए बॉस, थैंक यू, सभी को धन्यवाद।
1: किरण कुलकुले जी ने लिखा है, किशोर कुमार जी नमस्कार।
0: अरे देखिए, सबके अपने अपने विचार हैं, जो जैसा चाहे, कोई गाली नहीं दे रहा है, सब अच्छा ही लिखते हैं। और सबको प्यार और नमस्कार।
1: आपका ओके सर। जी हाँ जी हाँ, प्रणाम, चरण स्पर्श। ये तो किरण भाई कुलकुले जी ये कहते हैं कि अकोला महाराष्ट्र से जुड़ी हो, तो भाई महाराष्ट्र की आवाज़ भी हम ज़रूर सुनना चाहेंगे और ये देखना चाहेंगे कि भाई की महाराष्ट्र की आवाज़ कैसी होती। पिछली बार शायद किसी ने, और जी हाँ देखते हैं कौन हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। हेलो,
2: हाँ नमस्कार।
1: हाँ कितना इंतज़ार कराया आपने। दर्द कुमार जी नमस्कार, प्रणाम आपको।
2: नमस्कार भैया, प्रणाम।
1: कैसे हैं?
2: हाँ ठीक है भैया।
1: तो आज दर्द कुमार के दिल में दर्द है या कुछ रोमांस है?
2: चलो एक कश्मीर की कली का है भाई।
1: आय हाय हाय हाय हाय, निगाह इशारों इशारों में दिल लेने वाले।
2: हाँ
1: अरे क्या बात, शम्मी कपूर के साथ शायद। कौन सी एक्ट्रेस है?
2: हाय इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बताओ हुनर तुमने सीखा कहाँ से? निगाहों निगाहों जादू चलाना मेरी जान सीखा।

0: मेरी क्या किस्मत खता, मुझे जिसने तड़पा दिया, यही थी वो जाली मदा, यही थी वो जाली मदा, ये राजा की बातें ये मजनू के खीसे अलग तो नहीं है मेरी दास्तानते, इशारों में दिल लेने वाले बताओ हुनर तुमने सीखा कहाँ से। माना के जाने जहाँ लाखों में तुम एक हो, हमारी निगाहों के भी कुछ तो मगर दाद दो, कुछ तो मगर दाद दो, बहारों को भी नाज जिस फूल पर था वही फूल हमने चुना गुलसिता से, जादू चलाना मेरी जान सिखाए तूने जहाँ से। थैंक यू सर। बीच का सब भोसले की आवाज मैंने गैप कर दिया।
1: अरे क्या बात है, लेकिन वास्तव में एकदम रोमांटिक मूड में आप आए आज। मतलब कश्मीर की कली का बहुत ही प्यारा गीत ये। बहुत ही प्यारा गीत। और भाई राजेश जी लिखते हैं क्या बात है सुरेश जी। जी हाँ भाई, तो अब चलते हैं और देखते हैं कौन हमारे साथ पुनः। हेलो
2: नमस्कार सर।
1: सौ चांद भी निकलेंगे तो क्या बात बनेगी। अब आप आ गए हैं तो ये रात बनेगी।
2: क्या हाल चाल है सर?
1: जी हाँ, अगर मैं पहचान पा रहा हूँ तो आप बिल्कुल अनूप मिश्रा जी की तरह ही बोल रहे हैं।
2: जी
1: कैसे हैं आप?
2: अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं?
1: बढ़िया, आशीर्वाद आपका।
2: आशीर्वाद सर हमारा कैसे हो जाएगा?
1: अरे नहीं, बिल्कुल हो सकता है। शुभकामनाएं
2: परमपिता परमेश्वर का।
1: हाँ चलिए, आपकी शुभकामनाएं।
2: क्यों सर?
1: जी हमने कहा आपकी शुभकामनाएं तो मेरे साथ हो सकती हैं।
2: जी जी जी
1: जी, बस वही मिल जाए तो बहुत है। और अब
2: आप हमारे बड़े भाई हैं।
1: जी
2: तो आशीर्वाद बड़े भाई का छोटे भाई पर होता है।
1: ये बहुत अच्छा लगा। और जी आपने हमको ये दर्जा दिया और मैं अब सादर अभिभूत हूँ। मतलब आपकी इस विनम्रता को मैं प्रणाम करता हूँ।
2: तो मैं काफी देर से कोशिश में था, लेकिन जो है कई लोगों का आज कतार लंबी थी।
1: जी हम उसके लिए तो क्षमा प्रार्थी हैं, क्योंकि आपको थोड़ा सा
2: तो हमने कहा दो गुरु हमारे गा चुके हैं।
1: हाँ?
2: एक आर के श्रीवास्तव जी, एक सुरेश कुमार जी।
1: जी
2: हमने कहा हम काहे पीछे हटे। हम
1: नहीं नहीं, वो तो बनता है भाई।
2: जी
1: जी
2: तो सर ये बताइए आप क्या सुनना पसंद करेंगे?
1: जो आप सुना दें।
2: कुमार सानू, किशोर कुमार या मोहम्मद रफी,
1: आप जो सुना दें।
2: चलिए सर, तो हम एक शुरुआत करते हैं। गाना हमारे पिताजी गाते थे।
1: जी।
2: और ये रहा फिल्म शायद छू मंतर का गाना है ये, इसमें जॉनी वॉकर साहब हीरो हैं।
1: क्या बात है।
2: इस गाने में जो मतलब जो भूमिका निभाई है बतौर हीरो, वो जॉनी वॉकर साहब ने निभाई है
1: जी।
2: शायद आपने ये गाना सुना है या नहीं सुना है, मुझे नहीं पता, काफी पुराना गाना है।
1: इसका मतलब गाया होगा रफी साहब ने, फिर
2: रफी साहब ने गाया है और 60s के पहले का गाना है ये
1: जी।
2: गाना ये है, गरीब जान के हमको ना तुम भुला देना,
1: तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दर्द ना। बिल्कुल, क्या
2: जी,
1: क्या मोती चुना है आपने।
2: तो ये गाना सर अक्सर पिताजी गाते थे
1: जी
2: जी, और मैं बचपन से उनके मुंह से सुनता था, तो काफी दिन से मैं सोच भी रहा था गुनगुनाने के लिए, तो आज चांस मिल गया हमको
1: जी।
2: तो मैं शुरू करता हूँ सर।
1: जी जी, निसंदेह।
2: गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के लगी है चोट कलेजे पे उम्र भर के लिए, तड़प रहे हैं मोहब्बत के एक नजर के लिए। नजर मिला के मोहब्बत से मुस्कुरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के जहाँ में और हमारा कहाँ ठिकाना है, जहाँ में और हमारा कहाँ ठिकाना है, तुम्हारे दर से कहाँ उठ के हमको जाना है। जो हो सके तो मुकद्दर मेरा जगा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के मिला करार न दिल को किसी बहाने से, तुम्हारी आस लगाई एक जमाने से। कभी तो अपनी मोहब्बत का आसरा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के नजर तुम्हारी मेरे दिल की बात कहती है, तुम्हारी याद तो दिन रात साथ रहती है, तुम्हारी याद को मुश्किल है अब भुला देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के मिलेगा क्या जो ये दुनिया हमें सताएगी, तुम्हारे बिन तो हमें मौत भी ना आएगी। किसी के प्यार को आसान नहीं मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दिया है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के हमको न तुम मिटा देना, तुम्ही ने दर्द दी है तुम्ही दवा देना। गरीब जान के। थैंक यू सर।
1: क्या बात है भाई, कि जिस रफ्तार से आपने गीत गाया, मतलब वास्तव में ये स्पीड पकड़नी आसान नहीं होती। बहुत प्यारा और बहुत उम्दा। हाँ,
2: बहुत खींचने वाला गाना था।
1: हाँ, वास्तव में बहुत वो झलक रहा है साफ साफ। बहुत खूब भाई, बहुत लोगों ने तारीफ की कि क्या बात है, गीत भी अच्छा चुना। राजेश जी भी कहते हैं, अनूप जी और नेहा जी कहा हमने फिल्म देखी है, और नीना टू मतलब नेहा जी कहती है बहुत खूब अनूप सर।
2: सर चंद लाइनें और हैं
1: जी,
2: और ये गाना गैम्बलर मूवी का है, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार साहब
1: जी।
2: और इस गाने में म्यूजिक बहुत कम है, दिल आज शायर है, गमाज नगमा है। तो सर मैं कोशिश करता हूँ, वैसे है ये गाना बहुत कठिन, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। दिल आज शायर है, गमाज नगमा है, शब ये गजल है सनम, गैरों के शेरों को सुनने वाले
0: देखो इस तरफ भी करम, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आके जरा देख तो तेरी खातिर हम किस तरह से जिए, आंसू के धागे से सीते रहे हम जो जख्म तूने दिए, चाहत की महफिल में गम अपना लेकर किस्मत से खेला जुआ, दुनिया से जीते पर तुमसे हारे यूं खेल अपना हुआ, ये प्यार हमने किया जिस तरह से उसका न कोई जवाब, जर्रा थे लेकिन तेरी लौ में जलकर हम बन गए आफताब, हमसे है जिंदा वफा और हम ही से है तेरी महफिल जमा, हम जब न होंगे तो रो रो के दुनिया ढूंढेंगी मेरे निशान, दे प्यार कोई खिलौना नहीं है हर कोई ले जो करीब, दे प्यार कोई खिलौना नहीं है हर कोई ले जो खरीब, मेरी तरह जिंदगी भर तड़प लो फिर आना इसके करीब, हम तो मुसाफिर हैं कोई सफर हो हम तो गुजर जाएंगे ही, लेकिन लगाया है जो दांव तूने वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही, वो जीत कर आएंगे ही।
1: गजब गजब गजब गजब गजब, मतलब आई एम स्पीचलेस, सुपर डुपर परफॉर्मेंस, बहुत कठिन गीत और बहुत बढ़िया निभाया आपने
2: सर। दोनों गाने कठिन थे आज के,
1: हाँ,
2: लेकिन मैं एक्चुअल में गाने वाला जानते क्या था, मैं गाने वाला था धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, हाँ, और ऐ जाते हुए लम्हों, जब पिछले दो हफ्ते से गाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन दिमाग में फिर आया नहीं पुराने गाने गाने चाहिए, नए तो कभी भी गाएंगे।
1: सही बात है, सही बात
2: जी।
1: बहुत अच्छा लगा प्रशांत जी, बहुत अच्छा लगा, चाल चांद लगा दिया आपने।
2: थैंक यू सर
1: जी, प्रणाम भाई, बहुत सारी तारीफें भी हो गई और जी, और अब देखते हैं भाई हमारे साथ कोई और भी जुड़ चुका है। हेलो,
3: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: अरे हाँ जी सर, ये तो केवल सबसे गहरे आवाज, सबसे गहरे सागर की आवाज है जी। हाँ प्रशांत जी, प्रणाम आप।
3: प्रणाम प्रणाम सर, कैसे हैं सर
1: जी? बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा
3: सर। आज काफी टाइम हो गया, तो हमने सोचा कि पता नहीं है कि लेट हो गया।
1: हाँ लेट तो हो गया, लेकिन फिलहाल आपके लिए हम समय को थोड़ा बढ़ाते हैं
3: जी। चलिए सर, हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए गाना आखिरी बिदाई हम ही गा लेते हैं।
1: हाँ क्या बात है, क्या बात है।
0: तू मेरे मित्रवा, मेरे मित्र, आजा तुझको पुकारने

0: जा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मित्रा। थैंक यू सर।
1: हाँ बात है भाई, उदित नारायण से मोहम्मद रफी बनने में आपने टाइम नहीं लिया।
0: हाँ सर, मैंने जल्दीबाजी में गाना गाया, बहुत अच्छा नहीं गा पाया।
1: नहीं नहीं, बहुत अच्छा गाया, क्या बात है, मतलब वास्तव में अच्छा गाया, प्यारा गाया और बहुत शानदार गाया।
0: थैंक यू सो मच।
1: और भाई हमारी शाम को शानदार बनाने के लिए आपको बहुत बहुत प्रणाम और धन्यवाद भी।
0: धन्यवाद
1: जी। भाई अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमत लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर आपसे मुलाकात होगी आप ही के प्यारे से कार्यक्रम बहारे गज़ल में ठीक 9:30 बजे। तब तक सुनते रहिए और रेडियो गणस्थली 89.6 FM, ये बन चुकी है हम सभी के दिलों की धड़कन।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु, आज एक बार फिर हूँ आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी बिट्टी। नीले लिफाफे पर लिखावट जानी पहचानी तो थी पर तुरंत ही पकड़ में नहीं आई। किसकी चिट्ठी है देखूं तो जरा, उत्सुकता के साथ विमला ने झट से लेटर खोला और पढ़ने लगी। अरे ये तो बिट्टी की है, अपनी बिट्टो की। हर्षित विस्मित भावों से वो जल्दी जल्दी शब्दों से गुजरने लगी। शुरू के शिष्टाचार के बाद बिट्टी के आने का समाचार था। जीजी, मेरी टीचर्स ट्रेनिंग है, वहां 15-20 दिन तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तुम स्टेशन आने के लिए परेशान मत होना, मैं खुद ही आ जाऊंगी। परेशानी कैसी, बरसों बाद बेटी जैसी बहन आ रही है। खुशी से विमला पगला हंसी गई, लगा जैसे युगों बाद बिट्टी से मिलना होगा। बिट्टी ब्याह कर गई तो मन हुलसता था उससे मिलने को, पर पिता की हठ धर्मी के आगे उसकी एक न चली। बिट्टी से संबंध जोड़कर पूरे परिवार से संबंध तोड़ने का साहस विमला में नहीं था। सो दिल के बाद दिल में ही रह गई। चार भाई बहनों में विमला सबसे बड़ी और बिट्टी सबसे छोटी थी। यूं तो वो घर भर की दुलारी थी पर मनमर्जी का ब्याह करते ही वो सबसे दूर हो गई। अपनों से अलग कितनी अकेली पड़ गई होगी बिट्टो। फिर बिरादरी से बाहर ब्याह निभाना कोई हंसी खेल तो था नहीं। मायके का साथ और धन सामर्थ भी बहुत मायने रखता है, पर उसे तो कुछ भी नहीं मिला। मिला ही क्या होगा उस मास्टर से, उसे बरसों बीत गए, कोई संतान भी तक तो नहीं हुई और उस पर अब ये टीचर की तैयारी। लेकिन लगभग साल भर पहले बिट्टी मौसी से मिली थी उनके दूर की रिश्तेदारी की किसी शादी में। वही बता रही थी विमला को, न ढंग की साड़ी न मन के गहने, क्या से क्या हो गई हमारी बच्ची, बेचारी बिट्टी। विमला का मन कसैला हो आया। पिता की मानती तो आज राज रानी होती, ऊंचा घराना, राजसी ऐश्वर्य, सभी पर लात मार कर भाग खड़ी हुई अभागी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बिट्टी। अब तक आपने सुना, बिट्टी की चिट्ठी आई थी बिमला के पास। उसमें लिखा था कि वो बिमला के पास 15-20 दिन के लिए रहने आने वाली है, क्योंकि उसके शहर में बिट्टी की टीचर्स की ट्रेनिंग होनी है। बिमला को याद आ रहा था कि किस तरह उसके अपनी मर्जी से शादी करने की वजह से वो पूरे घर भर से दूर हो गई थी। अब आगे, ब्याह के मामले में बेटियों की इच्छा अनिच्छा का मान रखना तो पिता ने कभी जाना ही नहीं था। फिर शायद उन्हें बिट्टी और मास्टर के संबंधों की भनक भी पड़ गई थी। बिट्टी भी कम सयानी नहीं थी। बात समझते ही उसने अपने संबंधों की स्थिति साफ कर दी थी। पिता को मनाया मान से मनुहार से, पर जब उन्होंने एक ना सुनी तो बिट्टी ने भी अपने मन की करने की ही ठानी। घर में ब्याह की तैयारियां चलती रहीं और उसने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। उसकी शादी की बात घर में पता चलते ही हड़कंप मच गया था। लड़की की हिम्मत तो देखो और पढ़ाओ लड़कियों को। पढ़ाई के बहाने बस यही नैन मटक का चलता है आजकल। कुलच्छिनी भागी भी तो अपने ही मास्टर के साथ। पर बिट्टी भागी ही कहाँ थी? बालिग और शिक्षित होने के साथ साथ वो साहसी और आत्मविश्वासी भी तो थी। विधिवत शादी करने के बाद दुर्वासा से क्रोधी पिता से आशीर्वाद लेने वो पति सहित पीहर भी आई थी, पर उसे तो देहरी भी ना लांगने दी गई। दरवाजे से ही वापस विदा कर दिया गया। अपनी बात ना मानने को पिता ने अपना अपमान समझा और अपनी लड़की के दुस्साहस को उन्होंने जीवन पर्यंत माफ ना किया। माँ बिट्टी से मिलने के लिए छटपटाती तो वो उन पर भी बरस पड़ते। मेरे जीते जी ये असंभव है बिमला की माँ, मेरे मरने पर चाहो तो बुला लेना। फिर हुआ भी वही। पिता की मृत्यु पर माँ को सांत्वना देने के लिए बिट्टी ने मायके की देहरी लांघी, पर तब अस्वस्थता के कारण बिमला असमर्थ थी। वो तो पिता की तेहरवी में भी नहीं पहुंच पाई थी। बिट्टी से तो वो अब मिलेगी, युगों से बीते बरसों के बिछोह के बाद। रूखे बाल, सूखा चेहरा, सिलवटें पड़ी हुई साधारण सूत की साड़ी, पता नहीं सफर की थकान थी या फिर जीवन का अभाव। पहली ही नजर में बिट्टी बिमला को निर्बल निरीह सी दिखी। द्रवित हृदय से बिमला ने अपनी बहन को बाहों में बांधा तो शब्द बेमानी बन गए, वाणी व्यर्थ हो गई। पर भावनाओं में बहता मन था कि कितना कुछ कहता सुनता रहा। बहुत प्रयास करके सहज होकर दोनों ने ही चुपके से अपनी आंखें पोंछ ली। बहन को सामान्य करने के लिए बातों का सूत्र बिट्टी ने ही टटोला। देख रही हूं बड़े ठाट हैं मेरी जिज्जी के, ये शानदार कोठी, ये खूबसूरत बगीचा और इतने प्यारे प्यारे ढेर सारे फूल। वो मासूमियत से मुस्कुराई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बिट्टी। अब तक आपने सुना, बिमला की सबसे छोटी बहन बिट्टी ने अपनी मर्जी से शादी की थी, जिसकी वजह से उसका पीहर छूट गया। आज कई बरसों बाद वो अपनी बहन के घर आई थी। बिट्टी को देखकर बिमला खुशी से पागल हो चुकी थी, लेकिन उसे देखकर ही उसके बुरे आर्थिक हालातों का भी पता चलता था। अब आगे बिमला बिट्टी से बोली, चल पहले नहा धो ले, फिर बैठकर बातें करते हैं। उसने बिट्टी को पुचकारा। गीले बालों के नीचे तौलिया डाले बिट्टी बिल्कुल बच्ची सी दिख रही थी, नन्ही निर्मल सी। बीते बरस उसे जैसे अनछुआ ही छोड़ गए थे। बिमला अपलक निर्मिमेश उसे निहारती ही रह गई। फल मेवे मिठाइयां और नमकीन सब लाकर दिया बिट्टी के सामने। बिमला बरसों की साध जैसे पहले दिन ही पूरा कर लेना चाहती थी। और सुना, कैसे हैं तेरे मास्टर जी? हाय जीजी, तुम अभी भी उन्हें मास्टर ही समझती हो क्या? वो अब प्रोफेसर हो गए हैं, यूनिवर्सिटी में बॉटनी पढ़ाते हैं। चलो उन्होंने तरक्की तो कर ली, पर तू क्यों वही की वही है? मेरा मतलब कोई बाल गोपाल? प्यार तो करते हैं ना वो तुमसे? बिमला से तो जैसे बिना पूछे रहा ही नहीं गया। तुम भी जिज्जी कहां की कहां जोड़ देती हो। बिट्टी के गाल शर्म से लाल हो गए। देख तो रही हो देश की आबादी, बिट्टी बोली। हाँ हाँ क्यों नहीं, जनसंख्या कम करने का सारा ठेका तुम ही दोनों ने तो ले लिया है। अरे तो कुछ खा क्यों नहीं रही? सुंदर, ओ सुंदर, चाय और दे जा, ये कुछ ठंडी लग रही है। मान मनुहारों के बीच बद कहीं भी चलती रही। जीजू कब तक आएंगे जिजी? उनकी भली पूछी। अभी कल ही तो निकले हैं अपने बिजनेस ट्रिप पर। एक पैर वॉशिंगटन में होगा तो दूसरा शिकागो में। वापसी में फ्रैंकफर्ट भी जाना है, एक आध दिन मुंबई भी रुकना पड़े शायद। अब गए हैं तो 15-20 दिन बाद ही आएंगे। जिजी, जीजू के इतने लंबे लंबे टूर्स होते हैं, बच्चे हॉस्टल में, इतना बड़ा घर, तुम अकेले बोर नहीं होती क्या? बिट्टी बोली। होती थी, खूब होती थी। बच्चों ने घर छोड़ा तब तो पगला सी ही गई थी। पल भर में बिमला जैसे कहीं और ही पहुंच गई। फिर तुरंत ही संभल कर अप्रयास सुरवात मुस्कान भी ओढ़ ली। अब तो अकेलेपन की आदत सी हो गई है, यूं समझ सच से समझौता कर ऐश कर रही हूं। हाँ हाँ क्यों नहीं, वो तो दिख ही रहा है, खुशियों में खासी गोल मटोल हो गई हो। बिट्टी के छेड़ने पर दोनों बहनें एक साथ खिलखिला उठी। चाय नाश्ता चल ही रहा था कि नीलेश का फोन भी आ गया। पति से बतियाती बिट्टी किसी नवोड़ा सी लजा सकुचा रही थी। बिमला ने कनखियों से निहारा, कैसा प्रेमालाप चल रहा है? सहसा ही अंतस में उठी ईर्ष्या की एक खिलोर खुद बिमला को हतप्रत कर गई। मैं तो बस

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बिट्टी। अब तक आपने सुना, बिट्टी और विमला कई सालों बाद एक दूसरे से मिले थे। बिट्टी ने अपनी मर्जी की शादी की थी, इसलिए उसका घर बार सब छूट गया था। वो अपने प्रोफेसर पति के साथ एक बहुत ही साधारण जीवन जी रही थी और विमला उसके तो ठाट बाट थे। अब आगे, अगले दिन से ही बिट्टी अपनी दिनचर्या में व्यस्त हो गई। स्कूल आना जाना, नोट्स तैयार करना, कॉपियां चेक करना। शाम को चाय के प्याले के साथ बाहर बगीचे में जा बैठती तो बस उठने का नाम ही नहीं लेती। विमला घूमने चलने को कहती, शॉपिंग को उकसाती तो वो बात बनाने लग जाती। हाय जीजी, ये सुंदर सा बगीचा, ये सौंधी सौंधी मिट्टी की खुशबू, ये प्यारे प्यारे फूल, इन्हें छोड़कर घूमने जाए, वो भी हाट बाजार करने। नहीं जीजी, ऐसी बेरहम ना बनो। पर एक दिन विमला ने उसकी एक ना सुनी, घेर घार कर उसे बाजार ले ही गई। जिज्जी द्वारा जबरदस्ती साड़ी दिलवाने पर सिल्क की उस साड़ी के दाम सुनते ही बिट्टी सकते में आ गई। बाप रे बाप, इतनी महंगी साड़ी और फिर ड्राई क्लीन करवाने का झंझट अलग। ना बाबा ना, फिर मैं पहनूंगी भी कहां, अपने को तो बस कलफ लगी सूती साड़ी ही जमती है। फिर बिमला का मन रखने के लिए उसने जल्दी जल्दी कोटा की दो सूती साड़ियां छाट ली, मानो कोई बहुत बड़ा काम निपटाया हो। जीजी मेरी अच्छी जीजी, जीजी प्लीज यही दिलवा दो ना। अजब अनोखी लड़की है, मैं खरीदवा रही हूँ फिर भी नहीं, सिल की तरफ निहारना भी नहीं। बिमला का बड़ा मन था बिट्टी को किसी किटी पार्टी में ले जाने का, अपनी सखियों सहेलियों से मिलवाने का। पर अनिता प्रसंग याद आते ही वो सहम कर अपनी सोच टाल देती। बात भले ही सारा शहर जानता हो, पर बहन के सामने भेद खुला तो कैसी भद्द होगी। इस विचार से ही विमला व्यथित हो जाती। नहीं नहीं, बिट्टी को किसी से भी नहीं मिलवाना। विमला अभी उहापोह से उभरी ही थी कि बिट्टी के लिए किसी पार्टी का इनविटेशन आ पहुंचा। स्वयं वंदना और शीला चलकर आई थीं इनविटेशन देने। क्यों ना आती, बिट्टी आखिर बड़े साहब की साली थी और चापलूसी करना किटी कल्चर जो ठहरा। निमंत्रण इतना मान मनुहार भरा था कि बिट्टी भी समय निकालने का आश्वासन दे बैठी। फिर विमला किस मुंह से इनकार करती। धड़कते दिल से डरते डरते ही पहुंची थी विमला उस पार्टी में। शुरू में हाय हेलो के बाद बातों का बाजार गर्म हो गया। गहनों कपड़ों पर टिप्पणियां हुई, नए फैशन पर चर्चाएं चली, ठहाके कह कहे लगने लगे। कुछ चुटकियां, कुछ कटाक्ष, कुछ भूमिकाएं, कुछ बेबाकी, और शाम आते ना आते जिस बात को सारा शहर जानता था उसे बिट्टी भी जान गई। पहले तो सन स्तब्ध सकपकाई सिहरती विमला बिट्टी से नजरें चुराती रही, फिर कटुता और विद्रूप से मन ही मन मुस्कुराते सहज निष्प्रह भी बन गई। जो सच है, जिसे दुनिया जानती है, उसे बिट्टी भी जान गई तो क्या हुआ।

धड़कन, मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है बिट्टी। अब तक आपने सुना, बिट्टी ने अपनी मर्जी से शादी करी थी और कई सालों बाद वो अपनी बहन के घर आई थी। उसकी बहन देख रही थी कि बिट्टी और उसके पति में कितना प्यार है। इतना साधारण जीवन जीने के बावजूद वो कितनी संतुष्ट है। उधर एक पार्टी में बिट्टी को ये पता चला कि उसके जीजा जी का संबंध किसी दूसरी औरत से है। अब आगे, अब बिट्टी को चैन कहाँ। घर पहुंचते हिचकते झिझकते उसने इस विषय में पूछा तो बिमला उदास सी हो गई। बिना आग के धुआं उठता है क्या? पर ये सब आप सहती कैसे हैं? आखिर क्यों? बिमला की उदासीनता ही बिट्टी को उत्तेजित कर गई। और उपाय ही क्या है, किसी के प्रति उनकी आसक्ति को लेकर बखेड़ा खड़ा करूं? ऐसा मुझ में है ही क्या? फिर जिजी, आप ऐसी जगह क्यों जाती हैं जहां जानबूझकर लोग दिल दुखाने वाली ऊटपटांग बातें करते हैं? बिट्टी बोली। अब बिट्टी, अगर पार्टी और क्लब भी ना जाऊं तो दिन भर क्या करूं? कहां तो बिमला ने सोचा था कि बेचारी बिट्टी की सहायता करूंगी, उसका सहारा बनूंगी, कहां खुद बेचारी बन संवेदना और सहानुभूति की पात्र बन गई थी। जब तब बिट्टी उसे कुछ न कुछ समझाती सिखाती रहती। 10-15 दिन के समय में ही मास्टर जी के 3-4 गुलाबी लिफाफे आ चुके थे, जिन्हें खोलने की उत्सुकता में ही बिट्टी लाल अबीर हो जाती थी। पढ़ते पढ़ते अपने आप में खो जाती थी। फिर सामने बड़ी बहन को देखकर भान होते ही सक पकाकर सफाई देने लगती। वो क्या है, फोन नहीं है ना हमारे घर। बिमला को बिट्टी के शब्दों में सहानुभूति की गंध आती। हो भी क्यों ना, पत्र, वो भी प्रेम पत्र, शब्दों अक्षरों से रचा रोमानी तिलिस्म। शादीशुदा होते हुए भी ये सुख उसके लिए वर्जित क्यों था? आखिर बिट्टी के जाने का दिन भी आ गया, पर जीजा जी वापस नहीं आए। अपने देश पहुंचकर भी मुंबई में ही अटके हुए थे। माना काम जरूरी थे, पर कोशिश करते तो क्या बिट्टी से मिलना लेते? लाचार और अपमान से बिमला का अंतर द्रवित हो उठा। देखते ही देखते बिट्टी के वापस जाने का समय भी आ गया। उसके वापस जाते समय बिमला ने उससे ढेर सारे सामानों से भर दिया। बिट्टी के जाते ही सूना घर साए साए करने लगा। उदासी से उबरने के लिए, मन को बहलाने के लिए बिमला ने हीरों का नया वाला सेट निकाला, जो वो बिट्टी को खरीद कर देना चाहती थी, लेकिन बिट्टी ने लेने से साफ मना कर दिया था। तभी खिड़की की राह चलकर आई मिट्टी की सौंधी गंध ने उसे छुआ। माली क्यारियां सींच रहा था शायद। बिट्टी होती तो भाग कर बाहर जा बैठती। मखमली डिब्बा हाथ में लिए बिमला खिड़की पर जा खड़ी हुई। सूरज अस्ताचल पर था, शाम होने वाली थी, बाग में बसंत बिखरा पड़ा था, बयार बहार से भरी थी। ये गंध, ये सुगंध, अनुपम, नूतन, निर्मल, बगीचा तो वही था। बस बिमला की नजर नहीं थी, तभी तो वो मुग्ध बनी ठगी सी रह गई। बिट्टी भी तो इस बेला बहार ही बैठती थी, अंदर आती तो शिकायत करती, जीजी ये सांझ इतनी जल्दी क्यों ढल जाती है। यादों में अटकते भटकते अचानक ही उसे हाथ में पकड़े मखमली डिब्बे का ध्यान आया। डिब्बा खोलते ही उसे अचरज सा हुआ। हीरे बड़े ही धूमिल धुंधले दिख रहे थे, बिल्कुल बेजान, जैसे जड़, पत्थर। कल तक तो कैसे चमक रहे थे। पर मैं इनका करूंगी भी क्या,

कितने तो भरे पड़े हैं, बेकार ही उठा लाई, कल ही वापस लौटा दूंगी। हाँ यही ठीक रहेगा। हीरे तो नकली नहीं थे, नजरें भी वही थीं, पर शायद नजरिया बदल रहा था। दिन और रात संधि स्थल पर आ लगे। सांझ बड़ी सलोनी थी। अब आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा उतरने लगा। जब कालिमा सब कुछ अपने में ली लेती, इससे पहले ही बिमला भाग कर बाहर बगीचे में निकल आई। उसे ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि सारा धन वैभव ऐश्वर्य सोना चांदी हीरा ठाट बाट एक तरफ और अपने जीवन साथी का प्यार एक तरफ, सबसे अनमोल।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: काले काले बादलों का अंबर पर डेरा है, ठंडी ठंडी हवाओं ने हर तरफ से घेरा है, रिमझिम बरसती बूंदों ने सुर ऐसा छेड़ा है, इस सुहाने मौसम ने हम सब का मन मोहा है। कागज की कश्तियों का पानी में बह जाना, भीगी भीगी मिट्टी की खुशबू का महक जाना, चाय की चुस्कियों के साथ यादों का आ जाना, बड़ा ही हसीन है बारिश का ये तराना।
1: पत्तों पर थिरकती है मोती जैसी बूंदे, ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आंखें मूंदे, हर दिल में जग रही है एक नई उमंग, चलो आज बिखरेंगे हम भी सुरों के नए रंग। संगीत की महफिल है सावन की यह रात, सुर से सुर मिलाएंगे होगी सुरों की बरसात। हो जाइए थामिए एक दूसरे का हाथ, शुरू करते हैं आज का बीबीजी यानी कि भूले बिसरे गीत। मैं हूँ आरजे ख्वाहिश।
0: मैं हूँ आरजे गुमसुम।
1: तो रात के सफर को आइए शुरू करते हैं एक बहुत ही प्यारे से नाम के साथ। हाँ जी दोस्तों, नाम हमारा होने वाला है आज बारिश, और बारिश हो और प्यारे प्यारे गीत ना हो ये कहाँ मुमकिन है। तो आइए आज का सफर शुरू करते हैं प्यारी सी बूंदों के साथ। सुनाती हूँ एक प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई भी गाना होता है, जब कोई भी फिल्म होती है, तो उस शूटिंग के दौरान कोई ना कोई एक ऐसी कहानी उस गाने के पीछे की होती है। आज एक बहुत ही प्यारा सा गाना और उसके पीछे की कहानी, जो कि बारिश में फिल्माया गया है, राज कपूर और नरगिस पर भारतीय सिनेमा का सब आइकॉनिक रेन सॉन्ग है। इस गाने की शूटिंग के दौरान इस एक मज़ेदार वाक्या हुआ था जो आज मैं आपको बताऊंगी। गाने में तीन छोटे बच्चे रेनकोट पहनकर सड़क पर खेलते हुए दिखाई देते हैं। वे बच्चे कोई और नहीं बल्कि राज कपूर के ही बच्चे रणधीर कपूर, रीमा कपूर और ऋषि कपूर थे। ऋषि कपूर ने अपनी बायोग्राफी में बताया भी है कि शूटिंग के दौरान रो रहे थे, तब नरगिस ने उन्हें चॉकलेट का लालच देकर चुप कराया और शॉट के लिए राजी किया गया। ये गाना आज भी सच्चे प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यार हुआ, इकरार हुआ, इस गाने को सुनेंगे, लेकिन एक और गाना है जिसे हम और बताएंगे।

अब आती है बारी उस गाने की जो आज भी हम सुनते हैं तो बस कुछ याद आ जाता है। कुछ यादें वो बारिश के दिनों वाली फिर से ताज़ा हो जाती हैं। गाना है एक लड़की भीगी भीगी सी। किशोर कुमार और मधुबाला का ये गाना आज भी इतना मशहूर है कि जो भी इसे सुनता है और गुनगुनाता है वो सावन की बूंदों के साथ कुछ खो सा जाता है। मधुबाला का चुलबुला अंदाज और उसी के साथ किशोर कुमार की मस्ती, क्या ही कहना है इस गाने का। बता दें कि संगीत निर्देशक SD बर्मन कुछ ऐसा संगीत चाहते थे जो रोज़मर्रा की आवाज़ों से मेल खाए। किशोर कुमार इस गाने की जो सिचुएशन थी उसे ऐसे बनाना चाहते थे कि लगे कि वो बिल्कुल असली है। इसे बिल्कुल असली और एक्चुअल में दिखाने के लिए गैराज के टूल्स का इस्तेमाल किया गया। गाने की शुरुआत में जो कार के नेटबोर्ड कसने और पानी की बाल्टी पलटने जैसी आवाज़ें आती हैं वो पूरी तरीके से सिचुएशनल थी। गाने में किशोर कुमार की असली मस्ती और मधुबाला की बेमिसाल खूबसूरती का ऐसा फ्यूजन हुआ कि ये गाना एवरग्रीन बन गया। आज भी ये गाना लोगों की जुबान पर उतना ही कहीं ना कहीं आता है और उतनी ही मदहोशी और मस्ती से बारिश के दिनों में गुनगुनाया जाता है। तो आइए लिसनर्स चलते हैं, एक प्यारा सा गीत सुनते हैं जो कि है एक लड़की भीगी भागी सी।

0: नहीं कहो ये कोई।
1: हाँ जी दोस्तों, जब हम कभी किसी से मिलते हैं लाइक समवन स्पेशल, तो अगर बारिश हो जाए और हम बाइक पे हों, गाड़ी पे हों, तो वो जो माहौल हो बन जाता है ना, बेहद खुशनुमा बन जाता है। और उसी खुशनुमा मौसम में अगर ये गाना चल जाए, रिमझिम के तराने लेके आई बरसात, ये मूवी है काला बाजार। और इस कहानी के पीछे भी, इस गाने के पीछे भी एक बहुत प्यारी सी कहानी है, जो कि देव आनंद और वहीदा रहमान का एक बेहद खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग है। इसकी शूटिंग मुंबई में असली बारिश में की गई थी। और आपको तो पता ही है कि मुंबई की बारिश, वाओ, मतलब कहा जाता है कि एक मुंबई की बारिश हो और लड़की भीगी भागी हो, और रात की जो सड़कें होती हैं वहाँ की सड़कें कभी भी सोती नहीं हैं। तो मुंबई में ये गाना फिल्माया गया, वो भी असली बारिश में। निर्देशक विजय आनंद पर्दे पर असली मानसून का जादू दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने कोई नकली वाटर टैंक इस्तेमाल नहीं किया। देव आनंद और वहीदा रहमान एक ही छाते के नीचे मुंबई की सड़कों पर चल रहे थे। उस दौरान में ये भी कहा जाता है कि उस दौर में भारी कैमरों के साथ असली बारिश में शूट करना बेहद मुश्किल था, लेकिन देव साहब की बेफिक्री और वहीदा जी की सादगी ने इस गाने को एक टाइमलेस क्लासिक बना दिया। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को, रिमझिम के तराने लेके आई बारात।

अब आते हैं, बात करते हैं उस गीत की जो कि है फिल्म ए लव स्टोरी का, जो कि है रिमझिम रिमझिम। संगीत सम्राट आरडी बर्मन का ये बहुत ही खूबसूरत और प्यारा एल्बम था। पंचम दा इस गाने को लेकर बेहद भावुक थे, क्योंकि एक लंबे समय के बाद वो इसी गाने से बॉलीवुड में वापसी कर रहे थे। उन्होंने इस गाने को बारिश की बूंदों के साथ पिरोया, और ऐसा पिरोया कि आज भी ये हर किसी की जुबान पर कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। अनिल कपूर और मनीषा कोहराला पर फिल्माए गए इस गाने की रिलीज से ठीक पहले पंचम दा ने इसके धुनों को फाइनल किया था। लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई भी काम वक्त से बहुत पहले या वक्त के कुछ पहले होता है तो बात ही कुछ अलग होती है। आखिरी टाइम पर फाइनल हुई धुनों ने ही इस गाने को इतना खूबसूरत बना दिया कि ये आज भी कहीं ना कहीं बारिश की जब भी बात आती है तो इसे ज़रूर गुनगुनाया जाता है। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत जो कि है रिमझिम रिमझिम।

गाना सुनाने से पहले मैं बताऊं, एक बहुत ही प्यारा सा गीत है जो कि है जिंदगी भर नहीं भूलेगी ये बरसात की रात। अब इस गाने के पीछे की बहुत ही प्यारी सी कहानी है। गीतकार साहिर लुधियानवी ने इस गाने को एक गहरी कविता के रूप में लिखा था। कहानी के अनुसार गायक को बारिश की एक रात में एक अनजान लड़की यानी मधुबाला से प्यार हो जाता है। इस गाने को बारिश के बैकड्रॉप के साथ इस तरह कंपोज किया गया था कि ये केवल एक गाना नहीं बल्कि फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक मुख्य जरिया बना। इस प्यारी सी कहानी के साथ आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को जिसमें है हमारी हम सब की प्यारी मधुबाला।

0: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जो बरसात के दिनों में कहीं ना कहीं सभी की जुबान पर होता है, ओ सजना बरखा बहार आई। इसे गाया था लता मंगेशकर जी ने और ये फिल्माया गया था साधना जी पर। संगीतकार सलिल चौधरी एक दिन तेज़ बारिश के दौरान अपने घर की खिड़की के पास बैठे थे। खिड़की पर गिरती पानी की बूंदों की रिदम से उन्हें एक धुन सूझी। उन्होंने सबसे पहले इसे बंगाली गाने ना मोन लागे रे के रूप में रिकॉर्ड किया था। बाद में विमल राय की फिल्म के लिए इसी धुन को हिंदी में बदल दिया गया, जो हिंदी सिनेमा के सबसे खूबसूरत और शांत मानसून के गानों में से एक बन गया। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही प्यारा सा गीत।
1: ओ सजना

आवाज से ही इस गाने की पहचान है और आवाज ही हर किसी के एक व्यक्तित्व की पहचान भी होती है। जी हाँ दोस्तों, अगला गाना इस क्लासिक गाने को मन्ना डे ने और लता मंगेशकर ने गाया था। संगीत सलिल चौधरी का था और ये गाना था हरियाला सावन ढोल बजाता आया। विमल रॉय की इस फिल्म का यह गाना किसी प्रेमी प्रेमिका के रोमांस पे नहीं बल्कि भारतीय किसानों और धरती के जुड़ाव पर आधारित है। कहानी के अनुसार सूखे से परेशान गांव वाले जब आसमान में काले बादल देखते हैं तो खुशी से झूम उठते हैं क्योंकि बारिश का मतलब उनके लिए नई जिंदगी और फसलों का उगना है। गीतकार शैलेन ने बादलों की गड़गड़ाहट की तुलना ढोल की आवाज़ से की है, इसीलिए इस गाने का नाम भी कुछ ऐसा दिया, हरियाला सावन ढोल बजाता आया। आइए सुनते हैं इस प्यारे से नगमे को।

0: लगी,
1: मन मगन हुआ,
0: फिर लगन लगी।
2: आइए अब बात करते हैं उस गीत की जिसने बारिश के रोमांटिक पहलू को दिखाने की बजाय आम आदमी की खुशियों को दिखाया है, जो कि है दम दम डीगा डीगा। इसे मुकेश ने गाया था और अभिनेता राज कपूर जी पर यह फिल्माया गया था। संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने। इस गाने में जब राज कपूर जी आम आदमी की खुशी को दिखाते हैं, मुंबई की सड़कों पर भरे पानी में थिरकते हैं, तो वो गर्मी के बाद आई हुई पहली बरसात और राहत का जश्न मना रहे होते हैं। इस गाने की शूटिंग के दौरान सड़कों पर असली जैसा माहौल बनाने के लिए भारी मात्रा में टैंकरों का इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही प्यारे धुनों के साथ इसे शूट भी किया गया था। तो आइए सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

बरसात की बूंदों ने आज फिर यादों का जहां आबाद किया, सुरमई नगमों ने गुजरे दौर के हर लम्हे को याद किया। अब ठहरने लगी है बारिश और महफिल समेटने का वक्त है। मौसम की हर बूंद ने आज एक नया तराना गाया है, पुराने गीतों ने हर दिल में एक नया एहसास जगाया है। हवाओं में घुली है आज भी

0: बारिश में फिर मिलने का वादा करके जाते हैं इस दिल से। तो मैं हूँ आपकी आरजे ख्वाहिश
1: और मैं हूँ आरजे गुमसुम।
0: रात के सफर में भूले बिसरे गीतों का सफर हम यहीं पर करते हैं आज एंड मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए शुभ रात्रि।
1: शुभ रात्रि।